0: कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर दो दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ।
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं, उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
2: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
3: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ। हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
4: सुखेंदु दा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजोरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, सुखेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
5: हम 20 लोग थे जिनमें सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सिफारिश ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं। हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठेंगे। अभी
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे, वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कदमे आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
4: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी, मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
6: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
7: इंडिया गठबंधन फिर एकजुटता दिखाने के लिए जुटा, और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की 5 मुद्दों पर सहमति बनाई, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी भी है, जिसमें पता ये चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किए हैं।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा, SIR में करोड़ों वोटर के नाम कटे, SIR और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब CGI को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और CBSE की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा, संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे, इसको आज याद करिए।
8: BJP को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो RG कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव SIR और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: SIR मतदाता सूची में हेर फेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा, ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर SIR तो तमिलनाडु में भी हुआ, SIR तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और DMK वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो LI ही चोरी हो गई, वहां तो LI चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: BJP इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो DMK से अलग होकर TVK के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइंस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक। उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा।
7: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना यह है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने एफआईआर दर्ज की पुलिस प्रशासन में तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने, चांदनी कुरैशी, उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।
15: कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे
14: आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारी, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
16: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी, आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
15: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
17: किसकी?
15: किसी की थी।
17: किसकी थी सर?
15: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
17: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। न तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
15: और किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
17: ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
15: नाम बताइए दो चार।
17: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
14: एक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल, कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
18: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है, और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाह नामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
16: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिनके माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है, ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
7: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई है। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया, जो इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
19: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग।
20: Hello.
19: फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है। ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभराकर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा। लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नाम निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टरशॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
20: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगनी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये 1 घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं, और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
19: भूकंप के बाद सुनामी भी आई। सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
7: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जनता को सबसे बड़ा झटका। विधायकों के बाद सांसद भी बागी, शताब्दी रॉय के घर बैठक। शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात। काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग। सीजीआई को लिखेंगे पत्र। 5 सूत्रीय एजेंडा तय। बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कोचिंग टीचर फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। आज अग्रिम जमानत याचिका पर आ सकता है कोर्ट का फैसला। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में आरोपी। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। लंदन में बेटी पर हमला। 2024 में दाऊदी बोरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहला देने वाला हादसा। पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत। हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग। पीएम मोदी ने जताई संवेदना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में हुए भीषण हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल भी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक हीट फैसिलिटी में अत्यधिक तापमान से स्टील से भरे लेडल में विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में स्टील लीक हो गया। इस हादसे के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई है और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी नजर आए। राहत और बचाव दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की घोषणा की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम के एक स्टील प्लांट में हादसा हुआ, ऐसे में जो मजदूर वहां पर मौजूद थे वो अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। जगह जगह पर आग लग चुकी है, ऐसे में 8 मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। जो स्टील प्लांट में आग लगी और जो स्टील वहां पर पिघल गया वो मजदूरों पर जा गिरा, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है। कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल हीट फैसिलिटी में अत्यधिक तापमान से स्टील से भरे लेडल में विस्फोट हुआ, जिससे कि बड़ी मात्रा में स्टील लीक हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई मजदूर वहां पर मौजूद थे और ऐसे में अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागते भी नजर आए। बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या अब पार्टी भी जाने वाली है। दरअसल विधायकों की बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा आज टीएमसी के एक राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है।
1: जिस वक्त ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटती हैं, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे होते हैं। विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब जिस वक्त सोनिया गांधी से गले मिलकर ममता बनर्जी गठबंधन को मजबूत करने में जुटी थी, उसी वक्त टीएमसी में विद्रोह की नई पटकथा लिखी जाती है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए का हिस्सा बनकर सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष ने यह दावा किया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेज दिया गया है। बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की जहां बैठक हो रही थी उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी के 14 बागी सांसद दोपहर में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक करते हैं। इस दौरान सुबह ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके सुखेंदु शेखर राय भी मौजूद रहे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इसी बैठक में लोकसभा सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन, जगदीश बसुनिया और प्रसून बनर्जी भी मौजूद होते हैं।
2: एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी दीदी दीदी दीदी आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूँ, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ।
1: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को पश्चिम बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। इस गुट ने ऋतव्रत को अपना नेता बनाया है। ये इत्तेफाक नहीं है कि जब ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद होते हैं उसी मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु भी दिल्ली पहुंचते हैं।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
1: इससे पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय की तस्वीर सामने आई, जिसमें वो टीएमसी के कुछ बागी लोकसभा सांसदों के साथ देखे जाते हैं। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा कि पार्टी के कई लोग ममता के मनमाने ढंग से पार्टी चलाने से नाराज थे और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2029 तक का था, अब सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।
4: अभी नहीं तो मैं पार्टी से बाहर हूँ। हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे पे अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
5: शुकेंदु दा का जो उन्होंने बोले है मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था शुकेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
1: इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया है जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन दिए जाने की घोषणा की है और कहा है कि वो मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है।
6: हम 20 लोग थे जब हमने सिग्नेचर किए हैं, तो हम लोग एक सेपरेट ब्लॉक मतलब तैयार किए हैं, हम लोगों का वॉइस यहाँ से मतलब सेपरेट ब्लॉक से उठ गया।
1: टीएमसी में विद्रोह का आलम यह कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कदमियाई कमी के तौर पर देखा जा रहा है।
5: 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा, तो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है।
7: सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी, तो टूट गया।
1: टीएमसी में 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक तौर पर टूट सामने आई है। पहले 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना, विधानसभा स्पीकर रतींद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, और अब ममता बनर्जी के 20 सांसदों ने दिल्ली में विद्रोह करके ममता को राजनीतिक रूप से सबसे कमजोर हालत में पहुंचा दिया है।
0: इंडिया गठबंधन फिर से एकजुटता दिखाने के लिए जुटा, और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की तो 5 मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी है जिसमें पता चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किया है।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं, 2 घंटे बैठक चलती है, 5 मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर 2 महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन 5 मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो 2 मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर 1.5 महीने पहले क्या थे इसको आज याद करिए।
8: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव एसआईआर और वोट चोरी से हार रहे हैं।
9: एसआईआर मतदाता सूची में हेर फेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा, ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
10: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया, और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
10: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं, सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो डीएमके से अलग होकर टीवीके के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
11: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइंस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
12: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच, वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। डीएमके से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि डीएमके का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना यूबीटी के नेता सवाल उठाते आए।
13: जो भी डिफरेंसेस है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर दो महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई, लेकिन सवाल है कब तक? उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा?
0: अब वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया।
14: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया।
14: चांदनी नामक एक लड़की ने चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके।
14: ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा फर्जी निकाहनामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
1: आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था, दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है।

0: बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हूँ। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया।
1: शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है।
2: जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह की हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके हमारी बेटी, आपका बेटा लोग ठीक से रहे और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग।
3: आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की?
4: किसकी?
3: किसी की थी।
4: किसकी थी सर?
3: चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की।
4: ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरी है इस पे। मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा।
3: और किन किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी है इशरार अहमद के अलावा?
4: ऑल ओवर द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल।
3: नाम बताइए दो चार।
4: डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो रैंडमली नाम नहीं याद रहते।
1: आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद।
0: एक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में समय अंतराल, कुछ अंतराल पर बात करता रहा, बात करने से समाधान नहीं निकला।
1: शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है।
5: मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप, और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है, और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था।
1: आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है।
2: फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है, जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इस तरह की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिम के माध्यम से फंसाए इसको, और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया।
1: शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
6: अब खबर नीट से जुड़ी। दरअसल पिछली बार पेपर लीक की वजह से एग्जाम रद्द हुआ और अब 21 जून को परीक्षा होनी है। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना की मदद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। दावा है कि नीट पेपर ले जाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: सेना का वो हेलीकॉप्टर जो अब तक बाढ़, बारिश के खतरे के बीच वहां फंसे नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता से उतरता रहा। भारतीय वायुसेना की वो ताकत जो जंगलों की आग तक को बुझाने में इस्तेमाल होता आया है। कठिन से कठिन हालात में जिंदगी बचाने वाला भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसके जरिए अब की दावा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में पेपर पहुंचाया जाएगा। सूत्र कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स देश भर के 18 जगहों से नीट की

0: द्वारा परीक्षा में प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाएगी ताकि उनकी सुरक्षित और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। यानी 21 जून को इस बार नीट का जब पेपर होगा तो उसे MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचाया जा सकता है।
1: देश में पहली बार भारतीय वायुसेना नीट के रीटेस्ट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाली है। पूरे देश में 18 रीजनल हब्स पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स प्रश्न पत्र पहुंचाएंगे। ये पैकेट्स को पूरी सुरक्षा के साथ इन रीजनल हब्स तक ड्रॉप करेंगे और उसके बाद इन रीजनल हब से सड़क के रास्ते एग्जामिनेशन सेंटर्स तक ये क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। पहली बार देश के इतिहास में इस तरह की पहल हो रही है जब भारतीय वायुसेना किसी एग्जाम के लिए मदद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरी परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर इसकी रिव्यू मीटिंग्स ले चुके हैं और अब भारतीय वायुसेना 18 अलग अलग रीजनल हब्स पर Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए इन पेपर्स को पहुंचाएगी। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर फ्लीट के सबसे रिलायबल हेलीकॉप्टर्स हैं। बड़े विमानों से इन केंद्रों पर पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन पैकेट्स को जिनमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ इन एग्जामिनेशन सेंटर्स के रीजनल हब्स पर पहुंचाया जाएगा, जहां से इन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन केंद्रों पर भेजा जाएगा।
0: नीट यूजी परीक्षा में केवल 12 दिन का समय बचा है, इसलिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की बैठक पहले हो चुकी है। सरकार सवालों के लीक होने की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए एयरफोर्स की मदद से पेपर को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है कि एयरफोर्स की मदद से नीट का पेपर पहुंचाया जाएगा। दावा है कि नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को वायुसेना के जरिए सीधे प्रमुख केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद कड़ी निगरानी में उन्हें दूसरे एग्जाम सेंटर तक भेजा जाएगा। पेपर लीक होने की 3 सबसे बड़ी जगह होती हैं। पहली जहां से पेपर बनता है, दूसरा पेपर जहां छपता है, तीसरा रास्ते में पेपर लाने ले जाने के दौरान। इस बार नीट का पेपर चूंकि पेपर बनाने के दौरान ही लीक हुआ तो उस रास्ते को नीट री एग्जाम में बंद करके बाकी 2 रास्तों को बंद करने की तैयारी NTA की है। इसीलिए एयरफोर्स के सख्त प्रोटोकॉल और सीमित बाहरी हस्तक्षेप के चलते सुरक्षा बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई, जिससे लीक की गुंजाइश कहीं ना रहे। 22,89,000 बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। एक बार पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चे टूट चुके हैं। इस बार एयरफोर्स की मदद से पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि सरकार कहीं भी रत्ती भर भी चूक नहीं होने देना चाहती।
2: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
3: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
5: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: No ticket, no line, just showtime. Qello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
9: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
10: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
9: तो हमने पूछे जिम्मेदारों।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
10: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
9: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
10: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
9: छात्रों को दिया मंच।
10: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
12: नहीं देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
13: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
9: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
10: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
9: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।

जनता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात, काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कोचिंग टीचर फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी, आज अग्रिम जमानत याचिका पर आ सकता है कोर्ट का फैसला, आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में आरोपी। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी, लंदन में बेटी पर हमला, 2024 में दाऊदी बोरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहला देने वाला हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग, पीएम मोदी ने जताई संवेदना।

0: सुबह का ओमान तट के पास समुद्र में चल रहे तेल टैंकर एमटी मेरिवेक्स में आग लगने की घटना सामने आई है। ऑल इंडिया सीफेयर्स यूनियन के अनुसार जहाज पर आग लगने के बाद एक क्रू सदस्य ने तत्काल सहायता की अपील की। घटना के समय जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन, नौसेना और रक्षा मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 24 भारतीय नाविक फिलहाल सुरक्षित हैं, जो कि टैंकर पर सवार थे, और सभी सुरक्षित हैं। ओमान तट के पास तेल टैंकर में भयंकर आग लगी है, जिसके बाद अभी इस स्थिति पर पूरी तरह से भारत की नजर है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन, नौसेना और साथ ही रक्षा मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 24 भारतीय नाविक उस पर मौजूद थे, जो अभी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पलाऊ फ्लैग वाले टैंकर को रोका गया जब वो ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और कथित तौर पर प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। सेंटकॉम के अनुसार अमेरिकी लड़ाकू विमान सुपर हॉर्नेट ने जहाज के इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाकर कार्रवाई की, जिसके बाद जहाज आगे नहीं बढ़ सका। तो वहीं लेबनान के टायर शहर में इजरायली मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक मिसाइल हमला रेड क्रॉस की इमारत के नजदीक हुआ, जिसके बाद इलाके में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची आपातकालीन और दमकल टीमों ने आग बुझाने के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया। हमले के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है। लेबनान के टायर शहर में हमला हुआ, इसके बाद ये हमले की बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। तो यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में हुए मिसाइल हमले की भयावह तस्वीर सामने आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अचानक हुए जोरदार धमाके से इलाके में दहशत फैल गई है और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। क्षेत्रीय गवर्नर के अनुसार इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल भेजा गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हुए इस ताजा हमले ने एक बार फिर से क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या शहर में हमला हुआ, जिसके बाद सायरन भी बजे। ऐसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। धमाके बाद लोग दहशत में आ गए हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, कितनी तेज ये धमाका हुआ, पूरा इलाका दहल गया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुए भीषण हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हीट फैसिलिटी में अत्यधिक तापमान से स्टील से भरे लेडल में विस्फोट हुआ, जिससे कि बड़ी मात्रा में स्टील लीक हो गया। हादसे के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। राहत और बचाव दल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला, अस्पताल उनको पहुंचाया गया समय रहते हुए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की घोषणा भी की है। स्टील प्लांट में हादसा हुआ, जिसमें कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ सड़क पर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बेटे को पहले पिता को वो थप्पड़ मारता नजर आता है, फिर मुक्का मारता है, उनका गिरेबान पकड़कर झकझोर देता हुआ देखा जा सकता है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच का मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं बिहार के दरभंगा में जल जमाव की समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। मुख्य सड़क पर सालों से घुटनों तक पानी जमा रहने से परेशान स्थानीय लोगों ने पानी के बीच सड़क जाम कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के दूसरे दिन वार्ता के लिए पहुंचे बीडीओ और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद बातचीत बेनतीजा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान का लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो महाराष्ट्र के जालना में एक सिंचाई सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया है। आग में करीब 170 टन सामान और दो मशीनें जलकर खाक हो गई, जिससे कि कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो वही अब खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से जुड़ी, जहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोगों को समय रहते हुए बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना मिलते ही कोल्हापुर नगर निगम की दमकल टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो वही ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सेक्टर बीटा वन के बी ब्लॉक का है, जहां पर घर के बाहर खेल रही बच्ची पर दो आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को दौड़ाकर गिरा दिया और उसके हाथ पैर काट लिए, जिससे कि वो घायल हो गई है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरडब्ल्यूए ने प्राधिकरण से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया गठबंधन फिर से एकजुटता दिखाने के लिए जुटा और परसों यानी कि बुधवार को एनडीए गठबंधन अपनी ताकत दिखाने वाला है। उससे पहले इंडिया अलायंस ने मीटिंग की तो पांच मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन आज तक के पास इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी है, जिसमें पता चला है कि भीतर कई दलों ने कांग्रेस को लेकर सवाल किया।
1: ममता बनर्जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, चुप मतलब एकदम चुप, शीशा बंद कर देती है, मीडिया के सवालों से बचती है। इससे कुछ देर पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से गले मिलती हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में ममता बनर्जी बैठती हैं। इंडिया ब्लॉक की दो साल बाद हुई सातवीं बैठक में 25 दलों के नेता शामिल होते हैं। दो घंटे बैठक चलती है, पांच मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है। पहला मुद्दा, एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम कटे, एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अब सीजीआई को इंडिया गठबंधन चिट्ठी लिखेगा। दूसरा मुद्दा, नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ, नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दें। तीसरे मुद्दे पर जो आपसी सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है वो ये कि सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चौथा मुद्दा है कि हर दो महीने पर अब इंडिया गठबंधन की मुलाकात होगी, अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। और पांचवा मुद्दा, संसद में इंडिया गठबंधन का समन्वय जारी रहेगा, रोज नेता विपक्ष के दफ्तर में बैठक की जाएगी। विपक्षी गठबंधन की हालत इस बात से समझिए कि जिन पांच मुद्दों पर सहमति अगर बनी तो दो मुद्दे यही हैं, बैठक बहुत लंबा टालो मत, समन्वय जल्दी करो। असल में विपक्षी गठबंधन की समस्या है समन्वय की, क्योंकि दिल्ली में ममता को गले लगाती कांग्रेस के विचार ममता को ही लेकर डेढ़ महीने पहले क्या थे, इसको आज याद करिए।
2: बीजेपी को मौका कौन दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है, वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है, यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं और झूठे वायदे। ममता जी ने बंगाल की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। महिलाओं की बात करें तो आरजी कार रेप एंड मर्डर केस की भी बात करनी होगी।
1: जिन ममता के खिलाफ बंगाल में नाम लेकर राहुल गांधी भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक पर घेरते रहे, उसी पश्चिम बंगाल में अब उन्हीं ममता बनर्जी के पास जब न सत्ता बच रही न पार्टी बचती नजर आ रही, तो इंडिया गठबंधन बैठक करके ये कहता है कि चुनाव SIR और वोट चोरी से हार रहे हैं।
3: SIR मतदाता सूची में हेर फेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।
4: पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी, आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे। धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। उन्होंने कहा कि SIR हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर SIR तो तमिलनाडु में भी हुआ, SIR तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर ली और सरकार बना लिया। और DMK वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो अलाई ही चोरी हो गई, वहां तो अलाई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो SIR को कोस नहीं रहे, बंगाल में हार गए तो SIR का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है।
1: बीजेपी इंडिया गठबंधन की बैठक को अस्तित्व बचाओ मोर्चा तक कहती है।
4: अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है।
1: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे थे। तमिलनाडु में कांग्रेस चुनाव हारी तो DMK से अलग होकर TVK के साथ सरकार बना ली। केरल में लेफ्ट पर चुन चुन कर वार करके ही कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो दावा है कि भीतर कांग्रेस पर उन्हीं के साथ ही सवाल उठाते हैं। कई पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तालमेल की कमी का सवाल उठाया। कुछ दलों ने कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठाया कि वो अपने ही साथियों पर राज्य के चुनाव में तीखे आरोप लगाकर वोट मांगती है। दावा कि सबसे पहले अखिलेश ने ये बात उठाई और फिर बाकी नेताओं, खासकर लेफ्ट के दलों ने ये बात कही है। इस पर राहुल गांधी ने जवाब ये दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर हम साथ हैं, लेकिन जब मेरे राज्य इकाई के नेता मुझे हालात और चुनाव प्रचार के बारे में बताते हैं तो मुझे उनकी बात भी सुननी पड़ती है।
5: इंडिया गठबंधन ऐसे चलना है तो कांग्रेस के ओर से कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये अभी तक हुआ नहीं। केरल में वो खतरनाक काम किया, अलग अलग राज्यों में वो किया, पुदुचेरी में वो काम किया, अपना अलाइस को खत्म करने के लिए वो कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा सोच चाहिए।
6: वी हैव आवर सीरियस रिजर्वेशंस विद रिगार्ड टू कांग्रेस पार्टीज कॉन्टेक्ट एंड अप्रोच। वी विल रेज दोस इश्यूज इन द मीटिंग अनडाउटेडली। आवर जनरल सेक्रेटरी आल्सो हैज रिटन लेटर।
1: कांग्रेस के तरीकों पर उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने मीटिंग के पहले से लेकर मीटिंग के बाद तक सवाल उठाया। समन्वय यानी आपसी साथ कितना है, इसका सबूत देख लीजिए पेपर लीक के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवाओं के साथ प्रदर्शन पर, जहां कांग्रेस के नेता प्रश्न उठाते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर मुद्दा समान हो तो आंदोलन का समर्थन किया जाना चाहिए। DMK से कांग्रेस के अलग होने पर भी सवाल उठा है। दावा है कि एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि DMK का गठबंधन में ना होना चिंताजनक है। अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दे। पिछले साल दिल्ली चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व तक पर शिवसेना UBT के नेता सवाल उठाते आए।
7: जो भी डिफरेंसेस, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म है।
1: आपसी डिफरेंस ही इंडिया गठबंधन की वो कमजोर नब्ज है जिसे मीटिंग से पहले दिल्ली में ऐसे लगे पोस्टर से पुरजोर दबाने की कोशिश की गई। ऐसे पोस्टर जिस पर ये नहीं लिखा था कि किसने लगवाया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते इंडिया गठबंधन के ही नेताओं के पुराने बयान इन पोस्टर पर दिखाए गए, जिन्हें बाद में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आकर हटा दिया। पोस्टर तो हट गया, अब हर 2 महीने पर मीटिंग करके आपसी समन्वय सुधारने की बात भी कर ली गई। लेकिन सवाल है कब तक? उत्तर प्रदेश का मोर्चा खुलने वाला है क्या? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लोकसभा जैसी एकता दिखेगी या फिर चार दिन की एकता और फिर वही आपसी विवाद चलता रहेगा?
0: फिलीपींस में आए भूकंप से 32 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलीपींस में रिक्टर स्केल पर 7.8 का भूकंप आया जिसने भारी तबाही मचाई। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे आया, जो कि इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई और सबसे ऊंची लहर करीब 4.5 फीट की रही।
1: फिलीपींस में भूकंप से ताश के पत्तों की तरह गिरती गई इमारतें। फिलीपींस में ढह गई स्कूल की बिल्डिंग। फिलीपींस में भूकंप से मिट्टी में मिला आलिशान मॉल। फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जहां भूकंप के रूप में तबाही ने ऐसी दस्तक दी, पूरी दुनिया डर गई, सहम गई। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:07 पर फिलीपींस में इमारतें हिलने लगी। अब आप ही सोचिए, भूकंप के दौरान 36 मंजिला इस इमारत में रहने वाले लोगों की क्या हालत हुई होगी। भूकंप से आप इस इमारत को हिलते हुए देख सकते हैं। 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने जमीन को इस कदर झकझोरा कि सब कुछ हिला दिया। भूकंप के तेज झटकों से एक वाटर टैंक से पानी बाहर गिरने लगा। जमीन के ऊपर सब कुछ हिलता है, ताश के पत्ते की तरह इमारतें भरभराकर मानो गिरती चली गई। ये तस्वीर फिलीपींस के एक स्कूल की है, जिसमें पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भूकंप की कभी ना भूलने वाली यादों से रूबरू हुए। भूकंप आते ही बच्चे स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए। इस दौरान टीचर और स्कूल के स्टाफ ने बहादुरी से समझबूझ दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बैठाए रखा। इस दौरान कुछ बच्चे और स्कूल का स्टाफ कैंपस में बने शेड के नीचे दुबके रहे। अचानक शेड हिलने लगता है और सबके सामने भरभरा कर गिर पड़ता है। कुछ लोग उसमें से निकलकर भागने में कामयाब हो गए तो कई इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि ज्यादातर स्कूलों में प्रशासन ने भूकंप की चेतावनी के मद्देनजर बच्चों को खुली जगह पर इकट्ठा कर दिया। भूकंप की एक और डरावनी तस्वीर शॉपिंग मॉल की है, जिसकी इमारत भूकंप के झटकों को ज्यादा वक्त तक झेल नहीं पाई और गिर जाती है। इलाके की दूसरी इमारतों का भी वही हाल रहा। जमीन में मच रही तेज हलचलों ने इमारतों की नींव इस कदर हिला दी, एक के बाद एक इमारतें जमींदोज होती रही। धूल का गुबार चारों तरफ फैलता रहा, लोगों में चीख पुकार मची रही और सब बचने के लिए खुली जगहों पर भागते रहे। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कई लोग दहशत में सड़क पर ही बैठ गए। कई लोग गाड़ियों को पकड़कर खड़े हो गए। अचानक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग ढह जाती। 5 सेकंड में इस इमारत का नामो निशान मिट गया। अपनी आंखों से इस विनाश लीला को देख रहे लोगों की चीखने की आवाजें तेज होती गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भूकंप की तबाही दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर देखने को मिली, जहां सोमवार को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे होने की वजह से भारी नुकसान देखने को मिला है। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय भूकंप के बाद 138 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही।
8: फिलीपींस की धरती एक बार फिर भीषण भूकंप से दहल उठी। करीब 7.8 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है, जो सोमवार की सुबह फिलीपींस में आया सरंगरी इलाके के अंदर, और उसके बाद लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलीपींस के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। फिलीपींस दुनिया के नक्शे पर उस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, जिसे भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। लेकिन लगातार ये आ रही ये तस्वीरें लोगों को डराने वाली भी हैं, और जिस तरीके से वहां पर ये 1 घंटे के भीतर लगातार भूकंप के झटके सामने आते रहे हैं, यानी मुख्य भूकंप के बाद लगातार आफ्टरशॉक्स पूरे फिलीपींस को भी दहला रहे हैं और लगातार पूरे पूर्वी एशिया के अंदर इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक्टिवेट तो नहीं हो गई है, जिसके कारण पूरा इलाका एक बड़े प्राकृतिक आपदा की सद में आ सकता है।
9: भूकंप के बाद सुनामी भी आई, सबसे ऊंची लहर 4.6 फीट रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया।
0: यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
11: आपके साथ बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, क्या आप बहुत सारे केस और मुकदमों में फंसे हुए हैं, क्या बेवजह आपको घबराहट होती है, डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल भारी है? मंगल के भारी होने का क्या है अर्थ और क्या है इस समस्या से निपटने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात, काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कोचिंग टीचर फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी, आज अग्रिम जमानत याचिका पर आ सकता है कोर्ट का फैसला, आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में आरोपी। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी, लंदन में बेटी पर हमला, 2024 में दाऊदी बोरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहला देने वाला हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग, पीएम मोदी ने जताई संवेदना।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर कुंडली में मंगल बिगड़ जाए, मंगल खराब हो जाए, तो कहा जाता है कि मंगल भारी हो गया है। भारी मंगल का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आज इस विषय में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंच।

26 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:39 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल भारी है तो राशि के हिसाब से ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सावधान रहो, तुम्हारा मंगल भारी है। मंगल के भारी होने का मतलब क्या है? देखिए, मंगल ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भुजबल, फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मंगल के पास है, इसीलिए मंगल को लड़ाकू मानते हैं, ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल का संबंध कर्जों से, भूमि से, सेना से और उच्च पद से भी होता है। मंगल आम तौर पर खराब होने पर जीवन में प्रेशर, भार और दबाव पैदा कर देता है, इसीलिए जब मंगल कुंडली में खराब होता है तो कहा जाता है कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में मंगल भारी है। मंगल के भारी होने का मतलब ये है कि मंगल आपका नकारात्मक है और मंगल का प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ है। मंगल पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अगर आज गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

बनाए रखें। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, अगर आपका लग्न राशि नहीं लग्न, अगर आपका लग्न मेष सिंह या धनु है और आपका मंगल भारी है तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए, अगर आपके लग्न की राशि अग्नि राशि है, मेष सिंह या धनु है, तो मंगल आपका कंट्रोलर है, मंगल आपका नियंत्रक है। अगर मंगल यहां पर भारी है तो जीवन में चोट चपेट आपको लगातार लगेगी और जीवन में दुर्घटनाओं की संभावना बार बार बनेगी। कभी कभी रक्त की समस्या हो सकती है और शल्य चिकित्सा की सर्जरी की नौबत आ सकती है। तो अगर मेष सिंह या धनु लग्न है तो आपको चोट चपेट और दुर्घटना का सर्जरी का सामना करना पड़ेगा अगर आपका मंगल भारी है। ऐसे में सलाह लेकर मोती धारण करें और नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करें, कम से कम एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा पढ़ें और लाल रंग की चीजों से परहेज करें जब तक मंगल आपका बैलेंस नहीं हो जाता है। बाकी लग्नों और राशियों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले हल होंगे, संपत्ति खरीद सकते हैं। किसी फल का अगर आज दान कर दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, धन के खर्च पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, किसी भी मामले में संयम से काम लें। गुड़ का दान अगर कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

योग बन रहे हैं, नौकरी में बेहतरी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न गुंजन ने हमें लिखा है और गुंजन हमें लिखती हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1993। जन्म का समय है शाम के 6:40। जन्म स्थान है इंदौर। गुंजन कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, लड़का भी तैयार है, लेकिन किसी न किसी कारण से उसमें बार बार अड़चन आ रही है। 2 साल से मामला लटक रहा है, तो क्या मेरा विवाह मेरे मन पसंद के बालक के साथ हो सकेगा? गुंजन, आपकी कुंडली में जो शनि की प्लेसमेंट है, जो चंद्र की प्लेसमेंट है, वो ये कहती है कि विवाह में अकारण विलंब होगा, लेकिन चूंकि अब बृहस्पति देव बदल चुके हैं तो अब आपके लिए स्थितियां थोड़ी बेहतर हैं। अगर आप अभी प्रयास करना शुरू करें तो साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, आपके द्वारा जाने पहचाने लड़के के साथ या आपके द्वारा पसंद किए गए बालक के साथ। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं, तो एक बार कुंडली आप बालक की भी दिखा लीजिए और अगर उसमें कोई कमी है तो आप शुरू से ही उसका उपाय कर लीजिए ताकि आगे चल कर के दिक्कतें ना आए। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है, कन्या लग्न है या मकर लग्न है और मंगल आपका भारी है तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये जो वृष कन्या और मकर लग्न है ये मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व के प्रधान लग्न हैं। ये लग्न मंगल के बहुत करीबी समझे जाते हैं। मंगल का इम्पैक्ट, मंगल का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर इनकी कुंडली में वृष कन्या या मकर लग्न की कुंडली में अगर मंगल भारी हुआ तो परिवार और रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, वाणी छिन्न भिन्न हो जाती है, व्यक्ति चिल्ला कर क्रोध में बात करता है, इसका बुरा प्रभाव वैवाहिक जीवन और वाणी पर पड़ता है। अगर आपका लग्न वृषभ कन्या या मकर है और मंगल भारी है तो ये आपके स्वभाव को खराब करेगा, आपकी वाणी को खराब करेगा और आपके अंदर उग्रता पैदा करके रिश्तों को तोड़ेगा। अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में सलाह लेकर वृष कन्या या मकर लग्न वाले एक ओपल धारण करें, थोड़ा बड़ा ओपल, 12-14 रत्ती का, महीने की दोनों एकादशियों का उपवास रखें और अधिक से अधिक सफेद या क्रीम रंग का अगर प्रयोग करें तो उनके लिए बेहतर होगा।
बाकी लग्न पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, लेकिन आज यात्रा में सावधानी रखिएगा। अगर आज फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। गुड़ का अगर आज दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपका लग्न मिथुन, तुला या कुंभ लग्न हो और मंगल आपके लिए भारी हो तो इसके प्रभाव क्या होंगे? ये जो मिथुन, तुला और कुंभ लग्न है, ये वायु तत्व प्रधान लग्न हैं। मंगल इनके लिए सामान्यतः नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। और अगर मिथुन, तुला, कुंभ लग्न की कुंडली है और मंगल भारी है तो कर्ज की और धन हानि की स्थिति बनती है। व्यक्ति के ऊपर लगातार कर्जा चढ़ता चला जाता है। और मिथुन, तुला, कुंभ लग्न वालों का अगर मंगल भारी हुआ तो जीवन में, रोजगार में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आपका मंगल भारी है, आपका लग्न मिथुन, तुला या कुंभ है, तो ऐसी दशा में ओपल धारण करना लाभकारी होता है। और साथ में नियमित रूप से हर मंगलवार को लाल फल का दान करने से भी जीवन में राहत मिलती है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न या मीन लग्न हो और मंगल आपका भारी हो तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, ये जल तत्व प्रधान लग्न माने जाते हैं। यहां पर मंगल काफी ज्यादा कमजोर होता है।

है। और अगर कर्क, वृश्चिक और मीन वालों का मंगल भारी हुआ तो वैसे ही ये कमजोर स्वभाव के होते हैं। इनका आत्मविश्वास और इनका साहस दोनों डगमगा जाता है। और इनकी शिक्षा में और युवावस्था में जीवन में काफी बाधा आ जाती है। अगर आपका लग्न कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न है और मंगल भारी है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सलाह लेकर के एक देसी मूंगा धारण जरूर करिएगा और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। आज अगर अनाज का दान कर दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि मंगलवार का दिन अशुभ दिन होता है, इस दिन शुभ काम नहीं करने चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन है और सामान्यतः इस दिन शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। मंगलवार के दिन दो तीन काम करने से बचना चाहिए, जैसे मंगलवार के दिन विवाह और रिश्तों से संबंधित काम ना करें, बचें। मंगलवार के दिन कर्जा ना लें और मंगलवार के दिन कोर्ट कचहरी की शुरुआत ना करें। लेकिन बाकी काम, जमीन संबंधी काम, भूमि संबंधी काम, ऑपरेशन करवाना है, सर्जरी करवानी है, परीक्षा देनी है, इन सब कार्यों के लिए मंगलवार का दिन बेहतर होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है

आइए जानते हैं। नंबर एक, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर दो, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। नंबर तीन, करियर की समस्या हल होगी। नंबर चार, काम की अधिकता रहेगी। नंबर पांच, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। नंबर छह, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर सात, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर आठ, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर नौ, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का अगला प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है और सुमन जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बेटे की जन्म की तारीख है 17 जुलाई 2000। जन्म का समय सुबह के 9, जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ है और अभी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने वाली है, तो क्या मेरा बेटा विदेश में रहेगा? क्या उसे वहीं नौकरी मिलेगी, वहीं सेटलमेंट होगा? देखिए, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से विदेश जाना, विदेश में जाके पढ़ाई करना, ये तो ठीक है और शुरुआत में हो सकता है कि 2028 तक वहाँ पे ये नौकरी भी करें, लेकिन अल्टीमेटली लौट के अपने देश वापस आएंगे, अपने देश में रहेंगे। फॉरेन सेटलमेंट की संभावना कमजोर है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जब इंडिया में आए तो लखनऊ में सेटल ना हो, किसी और जगह सेटल होने का प्रयास करें। करियर का पार्ट, पैसे रुपए का पार्ट आपके बेटे का अच्छा है और भविष्य में इंडिया में सेटल होंगे, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके बेटे का करियर बेहतर चले और स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, आप रोज सुबह अपने बेटे के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा और हर सोमवार को सफेद मिठाई का, चावल का, चीनी का, दूध का, इसमें से किसी भी चीज का दान करते रहिएगा, बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खा के जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल रख करके ले जाइएगा, काम आपका बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना हो इलाज के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण
कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा।

राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए, तनाव दूर होगा, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, तनाव बढ़ सकता है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा

समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय किसी नए काम की शुरुआत ना करें और आज के दिन जल का और गुड़ का अगर दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पार्टी टीएमसी में फूट। दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय के घर मीटिंग। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात। काकोली घोष ने लगाई मुहर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावे को नकारा। कहा बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद, बाद में 2 से 3 और गए। बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा। सोशल मीडिया पर लिखा लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल ने कहा ममता दीदी को भले ही 90% यकीन हो अखिलेश और तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी ने कहा इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि अब चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराए जाने चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर से थमाया नोटिस। आज शाम 5 बजे बुलाया। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले पर सीआईडी पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंद्र राय ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। राज्यसभा चेयरमैन ने इस्तीफा मंजूर किया। ममता को एक और बड़ा झटका। कोलकाता के मेयर और करीबी सहयोगी फरहाद ने इस्तीफा दिया। बागी नेता से की मुलाकात। उत्तर दमदम नगर पालिका के चेयरमैन विदान विश्वास समेत 35 में से 21 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी हार के बाद ली नैतिक जिम्मेदारी। विदान नगर के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को हिरासत में लिया गया। जबरन वसूली का आरोप। लोकसभा में चीफ व्हिप को लेकर विवाद। ममता गुट ने बागी गुट की ओर से काकोली को चीफ व्हिप बनाने के प्रस्ताव को ठुकराया। ममता गुट ने कहा लोकसभा स्पीकर को कल्याण बनर्जी के चीफ व्हिप होने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पेशी। टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा से किया गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ को मिली कामयाबी। टीएमसी नेता जहांगीर खान की रंगदारी के मामले में हुई गिरफ्तार। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक। 5 मुद्दों पर बनी सहमति। खड़गे बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे इस्तीफा। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए बताया जिम्मेदार। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया गठबंधन लामबंद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखने की तैयारी। इंडिया गठबंधन ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। हर 2 महीने में गठबंधन ने मीटिंग का लिया फैसला। विपक्ष की बैठक के जरिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र को घेरा। कहा देश में हालात गंभीर। संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा। एक होकर चुनौतियों का करना है सामना। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले केरल में एसआईआर को क्यों नहीं कोस रहे, जबकि बंगाल में एसआईआर को ठहरा रहे हैं दोषी। इस गठबंधन का वजूद चोरी से हुआ। देहरादून में एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक को लेकर किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रहे मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की राज्यसभा सीट पर राजेंद्र जैन ने किया नॉमिनेशन। छगन भुजबल का पत्ता कटा। एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में भड़के भुजबल। कहा मैं कबड्डी का खिलाड़ी हूं, शतरंज का नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को 65 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अभिनेता ममूटी और आर माधवन के नाम शामिल। पिछले महीने 66 लोगों को दिया गया था सम्मान। सूरत में बीजेपी के डिप्टी मेयर के बेटे और प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव के बीच हुआ विवाद का वीडियो वायरल। गौचर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के मैनेजर जय मिश्रा ने किया सरेंडर। साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार में एमएलसी के सभी 10 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। एनडीए के 9 और आरजेडी के 1 उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नहीं भर सके एमएलसी के लिए पर्चा। एनडीए से नाराजगी के सवाल को उपेंद्र कुशवाहा ने किया खारिज। दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट गहराया। विधान परिषद चुनाव में सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आरजेडी में नाराजगी। पूर्व मंत्री शिवचंद्र ने आरजेडी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। मीडिया के सामने हीरो पड़े। शिवचंद्र राम को उम्मीदवार नहीं बनाने पर जितिन राम मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले जो गरीबों की जमीन तक को ना छोड़े, ऐसे लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पटना में सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। सासामुसा चीनी मिल को बड़ा आर्थिक पैकेज। करीब 3600 करोड़ की पेंशन की मंजूरी। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह। वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सैन्य अधिकारियों को किया गया सम्मानित। सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। अरुणाचल में सैन्य अभियान के दौरान असाधारण वीरता का किया गया था प्रदर्शन। दिल्ली में यमुना के पुनरुद्धार को लेकर अमित शाह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ यमुना हमारा संकल्प। दिल्ली में भव्य पोर्टल का शुभारंभ। उद्योगों को मिलेगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया लॉन्च। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ईंधन बचत अभियान के तहत ट्रेन से की यात्रा। ई रिक्शा से पहुंचे गुरुकुल। पटना में फैजल खान उर्फ खान सर अंडरग्राउंड पुलिस की दबिश लगातार जारी। पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में किया जमा।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर 7 विदेशी नागरिकों को नोटिस जारी किया। वॉइस सैंपल को लेकर मांगा जवाब 2 जुलाई को अगली सुनवाई। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़। अफगान नागरिक समेत 4 की गिरफ्तारी, 8 विदेशी पिस्तौल बरामद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मस्जिदों दरगाहों के संरक्षण के लिए विशेष टीम गठित। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 लोगों की गई जान, पीएम मोदी ने जताया दुख। बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर 3 महीने से रुकी पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला। सीकर में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 गिरफ्तार, वीएचपी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में अग्निकांड के बाद जामनगर में प्रशासन सतर्क, नियमों की अनदेखी करने वाले कई होटल रेस्टोरेंट सील किए गए। मुंबई के दादर में बेस्ट की बस ने 2 गाड़ियों को मारी भीषण टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। गुरुग्राम में पारिवारिक कलह का खूनी अंत, सिरफिरे पति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी और बेटे को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या के लिए यात्रा के पंजीकरण के लिए करा रहे हैं श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टर्स का कमाल, अनोखे अंदाज में की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, इलाज के दौरान पूरी तरह से होश में रहा मरीज। असम के तेजपुर में 2 दिवसीय तेजपुर लीची महोत्सव का आगाज, 500 किलो सिंगापुर भेजा गया लीची। अकोला में अंतर्राष्ट्रीय महायोग उत्सव का भव्य आयोजन, हजारों साधकों ने किया योग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पिंक मैराथन का दिखा क्रेज, 2300 महिलाओं ने मैराथन में लिया हिस्सा। वाराणसी में गंगा किनारे भारी भरकम शिवलिंग मिलने से लोग हैरान, 2 क्विंटल और 2500 साल पुराने शिवलिंग का लगाया जा रहा है अनुमान। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया, घटना सीसीटीवी में कैद, बच्ची घायल। गुरुग्राम में खाकी दागदार शराब ना पीने वाले मेजर को जबरन शराबी साबित करने की कोशिश, चेकिंग के नाम पर कर रहे हैं दादागिरी। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से हुआ बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल की शोषण का आरोप, युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप। आरा में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठा ले गए बदमाश, बेरहमी से पीट पीट कर ले ली जान, जमीनी विवाद में की हत्या। कानपुर में 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कहा चोर, आहत होकर बच्ची ने घर में ही किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हुई, एम्बुलेंस में करानी पड़ी डिलीवरी। टिहरी गढ़वाल में युवक को दोस्ती पड़ी भारी, मारपीट में गई युवक की जान। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगभग 90 टन चिकन वेस्ट जब्त किया गया, जिसे मछली पालन के लिए अवैध फीड के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तालाबों में भेजा जा रहा था। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक हुई, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का किया दौरा। कन्नौज में सिर्फ 4 बीघा जमीन के लिए पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, मृतक ने अपने पिता के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद। चंदौली में 2 दिन पहले गोली मारकर गए हत्याकांड का खुलासा, ब्याज का पैसा ना देने पर सुपारी किलर से कराई हत्या। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर पलटी एक बस से 1 महिला की मौत हुई, 15 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में चंद रुपए को लेकर महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़, पुलिस मौजूदगी भी होता रहा है बवाल। बिहार के गोपालगंज में शादी के 1 महीने बाद दी दहेज के लिए बहू की हत्या, 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर गला दबाकर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में पिता ने नशे में बेटी की हत्या की, मृत बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज। रोहतास नारायण मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का होगा खुलासा। बेगूसराय में हथियार लहराने वाले युवक की गांव वालों ने पिटाई की, पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के सहरसा में ट्रेन में सीट को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 1 की मौत, 2 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों की गला रेत करके हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात से पहले 5 शातिर अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। जामनगर में शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे के लालच में करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में लूट और हत्या के मामले में 2 युवक गिरफ्तार, एमपी के बालाघाट में वारदात को दिया था अंजाम। कौशाम्बी में संविदा लाइन कर्मी की कत्ल, सिर काट कर शव बरामद, घर से निकला था ड्यूटी पर मृतक।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
5: continue to face political pressure to reach a peace deal,
4: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है. पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें.
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
7: सिंह जैसी
9: शक्ति मुझ में.
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पर ये आग लगी।
4: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूँ और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
5: यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था,
6: ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
4: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: जब अमेरिका ईरान में डील फाइनल होने की उम्मीद जग रही थी, जब कई मुल्कों की कोशिशों के बीच स्थायी शांति की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इन सारे प्रयासों को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीती रात के दूसरे पहर में जब ईरानी मिसाइलें गर्जी, बारूदी धमाका हुआ और दो ओर से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया, तभी दुनिया को यह एहसास हो गया था कि अब जवाबी हमला बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इजराइल का गुस्सा धधके इससे पहले ही उसे शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, भरोसा भी मिला कि जवाबी हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सपने में भी नहीं की थी। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज सहित कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए। ईरान के करज शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी।
1: ईरान और इसराइल का ये संघर्ष ऐसे वक्त में आया जब युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत एक निर्णायक मोड पर चल रही थी। हालांकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस के टेबल पर जाने से पहले वो पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल को दिखा सके कि इस जंग के दौरान उसने कुछ खोया नहीं है, उसने कुछ पाया है, और वही पावर वो लगातार इसराइल और अमेरिका को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है।
0: ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसराइल ने ट्रंप की अपील क्यों खारिज कर दी? आखिर इसराइली पीएम नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है? क्या इसराइल हिजबुल्ला के पूरी तरह खात्मे की कसम तक युद्ध जारी रखने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन और तेल अबीब के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बताया गया कि लेबनन, हिजबुल्ला और ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भारी मतभेद है, जिसके बाद ट्रंप को नेतन्याहू को सख्त संदेश भी देना पड़ा था। लेकिन ट्रंप की हर कोशिश इसराइल पर बेअसर दिख रही है। न ही इसराइल ने लेबनन पर हमले रोके, न हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना बंद किया। अब जब ईरान की ओर से युद्ध का मोर्चा खोल दिया गया है, तो इसराइल को आर पार की जंग का मौका मिल गया है। अगर अब नेतन्याहू ईरान में तबाही वाले प्लान को तेजी से अंजाम देते हैं, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और फिर से पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपटों में घिरेगा। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
11: They score!
9: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ है। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप है, अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
1: अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।
2: ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन का जवाब देगी। कहां पे कौन कह रहा गायब हो गई है?
1: तो अखिलेश यादव ने दावा,
2: अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे।
0: बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेंद्र दास कहते हैं कि एक तो ऐसी गलती होगी नहीं और हुई तो रामजी दंड देंगे। चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या? चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने अपुष्ट खबरों के आधार पर चंदे में चोरी का दावा कर दिया। समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
4: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नेता विधायकों के बाद सांसद भी बागी, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। नीट पेपर लीक पर इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सर्वदलीय बैठक की मांग, सीजीआई को लिखेंगे पत्र, 5 सूत्रीय एजेंडा तय, बीजेपी ने विपक्ष पर उठाए सवाल। कोचिंग टीचर फैजल खान की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी, आज अग्रिम जमानत याचिका पर आ सकता है कोर्ट का फैसला, आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में आरोपी। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी, लंदन में बेटी पर हमला, 2024 में दाऊदी बोरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया गया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहला देने वाला हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत, हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग, पीएम मोदी ने जताई संवेदना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर, सुबह के 8 बजे और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें होंगी, साथ ही बुलेटिन में बात करेंगे टीएमसी को लगे सबसे बड़े सियासी झटके की, पार्टी के 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर लोकसभा स्पीकर को क्या पत्र भेजा है, पूरी खबर आगे बताएंगे, बताएंगे कि कैसे फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही बात करेंगे पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान की, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। साथ ही बात करेंगे आईआरसीटीसी घोटाले की, जिसमें दिल्ली की अदालत लालू और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दाऊदी बोरा समाज से जुड़े केस में फैसला देने वाले पूर्व जज की बेटी पर हमला आखिर क्यों किया गया। बात विशाखापट्टनम में हुए दर्दनाक हादसे की भी करेंगे, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका की अदालत से ट्रंप को ऐसा झटका क्या लगा है जो कि भारतीयों के लिए राहत भरा है। साथ ही कल ईरान इजराइल के हमलों के बाद मध्य पूर्व के ताजा हालात के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की। अमेरिका ने ईरान जा रहे तेल टैंकर पर हमला कर जहाज को रोका। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान की ओर जा रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद तेल टैंकर में आग लग गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि जहाज ने अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन नहीं किया था। अमेरिका ने जिस जहाज को निशाना बनाया उसका नाम मिरविक्स बताया गया है और उस पर 24 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे, हालांकि सभी को बचा लिया गया। एक और बड़ी खबर मिडिल तनाव को लेकर, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी हमले के बाद तेल टैंकर से 24 भारतीय क्रू मेंबर को बचा लिया गया है। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने मिसाइल हमले के बाद 24 भारतीयों को बचाया और इस ऑपरेशन में ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीयों को बचाया गया है। हमले के बाद शिप पर मौजूद चालक दल ने SOS संदेश भेजकर सहायता मांगी थी। MRCC मुंबई ने तुरंत ओमान की समुद्री एजेंसी OMSC के साथ समन्वय स्थापित किया और इसके बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से जहाज पर फंसे सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित वहां से तुरंत बाहर निकाला गया। इस शिप पर अमेरिकी सेना ने अटैक किया था और दावा है कि यह होर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो 24 भारतीयों का फिलहाल अमेरिकी हमले के दौरान रेस्क्यू कर लिया गया। शिवानी हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। शिवानी, अमेरिकी सेना ने इस शिप पर अटैक किया, ऐसे में माना यह जा रहा है कि होर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की गई है।
2: ठीक है, आपको बता दूं पूजा की 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है और इस पूरे इलाके में तमाम वेसल्स फंसे हुए हैं, भारत के भी तमाम वेसल्स यहाँ पे फंसे हुए हैं और इस वेसल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 24 भारतीय क्रू थे जिन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल निकाल लिया गया है। और सबसे अहम बात ये कि ओमान में जहां पर यह हमला हुआ था उससे मीलों दूर भारत में मुंबई के अंदर जो मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से उसको ये सूचना मिली और उसने कोऑर्डिनेट किया ओमान के भीतर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद ओमान की अथॉरिटीज की मदद से हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन 24 सी फेरर्स को सफल बचाया गया। लेकिन सवाल यही है कि चिंता इस बात की है, इतने सारे वहां पर वैसेज फंसे हुए हैं और लगातार दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी फ्री पैसेज नहीं है। ऐसे में ये जितने भी वैसेज वहां पे फंसे हुए हैं लगातार उन पर खतरा मंडरा रहा है। और एक ऑपरेशन जो हमने देखा बहुत ही अहम रहा जिसमें 24 भारतीयों को बचा लिया गया।
0: चलिए बहुत बहुत शिवानी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसराइल में हमला बोल दिया है। हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली बलों के खिलाफ 16 हमलों का दावा किया। इन हमलों में सैनिकों की तैनाती वाले इलाकों को टारगेट किया गया है। एक बार फिर से इसराइल पर हिजबुल्ला ने हमला किया जिसमें 16 हमलों का दावा किया गया है इसराइली बलों के खिलाफ। इन पूरे हमलों में सैनिकों की तैनाती वाले इलाकों को टारगेट किया गया है। एक बार फिर से यह हमला बोला गया है, हिजबुल्ला ने सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। अब एक बड़ी खबर ईरान को लेकर। ईरान ने एक बार फिर से महसूस किए हैं भूकंप के झटके। दक्षिणी ईरान में आज सुबह 5 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के झटके होर्मुज़गान और करमान प्रांत के सरगाज इलाके के पास महसूस किए गए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक आपको बता रहे कि भूकंप का केंद्र होर्मुज़गान और करमान प्रांत के सरगाज क्षेत्र के पास था। झटके महसूस होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने हालात का आकलन शुरू कर दिया और फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान या घायल होने की सूचना नहीं सामने आई है। बात कर लेते एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या अब कम कर दी है। अब साल में 9 की जगह सिर्फ 4 सिलेंडर ही सब्सिडी पर मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मई 2016 में शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों को हर साल 12 सब्सिडी वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर मिलते थे और बाद में इसे घटाकर 9 किया गया था और अब इसे और कम कर 4 कर दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि यह नया फैसला लोगों की औसत सालाना गैस खपत को ध्यान में रखकर लिया गया है। अब 9 की जगह 4 सिलेंडर मिलेंगे, औसत सालाना गैस खपत के आधार पर यह फैसला लिया गया है, ऐसा मंत्रालय का कहना है। अब बात कर लेते हैं सियासत की। टीएमसी की बगावत अब लोकसभा तक जा पहुंची है। विधायकों के बाद अब सांसद भी बागी हो गए हैं। दरअसल टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के समर्थन के लिए तैयार है और इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। देर शाम शुभेंदु अधिकारी ने शताब्दी रॉय के घर बागी टीएमसी सांसदों से मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली और इस बीच कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हाकिम भी बगावत के मूड में साफ नजर आ रहे हैं। जहांगीर खान पर कानूनी शिकंजा कस गया है और जहांगीर को बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं अभिषेक बनर्जी पर भी सीआईडी की तलवार लटक रही है। लोकसभा तक अब टीएमसी की बगावत पहुंच चुकी है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी की तलवार लटक रही है तो वहीं जहांगीर खान की भी गिरफ्तारी हो चुकी है जिनकी आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। शताब्दी रॉय के घर बागियों से शुभेंदु अधिकारी मिले। करीब 40 मिनट तक ये बैठक चली है। टीएमसी सांसदों की मांग है कि लोकसभा में वो अलग बैठे।
3: जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी थी, ठीक उसी वक्त उन्हीं की पार्टी के सांसद बगावत की नई कहानी लिख रहे थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी सांसद इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी नेताओं से मुलाकात की और विक्टर साइन के साथ बैठक से बाहर निकले।
4: इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, इनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए।
5: एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है।
3: लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं।
6: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
3: सुखेंदु शेखर राय ने पहले ही प्राथमिक सदस्यता और सांसद का पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महिला विरोध नीति और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नाकाम रहने की वजह से लोगों ने टीएमसी को नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो ममता दीदी के अपने ही दीदी से नाराज नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सांसदों की बगावत की आखिर पूरी कहानी क्या है। अब पूरी कहानी आप समझिए, कल लगभग 40 मिनट तक ये बैठक चली है। उस बैठक में भी कई चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर ये बैठक हुई। दूसरी बैठक जो हुई वो शताब्दी रॉय के घर बागी सांसद पहुंचे, जो कल हुई। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए, जो दूसरी बैठक हुई। इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी है। शुभेंदु, टीएमसी सांसदों में करीब 40 मिनट तक बातचीत चली है। टीएमसी में सबसे बड़ी टूट पर ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं, उसमें काकोली घोष का दावा है कि 20 सांसद अभी भी हमारे साथ है। लोकसभा में अलग बिठाने की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। काकोली घोष कह रही है कि 20 सांसद उनके साथ है। तो वहीं कीर्ति आजाद ने यह दावा खारिज किया। उन्होंने कहा है कि डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की फर्जी और मनगढ़ंत एक कहानी बनाई जा रही है। ये उनके दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है। सौगत राय का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। और महुआ मोइत्रा ने भी तीखा हमला बोलते हुए लालची, स्वार्थी और गद्दार बीजेपी में शामिल हो जाएं उन नेताओं को बोला है। वहीं अपनी सीट छोड़ दे और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, ये महुआ मोइत्रा ने तीखा हमला किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिम बंगाल के चुनावों में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। विधायक बागी हुए, सांसद साथ छोड़ रहे हैं। अब 3 दिन पहले कोलकाता के मेयर का पद छोड़ने वाले फिरहाद हाकिम ने विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता और तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही गुट के प्रमुख ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात की। हकीम को विद्रोही गुट के विधायक संदीपन साहा के साथ ऋतव्रत के कमरे में जाते हुए देखा गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं उत्तरी दमदम में नगर पालिका अध्यक्ष विधान विश्वास सहित 21 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। पार्षदों ने चुनाव में जनता की अस्वीकृति की नैतिक जिम्मेदारी। एक और बड़ी खबर, टीएमसी में टूट के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर आज सीआईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी। तो सीआईडी की तलवार अभिषेक बनर्जी पर लटक रही है। पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम एक बार फिर से समन लेकर अभिषेक के घर पहुंची, और इसके पहले सोमवार को उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज भी किए जा चुके हैं, जिनमें से 3 विधायकों ने दावा किया है कि 6 मई की बैठक के प्रस्ताव रजिस्टर में उनके नाम के सामने जो हस्ताक्षर दर्ज है वो उनके नहीं है। सीआईडी अब इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी, और सीआईडी की तलवार अभिषेक बनर्जी पर लटक रही है। और ये कहा जा रहा है कि 6 मई की जो बैठक हुई उसके प्रस्ताव रजिस्टर में उनके नाम के सामने जो हस्ताक्षर दर्ज है वो उनके नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, एक तरफ टूट तो दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा। जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तारी टीएमसी के विधायक जहांगीर खान को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, और आज कोर्ट में उनकी पेशी होगी। नेपाल बॉर्डर से टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी की गई।
3: विधानसभा चुनाव में पुष्पा द फायर वाले बयानों से चर्चा में आए टीएमसी नेता जहांगीर खान अब अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में हैं। चुनाव में हिंसा का आरोप लगने के बाद से फरार जहांगीर खान को बंगाल एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जहांगीर नेपाल के रास्ते फरार होने की फिराक में था। फालता तक ये खबर पहुंची तो हंगामा मच गया। जहांगीर खान के घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। गुस्साई भीड़ ने घर के सामान से लेकर गाड़ी तक सब कुछ तोड़ डाला। गुस्सा पुष्पा के दफ्तर पर भी टूटा। पहले शटर का ताला तोड़ा गया और फिर दफ्तर के अंदर रखा सामान। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बंगाल चुनाव के बाद से ही बंगाल पुलिस जहांगीर खान की तलाश में छापेमारी कर रही थी। आज जहांगीर को सिलीगुड़ी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद बंगाल एसटीएफ उसे कोलकाता लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो पटना के चर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। फैजल खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है, ऐसे में आज उनकी अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने वाली है।
7: पटना पुलिस खान सर की तलाश में जुटी है। पटना और आसपास के जिलों में छापेमारी हो रही है, लेकिन खान सर अब तक नहीं मिले हैं। इस बीच फैजल खान उर्फ खान सर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।
8: अब उसके बाद डिसाइड करेंगे हाकिम क्या करना है।
9: तो आपने जो प्ली रखा उस प्ली पर क्या बात?
8: अकॉर्डिंग टू लॉ आई हैव प्लेस्ड एवरी फैक्ट बिफोर द लर्नर।
7: खान सर पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। सबसे खतरनाक धारा है बीएनएस की धारा 109। ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश करता है। 2 जून को कोचिंग वॉर में विरोधी पार्टी पर गोलीकांड का आरोप लगाकर लीड खान सर ने ली थी, लेकिन जैसे ही ज्ञान बिंदु की ओर से वीडियो जारी किया गया जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद से मामला पलट गया और खान सर बुरी तरह फंस गए। इस मामले में खान सर के लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि उन पर लगी ज्यादातर धाराएं पूरी तरह से गैर जमानती हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस स्टेशन से उन्हें बेल नहीं मिल पाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज लालू परिवार के खिलाफ फैसला सुना सकती है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। कोर्ट पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर चुका है और अब सभी की नजरें आज होने वाले फैसले पर टिकी हुई है। इस मामले में ईडी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। तो वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ। पिघला हुआ स्टील लीक होने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई मजदूर घायल भी हो गए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। ये विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिघला हुआ स्टील मजदूरों पर गिर गया जिसके कारण 8 मजदूरों की मौत हो गई है। इस पूरे हादसे में कई मजदूर घायल भी हुए हैं।
3: भीषण आग की दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की हैं, जहां हीट यूनिट में हुए हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल एक बड़ी क्रेन से स्टील के लैडर को ऊपर उठाया जा रहा था जो नीचे आ गिरा। ये हादसा अत्यधिक तापमान की वजह से पिघले हुए इस्पात से भरी एक करछुल में विस्फोट के कारण हुई। पिघला हुआ स्टील नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा। हादसे के बाद CCD यूनिट में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना मिलने के बाद गृह मंत्री बंगलापुरी अनीता तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों में 5 परमानेंट कर्मचारी हैं जबकि 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वे स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना से काफी व्यथित हैं और उन्होंने घायलों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: चलिए अब आपको ट्रक हादसे की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहला हादसा यूपी के

0: ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट सुरंग निर्माण के सबसे कठिन चरण के पूरा होने का संकेत माना जाता है। परियोजना पूरी होने के बाद ये कश्मीर घाटी को कारगिल और लद्दाख से साल भर जोड़े रखेगी। साथ ही ये दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क सुरंगों में शामिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए अब जोजिला टनल से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: तो जल्द ही वो तारीख आ सकती है जिससे कश्मीर से लद्दाख को साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा, और उसी नजरिए से अगर देखें तो भारत के पर्वतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी सुरंग जोजिला, जो लगभग अब अपने निर्माण के बेहद करीब है, इसका ब्रेक थ्रू जिस तरह से होता है, और ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जोजिला टनल का पूर्वी और पश्चिम हिस्सा अब जुड़ चुका है, और जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला है ये सुरंग का देखिए जो हिस्सा है बेहद आधुनिक तकनीक और पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर, खासकर वो इलाका जो जिला का जो कि कारगिल द्रास और श्रीनगर को जोड़ता सोनमर्ग से आगे, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिरता है, और एलिवेशन अगर आप देखें तो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 11.5 किलोमीटर यानी 11,500 मीटर है, और ऐसी जगह पर इस तरह का सुरंग का निर्माण, इसके कई फायदे, एक सबसे ज्यादा कि सोनमर्ग से आगे यानी श्रीनगर को आगे कारगिल से लेकर के लेह लद्दाख तक जोड़ना, यानी जहां पर भारत के सामने चुनौतियां उसके दो पड़ोसी देश हैं जो हमेशा जो होस्टाइल हो जाते हैं, ऐसे में वहां तक लॉजिस्टिक पहुंचाना, साथ ही इस पूरे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना, और कुल मिलाकर के सामरिक नजरिए से भी ये जो जिला सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये पूरा जो परियोजना अगर आप देखें तो इसे कहा जाता है कि जैसे एक जेडमो टनल है और दूसरा ये हॉर्सशू, तो घोड़े के नाल जैसे होती ना कुछ इस आकार की ये टनल है। तो हम जहां पर हैं ये दरअसल इसका ईस्ट पोर्टल है, वेस्टर्न पोर्टल जो कि सोनमर्ग के पास आप जैसे श्रीनगर की ओर देखते हैं, तो श्रीनगर से होते हुए सोनमर्ग, सोनमर्ग के बाद आपको यहां से द्रास और द्रास कारगिल और उसके बाद लेह लद्दाख का रास्ता। अगले 1.5 साल में ये माना जा रहा है कि ये सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद सर्दियों में ये पूरा इलाका का यहां पर एवलॉन्च होते हैं। अब अक्सर तस्वीरें देखूंगी सर्दियों में बीआरओ के सामने बड़ी मशक्कत होती है इस रास्ते को खुला रखना, जहां 20 से 25 फीट तक बर्फ जम जाती है, सर्दी -30 डिग्री तक पारा गिर जाता है, और रास्ता बंद होने के जैसे काफी जो है जो विषम परिस्थितियां यहां पर होती हैं, और ऐसे में ये जो जिला सरंग जो है वो भारत के इस पर्वतीय इलाके में बेहद दुर्गम परिस्थिति में आना जाना बेहद आसान कर देगी।
1: चलिए अब वक्त हो गया है सुपर 8 में फटाफट खबरों का। कोटपुतली में हाईवे पर बेकाबू हुआ ट्रेलर, डायवर्जन के दौरान होटल की पार्किंग में पैदल चल रहे शख्स को कुचला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में हुए मिसाइल हमले की भयावह तस्वीर आई सामने, हमले में 2 लोगों की मौत, 23 लोग घायल, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में प्रशासन ने एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक रास्ते पर बनी 14 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया, जेसीबी की मदद से हुई कार्रवाई। उद्घाटन से पहले जर्जर हुआ दरभंगा में बना सामान्य सुविधा केंद्र, कचरा डंपिंग सेंटर में तब्दील हुआ केंद्र, उठ रहे सवाल। बेगूसराय में अस्पताल के चाइल्ड वार्ड के पास शॉर्ट सर्किट से लगी आग, अस्पताल में अफरा तफरी मची, अस्पताल में फायर सेफ्टी पर उठा सवाल। बिहार के बेतिया में 35 साल पुराना पुल गिरा, 6 से ज्यादा पंचायतों का संपर्क टूटा, लोगों की बड़ी परेशानी। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, बेटे ने अपने बुजुर्ग पिता के साथ सड़क पर मारपीट की, संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: दिस इज द साउंड ऑफ जैक buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
6: Oh, ouch.
5: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
8: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
2: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
1: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
17: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
18: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
19: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स
18: जी, जी,
19: हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर,

की खाड़ी में अमेरिकी कार्रवाई, 24 भारतीयों वाले तेल टैंकर एमटी मिरवेक्स को रोके जाने का दावा। अमेरिकी सेना का दावा, नाकेबंदी उल्लंघन कर रहे टैंकर पर कार्रवाई, सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचाए गए। F/A-18 सुपर हॉर्नेट से टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को बनाया गया निशाना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। ईरान की ओर बढ़ रहे एमटी मिरवेक्स को अमेरिकी सेना ने रोका, निर्देशों की अनदेखी का आरोप। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कार्रवाई के बाद ईरान की ओर जा रहा तेल टैंकर एमटी मिरवेक्स अब रास्ता बदल चुका है। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बताया नरसंहार। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को घेरा, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का लगाया आरोप। भारत का आरोप, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बना रहा पाकिस्तान। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी गो बैक के नारों से गूंजा इलाका। पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघन, नागरिक मौतों और इंटरनेट प्रतिबंधों के विरोध में प्रवासियों और कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। ममता की पार्टी टीएमसी में फूट, दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय के घर मीटिंग, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, काकोली घोष ने लगाई मुहर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने दावे को नकारा, कहा बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद, बाद में 2 से 3 और गए। बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर लिखा लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल ने कहा ममता दी को भले ही 90% यकीन हो अखिलेश और तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी ने कहा इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि अब चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फिर से थमाया नोटिस, आज शाम 5 बजे बुलाया। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए गए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय ने राज्यसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा, राज्यसभा चेयरमैन ने इस्तीफा किया मंजूर। ममता को एक और बड़ा झटका, कोलकाता के मेयर और करीबी सहयोगी फरहाद ने दिया इस्तीफा, बागी नेता से की मुलाकात। उत्तर दमदम नगर पालिका के चेयरमैन विधान विश्वास समेत 35 में से 21 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी हार के बाद ली नैतिक जिम्मेदारी। विधाननगर के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को हिरासत में लिया गया, जबरन वसूली का आरोप। लोकसभा में चीफ व्हिप को लेकर विवाद, ममता गुट के बागी गुट की ओर से काकोली को चीफ व्हिप बनाने के प्रस्ताव को ठुकराया। ममता गुट ने कहा लोकसभा स्पीकर कल्याण बनर्जी के चीफ व्हिप होने की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी नेता जहांगीर खान की पेशी, टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा से किया गिरफ्तार। बंगाल एसटीएफ को मिली कामयाबी, टीएमसी नेता जहांगीर खान की रंगदारी के मामले में हुई गिरफ्तारी। बिहार में एमएलसी के सभी 10 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, एनडीए के 9 और आरजेडी के 1 उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नहीं भर सके एमएलसी के लिए पर्चा, एनडीए से नाराजगी के सवाल को उपेंद्र कुशवाहा ने दिया खारिज, दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट गहराया। विधान परिषद चुनाव में सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आरजेडी में नाराजगी, पूर्व मंत्री शिवचंद्र ने आरजेडी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, मीडिया के सामने रो पड़े। शिवचंद्र राम को उम्मीदवार नहीं बनाने पर जितेन्द्र मांझी ने आरजेडी पर साधा निशाना, बोले जो गरीबों की जमीन तक को नहीं छोड़े, ऐसे लोगों से किसी भी चीज की उम्मीद करनी बेमानी। पटना में सम्राट कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर, सासा मूसा चीनी मिल को बड़ा आर्थिक पैकेज, करीब 3600 करोड़ की पेंशन को मंजूरी। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह, वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए सैन्य अधिकारियों को किया गया सम्मानित। सेना के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। अरुणाचल में सैन्य अभियान के दौरान असाधारण वीरता का किया गया था प्रदर्शन। दिल्ली में यमुना के पुनरुद्धार को लेकर अमित शाह की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ यमुना हमारा संकल्प। दिल्ली में भव्य पोर्टल का शुभारंभ, उद्योगों को मिलेगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया लॉन्च। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ईंधन बचत अभियान के तहत ट्रेन से की यात्रा, ई रिक्शा से पहुंचे गुरुकुल। पटना में फैजल खान उर्फ खान सर अंडरग्राउंड पुलिस की दबिश लगातार जारी, पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा किया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की याचिका पर 7 विदेशी नागरिकों को नोटिस जारी किया, वॉइस सैंपल को लेकर मांगा जवाब 2 जुलाई को अगली सुनवाई। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, अफगान नागरिक समेत 4 की गिरफ्तारी, 8 विदेशी पिस्तौल बरामद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मस्जिद दरगाहों के संरक्षण के लिए विशेष टीम गठित। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघला स्टील गिरने के कारण 8 लोगों की गई जान, पीएम मोदी ने जताया दुख। बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर 3 महीने से रोकी गई पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला।
सीकर में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 गिरफ्तार, वीएचपी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में अग्निकांड के बाद जामनगर में प्रशासन सतर्क, नियमों की अनदेखी करने वाले कई होटल रेस्टोरेंट सील। मुंबई के दादर में बेस्ट की बस ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। गुरुग्राम में पारिवारिक कलह का खूनी अंत, सिरफिरे पति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी और बेटे को मारी गोली, आरोप गिरफ्तार। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टर्स का कमाल, अनोखे अंदाज में की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, इलाज के दौरान पूरी तरह से होश में रहा मरीज। असम के तेजपुर में 2 दिवसीय तेजपुर लीची महोत्सव का आगाज, 500 किलो सिंगापुर भेजा गया लीची। अकोला में अंतर्राष्ट्रीय महायोगा उत्सव का भव्य आयोजन, हजारों साधकों ने किया योग। पश्चिम बंगाल में अहिंसा विश्व भारती की शाखा का लोकार्पण, आचार्य लोकेश और मंत्री दिलीप घोष ने सामाजिक समरसता को बताया विकास की आधारशिला। वाराणसी में गंगा किनारे भारी भरकम शिवलिंग मिलने के कारण लोग हैरान, 2 क्विंटल और 2500 साल पुराने शिवलिंग का लगाया जा रहा है अनुमान। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर खेल रही बच्चों पर कुत्तों ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद, बच्ची घायल। गुरुग्राम में खाकी दागदार शराब ना पीने वाले मेजर को जबरन शराबी साबित करने की कोशिश, चेकिंग के नाम पर दादागिरी। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से हुआ बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप, युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप। आरा में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठा ले गए बदमाश, बेरहमी से पीट पीट कर जान ले ली, जमीनी विवाद में की हत्या। कानपुर में 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कहा चोर, आहत होकर बच्ची ने घर में किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हुई, एम्बुलेंस में करानी पड़ी डिलीवरी। टिहरी गढ़वाल में युवक को दोस्ती पड़ी भारी, मारपीट में गई युवक की जान। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगभग 90 टन चिकन वेस्ट जब्त किया गया, जिससे मछली पालन के लिए अवैध फीड के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तालाबों में भेजा जा रहा था। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक हुई, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का दौरा किया। कन्नौज में सिर्फ 4 बीघा जमीन के लिए पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, मृतक के पौत्र ने अपने पिता के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला शातिर गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद। चंदौली में 2 दिन पहले गोली मारकर किए गए हत्याकांड का खुलासा, ब्याज का पैसा ना देने पर सुपारी किलर से कराई हत्या। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर पलटी बस, 1 महिला की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में चंद रुपये को लेकर महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़, पुलिस मौजूदगी में होता रहा बवाल। बिहार के गोपालगंज में शादी के 1 महीने बाद ही दहेज के लिए बहू की हत्या, 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर गला दबाकर मारा। बिहार के मोतिहारी में पिता ने नशे में बेटी की हत्या की, मृत बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज। रोहतास नारायण मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का होगा खुलासा। बेगूसराय में हथियार लहराने वाले युवक की गांव वालों ने की पिटाई, पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के सहरसा में ट्रेन में सीट को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 2 की गिरफ्तारी, 1 की मौत। झारखंड के गिरडी में पिता ने 3 बेटियों की गला रेतकर हत्या कर दी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर में पुलिस को मिली कामयाबी, वारदात से पहले 5 शातिर अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। जामनगर में शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे के लालच में करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में लूट और हत्या के मामले में 2 युवक गिरफ्तार, एमपी के बालाघाट में वारदात को दिया गया था अंजाम। कौशाम्बी में संविदा लाइन कर्मी की कत्ल, सिरकटा शव बरामद, घर से निकला था ड्यूटी पर बताया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जून 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 9:39 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। अगर आज गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन का सुख मिलेगा, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर के मामले हल होंगे, संपत्ति खरीद सकते हैं। किसी फल का अगर आज दान कर दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धन के खर्च पर ध्यान दें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, किसी भी मामले में संयम से काम लें। गुड़ का दान अगर कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

तैयारी होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग बन रहे हैं, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, लेकिन आज यात्रा में सावधानी रखिएगा। अगर आज फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

अब करें, गुड़ का अगर आज दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। आज अगर अनाज का दान कर दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक, समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही। समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर ये याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है। दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
1: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं, और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: ओ माता की जय, ओ माता की जय, गंगा माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
3: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जाँच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहां क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जाँच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया। मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी है। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी शताब्दी रॉय के घर बैठक। शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात, काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीक के लिए बड़ा दिन, सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। 13 किलोमीटर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी का अहम पड़ाव।

फायरिंग मामले में कोचिंग टीचर फैसल खान को अदालत से मिली राहत, कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक। आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश में आरोपी है फैसल खान। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। लंदन में बेटी पर हमला। 2024 में दाऊद बोरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहलाने वाला हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत। हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग, पीएम मोदी ने जताई संवेदना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। 20 सांसदों की बगावत के बाद अब टीएमसी का अगला कदम क्या होगा? ममता चुप है और ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ बात करेंगे पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर की, आमजाक में फैजल की अग्रिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही मध्यपूर्व में तनाव के ताजा हालात के बारे में आपको बताएंगे, क्या है वॉर का अपडेट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब वाले खान सर यानी फैजल खान से जुड़ी खबर के साथ। एक्ट में दर्ज केस में फैजल खान को बड़ी राहत मिल गई है। पटना की अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून के उनके कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी का है, जिसमें वीडियो के आधार पर खान सर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पटना सिविल कोर्ट से अब फैजल खान यानी कि खान सर को राहत मिल गई है। अभी अभी सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने?
1: देखिए, कल ही जब अग्रिम जमानत याचिका जो है वो फैजल खान की तरफ से पटना के सिविल कोर्ट में दायर की गई थी और आज का समय क्योंकि मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है तो आज का ही समय मुकर्रर किया गया था और डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सुनवाई हुई है। और जो पहली जानकारी मिल रही है हम तक उसके मुताबिक जो दंडात्मक कार्रवाई है मतलब गिरफ्तारी समेत अन्य तरह की जो कार्रवाई पुलिस कर सकती थी इस केस में उसमें फैजल खान को राहत कोर्ट ने दे दी है और उस पर रोक लगा दी है। तो एक बड़ी राहत है फैजल खान के लिए। 2 जून की रात पटना में जो कुछ हुआ था उस पूरे प्रकरण के बाद पहले गिरफ्तारी हुई ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के जो निदेशक हैं रोशन आनंद और उनके दो सहयोगियों की, लेकिन बाद में जो वायरल हुआ वीडियो जिसमें फायरिंग कर रहे थे फैजल खान के गार्ड्स, उस मामले में फैजल खान के गार्ड्स की तरफ से जो बयान दिया गया उसके आधार पर पटना पुलिस ने करम कुआं थाने में एक FIR दर्ज की थी और उस FIR के बाद जो फैजल खान है गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब जब कोर्ट से उनको राहत मिली है तो ये उनके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन अब देखना होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी अग्रिम जमानत याचिका पे तो पटना पुलिस ने क्या कुछ अंदर कहा है। थोड़े और डिटेल का इंतजार है कि अब पटना पुलिस ने क्या तर्क दिए हैं क्योंकि केस डायरी की भी मांग कोर्ट ने की थी। और दूसरी बात यह कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के निदेशक रोशन आनंद जेल के अंदर हैं, उनकी जमानत याचिका पर भी कल कोर्ट सुनवाई कर चुका है।
0: शशि, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, इस सुनवाई को लेकर कुछ डिटेल सामने आ रही है?
2: देखिए नेहा, अभी फैजल खान के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पटना के सिविल कोर्ट में चल रही है। थोड़ी देर में हमें लगता है कि सुनवाई जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से कोई फैसला, कोई निर्णय आएगा कि क्या फैजल खान को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती है राहत कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है, साथ ही साथ फैजल खान भी जो है इस वक्त फरार चल रहे हैं, अंडरग्राउंड है, पिछले 3 नहीं है, तो ऐसे में फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आखिरी उम्मीद इनकी कोर्ट।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोचिंग वाले फैजल खान को राहत मिली है, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन इस बीच फैजल खान की गिरफ्तारी पर पटना कोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी में सियासी हलचल है। क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को आज बेंगलुरु भेज सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को अगले 10 दिन बेंगलुरु में रख सकती है। 18 जून को एमपी की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की 2 सीटें तय मानी जा रही, 3री सीट की लड़ाई पर सबकी नजर है। इस बीच कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, लिहाजा विधायकों को बेंगलुरु भेजने का फैसला लिया गया है। तो एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं और सभी एहतियात बरतने के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन कुछ उम्मीदवारों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है। एमपी का यह राज्यसभा चुनाव जिसमें बेंगलुरु भेजे जाएंगे एमपी कांग्रेस के विधायक। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की ओर से तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन हैं। लेकिन इस बीच देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कांग्रेस क्रॉस वोटिंग बचा पाती है या फिर नहीं। रवीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, कांग्रेस तो पूरी तैयारी कर रही है, बेंगलुरु भेजने की तैयारी है विधायकों को, लेकिन इस बीच सवाल बड़ा यही है कि क्रॉस वोटिंग का अगर डर है कांग्रेस को, तो क्या वाकई किसी को बेंगलुरु भेजने से क्रॉस वोटिंग वो बचा पाएंगे? अगली खबर का रुख करेंगे। मदरसों का सर्वे कराए जाने के बंगाल सरकार के फैसले पर सियासी विवाद हो रहा है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने शुभेंदु सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मदरसों का सर्वे कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते। तो मदरसों के सर्वे पर वारिस पठान ने ये सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों का सर्वे भी किया जाए अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है। बंगाल सरकार ने मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है।
3: देखिए, जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है ना, 12-13 साल हो गए, उनका एक ही काम रहा है, जहां जहां जाते हैं उनको हमारे मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से नफरत, बुरके से, हिजाब से, मस्जिद से, मदरसे से, खानकाहों से, हर चीज से बस इनको नफरत ही नफरत है। अब ये देखिए, यूपी में कितने मदरसों को इन लोगों ने वो कर दिया। हाँ, अब बंगाल के अंदर मदरसों के पीछे पड़ गए कि मदरसा ही है। अरे, मदरसा से अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले, जरा उनका भी तो उल्लेख करिए ना। बताइए, आप मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ, शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करे तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं, मुसलमानों के खिलाफ ये करना है, मुसलमानों के मदरसों को बदनाम करना है, ये बीजेपी की टेक्निक बन गई है ध्यान भटकाने के लिए।
0: और इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 58 विधायक पहले ही ममता का साथ छोड़कर अलग गुट बना चुके थे। एक दिन पहले सांसदों की बगावत की तस्वीर सामने आ गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से 14 टीएमसी सांसदों से मुलाकात की और फिर देर शाम सांसदों की बैठक हुई, जिसके बाद लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार के समर्थन देने का फैसला किया है। इन सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह की व्यवस्था करने की मांग की। वहीं फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने तीसरी बार नोटिस भेज दिया है और आज शाम 5 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी में टूट के बीच काकुली घोष का एक ताजा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रही है कि ममता बनर्जी मेरी गाइड है। काकुली घोष ने कहा कि जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी तब भी वो उनके साथ थी।
4: आई हैव बीन विद ममता बनर्जी फॉर 40 years। शी हैज बीन माई गाइड, माई मेंटर एंड माई लीडर, एंड आई हैव बीन विद हर इवन इन द डेज व्हेन शी वॉज नॉट इन पावर। आई हैव कॉन्टेस्टेड इन 5 इलेक्शंस एंड लॉस्ट बिफोर 2009। So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that I was with her when she was not in power.
0: तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, काकुली घोष का ये ताजा बयान किस ओर इशारा कर रहा है? अब क्या पूरी तरीके से ये मान लें कि टीएमसी टूट चुकी है, कुछ जो सांसद बागी हुए, कुछ विधायक बागी हुए, लेकिन अलग पार्टी की घोषणा किसी ने नहीं की है, वो सभी पार्टी का सिंबल और रेजिग्नेशन तक के लिए सांसद तैयार नहीं हुए?
5: जी देखिए, अगर पश्चिम बंगाल राजनीति की बात की जाए तो ममता बनर्जी एक अहम चेहरा है, उनका उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट लोगों का है, तो इसलिए ये लग रहा है कि सीधे तौर पर जाके अलग पार्टी बनाने की घोषणा कोई किसी भी खेमे से करने की बात इस समय अभी तक नहीं की गई है। लेकिन ये बात तो लगभग तय है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से टूटने के कगार पर है। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी ये उम्मीद लेकर कि इंडी गठबंधन के बैठक के साथ साथ जो नाराज सांसद है, जो बागी सांसद है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जब वो दिल्ली में इंडी बैठक में शामिल हो रही थी, तभी जाकर जो बागी सांसद है वो भूपेंद्र यादव के घर पहुंच गए। उसके बाद लगातार देर शाम तक कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन काकोली खोजदोसीदार ने एक बात साफ कर दिया कि ये सवाल उठाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि आज तृणमूल कांग्रेस हारने की वजह से सब तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से पिछले 5 सालों में काम किया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल के लिए हो या फिर पार्टी के अंदरूनी काम की बात भी की जाए, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को अहमियत नहीं दिया गया था। और यही वो वजह है कि आज इतने सारे सांसद विधायक बागी हो चुके हैं। अब ये तृणमूल कांग्रेस आगे किस तरह आगे बढ़ेगी ये ममता बनर्जी तय करेंगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस लगभग टूटने के कगार पर इस समय खड़ा है।
0: टीएमसी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इतनी बड़ी हार के बाद चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से अब क्या पार्टी भी जाने वाली है, एक बड़ा सवाल है। विधायकों की बगावत के बाद ममता बनर्जी के सांसद भी टूट गए। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही ममता बनर्जी का अगला कदम क्या होगा।

0: इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता, भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी सांसद। बीते सोमवार दिल्ली से आई ये दो तस्वीरें देश की सियासी परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने का संदेश और संकेत लेकर आई। एक ओर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का खाका तैयार कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर टीएमसी के तमाम सांसद उनके राजनीतिक जमीन को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी करते नजर आए। विधायकों के बाद अब 20 सांसदों ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, यानी 4 मई को हुई चुनावी हार के बाद अब ममता के खिलाफ सबसे बड़ा खिला हो गया है।
1: उनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए, लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं।
2: मैंने सुना है एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है, उनको कैसा पता चला? ऐसा झूठ फैलाना ठीक बात नहीं है, गलत बात है किसी के बारे में। मैं तो उनके बारे में झूठ नहीं बोलती हूँ, तो वो क्यों हमारे पीछे ये सब टांग लड़ा रहे, उचित नहीं है।
0: दरअसल टीएमसी को लगे बड़े झटके की शुरुआत तब हुई जब सोमवार दोपहर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर सांसद इकट्ठा हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी सांसदों से मुलाकात की और विक्ट्री साइन के साथ बैठक से बाहर निकले, जिसके बाद ये संकेत मिलने लगा कि ममता बनर्जी को एक और झटके का पूरा प्लान तैयार हो गया है। इस रणनीति पर फाइनल मुहर तब लगी जब देर शाम को शताब्दी रॉय के घर टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग हुई। इस बैठक में खुद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए। 20 सांसदों के समर्थन का दावा हुआ और लोकसभा स्पीकर को पत्र भी भेज दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। सांसदों ने अपने पत्र में बताया है कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ ही बागी गुट के नेता के तौर पर काकोली घोष दस्तीदार को मान्यता देने की मांग की गई है। यानी तैयारी पूरी हो चुकी है, ममता की पार्टी में बगावत का खुलकर ऐलान भी हो रहा है। इस हलचल से बंगाल से लेकर दिल्ली तक तापमान बढ़ा हुआ है। लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। इससे पहले 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। यानी ये झटका ममता के लिए बहुत बड़ा होगा।
3: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा।
0: सुखेंदु शेखर रॉय ने पहले ही प्राथमिक सदस्यता और सांसद का पद छोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, महिला विरोध नीति और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नाकाम रहने की वजह से लोगों ने टीएमसी को नकार दिया। और अब 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर ममता पर सबसे बड़ा सियासी प्रहार किया है। आज तक ब्यूरो।
4: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पहले विधायकों का छिटकना, उनका बागी होना, उसके बाद सांसद 20 जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, अलग गुट बना लिया है, इनके नाम सामने आ गए हैं। ये सार्वजनिक तौर पर अपना समर्थन दे रहे हैं या अभी भी थोड़ा वक्त बचा है जब सभी के नाम और कौन कौन समर्थन में शामिल है सामने आएगा?
5: देखिए, कल जो एक फोटो रिली सामने आई, जो शुभेंदु शेखर रॉय टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा की सदस्यता से। उनके घर पे एक मुलाकात होती है। भूपेंद्र यादव के घर पे जितने सांसद पहुंचे, उसके बाद शताब्दी रॉय के घर पे 6:30 बजे एक मुलाकात हुई। तो ये अब इस पे कोई दो राय नहीं है कौन कौन सांसद जो है 20 सांसदों में है। कीर्ति आजाद अपना दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास उतनी संख्या नहीं है कि 2/3, जिससे कि वो एक अलग गुट को मान्यता मिल जाए। लेकिन स्पीकर को लिखा पत्र गया है और स्पीकर के दफ्तर में वो पत्र जमा कर दिया गया है। आज देर शाम जब स्पीकर चंडीगढ़ से वापस आएंगे दिल्ली, तो ये उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होगा और उनको एक अलग जो है वो गुट के रूप में जो है वो मान्यता मिल जाएगी लोकसभा के अंदर। ये तो हुई बात नेहा लोकसभा की। आने वाले दिनों में राज्यसभा में भी आपको यही देखने को मिलेगा, 13 सांसद है वहां, एक सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, तो 12 की संख्या है। 12 में 2/3 अगर आपको करना है तो 7 सांसद आपको चाहिए होंगे, तो क्या वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ टीएमसी के ये 7 सांसद आ सकते हैं अलग गुट के रूप में? और ना सिर्फ इन 20 सांसदों ने कहा है कि वो एक अलग गुट के रूप में उनको मान्यता मिले, उन्होंने ये भी कहा कि वो एनडीए के साथ आएंगे। अगर वो एनडीए के साथ आते तो एनडीए की जो संख्या बल है वो भी बढ़ेगी सदन के अंदर। और जो पिछली बार हमने देखा था महिला आरक्षण बिल और उसके साथ साथ जो है परिसीमन बिल को पास नहीं कर पाई थी मोदी सरकार, इस बार उसकी चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे पास होने के, क्योंकि डीएमके ने पहले ही जो है इंडिया ब्लॉक से अपना किनारा कर लिया। अगर डीएमके एब्सेंट करता है और टीएमसी के ये 20 सांसद साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू हो और परिसीमन बिल जो है वो पास हो, इसकी राह बहुत आसान हो गई।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी कलह के चलते पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। बगावत करने वाले नेता अब ममता की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि टीएमसी जल्द खत्म हो जाएगी। टीएमसी गठन के 28 साल हो गए हैं, ये पहली बार है जब पार्टी इतने बड़े संकट से जूझ रही है और ये संकट पार्टी के भविष्य पर भी कई सवाल उठा रहा है।
0: क्या टीएमसी के कुछ और सांसद बागी गुट में शामिल हो सकते हैं? क्या ममता के खिलाफ कुछ और सांसद एनडीए

0: आखिर इसकी वजह क्या है? एक दिन पहले सुखेंदु रॉय ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी को कई लोग मनमाने तरीके से चला रहे हैं।
1: अभी तो मैं पार्टी से बाहर हूँ। हमारा पार्टी का जो हम जब पार्टी में थे उस समय वो लोग जो थे कोई इसका विचार विमर्श कुछ नहीं किया गया इतना, क्योंकि उसका पावर मस्तिष्क मथे में अंदर चला गया कि हमको कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा दिया, अब देखो कैसे गिराया।
2: सुखेंदु दा का जो उन्होंने बोले है, मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ, और खास करके जहां तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, सुखेंदु दा जो बोले है वो एकदम सही है।
0: इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की, साथ ही वो लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली टीएमसी हैं। तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह का आलम यह है कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हर दिन बीतने के बाद ममता बनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: इस बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधायक बागी हो गए, अब सांसद भी साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच 3 दिन पहले कोलकाता के मेयर का पद छोड़ने वाले फिरहाद हाकिम ने विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही गुट के प्रमुख ऋतुव्रत बनर्जी से मुलाकात की है। हकीम को विद्रोही गुट के विधायक संदीपन साहा के साथ ऋतुव्रत के कमरे में जाते देखा गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। तो विद्रोही गुट के नेता से मुलाकात, वही उत्तरी दमदम में 21 पार्षदों का एक साथ इस्तीफा, तो लगातार ये विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। ऋतुव्रत बनर्जी से मिले कोलकाता के पूर्व मेयर
4: फिरहाद हकीम आए थे, तो लंबा समय बबीदा से बात हुआ, तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए।
3: वहीं तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर आज सीआईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी। पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम एक बार फिर समन लेकर अभिषेक के घर पहुंची। इसके पहले सोमवार को उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 3 विधायकों ने दावा किया कि 6 मई की बैठक के प्रस्ताव रजिस्टर में उनके नाम के सामने जो हस्ताक्षर दर्ज हैं उनके नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी से आज सीआईडी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी उन्हें समन भेजा गया है वो हाजिर नहीं हुए हैं। नोटिस लेकर अभिषेक के घर सीआईडी की टीम पहुंच गई है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने उन्हें नेपाल बॉर्डर से कल गिरफ्तार किया था। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके कोलकाता स्थित आवास पर कल तोड़फोड़ भी हुई थी। ताला तोड़कर अंदर कुछ लोग दाखिल हो गए और घर में तोड़फोड़ करने लगे।
5: विधानसभा चुनाव में पुष्पा द फायर वाले बयानों से चर्चा में आए टीएमसी नेता जहांगीर खान अब अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में हैं। चुनाव में हिंसा का आरोप लगने के बाद से फरार जहांगीर खान को बंगाल एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जहांगीर नेपाल के रास्ते फरार होने की फिराक में था। फालता तक ये खबर पहुंची तो हंगामा मच गया। जहांगीर खान के घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। गुस्साई भीड़ ने घर के सामान से लेकर गाड़ी तक सब कुछ तोड़ डाला। गुस्सा पुष्पा के दफ्तर पर भी टूटा। पहले शटर का ताला तोड़ा गया और फिर दफ्तर के अंदर रखा सामान। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बंगाल चुनाव के बाद से ही बंगाल पुलिस जहांगीर खान की तलाश में छापेमारी कर रही थी। आज जहांगीर को सिलीगुड़ी की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद बंगाल एसटीएफ उसे कोलकाता लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
3: अगली खबर का रुख करेंगे आरसीटीसी।

0: घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राव जानवी कोर्ट आज लालू परिवार के खिलाफ फैसला सुना सकती है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर ईडी ने कार्रवाई की है। कोर्ट पहले ही आरोप तय करके प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अब सभी की नजरें आज आने वाले फैसले पर टिकी है। इस मामले में ईडी ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज का दिन एक नया इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को आज अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल होगा।
1: तो जल्द ही वो तारीख आ सकती है जिससे कश्मीर से लद्दाख को साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। और उसी नजरिए से अगर देखें तो भारत के पर्वतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी सुरंग जोजिला, जो लगभग अब अपने निर्माण के बेहद करीब है, इसका ब्रेक थ्रू जिस तरह से होता है, और ब्रेक थ्रू का मतलब है कि जोजिला टनल का पूर्वी और पश्चिम हिस्सा अब जुड़ चुका है। और जैसे ही ये ब्रेक थ्रू मिला है, ये सुरंग का देखिए जो हिस्सा है, बेहद आधुनिक तकनीक और पहाड़ों में इतनी ऊंचाई पर, खासकर वो इलाका जो जिला का जो कि कारगिल, द्रास और श्रीनगर को जोड़ता है सोनमर्ग से आगे, जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिरता है। और एलिवेशन अगर आप देखें तो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 11.5 किलोमीटर यानी 11,500 मीटर है, और ऐसी जगह पर इस तरह का सुरंग का निर्माण, इसके कई फायदे। एक सबसे ज्यादा कि सोनमर्ग से आगे यानी श्रीनगर को आगे कारगिल से लेकर के लेह लद्दाख तक जोड़ना, यानी जहां पर भारत के सामने चुनौतियां उसके दो पड़ोसी देश हैं जो हमेशा जो होस्टाइल हो जाते हैं, ऐसे में वहां तक लॉजिस्टिक पहुंचाना, साथ ही इस पूरे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना, और कुल मिलाकर के सामरिक नजरिए से भी ये जोजिला सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये पूरा जो परियोजना अगर आप देखें तो इसे कहा जाता है कि जैसे एक जेडमो टनल है और दूसरा ये हॉर्सशू, तो घोड़े के नाल जैसे होती ना, कुछ इस आकार की ये टनल है। तो हम जहां पर हैं ये दरअसल इसका ईस्ट पोर्टल है, वेस्टर्न पोर्टल जो कि सोनमर्ग के पास आप जैसे श्रीनगर की ओर देखते हैं, तो श्रीनगर से होते हुए सोनमर्ग, सोनमर्ग के बाद आपको यहां से द्रास और द्रास कारगिल और उसके बाद लेह लद्दाख का रास्ता। अगले 1.5 साल में ये माना जा रहा है कि ये सुरंग पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद सर्दियों में ये पूरा इलाका का यहां पर एवलॉन्च होते हैं। अब मैं अक्सर तस्वीरें देखूंगी, सर्दियों में बीआरओ के सामने बड़ी मशक्कत होती है इस रास्ते को खुला रखना, जहां 20 से 25 फीट तक बर्फ जम जाती है, सर्दी -30 डिग्री तक पारा गिर जाता है, और रास्ता बंद होने के वजह से काफी जो है जो विषम परिस्थितियां यहां पर होती हैं। और ऐसे में ये जोजिला सुरंग जो है वो भारत के इस पर्वतीय इलाके में बेहद दुर्गम परिस्थिति में आना जाना बेहद आसान कर देगी।
0: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद बागी। शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीक के लिए बड़ा दिन, सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी, 13 किलोमीटर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी का अहम पड़ा। कोचिंग टीचर खान सर को अदालत से मिली राहत, कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन वारदात के बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी, लंदन में बेटी पर हमला, 2024 में दाऊदी बोरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दलाने वाला हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 की मौत, हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग, पीएम मोदी ने जताई संवेदना।

फैजल खान को बहुत से मिली राहत, जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। फायरिंग मामले में फैजल खान दो गार्ड्स पहले से ही जेल में बंद, कोर्ट पुलिस से मामले के सबूत और केस डायरी तलब की। वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज हुई FIR, पुलिस के अनुसार गार्ड्स ने फायरिंग की बात स्वीकार की। केजरीवाल का आरोप, पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की कार्रवाई, छोटे कारोबारियों को परेशान करने का दावा। ईडी रेट्स के खिलाफ केजरीवाल ने किया समर्थन का ऐलान, पूरा पंजाब व्यापारियों के साथ। एमपी में 6 साल बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी, क्रॉस वोटिंग से बचाने कांग्रेस अपने विधायकों की करेगी बाड़ेबंदी। आज बेंगलुरु रवाना हो सकते कांग्रेस विधायक, अगले 10 दिन बेंगलुरु के रिजॉर्ट पर रखा जाएगा। सोमवार शाम को विधायकों को 10 दिन के हिसाब से बैग पैक करने के लिए कहा गया है। 18 जून को मतदान से पहले लौटेंगे भोपाल। तीसरी सीट को लेकर फंस गया पेश, मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी ने महेश केवट को उतारा है मैदान में। 18 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होगा मतदान। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को दिया है टिकट, कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को बनाया है अपना उम्मीदवार। KGMU हार्ट स्टेंट घोटाला मामले में जांच तेज, डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 1 साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड तलब, मरीजों के फीडबैक को बनाया जाएगा सबूत। KGMU हार्ट स्टेंट घोटाला मामले में अनियमितताओं पर सख्ती, थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई, संबंधित कंपनी की ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए, हार्ट स्टेंट मामलों की निगरानी अब KGMU के नियमित कर्मचारी करेंगे। स्टेंट घोटाले के बाद दवा खरीद पर नजर, कई विभागों में खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रुपए तक पहुंचा। आज तक के असर से बदली तस्वीर, रिन नदी पर 27 करोड़ का पक्का पुल निर्माण शुरू, 70,000 ग्रामीणों में खुशी। राजूपाल हत्याकांड में दोषी करार, शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत, आबिद को मिली जमानत पर उठे सवाल। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे युवतियों से ऑटो चालक ने सुनसान इलाके में किया दुष्कर्म का प्रयास, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। कानपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का सैलाब, स्पेशल ट्रेन के दावों के बीच व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में 90 साल पुराने गर्ल्स स्कूल पर लगा ताला, छात्राओं और अभिभावकों का प्रदर्शन, पढ़ाई बचाने को मुख्यमंत्री से गुहार। स्कूल बंद होने के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं, उनके पेरेंट्स, विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल बचाने की मांग। ममता की पार्टी TMC में पूर्व दिल्ली में लोकसभा में 28 में से 20 बागी सांसद शताब्दी रॉय के घर मिले CM शुभेंदु अधिकारी से की मुलाकात, काकुली घोष ने लगाई मोहर। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने दावे को नकारा, कहा बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद हैं, बाद में 2 और 3 और शामिल हो गए। बागी सांसदों पर मऊआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर लिखा लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल ने कहा ममता दी को भले ही 90% यकीन हो, अखिलेश और तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि अब चुनाव EVM के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी को CID ने थमाया नोटिस, आज शाम 5 बजे बुलाया। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में CID पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए गए हैं। TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ममता को एक और बड़ा झटका, कोलकाता के मेयर और करीबी सहयोगी फरहाद ने इस्तीफा दिया, बागी नेता से की मुलाकात। उत्तर दमदम नगर पालिका के चेयरमैन विधान विश्वास समेत 35 में से 21 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। विधाननगर के पूर्व मेयर और TMC नेता सब्यसाची दत्ता को हिरासत लिया गया, जबरन वसूली का है आरोप। लोकसभा में चीफ व्हिप को लेकर विवाद, ममता गुट ने बागी गुट की ओर से काकली के चीफ व्हिप बनाने के प्रस्ताव को ठुकराया। ममता गुट ने कहा लोकसभा स्पीकर के कल्याण बैनर्जी के चीफ व्हिप होने की जानकारी पहले दी जा चुकी है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में TMC नेता जहांगीर खान की पेशी, TMC नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा से किया गया गिरफ्तार। बंगाल SCF को मिली कामयाबी, TMC नेता जहांगीर खान की रंगदारी के मामले में हुई गिरफ्तारी। बिहार विधान परिषद चुनाव में 10 उम्मीदवारों के लफनामे आए सामने, संपत्ति और शिक्षा का खुलासा। RJD के सुनील कुमार सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार, 54 करोड़ की संपत्ति और करोड़ों की ज्वेलरी का ब्यौरा। बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह की संपत्ति में बड़ा इजाफा, 19 करोड़ 44 लाख की दौलत, हलफनामे में पत्नी ज्योति सिंह का नाम बरकरार। JDU उम्मीदवार निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी अधूरी, 8 में से 5 सेमेस्टर ही किए हैं पूरे। उम्मीदवारों की संपत्ति में बड़ा अंतर, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति तो किसी के नाम पर न गाड़ी है न बड़ी अचल संपत्ति। सिंगापुर दौरे से वापस लौटे लालू यादव आज आएंगे पटना, बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी पटना आएंगे। सुरक्षा हटाए जाने के बाद लालू यादव पहली बार पटना पहुंच रहे हैं, RJD का कार्यकर्ता लालू आवास के बाहर कर रहे हैं पहरेदारी। यूपी चुनाव 2027 को लेकर RJD की रणनीति तेज, संगठन में बड़े बदलाव के साथ नई सीटों पर नजर, बीजेपी गठबंधन को मजबूत हिस्सेदारी देने के लिए पार्टी ने शुरू किया मंथन।
मुरादाबाद रैली के बाद एक्शन मोड में आरएलडी जयंत चौधरी ने मांगी बूथ स्तर की ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी चुनाव में 25 से 30 सीटों की दावेदारी की तैयारी। हुगली में टीएमसी पार्षद मौसमी विश्वास का आरोप, यूट्यूबर पर ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की मांग का दावा। ब्लैकमेलिंग से परेशान टीएमसी पार्षद सड़क पर रो पड़ी। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी कार्रवाई, 24 भारतीय वाले तेल टैंकर एमटी मेरीवेक्स को रोके जाने का दावा। अमेरिकी सेना का दावा, नाकेबंदी उल्लंघन कर रहे टैंकर पर कार्रवाई, सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचाए गए। FA-18 सुपर हॉर्नेट से टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को बनाया निशाना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। ईरान की ओर से बढ़ रहे एमटी मेरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने रोका, निर्देशों की अनदेखी का आरोप। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कार्रवाई के बाद ईरान की ओर जा रहा तेल टैंकर एमटी मेरीवेक्स अब रास्ता बदल चुका है। UNSC में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बताया नरसंहार। भारत ने यूएन में पाकिस्तान में घेरा, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का आरोप। भारत का आरोप, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाद जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी गोबैक के नारों से गूंजा इलाका। POK में कथित मानवाधिकार का उल्लंघन, नागरिक मौत और इंटरनेट प्रतिबंधों के विरोध में प्रवासियों और कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवित वृद्धा को मृत दिखाकर 3 महीने से रोकी पेंशन, दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद मानवाधिकार आयोग में पहुंचा मामला। सीकर में सामूहिक धर्मांतरण के आरोप में 3 गिरफ्तार, VHP ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में अग्निकांड के बाद जामनगर में प्रशासन सतर्क, नियमों की अनदेखी करने वाले कई होटल रेस्टोरेंट सील। मुंबई में दादर में बेस्ट की बस ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 की मौत 3 घायल। गुरुग्राम में पारिवारिक कलह से खूनी अंत, सुखरे पति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी और बेटे को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंदरकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का किया दौरा। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में डॉक्टरों का कमाल, अनोखे अंदाज में की ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, इलाज के दौरान पूरी तरह होश में रहा मरीज। असम के तेजपुर में 2 दिवसीय तेजपुर लीची महोत्सव, 500 किलो सिंगापुर भेजी गई लीची। अकोला में अंतर्राष्ट्रीय महायोगोत्सव का भव्य आयोजन, हजारों साधकों ने किया योग। इंदौर में कैंसर मरीजों के सस्ते इलाज के लिए जुपिटर कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ, डॉक्टर अंकित ठक्कर ने आधुनिक सुविधाओं से दी प्राथमिकता। वाराणसी में गंगा किनारे भारी भरकम शिवलिंग मिलने से लोग हैरान, 2 क्विंटल और 2500 साल पुराने शिवलिंग का लगाया जा रहा है अनुमान। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, बच्ची घायल। गुरुग्राम में खाकी दागदार, शराब न पीने वाले मेजर को जबरन शराबी साबित करने की कोशिश। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप, युवती ने लगाया लव जहाद का आरोप। आरा में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठा ले गए बदमाश, बेरहमी से पीट पीट कर ले ली जान, जमीनी विवाद में की हत्या। कानपुर में 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कहा चोर, आहत होकर बच्ची ने घर में किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस, बीच रास्ते खराब, एम्बुलेंस से करानी पड़ी डिलीवरी। टिहरी गढ़वाल में युवक को दोस्ती पड़ी भारी, मारपीट में गई युवक की जान। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 90 टन चिकन वेस्ट जब्त किया, जिसे मछली पालन के अवैध फीड के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तालाब में भेजा जा रहा। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक, घटना के बाद DIG ने घटनास्थल का किया दौरा। HAL के MD नीरज सराफ पर टेंडर प्रक्रिया में नेताओं के आरोप, PMO और लोकपाल में शिकायत के बाद मंत्रालय ने मांगा जवाब। अलीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती मांगी और जान जमाने की धमकी वाला छात्र गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज बरामद। चंदौली में 2 दिन पहले गोली मार कर किए गए हत्याकांड का खुलासा, ब्याज का पैसा न देने पर सुपारी किलर से कराई हत्या। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर पलटी बस, 1 महिला की मौत, 15 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में चंद रुपए को लेकर महिला डॉक्टर की कार में तोड़फोड़, पुलिस की मौजूदगी में होता रहा बवाल। बिहार के गोपालगंज में शादी में 1 महीने बाद ही दहेज के लिए बहू की हत्या, 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर गला दबाकर मार डाला। बिहार के मोतिहारी पिता ने नशे में बेटी की हत्या की, मृत बच्ची की मां के बयान पर केस दर्ज। रोहतास नारायण मेडिकल कॉलेज में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह का खुलासा होगा। बेगूसराय में हथियार लहराने वाले युवक की गांव वाले ने की पिटाई, पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी को हिरासत में लिया। बिहार के सहरसा में ट्रेन की सीट को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 1 की मौत 2 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में पिता ने 3 बेटियों की गला रेतकर हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
देवघर में पुलिस उमड़ी कामयाबी, वारदात में पांच हाथियार अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। जामनगर में शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे के लालच में करीब 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी, राजस्थान से आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में लूट और हत्या के मामले में दो युवक गिरफ्तार, एमपी के बालाघाट में वारदात को दिया था अंजाम। कौशाम्बी में संविदा लाइन कर्मी की कत्ल, सिर कटा शव बरामद, घर से निकला था ड्यूटी पर मृतक। कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ स्टारर फिल्म अल्फा का टीजर, 3 जुलाई को सिनेमाघर में दस्तक देगी फिल्म। रिलीज से पहले फिल्म वेलकम टू द जंगल का जलवा, सूत्रों के मुताबिक फिल्म में सैटेलाइट और ओटीटी राइट से कमाए 120 करोड़। 15 साल बाद साथ अक्षय और अनीस बाजमी की जोड़ी, मुंबई में चल रही है अनाम फिल्म की शूटिंग। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल पर बड़ा अपडेट, निर्देशक अनीस बाजमी ने दी जानकारी। फिल्म नो एंट्री 2 पार्ट 2 पर काम शुरू हो चुका है। डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का पहला पोस्टर जारी, फिल्म में डबल रोल में दिखेंगे अरशद वारसी।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाई टेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
4: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स
3: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: इन एसोसिएशन विद
5: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
4: विमल बोलो जुबां केसरी।
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर हूं जहां पर ये आग लगी।
8: मैं आपको टॉप एंगल से एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर जो पूरा मंजर है उसको बयान करने के लिए काफी है।
9: यहां पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था।
10: ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो पूरे इस इलाके में जो है वो चल रही है।
8: 20 लोगों की जान चली गई। और देखिए जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहां से नहीं दिखाएंगे।

0: जब अमेरिका ईरान में डील फाइनल होने की उम्मीद जग रही थी, जब कई मुल्कों की कोशिशों के बीच स्थायी शांति की चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त ईरानी मिसाइलों की बौछार ने इन सारे प्रयासों को युद्ध की आग में झोंक दिया। बीती रात के दूसरे पहर में जब ईरानी मिसाइलें गर्जी, बारूदी धमाका हुआ और दो ओर से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया, तभी दुनिया को यह एहसास हो गया था कि अब जवाबी हमला बेहद खतरनाक होगा। लेकिन इजरायल का गुस्सा धधके इससे पहले ही उसे शांत करने की कोशिशें शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, भरोसा भी मिला कि जवाबी हमला नहीं होगा। लेकिन कुछ ही देर में जो कुछ हुआ, उसकी उम्मीद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सपने में भी नहीं की थी। तंसीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल ने तेहरान, इस्फहान, तबरीज सहित कई शहरों में एक साथ बम और मिसाइल बरसाए। ईरान के करज शहर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान के कई शहरों से तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी।
1: ईरान और इजराइल का ये संघर्ष ऐसे वक्त में आया जब युद्ध विराम को लेकर ईरान और अमेरिका की बातचीत एक निर्णायक मोड पर चल रही थी। हालांकि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि नेगोशिएशंस के टेबल पर जाने से पहले वो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल को दिखा सके कि इस जंग के दौरान उसने कुछ खोया नहीं है, उसने कुछ पाया है, और वही पावर वो लगातार इजराइल और अमेरिका को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है।
0: ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल ने ट्रंप की अपील क्यों खारिज कर दी? आखिर इजरायली पीएम नेतन्याहू के मन में क्या चल रहा है? क्या इजराइल हिजबुल्ला के पूरी तरह खात्मे की कसम तक युद्ध जारी रखने की रणनीति को आगे बढ़ा रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन और तेल अबीब के कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बताया गया कि लेबनन, हिजबुल्ला और ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भारी मतभेद है, जिसके बाद ट्रंप को नेतन्याहू को सख्त संदेश भी देना पड़ा था। लेकिन ट्रंप की हर कोशिश इजराइल पर बेअसर दिख रही है। न ही इजराइल ने लेबनन पर हमले रोके, न हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करना बंद किया। अब जब ईरान की ओर से युद्ध का मोर्चा खोल दिया गया है, तो इजराइल को आर पार की जंग का मौका मिल गया है। अगर अब नेतन्याहू ईरान में तबाही वाले प्लान को तेजी से अंजाम देते हैं, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और फिर से पूरा मध्य पूर्व युद्ध की लपटों में घिरेगा। आज तक ब्यूरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ है। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप हैं। अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
1: अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।
2: ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन का जवाब देगी। कहां पे कौन कह रहा गायब हो गई है?
1: अखिलेश यादव
2: कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे।
0: बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेंद्र दास कहते हैं कि एक तो ऐसी गलती होगी नहीं और हुई तो रामजी दंड देंगे। चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या? चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने अपुष्ट खबरों के आधार पर चंदे में चोरी का दावा कर दिया। समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
4: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता, आज तक।

0: घूमना फिरना अब सिर्फ शौक नहीं, एक जरूरत बन गया है। फर्क बस इतना है कि मंजिल बदल गई है, जिसमें विदेश की जगह अपना देश है। यही वजह है कि दुनिया में मची उथल पुथल, महंगी उड़ानें, बंद रास्तों के बीच भी भारतीय अपना बैग उठाकर घूमने के लिए किसी न किसी मंजिल पर निकल ही पड़ते हैं। यही बदलाव भारतीय पर्यटन की नई कहानी लिख रहा है। यूएन टूरिज्म की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 30 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, जो पिछले साल से 2% ज्यादा है। लेकिन मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से मार्च में ग्रोथ घटकर महज 0.4% रह गई। ऐसे में यूएन टूरिज्म का कहना है कि मौजूदा अनिश्चितताओं की वजह से साल 2026 में ग्लोबल टूरिज्म ग्रोथ उसकी शुरुआती अनुमान से कमजोर रह सकती है। अगर भारत की बात करें तो मिडिल ईस्ट के हालात ने एक अलग असर दिखाया है। दरअसल मध्य पूर्व के एरोस्पेस में रुकावट आने और जेट फ्यूल की बढ़ती लागत के बीच एयर इंडिया ने जून से अगस्त के दौरान हर हफ्ते 145 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम करने का फैसला किया है। वहीं यूरोप और पश्चिमी देशों के कई रूट्स पर किरायों में बढ़ोतरी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी। शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात। काकोली ने की 20 सांसदों के साथ का दावा। राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक के लिए बड़ा दिन, सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजीला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। 13 किलोमीटर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी का अहम पड़ाव। फायरिंग मामले में कोचिंग टीचर फैजल खान को अदालत से मिली राहत, कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन वारदात के बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। लंदन में बेटी पर हमला, 2024 में दाऊदी बोहरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहला देने वाला हादसा, पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत। हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है इस खास पेशकश में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए क्या क्या स्पेशल है। आगे बात होगी पहले विधायक और सांसदों की अब बगावत, ममता बैनर्जी की टेंशन, ये भी चर्चा करेंगे कि बागियों ने कैसे चैलेंज कर दिया है उनको। साथ ही बताएंगे कि बंगाल में मदरसा सर्वे पर सियासी घमासान, शुभेंदु के फरमान पर किसने बोला है हमला, और साथ ही दिखाएंगे कि कश्मीर और लद्दाख के बीच बन रही टनल की आखिरी दीवार अब टूटने वाली है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब ममता बैनर्जी अपनी ही पार्टी में अंदरूनी कलह और टूट से बिल्कुल परेशान है। ममता बैनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पार्टी के विधायकों और सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता के से लेकर के दिल्ली तक अब सियासत तेज है। 58 विधायक पहले ही ममता बैनर्जी का साथ छोड़कर अलग गुट बना चुके थे और अब एक दिन पहले बागी सांसदों की लिस्ट भी आ गई है। बागी गुट की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी संख्या 20 है, लेकिन टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि उनकी संख्या महज 13 है। टीएमसी में टूट की हलचल का केंद्र कोलकाता से हटकर अब दिल्ली हो गया है। दिल्ली में एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से टीएमसी के 14 बागी सांसदों ने मुलाकात भी की है और फिर देर शाम सांसदों की बैठक भी हुई है। इसके बाद लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला सुना दिया। इन सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर लोकसभा में बैठने के लिए एक अलग व्यवस्था करने की भी मांग कर दी है और काकोरी घोष दस्तीदार को अपना नेता बताया है। पार्टी की अंदरूनी कलह और सांसदों की बगावत के बीच आज टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी और कीर्ति आजाद करीब एक घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो टूट हो रही है, और इस बार विधायकों की नहीं सांसदों की टूट हो रही है, उसके आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि विधायक कितने अलग हुए। तो 58 विधायकों का दावा लेकर के जो अब नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं वहां पर ऋतव्रत, उन्होंने ये दावा किया और 58 उनके साथ हैं। अब सांसदों की टूट की बात सामने आ रही है। करीब 20 सांसद टूटे होने का दावा किया जा रहा है कि ये अब ममता बैनर्जी के साथ नहीं है, ये साथ देना चाहते हैं एनडीए सरकार का। तो ये बचे हुए जो सांसद रहे वो 8, यानी कि 8 सांसद अभी भी ममता बैनर्जी के साथ है, क्योंकि लोकसभा का जो नंबर है वो 28 का है। राज्यसभा को इससे हम अभी अलग कर रहे हैं। तो लोकसभा के जितने सांसद उनसे बागी हो गए हैं वो 20 के हैं और अब चाहते हैं कि वो अलग बैठे संसद में, लोकसभा के सदन के अंदर उनके बैठने की व्यवस्था अलग हो ताकि वो उनके साथ ना हो जो ममता के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। हमारे साथ जुड़ गए हिमांशु मिश्रा और तापस सेन गुप्ता। पहले रुक करते हैं हिमांशु आपका। हिमांशु, ये बताइए कि 8 सांसद ही बचे हैं ममता बैनर्जी के पास, लेकिन जो टीएमसी के कुछ सांसद हैं, कीर्ति आजाद हैं, वो ये दावा करते हैं कि ये गलत है, फहरिस्त जो बीजेपी दे रही है वो झूठी है।
1: देखिए, ये जो फहरिस्त है ये कल जो टीएमसी के सांसद हैं वो मुलाकात करने गए थे। टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है उनके साथ 20 सांसद हैं, और ऐसे के अंदर जो है ये 20 सांसद जो हैं इन्होंने अपना पत्र जो है स्पीकर के दफ्तर में जमा कराया है कि ये टीएमसी के नेता हैं और काकोली घोष जो है इनकी संसदीय दल की नेता होंगी। काकोली घोष को जो है वो अभिषेक बैनर्जी ने चीफ व्हिप पद से हटाया था, लेकिन इसका नोटिस लोकसभा को नहीं दिया था। तो काकोली घोष ने टेक्निकल आधार पर जो है खुद से 20 सांसदों का एक गुट के साथ सिग्नेचर कर ये बताया कि वो उनकी नेता है। अब स्पीकर आएंगे और वो इस पे फैसला लेंगे। अब स्पीकर क्या करेंगे ये स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इतना जरूर है अगर 20 सांसदों के पत्र की बात आई है सामने, तो स्पीकर चाहे तो इन 20 सांसदों को फिजिकली अपीयरेंस के लिए बुला सकते हैं कि आइए, कोई फोर्स साइन या कोई ऐसी चीज ना आए और उसके बाद जो है मान्यता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से फिजिकल अपीयरेंस पे भी आता है। हम पहले भी जो है इस पर चर्चा कर चुके हैं, चिराग पासवान की जो पार्टी थी रामविलास एलजेपी, उसमें जब फूट हुई थी तो पशुपति पारस ने यह दावा किया था 4 सांसद उनके पास है 5 में से, और चारों सांसद जो है स्पीकर के पास गए, उन्होंने अपना पत्र दिया और उन्होंने कहा कि वो चिराग पासवान को अपना नेता नहीं मानते, उनके नेता जो है वो पशुपति पारस है। तो उस तरीके से उस बिहार पर उनके गुट को अलग मान्यता लोकसभा के अंदर दी गई थी। तो इसी आधार पर जो है ये 20 सांसद जब प्रेजेंस होंगे और उनकी प्रेजेंस के साथ साथ पत्र सौंपा जाएगा, तो जाहिर तौर पर पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसके
0: अकॉर्डिंगली आखिर संसद में आगे क्या होता है, स्पीकर क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही हैं काकोली घोष दस्तीदार और उन्होंने ममता बनर्जी को अपना गाइड, मेंटोर और अपनी नेता बताया है। उन्होंने नाराजगी का जिक्र भी किया है, आरोप लगाया है कि अब टीएमसी में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने उन दिनों का जिक्र किया है जब टीएमसी सत्ता में नहीं थी। काकोली घोष दत्तीदार ने सफाई दी है कि उन्होंने सत्ता जाने की वजह से पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि पिछले 3 से 4 वर्षों में काम संतोषजनक नहीं रहा है, उनका विकास संतोषजनक नहीं रहा है, कई वित्तीय अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ये दावा काकोली घोष दत्तीदार कर रही है।
2: I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that. I was with her when she was not in power.
0: उधर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और कुछ नाम भी साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बागी सांसदों के नामों की ये जो लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से वो कहते हैं, ये गलत तरीके से फैलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया है। वो ये सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया है। उन्होंने अमित शाह को भी टैग किया और कहा है कि वो नाकाम हो गए हैं। तो उनका बड़ा दावा है ये, वो कह रहे हैं कि ये जो लिस्ट है 20 सांसदों की, ये झूठी लिस्ट है, गलत लिस्ट है और ये फैलाई जा रही है। तो क्या वाकई में ऐसा है या नहीं, क्या कीर्ति आजाद के दावों में कोई दम है या नहीं, कुछ वक्त बाद पता चल पाएगा। वो अपना बयान भी साझा करने वाले हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि वो प्रेस के साथ मुखातिब होंगे, लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कि ये लिस्ट गलत है। तो बागी सांसदों की जो नेत्री हैं काकोली घोष दस्तीदार, उन्होंने आज तक से खास बातचीत में बताया है कि उन्होंने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया है। वो कह रही है कि वोटरों की नाराजगी सामने है और ऐसे में हम जनादेश के साथ हैं। उन्होंने वादा किया है कि एनडीए के साथ रहकर देश और राज्य के लिए वो काम करेंगे। आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने उनसे एक खास बातचीत की है।
3: बातचीत करने के लिए हैं काकुली घोष जी। मैम, हम देख रहे हैं किस तरह से बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आपके साथ लगभग 20 सांसदों ने, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ये फैसला लिया है कि आप अपनी अलग राह चुनेंगे, क्या कारण रहा कि आज आपको ये फैसला लेना हुआ?
4: देखिए मतदाताओं, 2026 में जो चुनाव हुआ बंगाल में, उसमें उनका जो मत दे दिया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उसके मतलब क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस के पॉलिसी के खिलाफ, उनका जो गवर्नेंस के खिलाफ, वहाँ जो अभी नौकरी नहीं है उसके खिलाफ, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ उसके खिलाफ। तो हमें मतदाता के साथ जाना है, मतदाताओं ने नाराजगी जताई, हम उनको समर्थन किया।
3: एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि क्या आपने समर्थन एनडीए को किया है, जो चिट्ठी लिखी है कि आपने लोकसभा स्पीकर को सबमिट कर दिया, आगे क्या होगा? बस
4: हम लोग अलग बैठ के देश के लिए और राज्य के लिए काम करने का मांग किया है।
3: एनडीए को समर्थन किया है
4: एनडीए में बैठ के।
0: तो बागी सांसदों के अपने दावे हैं, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस दोनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।
5: 20 एमपी का नाम दिया है, आपको मालूम होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ था शिवसेना का, तो वहां तो एमपी के नाम आए थे ना कि ये लोग अलग हो रहे हैं, तो यहां पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, इनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली, अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ, 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 एमपी को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है।
6: नौटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को एहसास हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए। तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी, क्योंकि ये बाहर रहते हुए एक अलग गुट बनाते हुए, ये जो हमारे 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन, इससे खुद को बचाने के लिए इस तरीके के नोटों की करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी तापस सिंह गुप्ता का। तापस, नंबर्स को लेकर अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो ऐसे में 14 का आंकड़ा या 13 का आंकड़ा और 20 का आंकड़ा, ये क्यों अहम हो जाता है, ये थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए।
7: जी देखिए, अगर 20 का संख्या है तो फिर ये संख्या जो है वो बागी सांसदों के पक्ष में है साफ तौर पे। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बागी सांसद जाकर एनडीए में शामिल होंगे। कल काकुली घोष दस्तीदार ने एक इशारा जरूर किया था कि वो देश के लिए काम करना चाहते, वो एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर अगर विधायकों की बात की जाए, वो कहते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस में ही है और ममता बनर्जी को ही अपने सुप्रीमो मानते हैं और एडवाइजर के तौर पे उन्हें चाहते हैं। तो कुल मिलाकर सांसद चाहते हैं कि वो एनडीए में शामिल हो, विधायक चाहते हैं कि नहीं वो तृणमूल कांग्रेस में रहना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के विपक्ष में वो खड़े रहना चाहते हैं। तो ऐसे में जो संख्या है वो काफी अहम बन जाता है। काकुली घोष दस्तीदार ने साफ तौर पे कहा कि तकरीबन 20 सांसद उनसे जुड़े हुए हैं और ये 20 सांसद चाहते हैं कि वो जब संसद में बैठे तो उन्हें बैठने का जो जगह है वो भी अलग दिया जाए। यानी क्या वो अलग पार्टी फॉर्म करने की सोच रहे हैं या फिर तृणमूल कांग्रेस में रहकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ काम करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक इस पर कोई साफ तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। विरोधी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये इस बारे में पुष्टि होनी चाहिए तृणमूल कांग्रेस।
0: जी बिल्कुल, तबस आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन टीएमसी के बागी विधायकों ने ऋतव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुना है, उन्होंने 20 सांसदों की बगावत को लेकर क्या कहा है और अब पार्टी की जो बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है, ये अच्छा है, ये उनका कहना है। आइए सुन लेते हैं।
8: 20 means that above 2/3 of the MPs, because presently 28 MPs are there. I have also heard from the media. I was busy in doing some work because former mayor of Calcutta and very important leader, important minister, he was also in the Mamata Banerjee cabinet. Shri Firad Hakim was there in the assembly. I was talking with others also. Some MLAs were there also. So I did not had a chance actually to see us what has happened. But from the media I have also heard that 20 MPs, they have sat together. It's good because the sitting is good, because earlier there was no chance of sitting. There were 5-10 minutes meetings. Only things were communicated. So when MPs sit and when MPs speak their mind out, it's healthy for democracy. It's a good for democratic process.
0: तो पश्चिम बंगाल के चुनावों में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक बागी हुए, सांसद साथ छोड़ रहे हैं और इस बीच 3 दिन पहले कोलकाता के मेयर का पद छोड़ने वाले फिरहाद हाकिम ने विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता और तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही गुट के प्रमुख ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात की, जिसकी जानकारी अभी कुछ देर पहले आपने सुना, खुद ऋतव्रत ने भी दी। हकीम को विद्रोही गुट के विधायक संदीपन साहा के साथ ऋतव्रत के कमरे में जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।
9: देखिए फिराद हकीम, मेरे साथ फिराद हकीम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया उस साल से कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998 तब से ही फिराद हकीम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिराद हकीम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिराद हकीम आए थे तो लंबा समय बाबीदा से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए।
0: तो टीएमसी में कलह बड़ी है तो पार्टी नेता महुआ मोइत्रा ने सांसद यूसुफ पठान पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या आपको अमित शाह ने बुलाया है जो दिल्ली जाने की जल्दी है। महुआ मोइत्रा ने ये भी कहा कि आपको हमारे जिला ने भारी बहुमत से जिताया है तो थोड़ी हिम्मत दिखाइए। यूसुफ पठान पर ऐसे सवाल के बीच बीजेपी ने भी टीएमसी पर तंज किया है।
10: I'll not be able to comment on Mr. Yusuf Pathan's. He's half the time, he's not seen in his constituency. So whether he is there or whether he joins another party, it doesn't really make a difference for the people of his constituency.
6: अरे कुछ नहीं, मैंने तो मुझे हराने के लिए वहाँ तैनात किया गए थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए उनको तैनात किए गए थे मुझे हराने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाईजान को वोट दो, इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं ही हूं, दादा मतलब हिंदू है, इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो। तो किसका मैंडेट था ये?
0: तो बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक बैनर्जी फिलहाल दिल्ली में हैं और सीआईडी उनका कोलकाता में इंतजार कर रही है। विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर आज सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को शाम 5 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो इस पूछताछ में शामिल होंगे या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। एक दिन पहले सीआईडी की टीम ने कल फिर समन दिया, इसके पहले सोमवार को उनसे पूछताछ होनी थी लेकिन वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे तो हाजिर नहीं हो पाए थे। अब आज शाम उन्हें 5 बजे तक पेश होने को कहा गया है। अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इनमें से 3 विधायकों ने यह दावा किया है कि 6 मई की बैठक के प्रस्ताव रजिस्टर में उनके नाम के सामने जो हस्ताक्षर दर्ज है वो उनके नहीं है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता का। तपस, मुश्किलें बढ़ सकती हैं अभिषेक बैनर्जी के लिए लेकिन वो तो दिल्ली में हैं, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
7: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

खटका। विधायकों के बाद सांसद भी बागी। शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात। काकोली घोष ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक के लिए बड़ा दिन। सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजीला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। 13 किलोमीटर की ऑल वेदर कनेक्टिविटी का अहम पड़ाव। फायरिंग मामले में कोचिंग टीचर फैजल खान को अदालत से मिली राहत। कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन वारदात के बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। लंदन में बेटी पर हमला। 2024 में दाऊदी बोहरा समाज के धार्मिक नेतृत्व को लेकर दिया था फैसला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में दिल दहला देने वाला हादसा। पिघला स्टील गिरने से 8 मजदूरों की मौत। हीट यूनिट में हादसे के बाद लगी भीषण आग। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना।

रुख करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। इसराइल और ईरान में एक दूसरे पर हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान से डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 या 3 दिन डील करने का बेहतर मौका है, सिर्फ 2 या 3 दिन। ये बड़ा बयान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट इशू की जाएगी 2 या 3 दिन के भीतर। उनसे पूछा भी गया क्या 2 या 3 हफ्ते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 2 से 3 दिन ये डील का बेहतर मौका रहेगा। तो ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। क्या वाकई में कोई बातचीत चल रही है? क्या बैक चैनल पे कोई बातचीत चल रही है? तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान से समझौते की उम्मीद जता रहे हैं। तो ईरान और इसराइल के बीच तनाव अभी बढ़ा हुआ है। एक दिन पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी। ईरान ने इसराइल को टारगेट किया तो इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की और तेहरान, तबरीज और इस्फान में जोरदार धमाके किए। इसराइल के हमलों को देखते हुए ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, तो वहीं इराक और सीरिया ने भी अपना हवाई क्षेत्र कर दिया बंद, और वो भी एहतियातन।

टूट गया ईरान और अमेरिका का अस्थाई युद्ध विराम। ईरान ने इसराइल पर दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइलें। इसराइल के केमिकल प्लांट पर ईरान का हमला। इसराइल का ईरान पर विध्वंसक पलटवार शुरू। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल का हमला। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाने का दावा। ईरान और इसराइल में फिर नया युद्ध शुरू। आठ अप्रैल को युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, उसके ठीक दो महीने बाद पहली बार ईरान और इसराइल के बीच मिसाइलों से हमला हुआ। दो महीने बाद पहली बार ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया और इसराइल ने ईरान के खिलाफ भीषण सैन्य कार्रवाई की। दरअसल ईरान ने रविवार की रात इसराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमला बेरूत में इजरायली हमले के जवाब में किया गया था। IRGC के मुताबिक इसराइल पर हमले सिर्फ एक चेतावनी है। अब अगर अमेरिका या इसराइल की तरफ से फिर कोई हमला हुआ तो विध्वंसक पलटवार होगा। लेकिन ईरान की धमकी के बावजूद इसराइली एयरफोर्स ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इसराइल का दावा यही है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। सेना के मुताबिक ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां ऐसी मिसाइल मौजूद थी जो लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती थी। इसराइल के हमलों के बाद ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गयी। वहीं अमेरिकी सेना ने भी ईरान के दो ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के दो ड्रोन को निशाना बनाया गया जो होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। मतलब यही है कि एक बार फिर महायुद्ध की घंटी बज गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसराइल और अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका और ईरान तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। ईरानी सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के किसी भी नए हमले की और भी कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया होगी। इसराइल की आक्रामकता की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अगर दुश्मन अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को दोहराता है तो हमारे हमले भी और विध्वंसक होंगे। IRGC के मुताबिक उसने इसराइल के हाइफा शहर में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया है। ये कार्रवाई उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए इसराइली हमले के जवाब में की गई। ईरान ने आरोप लगाया कि इसराइल ने ऊर्जा और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाकर संघर्ष का दायरा बढ़ा दिया है। इसराइल के हमलों के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इसराइल को युद्ध की सीधी धमकी दी है। हमने न तो युद्ध क्षेत्र छोड़ा है और न ही बातचीत की मेज। हम ईरान के अधिकारों की रक्षा पूरी ताकत से करेंगे और किसी भी खतरे के सामने पीछे नहीं हटेंगे। ये पहली बार है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला किया। ये हमले का नया पैटर्न है, वरना इससे पहले इसराइली हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिसाइलों से हमला किया था। बड़ी बात यह है कि ईरान के इसराइल पर मिसाइलें दागे जाने के कुछ घंटों बाद इसराइल ने ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ईरान में कई सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया। ये हमले एकदम सटीक थे, जबकि ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके नेतन्याहू को बड़ा मौका दे दिया है, क्योंकि इजरायली सेना शुरू से ही युद्ध विराम के खिलाफ थी। नेतन्याहू भी यही चाहते हैं कि जंग फिर से शुरू हो, ताकि अपने नाराज समर्थकों को ये संदेश दे सकें कि जब तक युद्ध में ईरान की हार नहीं होगी तब तक जंग जारी रहेगी।

वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ये भी मैसेज दे रहे हैं कि वो ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसराइल ने ईरान पर दो चरणों में हवाई हमले किए। सैन्य अधिकारी के मुताबिक पहले चरण में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसके बाद दूसरे चरण में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया गया। इसराइल का दावा है कि इस प्लांट में बैलिस्टिक मिसाइलों और दूसरे हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तैयार की जाती है। इजरायली सेना का दावा है कि हमने ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो भविष्य में इजरायल और उसके नागरिकों के लिए खतरा पैदा करती है। ये ईरानी आतंकी शासन के मिसाइल कार्यक्रम का उत्पादन करने वाले बुनियादी ढांचे का हिस्सा है।

ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को मोर्चा संभालना पड़ा। इसराइल और ईरान दोनों तुरंत युद्ध विराम चाहते हैं। शांति को लेकर अंतिम बातचीत आगे बढ़ रही है, बस बेवकूफी इसमें रुकावट ना बने। जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता तब तक ईरान पर लगी नाकेबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही कोई नतीजा सामने आ सकता है। दोनों पक्ष संघर्ष खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की, यही समझाया कि वो अभी ईरान पर नया हमला ना करें। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इजरायल को और जवाब देने की जरूरत नहीं है। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल ने ट्रंप के अनुरोध पर ईरान पर हमले रोक दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्ला की तरफ से इजरायली शहरों पर हमले जारी रहते हैं तो वो बेरूत को फिर से निशाना बनाएंगे। अगर हिजबुल्ला इजरायली समुदायों पर हमले जारी रखता है तो इजरायल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला करेगा। भले ही अमेरिका के दखल के बाद इजरायल ने ईरान के खिलाफ नए हमलों को रोक दिया है और ईरान ने भी हमले रोक दिए हैं, लेकिन ये हमले कितने घंटे तक रुके रहेंगे भविष्यवाणी करना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल के हमलों का जवाब ईरान किसी भी वक्त दे सकता है। ऐसा हुआ तो एक बार फिर इजरायल हमले शुरू कर देगा। यानी अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। आज तक ब्यूरो।

और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे घायल ईरान और भी घातक हो चुका है। जी हां, ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन कल दोनों ने अपनी कार्रवाई थाम दी। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी थी। ईरान की तरफ से ये भी सीधे धमकी दी जा रही है कि उनके पास अभी ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक युद्ध में नहीं किया गया है।

0: शुरू हो गया महायुद्ध, अब ईरान निकालेगा अपना ब्रह्मास्त्र। ईरान और इजराइल के बीच तबाही का नया चैप्टर खुला। आग बबूला ईरान, लेबनन के लिए ईरान ने छेड़ा महायुद्ध। सीज़फ़ायर टूटा, अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा? मुश्तबा के माइंड में ओपन वॉर, इसराइल कितना तैयार? ईरान ने अब लेबनन के लिए सीधे सीधे महायुद्ध छेड़ दिया है। इसराइल ने लेबनन की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में बारूद बरसाया, तो ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इसी के साथ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर इसराइल के और ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा कि यह हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनन के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। आगे किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। जबकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बुरोज़ेर्दी ने भी इसराइल को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक युद्ध में नहीं किया गया है, लेकिन इसराइल की तरफ से लेबनन पर हमले जारी रहे तो हम उनका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करेंगे। जब ये हमले होंगे तो इसराइल में तबाही ही तबाही नजर आएगी। IRGC ने बताया कि उसने हाइफा के दक्षिण पूर्व में स्थित रामत डेविड एयरबेस पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल की सरकारों पर युद्ध विराम के तहत अपना वादा पूरा न करने का भी आरोप लगाया। ईरान ने यरूशलम के उत्तर में नाबलस के पास इजरायली सैन्य ठिकाने पर हमला किया। हालांकि ईरान की एक मिसाइल नाबलस की जमीन पर बनी इतामार बस्ती में गिरी। इसराइल के आयरन डोम ने ईरान की कई मिसाइलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ये मिसाइल यरूशलम के पास शोमरोन में गिरती दिख रही है। इतामार नाबलस के पूर्व में एक इजरायली सेटलमेंट है। ईरान इसे अवैध कब्जे का प्रतीक मानता है और ऐसे सेटलमेंट को अक्सर वैध टारगेट बताता है क्योंकि ये फिलिस्तीनी भूमि पर बने हैं। हालांकि ईरान के हमले में जानमाल के नुकसान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। ईरान ने इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर हमला किया। ईरान ये मानता है कि यहीं से इसराइल ने हाल में लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये आयरन डोम की सुरक्षा में है और इस वजह से ईरान ने इस पर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान की कई मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया, लेकिन एक या दो मिसाइलें उसके आसपास गिरती नजर आई हैं। रामत डेविड इसराइल का एक महत्वपूर्ण एयर पावर हब है जहां से फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ईरान ने इसे चुनिंदा तरीके से टारगेट किया ताकि इसराइल की हवाई क्षमता और लेबनन में उसकी सैन्य कार्रवाई को कमजोर किया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने ईरान के हमले के बाद ईरान और लेबनन के झंडे को एक साथ दिखाते हुए पोस्ट किया। इसका जवाब इसराइल की तरफ से आया। इसराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने ईरान के साथ हिजबुल्ला का झंडा पोस्ट किया। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि अब ये पोस्ट सही है। उन्होंने अराग्ची को फरेबी और चालबाज भी बता दिया। अब सवाल ये है कि इस महायुद्ध में डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या रहता है। भले ही ट्रंप इसराइल से अभी पलटवार के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ट्रंप ने कहा वो ये दर्शाता है कि ट्रंप के दिमाग में भी कोई बड़ा प्लान चल रहा है। क्योंकि 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कोई पीस डील नहीं हो पाई। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कभी ये वादा नहीं किया था कि अमेरिका किसी नए युद्ध में शामिल नहीं होगा। कोई युद्ध नहीं होगा जैसी कोई गारंटी नहीं दी है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई युद्ध नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मैं दुनिया की सबसे मजबूत सेना क्यों बनाता। मुझे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध पसंद नहीं है, लेकिन ये वैसा युद्ध नहीं है। ये अंतहीन युद्ध नहीं है, ये सिर्फ 3 महीने से चल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इसराइल की हवाई सुरक्षा में मदद करते हुए कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं हूती विद्रोहियों ने यमन से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। इनमें से एक को इसराइल ने रास्ते में ही मार गिराया, जबकि दूसरी इसराइली क्षेत्र तक पहुँचने से पहले ही गिर गयी। इसके जवाब में इसराइल ने ईरान पर 2 चरणों में हवाई हमले किए। इस बीच ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचे। दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों से भी अपील की है कि वो उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर जल्द से जल्द देश छोड़ दें। हालांकि ईरान के खातम अल अनबिया संयुक्त सैन्य कमान ने कहा है कि इसराइल को मिली दर्दनाक प्रतिक्रिया के बाद सशस्त्र बलों ने इसराइल के खिलाफ अभियान रोक दिए हैं। ये हमले दक्षिणी लेबनन और दहिये में इसराइली हमलों के बाद लेबनन के लोगों के समर्थन में किए गए थे। दक्षिणी लेबनन सहित किसी भी प्रकार के हमले जारी रहने पर कहीं अधिक कठोर प्रतिक्रिया दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हे गाइस, लेडी लक हियर। Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
9: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
10: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।

0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही। समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर ये याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है। दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
1: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं, और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: Hey, Buzz, you hear about the switch?
3: He's right over there.
2: Not that switch, our switch to APG&E.
3: Well, we can do that?
2: Customers can switch electric suppliers anytime to find a better rate, lock in pricing.
3: I don't want new wires. I'm very attached to ours.
2: Only the part of the bill that covers electricity supply changes.
3: To APG&E?
2: People love their flexible, affordable electricity.
3: Nice.
4: Learn more at APGE.com.
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: माता की, गंगा माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
1: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया। मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी कल रचेंगे इतिहास। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने दी बधाई। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड।
1: ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी। शताब्दी रॉय के घर पर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी मुलाकात की। काकोली घोष ने भी 20 सांसदों के साथ दावा किया।
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस को दी नसीहत, क्षेत्रीय दलों को तवज्जो न देने पर सुनाई खरी खोटी। पूछा आज कहां है डीएमके, सीट लेने पर नहीं जीत पर करे फोकस।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक के लिए बड़ा दिन, सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिहाज से पहाड़ में ही अंतिम ब्लास्ट।
0: फायरिंग मामले में कोचिंग टीचर फैजल खान को अदालत से मिली राहत, कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन वारदात के बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाथ से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट और इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की एक नायाब मिसाल जोजिला टनल, जोजिला सुरंग को अब आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल वो करने वाला है। जोजिला टनल परियोजना अब अपने मुकाम पर पहुंच गई और थोड़ी देर में टनल के अंतिम हिस्से में बने हुए आखिरी चट्टानी दीवार को भी तोड़ दिया जाएगा। नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे हैं और वो खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर करने वाले हैं। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मीन मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे और ये लगभग जो है 9.5 मीटर चौड़ी है और 7.57 मीटर ऊंची भी है। 14.2 किलोमीटर लंबी ये टनल है और ये सिंगल ट्यूब 2 लेन सड़क सुरंग है।
0: ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। टनल की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर बताई जा रही है। जोजिला टनल के आज ऐतिहासिक दिन, कुल 3 पुल 460 मीटर के बनाए गए हैं। एलजी वहां पर पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी की भी वहां पर मौजूदगी है। देखिए वहां पर स्वागत का सिलसिला जारी है क्योंकि आज इस इतिहास का गवाह बनने के लिए वहां पर तमाम ये दिग्गज लोग, मंत्री मौजूद हैं। वक्त हो गया है शतक आज तक का।

0: फैजल खान को कोर्ट से मिली राहत, जिला जज ने उन्हें प्रोडक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। फायरिंग मामले में फैजल खान को दो गार्ड्स पहले ही उनके जेल में बंद है और कोर्ट ने पुलिस से इस मामले के सबूत और केस डायरी भी तलब की थी। वीडियो वायरल होने के आधार पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पुलिस के मुताबिक गार्ड्स ने फायरिंग की बात स्वीकार की। रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित। अरविंद केजरीवाल का आरोप, पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की कार्रवाई, छोटे कारोबारियों को परेशान करने का दावा। ई रीडर्स के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन का ऐलान, पूरा पंजाब व्यापारियों के साथ। एमपी में 6 साल बाद रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी, क्रॉस वोटिंग से बचाने कांग्रेस अपने विधायकों की अब बाड़ेबंदी करेगी। आज बेंगलुरु रवाना हो सकते हैं कांग्रेस विधायक, अगले 10 दिन में बेंगलुरु के रिसॉर्ट में रखा जाएगा कांग्रेस के विधायकों। सोमवार शाम को विधायकों को 10 दिन के हिसाब से बैग पैक करने के लिए कहा गया है। 18 जून को मतदान से पहले भोपाल लौटेंगे। तीसरी सीट को लेकर पेच है फंसा। मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी के महेश केवट को उतारा गया है। 18 जून को राज्यसभा के तीनों ही सीटों के लिए मतदान। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को टिकट दिया है। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना कैंडिडेट बनाया।
1: केजीएमयू हार्ट स्टेंट घोटाले मामले में जांच तेज, डॉक्टर और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, 1 साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड तलब, मरीजों के फीडबैक को बनाया जाएगा सबूत। केजीएमयू हार्ट स्टेंट घोटाला मामले में निपटाओं पर सख्ती, थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई, संबंधित कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग की तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए, हार्ट स्टेंट मामले की निगरानी अब केजीएमयू के नियमित कर्मचारी करेंगे। स्टेंट घोटाले के बाद दवा खरीद पर नजर, कई विभागों में खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रुपए तक पहुंचा। आज तक के असर से बदली तस्वीर, रिन नदी पर 27 करोड़ का पक्का पुल निर्माण शुरू, 70,000 ग्रामीणों में खुशी की लहर। राजूपाल हत्याकांड में दोषी गिरफ्तार शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत, आबिद को मिली जमानत पर उठे सवाल। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही युवतियों से ऑटो चालक ने सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारी। कानपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का सैलाब, स्पेशल ट्रेन के दावों के बीच व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में 90 साल पुराने गर्ल्स स्कूल पर लगा ताला, छात्राओं और अभिभावकों का प्रदर्शन, पढ़ाई बचाने को मुख्यमंत्री से गुहार। स्कूल बंद होने से के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं, विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल बचाने की मांग।
0: ममता की पार्टी टीएमसी में फूट, दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 मांगे सांसदों के शताब्दी रॉय के घर पर मीटिंग, सीएम शिवेंदु अधिकारी से भी मुलाकात, काकुले घोष ने लगाई मोहर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के द्वारा दावा और उसके नकारा गया, कहा कि बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद हैं, बाद में 2 से 3 और गए। बागी सांसदों पर महुआ मोहित्रा का भी फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर लिखा कि लालची, डरपोक, गद्दार बीजेपी में जा सकते। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ममता दी को भले ही 90% यकीन हो, अखिलेश को और तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली होगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने भी यह सुझाव दिया कि अब चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से करवाए जाने चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने फिर थमाया नोटिस, आज शाम 5 बजे बुलाया। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी पूछताछ करना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान रिकॉर्ड किया गया। टीएमसी में राज्यसभा सांसद सुखेंद्र रॉय ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और चेयरमैन ने इस्तीफा मंजूर भी किया। ममता को एक और बड़ा झटका, कोलकाता में मेयर और करीबी सहयोगी फरहाद ने भी इस्तीफा दिया, बागी नेताओं से मुलाकात। उत्तर दमदम नगर पालिका के चेयरमैन विधान विश्वास समेत 35 में से 21 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी ली।
1: विधाननगर के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को हिरासत में लिया गया, जबरन वसूली का आरोप। लोकसभा में चीफ विप को लेकर विवाद, ममता गुट ने बागी गुट की ओर से काकुली को चीफ विप बनाने का प्रस्ताव ठुकराया। ममता गुट ने कहा लोकसभा स्पीकर को कल्याण बैनर्जी के चीफ विप होने की जानकारी पहले दी जा चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज टीएमसी नेता जहांगीर खान की पेशी होगी। टीएमसी नेता जहांगीर खान को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। बंगाल एसटीएफ को मिली कामयाबी, टीएमसी नेता जहांगीर खान की रंगदारी के मामले में हुई है गिरफ्तारी। यूपी चुनाव 2027 को लेकर राजनीति की रणनीति तेज, संगठन में बड़े बदलाव के साथ नई सीटों पर नजर। मुरादाबाद रैली के बाद एक्शन मोड में आरएलडी, जयंत चौधरी ने मांगी बूथ स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी चुनाव में 25-30 सीट की दावेदारी की तैयारी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, 29 लाख अभ्यर्थी शामिल, 30,000 सीसीटीवी से कड़ी सुरक्षा और निगरानी। नकल विहीन परीक्षा पर जोर, यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। अयोध्या छड़ावे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान, ये ट्रस्ट का मामला, जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूरी। लखनऊ में पीजीआई परिसर में युवती के अपहरण का मामला, लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज, अपहरण से लेकर विदेश ले जाने तक के आरोप। हरदोई में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के पुत्र से विवाद के बाद हुआ एसडीएम पर पथराव, सर में पत्थर लगने से एसडीएम घायल, गांव बना पुलिस छावनी। वाराणसी में गंगा से विशाल शिवलिंग बरामद, 2500 साल पुराना होने का दावा, श्रद्धालुओं में उत्साह। गंगा किनारे मिला 2 क्विंटल वजनी शिवलिंग, मौर्य काल से जुड़ा होने की आशंका।
0: बिहार विधान परिषद चुनाव 10 उम्मीदवारों के हलफनामे आए सामने, संपत्ति शिक्षा का खुलासा। आरजेडी के सुनील कुमार सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार, 54 करोड़ की संपत्ति, करोड़ों की ज्वेलरी का ब्यौरा भी। बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह की संपत्ति में बड़ा इजाफा, 19 करोड़ 44 लाख की दौलत, हलफनामे में पत्नी ज्योति सिंह का नाम बरकरार है। जेडीयू उम्मीदवार निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ी, 8 में से 5 सेमेस्टर ही किए पूरे। उम्मीदवारों की संपत्ति में बड़ा अंतर है, किसी के पास करोड़ों की दौलत तो किसी के नाम पर न गाड़ी न बड़ी अचल संपत्ति। सिंगापुर दौरे से वापस दिल्ली लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आएंगे, बेटी मिसा भारती और तेजस्वी यादव भी पटना आएंगे। सुरक्षा हटाए जाने के बाद लालू यादव पहली बार पटना आ रहे हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता लालू आवास के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। हुगली में टीएमसी पार्षद मौसमी विश्वास का बड़ा आरोप, यूट्यूबर पर ब्लैकमेल करके 1 लाख रुपए की मांग का दावा, ब्लैकमेलिंग से परेशान टीएमसी पार्षद सड़क पर उपड़े। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी कार्रवाई, 24 भारतीय वाले तेल टैंकर एमटी मेरीवेक्स को रोके जाने का बड़ा दावा। अमेरिकी सेना का दावा कि नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे टैंकर पर यह कार्रवाई, सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचाए गए। एफआईआर 18 सुपर हॉर्नेट से टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया, अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दावा। ईरान की तरफ बढ़ रहे एंटी मेरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने रोका है, निर्देशों की अनदेखी का गंभीर आरोप। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कार्रवाई के बाद ईरान की ओर जा रहा तेल टैंकर एंटी मेरीवेक्स अब रास्ता बदल चुका है।
1: यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बताया नरसंहार। भारत ने यूएन पाकिस्तान को घेरा, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का आरोप। भारत का आरोप, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी गो बैक नारों से गूंजा इलाका। पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन, नागरिक मौत और इंटरनेट प्रतिबंधों के विरोध में प्रवासी और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंदरकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु।
0: गोवा के बंबोलिया में 42वें ईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन, सीएम सावंत भी हुए शामिल। पटना में भारत के पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावन कुमार का भव्य स्वागत हुआ, मंत्री शैसी सिंह ने बधाई दी। देहरादून में जौनसार भावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आगाज, मुख्यमंत्री धामिनी की शिरकत। ओमान तट के पास में टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान एयरफोर्स ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों को रेस्क्यू किया, भारत ने धन्यवाद किया। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका अमीर ने स्पेस एक्स ड्रैगन के सदन लाइट्स की शानदार तस्वीरें साझा किया और स्पेस एक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों ने किया जबरदस्त हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम में खाकी दागदार शराब न पीने वाले मेजर को जबरन शराबी साबित करने की कोशिश हुई और चेकिंग के नाम पर ये दादागिरी करते दिखे। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप, युवती ने लव जिहाद का आरोप लगाया। आरा में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठाकर बदमाश ले गए, बेरहमी से पीट पीट कर जान ले ली, जमीनी विवाद में हत्या हो गई।
1: कानपुर में 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कहा चोर, आहत होकर बच्ची ने किया सुसाइड। मध्य प्रदेश खरगोन में गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब, एम्बुलेंस में करानी पड़ी डिलीवरी। टिहरी गढ़वाल में युवक को दोस्ती पड़ी भारी, मारपीट में गई युवक की जान। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 90 टन चिकन वेस्ट जब्त, जिसे मछली पालन के लिए अवैध फीड के रूप में तेलंगाना आंध्र प्रदेश सप्लाई किया जा रहा था। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में वन विभाग के कई क्षेत्रों में लगी आग बुझाने के लिए अभियान जारी। हापुड़ में नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण मामले में आरोपी साहिल मध्यप्रदेश से गिरफ्तार, युवती बरामद, मामला सोशल मीडिया में सुर्खियों में। पीएमएलए के तहत ईडी का सर्च ऑपरेशन, हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मामले में आवास और दफ्तर पर दबिश। पंजाब यूपी और दिल्ली नोएडा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लुधियाना जलंधर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी।
0: कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी बाग स्टारर फिल्म अल्फा का टीजर। 3 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। रिलीज से पहले ही वेलकम टू द जंगल का जलवा सूत्रों के मुताबिक फिल्म में सैटेलाइट और ओटीटी राइट से 120 करोड़ कमाए। 15 साल के बाद साथ में अक्षय और अनीस बज्मी। मुंबई में चल रही अनास फिल्म की शूटिंग और फिल्म में अक्षय कुमार के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना भी मुख्य भूमिका में। फिल्म नो एंट्री में सीक्वल पर बड़ा अपडेट है। निर्देशक अनीस बज्मी ने इस बारे में जानकारी दी। फिल्म नो एंट्री 2 पर काम हुआ शुरू। डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन भीमा योजना का पहला पोस्टर हुआ जारी। फिल्म में डबल रोल में दिखाई देंगे अरशद वारसी।

0: और अब आपको लिए चलते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल दिखाने जोजिला सुरंग, जो अपने आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल आज करने वाली है। थोड़ी देर में जोजिला टनल के अंतिम हिस्से में बनी आखिरी चट्टानी दीवार को तोड़ दिया जाएगा। नितिन गडकरी मौके पर मौजूद है, खुद अंतिम ब्लास्ट को ट्रिगर करने वाले हैं। आखिरी ब्लास्ट के साथ कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मीन मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे। सुरंग 9.5 मीटर चौड़ा, लगभग 8 मीटर ऊंचा और 14 किलोमीटर लंबा है। ये सिंगल ट्यूब दो लेन सड़क सुरंग है। ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है।
1: तमाम खासियत है इस सुरंग के बारे में जो हम आपको इस समय बता रहे हैं, और हमारे संवाददाता आशुतोष इस समय उसी जगह पर मौजूद है जोजिला टनल के पास में पहुंचे हुए हैं। आशुतोष, आखिरी बार जो ब्रेक थ्रू होना है नितिन गडकरी के हाथ से होना है, तो क्या कुछ उसके लिए तैयार है और क्या क्या खासियत है वो भी आप डिटेल जरा बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं।
2: दरअसल अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहते हैं ना, कि ये न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग टेक्नोलॉजी है जिसे बनाया गया है। ये भारत की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी वो सुरंग है, जिसके पूर्वी पटल पर मैं इस समय उसी द्वार पर हूँ। 3.5 किलोमीटर के दूरी पर दरअसल वो आखिरी एक छोटा सा हिस्सा है जहां धमाका होना है। उस आखिरी विस्फोट के बाद कश्मीर से लद्दाख इस सुरंग के जरिए 12 महीने जुड़ जाएगा। ये ठीक जोजिला पास के नीचे है जहां जब 6 महीने बर्फबारी होती है वो रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। तो न सिर्फ कश्मीर से लद्दाख को जोड़ेगा, उसी के साथ साथ भारत की जो सामरिक जरूरत है पाकिस्तान और चीन की सीमाओं को देखते हुए लॉजिस्टिक काफी बढ़ जाएगा। अब आपको टनल दिखाते हैं, ये इसका इतना बड़ा ब्यास है, अगर आप याद करेंगे तो ये अटल टनल जो है उससे भी काफी बड़ा है। और इसी के साथ साथ जितने हाल फिलहाल में हमने इस तरह की तकनीक देखी है उनमें इतना एडवांस, आप सोचेंगे कि इसमें स्केप टनल कहां होगा। मैं जिस सड़क के नीचे हूं रोहतांग में, दरअसल इस सड़क के नीचे स्केप टनल बनाई गई है। इस टनल में 13 किलोमीटर इसके ठीक ऊपर देखिए यहां छत बनाई जा रही है, तो इसीलिए माना जा रहा है कि 1 साल समय और लग सकता है। छत 13 किलोमीटर ऐसी कि अलग अलग पॉकेट शॉप में जहां वेंटिलेशन की सुविधा होगी, अगर कोई हादसा हो जाता है टनल के भीतर क्योंकि गाड़ियां बहुत सारी जाएंगी, तो ऐसे में इवैक्यूएशन प्लान हो सके उसके लिए कई जगहों पर वो पॉकेट्स बनाए गए हैं। न्यू ऑस्ट्रियन जो टनलिंग मेथड उसके जरिए हमने देखा कि हर जगह टीबीएम घूमती है, ये फ्रेजाइल माउंटेन है, कहीं पर S1 रॉक्स होते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे धमाके करना, मलबे को पीछे ले जाना, और इसीलिए बेहद कम समय में इसको पूरा किया जा सका था। 13 किलोमीटर लंबी यह टनल, आपको लगेगा कि समय कितना लगेगा, इस जोजिला पास को राजीव पार करने में 3 घंटे का समय लगता है। सड़क बहुत खराब हो जाती है जब आप मलबा हटाते हैं, बर्फबारी जाऊंगा एक बार जरा डेप्थ में तस्वीरें दिखाई मनीष, कि जब इस पर से आप ऊपर से निकलते हैं 3-3.5 घंटा और कभी बीआरओ को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वो 3 घंटे का समय सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा जैसे ही ये सुरंग खुल जाती है। तो आप अगर पर्यटन के नजरिए से देखें तो कश्मीर लद्दाख को जोड़ना, सीमाओं के नजरिए से अगर देखना तो भारतीय सेनाओं की सुविधा, और इस समय खुद नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोग अंदर गए, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वो आखिरी धमाका होना है जिसके बाद ये सुरंग कश्मीर को करगिल, द्रास, लद्दाख, लेह से 12 महीने के लिए जोड़ देगी। राजीव,
0: इसके अलावा आशुतोष, क्योंकि इतिहास आज घर से जा रहा है और मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद है, नितिन गडकरी की मौजूदगी है, आखिरी फेज में किस तरीके से होगा, क्योंकि वो तस्वीरें बेहद दिलचस्प होंगी जब ये पूरा मकाम हासिल कर लिया जाएगा जिसके लिए इतनी कवायद हो रही है।
2: इसको सीधा समझिए नेहा, कि जहां तक आपको एक हिस्सा दिख रहा है सुरंग का, इस हिस्से के ठीक पीछे एक पतली सी दीवार है। मैं इस समय पूर्वी पटल पे हूँ, पश्चिमी पटल बालटाल पे जुड़ता है, और इन दोनों के बीच 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर वो दीवार में एक धमाका होगा। जाहिर है जब वो धमाका होगा दूरी से किया जाएगा क्योंकि वो बहुत माइन्यूट ब्लास्ट के समय नहीं होंगे, उस धमाके के साथ ये रास्ता खुलेगा और तब ये जो काम यहां से शुरू हुआ है रीस्ट्रक्चरिंग का, यहां केबलिंग शुरू हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, उसी के साथ हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया सतत चलेगी, यानी अलग अलग फेज में नहीं एक साथ चलेगी। और ऊपर से आप देख रहे हैं कि सड़क पूरी हो चुकी है तो गाड़ियों का भी रास्ता बन चुका है, समय कम लगेगा। तो तकनीक इसीलिए हमने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट में वो तकनीक का इस्तेमाल किया, अगर टीबीएम घूमती बहुत ज्यादा समय लगता, यहां के पत्थर की बनावट अलग है, हिमालय का ये जो हिस्सा है उसकी संरचना बहुत अलग है, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। और खासकर सोचिए कि 5-6 महीना यहां 30-40 फीट बर्फ होती है, डीजल 25,000 लीटर डीजल हर दिन लगता है यहां काम चलाने के लिए, आप वो सप्लाई कैसे भेजेंगे, जो मजदूर जो वर्कफोर्स यहां काम करती है उनका, कहते हैं टमाटर और जूस भी पीते नहीं खाते हैं, उसमें इतना जम जाता है -30-40 डिग्री तापमान में, और उन सब के बावजूद 5 साल में ये एक असंभव मिशन था जो कर दिखाया गया। इससे पहले हमने देखा कि कैसे अटल टनल को पूरा किया, अटल टनल के बाद से आगे जो इस तरह की सुरंग, उसमें जोजिला टनल जेड मोड़ की भी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये जो था, चूंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, अगर आप पहाड़ के हिस्से को देखे, मैं जहां पे खड़ा आपको ये तस्वीर दिखाता हूं कि ये पूरा स्नो पीक है, सामने बर्फीली पहाड़ियां हैं चोटी, और ये चूंकि द्रास का इलाका लगता है, द्रास जिले का, इसके ठीक आगे कारगिल, ये पहाड़ी का सबसे ऊंचा हिस्सा है और जहां ऊंचा हिस्सा वेजिटेशन कम है, यहां की मिट्टी मिट्टी नहीं है, दरअसल ये पूरा रॉक है, पत्थर है। और ऐसे में इस तरह की टनलिंग को अंजाम देना अपने आप में, जिसको माउंटेन टास्क कहा जाता है, कि ये बहुत दुर्गम था और उस परिस्थितियों में इसे बनाया गया है, जो कि भारत की तकनीक और किस तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर में, माउंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, ये उसको परिभाषित करता है बिल्कुल एक नए अध्याय के रूप में। और संभवतः इसीलिए उन्हें लगा कि आज जब एक तरफ सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं तो नितिन गडकरी खुद मौके पर आए हैं।
1: सचा जाने वाला आशुतोष, आप नजर बनाए रखें तो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण और ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये टनल है। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी की भी करते हैं, जो एक और रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। 10 जून 2026 यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी लगातार सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद पर रहने का जो समय है वो पूरा कर लेंगे और इसके साथ ही वो भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने जाने वाले पीएम बन जाएंगे।
0: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे निर्वाचित शासनकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब लगातार तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 10 जून को वह सबसे ज्यादा दिन तक पीएम पद का कार्यकाल पूरा कर लेंगे और इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को पीछे छोड़ देंगे।
1: 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी ये इतिहास रचेंगे और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाले अब व्यक्ति बन जाएंगे।
0: और पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने और सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और आंध्र प्रदेश के सीएम ने एन चंद्रबाबू नायडू ने लेख लिखकर तारीफ की है। देवेगौड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी की सफलता का राज उनका चिंतनशील और मजबूत स्वभाव तथा राष्ट्रहित से कोई समझौता ना करना है, इसी वजह से उनकी लीडरशिप पर करोड़ों भारतीयों का भरोसा बना हुआ है। वहीं नायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री नायडू का यह मानना है कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा योगदान केवल आर्थिक या ढांचागत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीयों में अपनी सभ्यता, संस्कृति और क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास की बहाली है।
1: और ये आप एक और पोस्ट देखेंगे, एचडी देवेगौड़ा ने यह पोस्ट किया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनके काम करने के तरीके, उनके विजन की भी बात की है। और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: आज तक प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भर, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सुप।
5: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: EU current account.
3: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
6: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
7: साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: यू सोच बदलो और बैंक भी।
9: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
11: तमाम सुरक्षा इंतजाम और हालात को काबू में करते हुए आखिरकार इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो ही गया। ये जयपुर की नूरानी मस्जिद है। इसे ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। इस कार्रवाई से पहले सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन आज तय था। सुबह से ही सरकारी अमला बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा। बुलडोजर एक्शन से पहले अतिक्रमण अभियान चलाने वाली टीम ने पहले मस्जिद को ढका, फिर शुरू हो गया बुलडोजर अभियान। जयपुर में मालवीय नगर से जगतपुरा तक जाने वाली इस मुख्य सड़क को चौड़ा करने का अभियान कई दिनों से जारी था। इसे चौड़ा करने के लिए 2011 में मास्टर प्लान बना था। सड़क को 80 फीट तक चौड़ा किया जाना था। एक्शन से पहले ये सड़क 40 फीट चौड़ी थी। कुछ दिनों पहले जयपुर प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण की मुहिम शुरू की थी, लेकिन नूरानी मस्जिद को बीच में ही छोड़ दिया गया। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई। बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाजें उठने लगी। मजबूर होकर राजस्थान सरकार ने नूरानी मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का फैसला किया और अब आज उस पर अमल कर दिया गया। नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर पुलिस ने ठोस प्लान बनाया था। 50 अधिकारियों और 3000 पुलिस कर्मियों की खास तैनाती की गई थी। मुस्लिम समाज का दावा है कि ये मस्जिद 100 साल पुरानी थी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए पिछले दिनों नोटिस थमाया था। जयपुर पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से पहले फ्लैग मार्च किया और असामाजिक तत्वों को आगाह कर दिया कि अफवाह फैलाकर धार्मिक उन्माद भड़काने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बुलडोजर एक्शन किया गया। प्रशासन ने अब दो टूक कह दिया है कि सड़क चौड़ीकरण का अभियान जारी रहेगा। विशाल शर्मा के साथ देवांकुर, जयपुर आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी कल रचेंगे इतिहास। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने दी बधाई। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड।
1: ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी। शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात। काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ होने का दावा।
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस को दी नसीहत। क्षेत्रीय दलों को तवज्जो ना देने पर सुनाई खरी कोटी। पूछताछ कहां है डीएमके? सीट लेने पर नहीं, जीतने पर करे फोकस।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक के लिए सबसे बड़ा दिन। सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजीला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। पहाड़ में हो रहा है आखिरी ब्लास्ट। 12 महीने कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख।
0: फायरिंग मामले में कोचिंग टीचर फैजल खान को अदालत से मिली राहत। कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन वारदात के बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।

0: इस वक्त की थी आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, सीधे आपको वहीं ले चले।
1: एक तो बांग्ला है बोले दीची, हमारे दो तीन पॉइंट बात करते हैं, आज तो इंग्लिश बोलो, दो तीन पॉइंट बात करते हैं, एगुलो सब नहीं। আমি দেখলাম কাকলি ঘোষ দস্তিতে বলেছে যে 1,500 টাকা দিয়ে স্বাবলম্বী করা যায় না, বলেছে না, তাহলে কি 3,000 টাকা দিয়ে স্বাবলম্বী করা যায়? অন্নপূর্ণা ভান্ডারে 1,500 টাকা দিয়ে যদি স্বাবলম্বী করা না যায়, তাহলে কি 3,000 টাকা দিয়ে স্বাবলম্বী করা যায়? যারা যারা ওই মহিলারা 1,500 টাকা করে পেত,
2: कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुणाल घोष को भी आप सुन रहे थे। इससे पहले कीर्ति आजाद ने भी उन बागी सांसदों पर हमला बोला जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि लगभग 20 अब दूसरे खेमे में जा चुके हैं, और कीर्ति आजाद ने दावा किया कि हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है, हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है, और बागी सांसदों को तो शर्म आनी चाहिए। कीर्ति आजाद ये थोड़ी देर पहले मीडिया को संबोधित करते हुए बातें उन्होंने कही हैं।
0: तो लगातार टीएमसी ये दावा करती आ रही है कि चुनाव के दौरान धांधली की गई और धांधली के बलबूते पर ही बीजेपी जीती है। एक बार फिर से इसी बात को वो कहते हुए और उन खास तौर पर बागी विधायकों और सांसदों को संबोधित करते हुए जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए। तो बागी सांसदों पर अब ये हमला हुआ है।
1: शेही मोहावड़ा की कनेक्शन रहे थे चेपे कि मोदी जी आपने तो बोले नहीं खाऊंगा, खाने भी नहीं दूंगा, तो इसका अंदर कितने कितने आदमी को आप खाने दूंगे?
3: खाने वाले को तो सीएम बना
1: के बार बार बेंगलोर जाए क्या नो जाए? के जाए क्या नो जाए? ये तो सब शुरू, पर आबार बोलबो। आई मस्ट गिव थैंक्स टू यू ऑल, यू ऑल ऑफ यू हु हैव कम हियर, वी हैव कॉल्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑफ दिस सम हैपनिंग्स यस्टरडे at Delhi. First of all, why we say that the Shubhendu Shekhar Rai, who has resigned, making some allegations against our party, the allegations we are disputing. Allegations correct or incorrect, that's a different thing. But we must appreciate that when he is not with the party, he has resigned from the Rajya Sabha. Therefore, those who are making the allegations against the party and want to see differently, they must follow the pathway of Shukendu Shekhar Rai. They must show their political morality by resigning as member of parliament. The allegation under the 10th, I do not know how many persons are there at all, signed this. But fact is this, such an important document has not come in public domain. It creates a suspicion about the letter, author, and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? Whole India is discussing on the basis of a letter. But where is that letter? Why you didn't have the courage to give it to the press even? What do we do? Normal practice? If I speak.
0: तो कीर्ति आजाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल राजीव हमला बोला उन बागी सांसदों पर. उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर कम से कम इस्तीफा दे दें, पार्टी से ना जुड़े रहें, उसके बाद किसी पार्टी में जाएं उसका कोई मतलब नहीं है. कीर्ति आजाद का बागी सांसदों पर यह हमला आपसे कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है.
3: मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर. उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए. इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया. उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया. तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए.
2: तो आपने कीर्ति आजाद को सुना, लेकिन बिछड़े सभी बारी बारी. ममता बनर्जी चुनाव में क्या हारी, पार्टी में साथ छोड़ने वालों की जैसे झड़ी सी लग गई. एक एक कर सब ममता का साथ छोड़ रहे हैं, पार्षद विधायक से लेकर सांसद तक ममता से मुंह मोड़ रहे हैं.
0: सबसे ताजा झटका सांसदों ने दिया है. खबर यह कि 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने के लिए खत लिख दिया है. शाम स्पीकर ओम बिरला दिल्ली लौट रहे हैं और तभी साफ होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं.
4: So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal.
5: Preeti, this party was made of its workers. This party was not made of these aya ga ram gaya ram.
6: वो कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में. अरे भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है. इन्होंने भेजा है, उन्होंने तुमको नीचे गिरा.
7: 40 साल से ममता बनर्जी की विश्वस्त रही काकोली घोष को अब अपनी दीदी पर विश्वास नहीं रहा. ममता के खिलाफ बगावत की अब वो अगुवा हैं. जिस शताब्दी रॉय का राजनीतिक भविष्य ममता ने संभाला सवारा, वो अब ममता का भविष्य तबाह करने पर तुली है. और ये फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है. ममता से बारी बारी सभी बिछड़ रहे हैं, अपनों का साथ छूटता जा रहा है, विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही है. पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं.
4: I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that I was with her when she was not in power.
7: Mamata Banerjee कितनी अकेली और असहाय हो गई हैं, ये सोमवार को दिल्ली में साफ हो गया. सोमवार को एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी. भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर पूरी मुनादी के साथ. इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाई, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है. शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए. ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई. आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी 20 सांसद बगावत करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा. लेकिन टीएमसी का कहना है कि स्पीकर को खत काकोली घोष की तरफ से गया और वो अब पार्टी की चीफ व्हिप नहीं रहे. उनकी जगह पहले ही कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया गया था.
8: इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग. पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है, ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, दीदी के साथ हूँ, खड़ा हूँ।
7: तो अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है, उन पर है कि वो बागियों को सदन में मान्यता देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती फंसती और अकेली पड़ती जा रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
0: तो बागी सांसदों के नेतृत्व कर रही काकली घोष दस्तीदार ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है।
2: काकोली घोष ने कहा कि टीएमसी के खिलाफ लोगों ने वोट किया है, वोटर्स ने नाराजगी जताई है और ऐसे में हम जनादेश के साथ हैं। उन्होंने वादा किया कि एनडीए के साथ रहकर देश और राज्य के लिए काम करेंगे। आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा ने उनसे बातचीत की।
9: इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं काकोली घोष जी। मैम, हम देख रहे हैं किस तरह से बंगाल की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आपके साथ लगभग 20 सांसदों ने, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने ये फैसला लिया है कि आप अपनी अलग राह चुनेंगे, क्या कारण रहा कि आज आपको ये फैसला लेना हुआ?
10: देखिए मतदाताओं, 2026 में जो चुनाव हुआ बंगाल में, उसमें उनका जो मत दे दिया तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उसके मतलब क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस के पॉलिसी के खिलाफ, उनका जो गवर्नेंस के खिलाफ, वहाँ जो अभी नौकरी नहीं है उसके खिलाफ, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ उसके खिलाफ। तो हमें मतदाता के साथ जाना है। मतदाताओं ने नाराजगी जताई, हम उनको समर्थन किया।
9: एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि क्या आपने समर्थन एनडीए को किया है? जो चिट्ठी लिखी है कि आपने लोकसभा स्पीकर को सबमिट कर दिया, आगे क्या होगा? बस
10: हम लोग अलग बैठ के देश के लिए और राज्य के लिए काम करने का मांग किया है।
9: एनडीए को समर्थन किया है
10: एनडीए में बैठ के।
2: और हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, अभी थोड़ी देर पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना रहे थे तृणमूल कांग्रेस की, और वो इन तमाम बागी सांसदों को कह रहे हैं कि नैतिकता है तो इस्तीफा दें, विधायकों को भी कि नैतिकता है तो इस्तीफा दें। तो कुल मिलाकर अब कितने सांसद हैं जो दूसरी तरफ चले गए हैं और इस खेमे में क्या क्या चिंतन मंथन चल रहा है?
11: देखिए राजीव, तृणमूल कांग्रेस का लोकसभा में 28 सांसद इस वक्त है, और अगर काकोली घोष दस्तीदार का माने तो वो कह रहे हैं कि 20 सांसद उनके खेमे में है और उनका दस्तखत भी उनके पास इस वक्त है, और वो किसी भी समय स्पीकर ओम बिरला के सामने अपना जो नंबर्स है वो दिखाने के लिए तैयार है, ये वो कह रहे हैं, उनका दावा है। हालांकि जो ममता बनर्जी का खेमा है वो लोग ये कह रहे हैं कि जिनको जाना है वो जाए, क्योंकि वो तृणमूल के सिंबल में और ममता बनर्जी के इमेज के साथ जीते थे 2024 में, जो 29 सांसद जीते थे, फिर 28 हो गया, एक सांसद की मौत हो गई, तो वो ये एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है, क्योंकि तृणमूल के सिंबल में जीता हुआ जो सांसद अभी एनडीए के खेमे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काकोली घोष दस्तीदार ने ये साफ कर दिया था कल ही कि वो लोग चाहते हैं स्पीकर को ये बताना कि वो एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल ये कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ था, ये एनडीए के खिलाफ था, वो जो लोगों का भरोसा था और जो जीत उनकी हुई थी 2024 में वो बीजेपी के खिलाफ मैंडेट था, तो वो कैसे आज 2026 में जब चुनाव वो हार गए पश्चिम बंगाल में, वो कैसे बीजेपी में जा सकते थे? तो कहीं ना कहीं दोनों खेमे के बीच में इस वक्त काफी बातचीत हो रही है। हमने कुछ देर पहले प्रतिमा मंडल, तृणमूल के सांसद, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी से कॉल आया था, डायरेक्टली बीजेपी पार्टी से उनको कॉल आया था, ये वो उन्होंने दावा किया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी को छोड़ के नहीं जा रहा हूं इस वक्त, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो हमारे
0: ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ममता के लिए बुरी खबर का सिलसिला थम ही नहीं रहा है, झटका लगता है और जब तक वो संभल पाती है दूसरा झटका उन्हें दोबारा लग जाता है। टीएमसी में आया राम गया राम की ऐसी रेस चल रही है कि फिरहाद हकीम जैसे ममता के विश्वास भी बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
2: अब खबर इस बीच में ये भी है कि यूसुफ पठान ने भी ममता बनर्जी को बहरामपुर सीट छोड़ने के सवाल पर इनकार का सिंबल ही दिखा दिया। कमजोर पड़ चुकी ममता बनर्जी को अब सब तरफ से असंतोष का ही सामना करना पड़ रहा है।
12: 9th को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा हो।
7: सही फरमा रहे हैं शुभेंदु, मौसम बदल रहा है बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। शुभेंदु के लिए मौसम खुशगवार और मजेदार है। पहली बार बंगाल की सत्ता की बहार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो टीएमसी में फूट और बगावत का ज्वार है। मतलब कि मौसम की मार ममता बनर्जी झेल रही है। उनके लिए मौसम इतना दुश्वार है कि हर कदम पर अब चुनौतियों की भरमार है। दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिए। सोमवार को ममता के एक और विश्वस्त फिराद हकीम ने ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात की। फिराद हकीम कोलकाता के मेयर रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही पद छोड़ दिया। कल उन्हें विधानसभा में संदीपन साह के साथ ऋतव्रत के चैम्बर में जाते देखा गया था। फिराद हकीम का परिचय किसी से छिपा नहीं है, वो ममता की कोर टीम के सदस्य रहे। ममता ने उन्हें कोलकाता का मेयर बनाया। जब भी केंद्र से लड़ाई में प्रशासनिक मदद की जरूरत पड़ी तो फिराद हकीम ममता के साथ खड़े दिखे, लेकिन अब उनकी निष्ठा डगमगाती दिख रही है।
13: सर आपने मीटिंग किया है,
14: आपकी की ममता बंदोबस्त है, संघ छोड़ ले,
15: नो कमेंट्स।
13: बहुत सांसद,
15: नो कमेंट्स, नो
13: कमेंट।
7: फिराद और यूसुफ ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने पद और मौका दिया, लेकिन वक्त बदलते ही सब बदल रहे हैं। खबर ये आई कि ममता बनर्जी बरहानपुर सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा जाना चाहती है। खबर ये भी आई कि यूसुफ पठान ने बरहानपुर सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, वो वहाँ से सांसद है। खुद यूसुफ पठान ने ऐसी किसी घटनाक्रम से इनकार किया है और कहा है कि उनसे किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया।
16: अरे कुछ नहीं, मैंने वो मुझे हराने के लिए वहाँ तैनात किया गए थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए उनको तैनात किए गए थे मुझे हराने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाई जान को वोट दो, इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं हूं, दादा मतलब हिंदू है, इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो, तो किसका मैंडेट था ये?
7: लेकिन ममता के वफादारों की तरफ से यूसुफ पठान पर हमले हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कहा,
17: क्या आपको अमित शाह ने बुलाया है? जो दिल्ली जाने की इतनी जल्दी है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। आपने देश के लिए खेला है, हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है, थोड़ी शर्म करो और साहस दिखाओ।
7: जाहिर है अगर धुआं उठ रहा है तो अंदर कहीं न कहीं आग भी भड़की है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
0: तो बंगाल विधानसभा चुनाव मिली करारी हार के बाद लगता है ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि अगर भविष्य में बीजेपी के सामने टिकना है तो उन्हें गठबंधन की राजनीति की तरफ रुख करना होगा। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी का अलग थलग अंदाज नजर आया।
18: सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से 10 मिनट अलग से बातचीत की है, उनसे गले भी मिली। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों को एक दूसरे की आलोचना करने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जनादेश छीना गया है।
0: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी गठबंधन के भीतर मतभेद कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इससे महत्वपूर्ण बात यह कि यादव ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत से पहले कांग्रेस को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल को विशाल हृदय दिखाना चाहिए और अलग अलग राज्यों में बीजेपी विरोधी सबसे मजबूत ताकत का समर्थन करना चाहिए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पर राहुल की टिप्पणी की भी अखिलेश ने आलोचना की है।
18: और एक और 11 में आप रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
22: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
23: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
24: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?

0: अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, प्रभु राम की जन्मस्थली पर बना विशाल मंदिर विश्व भर के राम भक्तों के लिए अनन्य तीर्थ है। इस पवित्र भूमि पर पिछले कुछ वर्षों से श्री राम भक्ति की अनवरत धारा बह रही है, मगर इस मंदिर के बनने से पहले, बनते वक्त और बनने के बाद यहाँ राजनीति की भी अनवरत धारा बहती रही है। और अब राजनीति की नई धारा में चंदे की चोरी के आरोप फिर से सिर उठा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार इस पर चुप हैं। अदालत स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे, क्योंकि असंख्य राम भक्तों की आस्था का सवाल है। अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
1: अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।
2: ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन का जवाब देगी। कहां पे कौन कह रहा गायब हो गई है?
1: अखिलेश यादव
2: कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे।
0: बीजेपी की ओर से किसी जवाब से इनकार किया गया, लेकिन अखिलेश के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
0: हालांकि अखिलेश यादव ने ट्रस्ट की ओर से दी गई 40 सेकंड की सफाई पर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को साथ बैठाकर फुल बेंच स्पष्टीकरण मांगा और सीसीटीवी फुटेज के सबूतों पर जांच कराने की मांग की। उधर ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से इस खबर पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य महंत दीनेन्द्र दास कहते हैं कि एक तो ऐसी गलती होगी नहीं और हुई तो रामजी दंड देंगे। चढ़ावे पर सवाल के पीछे क्या? चढ़ावे में गड़बड़ी की खबरों के पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान और आरोप हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडेय ने अपुष्ट खबरों के आधार पर चंदे में चोरी का दावा कर दिया। समाजवादी पार्टी के आरोपों के मुताबिक मंदिर के दान पत्रों में आने वाला चढ़ावा रोज गिना और स्टेट बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों ये चढ़ावा आश्चर्यजनक रूप से औसत चढ़ावे से कम निकला। आशंका है कि इसमें 5 से 7 करोड़ रुपए की कमी देखी गई, जिसके बाद बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि ऐसी अफवाहों की पुष्टि किसी ने नहीं की है, क्योंकि तथ्यों के मुताबिक राम मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों के सामने और पूरे दर्शन मार्ग पर करीब 4 दर्जन दान पात्र हैं। श्रद्धालु इनमें नकद पैसे चढ़ाते हैं, जिन्हें रोज गिनकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
9: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
10: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space, now's the perfect time to make it happen with a home equity loan from CME Federal Credit Union. You'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
11: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender. This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
14: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.
15: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुरमत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।

घूमना फिरना अब सिर्फ शौक नहीं, एक जरूरत बन गया है। फर्क बस इतना है कि मंजिल बदल गई है, जिसमें विदेश की जगह अपना देश है। यही वजह है कि दुनिया में मची उथल पुथल, महंगी उड़ाने, बंद रास्तों के बीच भी भारतीय अपना बैग उठाकर घूमने के लिए किसी न किसी मंजिल पर निकल ही पड़ते हैं। यही बदलाव भारतीय पर्यटन की नई कहानी लिख रहा है। यूएन टूरिज्म की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 की पहली तिमाही में दुनिया भर में 30 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, जो पिछले साल से 2% ज्यादा है। लेकिन मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से मार्च में ग्रोथ घटकर महज 0.4% रह गई। ऐसे में यूएन टूरिज्म का कहना है कि मौजूदा अनिश्चितताओं की वजह से साल 2026 में ग्लोबल टूरिज्म ग्रोथ उसकी शुरुआती अनुमान से कमजोर रह सकती है। अगर भारत की बात करें तो मिडिल ईस्ट के हालात ने एक अलग असर दिखाया है। दरअसल मध्य पूर्व के एरोस्पेस में रुकावट आने और जेट फ्यूल की बढ़ती लागत के बीच एयर इंडिया ने जून से अगस्त के दौरान हर हफ्ते 145 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम करने का फैसला किया है। वहीं यूरोप और पश्चिमी देशों के कई रूट्स पर किरायों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जबकि ट्रैवल इंडस्ट्री को कई अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर यात्रा खर्च 20-30% तक बढ़ने की आशंका है। ऐसे में महंगी इंटरनेशनल ट्रैवल कॉस्ट की वजह से भारतीय पर्यटक घरेलू डेस्टिनेशंस का रुख कर रहे हैं। घरेलू पर्यटन की यही लहर बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। यानी जो भारतीय पहले विदेश जाते थे वो हिल स्टेशन, बीच रिजॉर्ट, स्पिरिचुअल सर्किट और हेरिटेज डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में भारत में घरेलू टूरिस्ट विजिट करीब 295 करोड़ रही, जो साल 2023 के मुकाबले 17.5% ज्यादा थी। WTTC के मुताबिक साल 2025 में भारत के पर्यटन क्षेत्र का GDP में योगदान करीब 257 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया था। वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 4.80 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भारत के लिहाज से ये इसीलिए खास है क्योंकि पर्यटन उद्योग में घरेलू यात्रियों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, जिससे भारत आने वाले वर्षों में घरेलू पर्यटन के दम पर दुनिया के सबसे बड़े टूरिज्म मार्केट्स में शामिल हो सकता है। आगे की तस्वीर तो भी बेहतर नजर आती है। अनुमानों के मुताबिक साल 2030 तक भारत में सालाना 5.20 अरब घरेलू ट्रिप्स होंगे। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र में लगातार विस्तार और बड़ी संख्या में नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी जब दुनिया में टूरिज्म अनिश्चितता से जूझ रहा है, तो भारत में घूमने की ललक ना महंगे टिकट रोक पा रही है और ना ही ग्लोबल उथल पुथल, क्योंकि भारत का टूरिस्ट अब अपने ही देश की खूबसूरती को नए सिरे से खोज रहा है। आदित्य किराना, आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

से लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू देवगौड़ा ने भी की तारीफ। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। ममता को सबसे बड़ा झटका। विधायकों के बाद सांसद भी बागी शताब्दी रॉय के घर पर बैठक। शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात। काकोली घोष ने किया 20 सांसदों के साथ होने का दावा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस को दी नसीहत। क्षेत्रीय दलों को तवज्जो न देने पर सुनाई खरी खोटी। पूछा आज कहां है डीएमके, सीट लेने पर नहीं जीतने पर फोकस करें। राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक के लिए बड़ा दिन। सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी। पहाड़ में हो रहा है आखिरी ब्लास्ट। 12 महीने कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख। फायरिंग मामले में कोचिंग टीचर फैजल खान को अदालत से मिली राहत। कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन वारदात के बारे में पूछताछ कर सकती है पुलिस।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत करते हैं सिलसिले की। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने वाली ममता बनर्जी के हाथ से क्या पार्टी भी जाने वाली है? विधायकों की बगावत के बाद ममता बनर्जी के सांसद भी टूट रहे हैं। ममता के 20 सांसदों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है। जी हां, एनडीए को समर्थन देने का। ऐसे में सवाल यह भी है कि सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही ममता बनर्जी का अब अगला कदम क्या होगा? और बागी सांसदों पर टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर हमला बोला। उन्हें नैतिकता की याद दिलाई है कि किस सिंबल पर जीते हो और किसका समर्थन कर रहे हो। ऐसे में तो छोड़ दो। इस बीच में कीर्ति आजाद ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। पहले इस्तीफा दो और फिर उसके बाद बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ना, तब आप सांसद विधायक जो भी है बने रहना। तो बगावत पर टीएमसी हमलावर दिखाई दी।
1: विधानसभा के बाद जो है अब लोकसभा में भी टीएमसी के अंदर बड़ी टूट देखने को आ रही है। 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि उनको टीएमसी से अलग गुट में देखा जाए और वही असली टीएमसी है। अब देखना यह है स्पीकर इस पे क्या फैसला लेंगे। लेकिन कल टीएमसी के बागी सांसदों ने जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उसके बाद जो है देर शाम जो है शताब्दी रॉय, जो टीएमसी की बागी सांसद हैं, उनके घर पर सभी बागी सांसदों की मुलाकात हुई, शिवेंदु अधिकारी से जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं। और इन सभी बागी सांसदों ने ये दावा किया है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है और ऐसे में स्पीकर को उनको अलग गुट के रूप में मान्यता देनी ही पड़ेगी। और उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे आने वाले दिनों में। तो एक तरीके से स्पीकर अगर इन 20 सांसदों को मान्यता दे देते हैं तो एनडीए के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा।
0: अब जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। जहांगीर खान पर जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे 7 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
2: जी देखिए, चुनाव के बाद से ही जहांगीर खान फरार था और उसके खिलाफ कई सारे जो कंप्लेन है वो दर्ज किए गए थे। आखिरकार उन्हें उत्तर बंगाल से कल गिरफ्तार किया गया। भारत और नेपाल के सीमा से उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये बताया जा रहा है कि वो नेपाल भागने की फिराक में थे और उसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने उन्हें कोलकाता ले आ पहुंची कल रात को और आज सुबह उन्हें डायमंड हार्बर कोर्ट में ले जाया गया है। और उनको जब कोर्ट परिसर में ले जाया गया तब सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे और स्थिति काबू से बाहर ना जाए इस वजह से काफ़ी तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और जो सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि एसटीएफ की ओर से उन्हें पुलिस रिमांड में मांगने की बात रखी जाएगी कोर्ट के सामने और पुलिस रिमांड आने के बाद उन्हें उनके घर और कई ऐसे इलाकों में ले जाया जाएगा जहां उनके खिलाफ कई सारे कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे। उन इलाकों में रेड चलाया जाएगा और उनके खिलाफ ऐसी भी आरोपें हैं कि लोगों को लगातार धमकाना, यहां तक कि खून करने की भी कंप्लेंट उनके खिलाफ है। तो इन सारी चीजों को लेकर तफ्तीश शुरू होगी।
0: यूट्यूबर और पटना में कोचिंग चलाने वाले फैजल खान को पटना की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में फैजल खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, जिस पर अब पटना जिला अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल फैजल खान की ओर से कल ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई।
3: पटना में 2 जून की रात कोचिंग विवाद में मारपीट और उसके बाद फायरिंग की घटना के बाद KGS यानी खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज किया था। FIR के बाद फैजल खान के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन आज पटना के एक अदालत ने, निचली अदालत ने फैजल खान को राहत दी है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना की इस अदालत ने फैजल खान के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई यानी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट का यह अंतरिम आदेश है। वहीं फैजल खान के 2 बॉडीगार्ड्स जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे, उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 10 जून को सुनवाई करेगा।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब बात कर रहे हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के। राज्यसभा चुनाव से पहले एमपी में ये सियासी हलचल तेज है। क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को अब उसने बेंगलुरु रवाना किया है। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को अगले 10 दिन तक बेंगलुरु में ही रख सकती है। 18 जून को एमपी की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी की 2 सीटें तो तय मानी जा रही हैं, लेकिन तीसरी सीट को लेकर लड़ाई है जिस पर सबकी नजर है। इस बीच में कांग्रेस को अब क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, लिहाजा विधायकों को बेंगलुरु भेजने का फैसला लिया गया।
4: तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतार के भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के गणित को उलझा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो संख्या बल है उस लिहाज से बीजेपी 2 सीटों पर आसानी से चुनाव जीत जाएगी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपा के पास 10 वोट कम पड़ रहे हैं और यहीं पर कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस को आशंका है कि बीजेपी उसके विधायकों के साथ खरीद फरोख्त कर सकती है और इसीलिए करीब 6 साल बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस आज शाम तक अपने सभी विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर किसी कांग्रेस शासित राज्य में भेजने की तैयारी कर चुकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: राज्यसभा चुनाव से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से बातचीत की आज तक संवाददाता रवीश पाल ने।
5: पहले 2 नाम ऐलान होते हैं और नामांकन के ठीक आखिरी दिन तीसरा नाम भी आ जाता है मीनाक्षी नटराजन के सामने।
6: नहीं, 10 विधायक कम है, फिर भी बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। कैंडिडेट किसके सामने दिया है? एक गांधीवादी महिला के सामने। गांधीवादी महिला, महिला आरक्षण की बात करने वालों की असली पोल खुली। जो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं उन्होंने एक ओबीसी के साथी को उनके सामने कैंडिडेट बनाया, केवट को। अगर केवट से प्यार था, ओबीसी से प्यार था, तो उनको पहले नंबर पे क्यों नहीं बनाया? वहां पंजाब का लाके क्यों बना दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को मध्य प्रदेश और देशवासी समझे। ये महिला विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। नरेंद्र मोदी देश से आह्वान कर रहे हैं, देश बचाओ, देश संकट में। किस बात से? आर्थिक क्राइसिस है, मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो रहा है। और इनके पास मुद्रा कितनी आ रही है कि कैश फ्लो 15,000 करोड़ रुपए, करप्शन अद्भुत, विधायक खरीदने के लिए फुल पैसे हैं, रोज खरीद फरोख्त करेंगे। तीसरा कैंडिडेट, यानी मध्य प्रदेश वासी देखें, 8 करोड़ जनता देखें कि तीसरी चोरी का प्रयास। ये अलग बात है कि इस बार इनको मुंह तोड़ करारा जवाब मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के नेहरू के रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है। वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए। 9 जून 2024 को ही उन्होंने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। मोदी के बतौर पीएम इस रिकॉर्ड को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने अखबारों में लेख लिखा है और पीएम मोदी के विकास वाले विजन की तारीफ की है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक लेख में 12 सरकार की उपलब्धियों की सराहना की है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि पिछले 5 दशकों में उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन जैसा काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है वो अविश्वसनीय है, वो अकल्पनीय है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी एक पहचान बनाई है जिसका भी कोई तोड़ नहीं है। साथ ही साथ पिछले 1 दशक में जिस तरह का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है वो भी अभूतपूर्व है, चाहे रेलवे की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, बंदरगाह की बात हो, सड़कों की बात हो, इन सभी चीजों पर मोदी सरकार ने ऐसा काम किया है जो कहीं ना कहीं भारत को विकासशील देश से विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ाता है।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में बात आईआरसीटीसी घोटाले की। इसी मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की मुश्किलें अभी तक बढ़ी हुई है, लेकिन इस मामले में अब आने वाला है फैसला, वो लेकिन टल गया है। ये केस आईआरसीटीसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन बहुत बड़ी खबर इसमें यह है कि फिलहाल फैसला टाल दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट में यह मामला लगातार चल रहा था, इसमें सुनवाइयां हो रही थी, आज फैसला आने वाला था, लेकिन अब फैसला आगे आएगा। फिलहाल फैसले को टाल दिया गया है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लगातार लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखती हैं। फैसले का इंतजार था लेकिन वो आगे बढ़ा दिया गया है।
8: आईआरसीटीसी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य परिवार के अन्य और आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने को लेकर लाउज एवेन्यू कोर्ट का निर्णय एक बार फिर टल गया है। ये पांचवी बार है जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ या उनके पूरे परिवार के खिलाफ ये निर्णय टला है। इसमें अगर हम बात करें तो पिछली बार अगस्त में 2025 के अगस्त में कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा था, लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव हाईकोर्ट भी चले गए और हाईकोर्ट जाने के बाद भी उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। कुछ और दलीलें दी गई जिस पर एक बार फिर मई में निर्णय सुरक्षित रखा गया, लेकिन इस बीच 14 जनवरी की तारीख लगी, वहां से फिर 22 मई हो गई, फिर 9 जून हो गया, आज भी ये फैसला एक बार फिर टल गया है। यानी अब अगली तारीख का इंतजार है जब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट चार्ज फ्रेम करने पर बात करेगा और उन्हें समन करेगा।
0: अब खबर लखनऊ से, लखनऊ के केजीएमयू के बाद से अब पीजीआई में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि इरशाद अली नाम के एक शख्स ने लड़की को पहले बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाया, फिर उसे अगवा करके सीरिया ले गया। इस पूरे काम में पीजीआई से जुड़े हुए एक डॉक्टर ने भी उसकी मदद की।
9: केजीएमयू के धर्मांतरण की तरह पीजीआई में डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा है कि वह मददगार है उस आरोपी का जो एक युवती, हिंदू युवती को लेकर फरार हो गया है। यही नहीं, इससे पहले वह घर में घुसता है, वो भी रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता है और उसके बाद नमाज की बात करता है, बुर्का की बात करता है, और अब माता पिता का आरोप है कि वह लड़की को लेकर सीरिया चला गया है क्योंकि वह बात बात पर सीरिया की बात कहता था। इस धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर सनसनीखेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू संगठन भी अब आगे आ गए हैं और लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आखिर किस तरीके से एक शख्स पूरी तरीके से इस लड़की को लेकर फरार हुआ है और अब सर्च ऑपरेशन जारी है।
0: तो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम पटेल और उनके परिवार को 2024 के बोहरा समुदाय उत्तराधिकार फैसले को लेकर लगातार धमकियां भरी चिट्ठियां मिल रहे हैं और इन चिट्ठियों में फैसले को दबाव में दिया गया बताने और माफी मांगने की मांग की गई है। 5 जून को लंदन में उनकी बेटी को भी धमकी मिली। इस मामले में लंदन पुलिस जांच कर रही है।
10: 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस गौतम पटेल ने दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी मामले में एक जजमेंट पास किया था और उसके बाद उन्होंने कई सारे और जजमेंट भी पास किए थे और 2025 में वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद से ही उन्हें धमकी मिलने लगी। उस धमकी में उनका सीधे सीधे कहा जा रहा था कि आपके और आपके परिवार को नुकसान पहुंच जाएगा अगर आप ये जो जजमेंट आपने पास किया था उसको आप वापस नहीं लेते हैं। दरअसल इस मामले में अगर देखें, कोई भी लीगल प्रोसीजर में कोई जजमेंट वापस लेने की कभी कोई सुविधा नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में उन्होंने भी साफ कहा कि अपील ही एक जरिया है, आप अपील और इस मामले में अपील फाइल हो चुकी है तो अपील की जब सुनवाई होगी, जब जजमेंट पास होगा तो जस्टिस गौतम पटेल का जजमेंट सही है या नहीं है वो उस समय पता चलेगा, लेकिन ये इस तरह से धमकी देना ये सही नहीं है, ऐसा जस्टिस गौतम पटेल ने भी कहा। और अगर देखें तो इस मामले में सितंबर में उनको 2025 में धमकी मिली थी, उसके बाद 2026 की अप्रैल में उनकी जो बेटी है उसके ऊपर हमला हुआ, उनका नाक तोड़ दिया गया और उसके बाद अब एक बार फिर से एक और धमकी भरा लेटर आया जिसमें उस अटैक का भी जिक्र है।
0: खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। यहां पिघला हुआ स्टील लीक होने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई मजदूर भी घायल हैं। 8 लोगों की जिंदगी चली गई है। ये स्टील प्लांट जिसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ, हर तरफ आग लगी हुई, आप तस्वीर भी उस समय की दिखा रहे हैं, 8 मजदूरों की जान चली गई और इसमें स्टील पिघला जब आग लगी और उसमें 8 लोग बचाए नहीं जा सके। घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने आग बुझाने के प्रयास लगातार किए और कई घंटों की मशक्कत के बाद कुछ उनको कामयाबी मिली, लेकिन स्टील पिघला और उससे 8 लोगों की जान चले गई। भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोरजिला सुरंग को थोड़ी ही देर में आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल उसका होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जोरजिला टनल में पहुंचे हैं।
11: और ये पहली ऐसी टनल होगी जिसका व्यास अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है, और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एस्केप गेट, वेंटिलेशन शाफ्ट, ये सब जमीन के 25 से 30 फीट ऊपर बनाई जा रही है ताकि अगर कोई हादसा हो, कोई ऐसी घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन चलाया जा सके। 13 किलोमीटर इस लंबी सुरंग में सांस लेने की दिक्कत ना हो उसके लिए वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा, और इतना ही नहीं, ये सुरंग इतनी खास, इतनी मजबूत है कि न इस पर मिसाइल हमलों का असर होगा, न इस पर परमाणु बम का कोई असर हो सकता है। और ये न सिर्फ कश्मीर को कारगिल से जोड़ेगी बल्कि चीन और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी को देखते हुए भारत की सैन्य जरूरतों को भी जोजिला की ये सुरंग साल भर पूरा करेगी। 11,500 फीट की ऊंचाई, 13 किलोमीटर की ये लंबी जोजिला सुरंग भारत की क्षमताओं का प्रतीक है जो न सिर्फ कश्मीर लद्दाख को जोड़ेगा, भारत की सैन्य क्षमताओं को पूरा करेगा, बल्कि हिमालय का सीना चीर करके इस तकनीक के जरिए जो एक मिसाल कायम की गई है ये पूरी दुनिया के सामने है।
0: इधर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला बोल दिया, और हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इसराइली बलों के खिलाफ 16 हमलों का दावा किया है। उधर इसराइल और ईरान में एक बार फिर से एक दूसरे पर हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। ईरान से डील को लेकर ट्रंप ने कहा कि 2 या 3 दिन डील करने का बेहतर मौका है, तो तनाव एक बार फिर से चरम पर है। इसराइल लेबनान के मोर्चे पर भी, ईरान इसराइल के मोर्चे पर भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2 या 3 दिन डील करने का आपके पास बेहतरीन मौका है।
12: पश्चिम एशिया में जारी तनाव को 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान ईरान और इसराइल एक बार फिर भिड़ते नजर आए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार की, खतरे के सायरन और धमाके की आवाजें इराक से लेकर सऊदी अरब तक कई मुल्कों के अंदर सुनाई दी। मगर इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि ईरान और इसराइल दोनों ही संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति को लेकर बातचीत चल रही है। इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि चूंकि ईरान ने वार रोक दिया है इसलिए इसराइल भी अब अपना पलटवार रोक रहा है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि यदि ईरान की तरफ से किसी भी तरीके का वार किया गया तो फिर इसराइल की कार्रवाई भयावह होगी, जबरदस्त होगी। कुछ इसी तरीके की बातें ईरान की तरफ से भी कही गई, लेकिन दुनिया सख्ते में है, दुनिया चिंता में है और लगातार इस हालात के ऊपर नजर जमाए हुए है, क्योंकि इस खतरे का खामियाजा सबसे ज्यादा दुनिया के कई वो देश भुगत रहे हैं जो इस लड़ाई में न तो शामिल हैं और न ही उनका कोई लेना देना है इस लड़ाई से।
0: दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, और बीते 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। अब मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान में और इजाफा हो सकता है।
13: दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें अगले 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जो है वो बना रहेगा। हालांकि उसके बाद येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यानी उसके बाद यानी 11 और 12 तारीख को दिल्ली एनसीआर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से जो है वो तेज हवाएं चलेंगी और उसके साथ साथ कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी होगी। लेकिन जिस तरीके से चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, ये तस्वीरें कर्तव्य पथ की अगर आप देखेंगे, एक तरफ आपको यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ नजर आएगा। अमूमन यहाँ पर जो लोग हैं सैलानी हैं घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से तापमान 43 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जा रहा है उससे लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत जो है वो बड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर में घूमने के लिए आते थे तेज गर्मी के चलते वो फिलहाल इस वक्त अगर कहा जाए तो इंडिया गेट और उसके आसपास जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं।
0: अब रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन।

0: to kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
5: Money, money, money, money, every month.
6: Soch batlo aur bank bhi.
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटे कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
12: एज अ कोच, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है, उसमें हार्डेस्ट पार्ट क्या है?
13: जो वो गलत चीजें सीख करके आए हैं इंटरनेट पे से, वो चीजें पहले उनको अनलर्न करवाना। मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो भाई, AI का जमाना है, ठीक है, अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो AI नहीं कर सकता। वन प्लान वर्क्स फॉर ऑल नहीं कर सकते हो। सो दिस इज वेयर कस्टमाइजेशन कम्स इनटू प्ले। आप किसी भी टाइप का फैट लूज करना चाहें, बी इट बेली फैट, आर्म फैट, आपका थाई फैट, दी ओनली सिंपल रूल इज कैलोरी डेफिसिट।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।
2: इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी का दबदबा, कांग्रेस को यूपी में सीएमवी सीटें देने पर रणनीति पर मंथन।

0: अखिलेश यादव ने दिखाई सत्य, यूपी चुनाव में कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं सपा। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर आरएलडी का बड़ा बयान, अनुपम मिश्रा बोले कि नई सीटों पर दांव लगाएगी पार्टी। सीट शेयरिंग विवाद पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, उदयवीर सिंह बोले कि क्षेत्रीय दलों को अपनी बात रखने का पूरा हक। इंडिया गठबंधन में बड़ी हलचल, समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे चुनाव, आरएलडी पर भी निशाना। यूपी चुनाव 2027 को लेकर आरएलडी की रणनीति तेज, संगठन में बड़े बदलाव के साथ नई सीटों पर नजर, बीजेपी गठबंधन में मजबूत हिस्सेदारी के लिए पार्टी ने प्लान किया शुरू। मुरादाबाद रैली के बाद से एक्शन मोड में आरएलडी, जयंत चौधरी ने मांगी बूथ स्तर तक की ग्राउंड रिपोर्ट, यूपी चुनाव में 25 से 30 सीटों की दावेदारी की तैयारी। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, 29 लाख अभ्यर्थी शामिल, 30,000 सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा। नकल विहीन परीक्षा पर जोर, यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। अयोध्या चढ़ावे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान, ये ट्रस्ट का मामला, जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूर। केजीएमयू हार्ट स्टेंट घोटाला मामले में जांच, डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, एक साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड तलब, मरीजों के फीडबैक को भी सबूत बनाए। केजीएमयू हार्ट स्टेंट मामले में अनियमितताओं पर सख्ती, थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई, संबंधित कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग की तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए, हार्ट स्टेंट मामले की निगरानी अब केजीएमयू में नियमित कर्मचारी करेंगे। स्टेंट घोटाले पर दवा खरीद पर भी नजर है, कई विभागों में खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रुपए तक पहुंचा। आज तक के असर से बदली तस्वीर, रिंद नदी पर 27 करोड़ का पक्का पुल, निर्माण अब शुरू, 70,000 ग्रामीणों में खुशी है। राज्यपाल हत्याकांड में दोषी करार शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली, आबिद को जो जमानत मिली है उस पर सवाल भी उठे। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे युवतियों से ऑटो चालक ने सुनसान इलाके में जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। कानपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का सैलाब, स्पेशल ट्रेन के दावों के बीच में व्यवस्था पर सवाल। लखनऊ में 90 साल पुराने गर्ल्स स्कूल पर लगातार छात्राओं अभिभावकों का प्रदर्शन, पढ़ाई बचाने की मुख्यमंत्री से गुहार। स्कूल बंद होने के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं, विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को बचाने की मांग। लखनऊ में पीजीआई परिसर में युवती के अपहरण का मामला, लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज, अपहरण से लेकर विदेश ले जाने तक के गंभीर आरोप। हरदोई में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के बेटे ने विवाद के बाद एसडीएम पर पथराव भी हुआ है और सिर में पत्थर लगने से एसडीएम घायल है, अब पुलिस छावनी में पूरा गांव तब्दील। वाराणसी में गंगा से विशाल शिवलिंग बरामद, 2,500 साल पुराना होने का दावा है, श्रद्धालुओं में उत्साह। गंगा किनारे मिला 2 क्विंटल वर्जन ये शिवलिंग, मौर्य काल से जुड़ा होने की आशंका, पूजा अर्चना भी शुरू हुई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
2: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ एनडीए के सामने कड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है? यह सवाल कल दिल्ली में हुई गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद से मौजूद हो गया है, क्योंकि कल की बैठक में सबसे ज्यादा जोर गठबंधन की एकता, आपसी बातचीत और साझा मुद्दों पर एकजुट होकर आगे बढ़ने की रहे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कल की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद कांग्रेस के मूड का पता नहीं लग पाया। क्या कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर ज्यादा सीटें नहीं मांगने का दबाव बनाया है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की यह तस्वीर गठबंधन की एकता की सुनहरी मिसाल पेश करती दिखी। ममता को भले ही सोनिया की सहानुभूति का आलिंगन मिला हो, लेकिन इस बैठक में राहुल के साथ की कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन ने यूपी चुनाव की अहमियत साबित कर दी। और जब मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश को बोलने का मौका दिया गया, तो अखिलेश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने नाराजगी का पिटारा खोल दिया। अखिलेश ने पूछा, आज डीएमके कहां है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बिठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए।
4: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
3: और आखिरकार अखिलेश यूपी के मसले पर आए और कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो तीन कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में लड़कर दो नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीट ऐसी है जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दो नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद को दावेदार समझने लगी है।
5: हालांकि सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
3: 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना चुके हैं। खासकर टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश बेहद संजीदा है और खबर है कि अखिलेश ने संभावित उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है और स्थानीय पार्टी नेताओं के फीडबैक के आधार पर सूची बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन इस सर्वे टीम की अगुवाई कर रहे हैं। इस टीम में लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर, दो रिसर्च स्कॉलर भी शामिल हैं और इसी टीम ने कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने की रिपोर्ट दी है। इन 75 सीटों में से 71 सीटें वैसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। यानी अखिलेश अपनी छांटी हुई सीटें कांग्रेस को ऑफर करने का मन बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें मंजूर होंगी। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में कल हुई बैठक को बहुत सफल माना जा रहा है और ऐसी बैठक आगे भी होने की पूर्वउम्मीद है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अंदर खाने की खींचतान साफ दिख रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
6: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के हर नागरिक के परिवार के सदस्य की तरह लोगों का केयर करते हैं। आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने सफलता हासिल की है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
0: आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में गठबंधन तो तय माना जा रहा है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग पर भी बात बन पाएगी? क्योंकि इससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव दोनों ही दलों ने साथ में लड़ा था और तब प्रचार खत्म होने तक दोनों ही दलों में पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाए थे और तब अखिलेश यादव को सीट बंटवारे में सिर्फ 298 सीटें मिली थी, लेकिन 311 सीटों पर लड़ भी गए थे। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर 15.11 रही। इसी तरह कांग्रेस के हिस्से में 105 सीटें आई थी लेकिन 114 पर लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट रहा 6.14%। लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों ही दलों में बात ही नहीं बन पाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे और तब दोनों ही दल का प्रदर्शन खराब हुआ था। दरअसल कांग्रेस की जो बुरी हालत हुई थी, क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%, जबकि कांग्रेस 399 सीटें लड़ी और 2 सीट ही जीत पाए, स्ट्राइक रेट रहा 0.5%। तो इससे यह साफ हो गया कि यूपी में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के लिए बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है और इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों ही दल फिर से साथ आए। अब जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो फिर गठबंधन हुआ और तब समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ी, 37 सीटें जीती, जीत की दर रही 59.68%। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ी और 7 सीटें जीते और यहां जो जीत की दर रही 41.17% रही। अखिलेश यादव की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के मुकाबले दोगुने से ज्यादा की स्ट्राइक रेट रही, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है और इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांगती है।
7: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती। तो अलग अलग पार्टियां हैं तो अपने इश्यूज को डिस्कस करके, अच्छी बात यह है कि सबने ये तय किया है कि उन सारे इश्यूज को रिजोल्व करेंगे।
8: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूँ, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे। अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन बेहतर हो अपने पार्टी फोरम पर कहें।
0: और अब राम मंदिर के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उस कार्यक्रम में भी आपको लिए चलते हैं, आपकी जगह स्वामी राम भद्राचार्य की कथा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और वहां से सीएम योगी ने बयान भी दिया है, हमारे आदर्श भगवान राम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान है। राम मंदिर और ट्रस्ट को लेकर कई तरह की समय खबरें हैं, लेकिन इस बीच में सीएम योगी स्वामी राम भद्राचार्य के कार्यक्रम में पहुंचे और हर समस्या का समाधान भगवान राम ही है। उन्होंने कहा,
9: थोड़ा भी अंश भक्तजन अपने जीवन में अंगीकार कर ले, न केवल उनका कल्याण होगा बल्कि समाज और पूरे देश का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। याद करिए ना, तो रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे, आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी, पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था, बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाव पहुंच गए थे, वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारिस और स्वभाव, स्वभाव को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारिस वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया, ऐसे ही ये मारिच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ इस, पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो। तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा।
0: तो लखनऊ में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का समापन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि समाधान एक ही नाम में है और वो नाम है राम का। अब आगे बढ़ते हैं, यूपी के चुनाव में विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं जिनकी एकता की तस्वीर तो कुछ कुछ उभर रही है, लेकिन उधर एनडीए में भी सतरंगी केमिस्ट्री है। यूपी में सत्ताधारी एनडीए में 5 दल शामिल हैं जिसमें बीजेपी, राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल सोनेलाल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी है। इनमें जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर पिछले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार में शामिल हुए हैं। अब इन सबके बीच में आने वाले चुनाव में सीट बंटवारे का सीन क्या रहेगा यह भी कहना तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव अभी है। लेकिन गाजीपुर जैसे मसले में पिछड़ी जाति के आरोपों के चुनिंदा एनकाउंटर को लेकर निषाद पार्टी जैसे दल अब सरेआम नाराजगी जाहिर करने लगे हैं। उधर जयंत चौधरी ने भी जो पिछली बार अखिलेश यादव के गठबंधन में 33 सीटों पर लड़े थे वो इस बार 35 से 40 सीटों पर लड़ने का मूड बना रहे हैं। जयंत चौधरी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे कर रहे हैं, पिछले दिनों मुरादाबाद में रैली की और कोर कमेटी को बताया कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है उसकी जमीनी रिपोर्ट तैयार करें और जल्दी सौंपी भी जाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने आरएलडी कोर कमेटी के मेंबर्स को बूथ स्तर तक ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए कहा है और इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी को नए सिरे से गठन का भी निर्देश दिया गया है। पार्टी के अंदर खाने चर्चा है कि आरएलडी को 35 से 40 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। आरएलडी को पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों में 33 सीटें मिली जिनमें से सपा के साथ पार्टी का गठबंधन था, उनमें से 9 सीटों पर ही 33 में से वो जीते।
10: देखिए, आरएलडी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, एनडीए का एक महत्वपूर्ण गठबंधन है और निश्चित रूप से एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, सीट तय करने का एक फोरम है, उस फोरम में वो सीट तय होती है, तो निश्चित रूप से और एनडीए में कभी भी सीटों को लेकर कभी कोई झंझट या कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
11: आरएलडी को इस बार लगता है कि पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में भी कुछ सीटें मिले तो उनमें भी आरएलडी हाथ आजमाना चाहती है। अब देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से इस दफा आरएलडी को कितनी सीटें मिलती हैं। पिछली बार जिन क्षेत्रों में आरएलडी ने चुनाव लड़ा वहां पर समाजवादी पार्टी का साथ था और जाति समीकरण को अगर देखा जाए तो उसका फायदा आरएलडी को मिला था। तो देखना यह भी होगा कि बीजेपी के साथ रहकर क्या आरएलडी अपनी जो सीटें जिन पर वो जीती उन्हें बचा पाएगी या फिर पिछली दफा से भी नंबर इस बार कम होता दिखाई पड़ेगा। इस बीच विपक्ष आरएलडी को घेर रहा है और ये कह रहा है सरकार के सामने झुककर वो कुछ मांगने के लायक नहीं है, सिर झुकाकर जो मिलेगा वही स्वीकारना होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: यूपी में एनडीए के घटक दल का रुख चाहे जो हो, चुनाव आने तक इनमें से कई दलों का दिल बदलने की आशंका भी बनी हुई है, क्योंकि जयंत चौधरी और ओपी राजभर तो चुनावों के बाद बीजेपी के साथ आए हैं और जिस तरह निषाद पार्टी जैसे दल ने गाजीपुर मामले पर नाराजगी जताई है, दलितों पिछड़े वोट को लेकर वोटों की घेराबंदी शुरू हो गए हैं और दलित वोटों के रुझान में एक नई एंट्री भी इन दिनों यूपी में देखी जा रही है जो बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी की है। चिराग पासवान की पार्टी का यह पोस्टर इन दिनों यूपी में अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले काट के तौर पर देखा जा रहा है। हरा गमछा लाल टोपी लेकर बनाए गए इस पोस्टर में दलित वोटर पर खास फोकस किया गया है। अब इसमें संकेत ये मिल रहे हैं कि एलजेपी आने वाले चुनावों में अब यूपी में भी दलित वोट पर नया दांव खेलने की तैयारियां कर चुकी है।
12: हरे ने भी हमारा वोट लिया, लाल ने भी हमारा वोट लिया, पर हक इन दोनों में से किसी ने नहीं दिया, यही इस पोस्टर का मतलब है। रंग चाहे हरा हो या लाल, जब बात दलित के हक की आती है तो दोनों का रवैया एक जैसा होता है। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जो रास्ता दिखाया है वो साफ है। अब दलित किसी का वोट बैंक नहीं, अपनी ताकत खुद है। अब हम क्यों मांगे उधार जब अपना नेता तैयार।
0: अब अरुण भारती के बयान पर अगर गौर किया होगा तो उन्होंने कहा है कि अब हम क्यों मांगे उधार जब अपना नेता है तैयार। एलजेपी के इस बयान के बड़े मायने हो सकते हैं क्योंकि दलित वोट के लिए बीजेपी यूपी में भी दूसरे दलों के जो है मदद की उम्मीद करती है और शायद एक मकसद यह भी हो सकता है कि यूपी में दलित वोट साधने के लिए बीजेपी ने अब पासवान की पार्टी की एंट्री की तैयारियां भी कर ली हो। पिछले कुछ महीनों से एलजेपी के नेता यूपी के मामलों में बहुत एक्टिव है, सक्रिय हैं। अरुण भारती के साथ प्रतिनिधि दल की मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात भी हो चुकी है और इतना ही नहीं, इसके बाद से एलजेपी के नेता लगातार यूपी में बुंदेलखंड जैसे इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं। झांसी से लेकर ग्वालियर तक एलजेपी के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। दलित, पिछड़े मजदूर, कुली वर्ग के साथ में उनकी भेंट मुलाकात हो रही है। चुनावी मैदान में पैर जमाने के प्रयास के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इससे पहले एलजेपी यह संकेत दे चुकी है कि यूपी में वो सभी 403 सीटों पर दलितों की आवाज उठाने के लिए चुनावी दंगल में उतरने की तैयारियां कर रही है। और इसके साथ अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on Spin Quest. They have over 1,000 games, including live dealer blackjack and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
15: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
16: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
17: Oh, ouch.
16: However you make money work, we can work with that.
18: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach
2: Durable Pipes, Fittings and Tanks A Complete Range of Sanitary Solutions
19: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India

0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही। समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर ये याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है। दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
1: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं, और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा, बांप रिजॉर्ट में शिफ्टिंग, 18 जून को होनी है वोटिंग, मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद विभागी, शताब्दी रॉय के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात, काकुली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस को दी नसीहत, क्षेत्रीय दलों को तवज्जो न देने पर सुनाई खरी खोटी, पूछताछ कहां है डीएमके, सीट लेने पर नहीं जीतने पर करें फोकस। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी कल रचेंगे इतिहास, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने की तारीफ, 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीक के लिए बड़ा दिन, सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू की तैयारी, पहाड़ में हो रहा है आखिरी ब्लास्ट, 12 महीने कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बातम। शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: सबसे लंबी सुरंग जोजिला थाने का ब्रेक थ्रू, सुरंग तैयार होने के बाद घंटों की जगह मिनटों में तय हो सकेगी कश्मीर लद्दाख की यात्रा। जोजिला पास में टनल प्रोजेक्ट का बड़ा मील का पत्थर, नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया निरीक्षण और ब्रेक थ्रू समारोह। सबरतल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है जोजिला सुरंग, 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के ब्रेक थ्रू का काम पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर घटकर करीब 20 मिनट होने का अनुमान। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत खत्म होगी, सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को लाभ। एमपी के 6 साल बाद रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वापसी, क्रॉस वोटिंग से बचाने कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की। आज बेंगलुरु जा रहे हैं कांग्रेस विधायक, 10 दिन बेंगलुरु के रिजॉर्ट में रखा जाएगा इन विधायकों को। सोमवार शाम को विधायकों को 10 दिन के हिसाब से बैग पैक करने के लिए कहा गया, 18 जून को मतदान से पहले लौटेंगे भोपाल। तीसरी सीट को लेकर फंस गया पेच, मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी के महेश केवट मैदान में, 18 जून को राज्यसभा 3 सीटों के लिए होगा मतदान। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल, महेश केवट को दिया है टिकट, कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को बनाया अपना उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग

शेयरिंग विवाद पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, उदयवीर सिंह बोले क्षेत्रीय दलों को अपनी बात रखने का पूरा हक। इंडिया गठबंधन ने बड़ी हलचल, समाजवादी पार्टी ने कहा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, आरएलडी पर सावन निशाना। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, 29 लाख अभ्यर्थी शामिल, 3000 सीसीटीवी से कड़ी निगरानी में परीक्षा। नकलविहीन परीक्षा पर जोर, यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। अयोध्या चढ़ावे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान, यह ट्रस्ट का मामला, जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूरी। केजीएमयू हार्ट स्टैंड घोटाले मामले में जांच तेज, डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, एक साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड तलब, मरीजों के फीडबैक को बनाया जाएगा सबूत। केजीएमयू हार्ट स्टैंड घोटाला मामले में नियमितताओं पर सख्ती, थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई, संबंधित कंपनी की ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए, हार्ट स्टैंड मामलों की निगरानी अब केजीएम के नियमित कर्मचारी करेंगे। स्टैंड घोटाले के बाद दवा खरीद पर नजर, कई विभागों में खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रूपये तक पहुंचा। आज तक के असर से बदली तस्वीर, रिंद नदी पर 27 करोड़ के पक्का पुल का निर्माण शुरू, 70,000 ग्रामीणों में खुशी की लहर। राजूपाल हत्याकांड में दोषी करार, शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत, आबिद को मिली जमानत पर उठे सवाल। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही युवतियों से ऑटो चालक ने सुनसान इलाके में ले जाकर किया दुष्कर्म का प्रयास, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। कानपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का सैलाब, स्पेशल ट्रेन के दावों के बीच व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में 90 साल पुराने गर्ल्स स्कूल पर लगा ताला, छात्राओं और अभिभावकों का प्रदर्शन, पढ़ाई बचाने से को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार, स्कूल बंद होने के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं, विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल बचाने की मांग। लखनऊ पीजीआई परिसर में युवती के अपहरण का मामला, लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज, अपहरण से लेकर विदेश ले जाने तक के आरोप। हरदोई में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के पुत्र से विवाद के बाद हुआ एसडीएम पर पथराव, सर में पत्थर लगने से एसडीएम घायल, गांव बना पुलिस छापनी। वाराणसी में गंगा से विशाल शिवलिंग बरामद, 2500 साल पुराना होने का दावा, श्रद्धालुओं में उत्साह, गंगा किनारे मिला 2 क्विंटल वजनी शिवलिंग, मौर्य काल से जुड़ा होने की आशंका, पूजा अर्चना शुरू। फैजल खान को कोर्ट से मिली राहत, जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक। फायरिंग मामले फैजल खान 2 घात पहले ही उनके जेल में बंद है, कोर्ट ने पुलिस से मामले के सबूत और केस जारी तलब की। वायरल ऑडियो के आधार पर दर्ज हुई थी एफआईआर, पुलिस के अनुसार गाज में फायरिंग की बात स्वीकार की, रोशनान की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित। केजरीवाल का आरोप, पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की कार्रवाई, छोटे कारोबारियों को परेशान करने का दावा। ईडी रेट्स के खिलाफ केजरीवाल ने किया समर्थन का ऐलान, पूरा पंजाब व्यापारियों के साथ है। ममता की पार्टी टीएमसी में फूट, दिल्ली में लोकसभा के 28 में से 20 बागी सांसदों की शताब्दी रॉय सिंह के घर मीटिंग, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने की मुलाकात, काकुली घोष ने लगाई मोहर। टीएमसी सांसद केटी आजाद के दावे को नकारा, कहा बागी खेमे में सिर्फ 12 सांसद है, बाद में दो से तीन और आ गए। बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा का फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर लिखा लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान राहुल ने कहा ममता दी को भले ही 90% यकीन हो, अखिलेश को तेजस्वी को 40%, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि बंगाल चुनाव में धांधली हुई। राहुल गांधी का इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। फर्जी हस्ताक्षर मामले में शेख बैनर्जी को सीआईडी ने फिर तमाम नोटिस, आज शाम 5 बजे बुलाया गया है। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी पूछताछ करना चाहती है, सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज किए गए। कोलाघाट प्रशासनिक बैठक के दौरान सियासी हलचल, सीएम और शुभेंदु अधिकारी की बैठक में टीएमसी खेमे से जून मालिया की मौजूदगी बनी चर्चा का विषय। कोर्ट ले जाते समय टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडा फेंका गया, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार विधान परिषद चुनाव में 10 उम्मीदवारों के लफनामे आए सामने, संपत्ति और शिक्षा का खुलासा, आरजेडी के सुनील कुमार सिंह सबसे अमीर, 54 करोड़ की संपत्ति और करोड़ों की ज्वेलरी का ब्यौरा। बीजेपी उम्मीदवार परवन सिंह की संपत्ति में बड़ा इजाफा, 19 करोड़ 44 लाख की दौलत, हलफनामे पत्नी ज्योति सिंह का नाम बरकरार। जेडीयू उम्मीदवार निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ी, 8वें से सिर्फ 5 सेमेस्टर पूरे किए। उम्मीदवारों की संपत्ति में बड़ा अंतर, किसी के पास करोड़ों की दौलत तो किसी के पास न गाड़ी न बड़ी अचल संपत्ति। सिंगापुर दौरे से वापस लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आज पटना आएंगे, मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी पटना आएंगे। सुरक्षा हटाए जाने के बाद लालू यादव पहली बार पटना पहुंचे, आरजेडी के कार्यकर्ता लालूवास के बाहर कर रहे हैं पहरेदारी।
हुगली में टीएमसी पार्षद मौसमी विश्वास का आरोप, यूट्यूबर पर ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की मांग का दावा, ब्लैकमेलिंग से परेशान टीएमसी पार्षद सड़क पर रोपणी। ओमान की खाड़ी में अमेरिका की कार्रवाई, 24 भारतीय वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवैक्स को रोके जाने का दावा, अमेरिकी सेना का दावा नाकेबंदी उल्लंघन कर रहे टैंकर पर कार्रवाई की गई, 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित है। एफओब्लिक A18 सुपर हॉर्नेट टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टेयरिंग सिस्टम को बनाया निशाना, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान की ओर बढ़ रहे एमटी मैरीवैक्स को अमेरिकी सेना ने रोका, निर्देशों की अनदेखी का आरोप, अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कार्रवाई के बाद ईरान की ओर जा रहा तेल टैंकर एमटी मैरीवैक्स अब रास्ता बदल चुका है। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान प्रति का हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को बताया नरसंहार, भारत ने यूएन में पाकिस्तान को घेरा, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का लगाया आरोप, भारत का आरोप आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी गो बैक के नारों से गूंजा इलाका, पीओजेके में मानवाधिकार उल्लंघन, नागरिक मौत और इंटरनेट प्रतिबंधों के विरोध में प्रवासी और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, 3 जुलाई को शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, अधिकारियों ने चंद्रकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का किया दौरा। बाबा बर्फान की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता, प्रशासन ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। 28 अगस्त से चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। गोवा के बम्बोलिम में 42वें ईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड का आयोजन, सीएम सावंत हुए शामिल। पटना में भारत की पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावंत कुमार का भव्य स्वागत, मंत्री शेषी सिंह ने दी बधाई। देहरादून में जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आगाज, सीएम धामी की शिरकत। ओमान तट के पास टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान एयरफोर्स से 24 भारतीय क्रू सदस्यों का किया रेस्क्यू, भारत ने किया धन्यवाद। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीन ने स्पेसएक्स ड्रैगन से सदर्न लाइट्स की शानदार तस्वीरें साझा की, स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 3 की मौत, घर में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी वन विभाग कई क्षेत्रों में लगी आग, बुझाने के लिए अभियान जारी। हापुड़ में नाबालिग किशोरी ने कथित अपहरण मामले में आरोपी साहिल मध्यप्रदेश से गिरफ्तार, युवती बरामद, मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में। पीएमएलए के तहत ईडी का सर्च ऑपरेशन, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड मामले में आवास और दफ्तर पर दबिश। पंजाब यूपी और दिल्ली नोएडा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लुधियाना जलंधर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद, बच्ची घायल। गुरुग्राम में खा की दागदार, शराब न पीने वाले मेजर को जबरन शराबी साबित करने की कोशिश, चेकिंग के नाम पर कर रहे थे दादागिरी। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर हुआ बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप, युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप। आरा में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठा ले गए बदमाश, बेरहमी से पीट पीट कर ली जान, जमीनी विवाद में हत्या। कानपुर में 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कहा चोर, आहत होकर बच्ची ने घर में किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब, एम्बुलेंस में करानी पड़ी डिलीवरी। टिहरी गढ़वाल में युवक को दोस्ती पड़ी भारी, मारपीट में गई युवक की जान। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 90 टन चिकन वेस्ट जब्त, जिसे मछली पालन के लिए अवैध फीड के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तालाबों में भेजा जा रहा था। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का किया दौरा। कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ सारा फिल्म अल्फा का टीजर। रिलीज से पहले फिल्म वेलकम टू द जंगल का जलवा, सूत्रों के मुताबिक फिल्म में सैटेलाइट और ओटीटी राइट्स ने कमाए 120 करोड़। 15 साल बाद साथ अक्षय और अनीस बाजमी आए, मुंबई में चल रही अनाम फिल्म की शूटिंग, अक्षय के साथ विद्या बालन और राशि खन्ना की मुख्य भूमिका। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल पर बड़ा अपडेट, निर्देशक अनीस बाजमी ने दी जानकारी, फिल्म नो एंट्री 2 पर काम शुरू। डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का पहला पोस्टर जारी।

0: दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही आधुनिक तकनीक की नायाब मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल हो गया है। कश्मीर और लद्दाख के बीच बने जा रही जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू आज हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में सफलतापूर्वक इसे किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। आखिरी ब्लास्ट के साथ ही कश्मीर की तरफ का बालटाल और लद्दाख की ओर से मीन मार्ग आपस में जुड़ गए। ये सुरंग 9.5 मीटर चौड़ी, 8 मीटर ऊंची और 14 किलोमीटर लंबी है। ये सिंगल ट्यूब 2 लेन सड़क सुरंग है और ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए।
1: नेहा, अब से थोड़ी देर पहले वो ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है और यहां से लगभग 3.5 किलोमीटर अंदर जा करके जो एक दीवार थी उसको धमाके से उड़ाया गया और उसी कहते ना कि आखिरी विस्फोट के साथ सोनमर्ग के आगे यानी कश्मीर से लद्दाख को अब इस सुरंग के जरिए जोड़ लिया गया है। बहुत सारे जो लोग उत्सुक हैं वो आ भी रहे हैं यहां पर फोटो लेने के लिए, तस्वीरें लेने के लिए। हम उसी सुरंग के भीतर मौजूद हैं। आपने जो लंबाई बताई कि लगभग 10 मीटर का ये जो इलाका है शाफ्ट, और ये बहुत बड़ा, इसका ओवल आकार अगर आप देखें तो ये सुरंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। यहां से करके इसकी चौड़ाई है, लेकिन सिंगल क्यूब यानी सिर्फ एक ही ट्यूब ये होगी। इसी ट्यूब के अंदर एक तरफ से गाड़ियां जो है कश्मीर की ओर जाएंगी और दूसरी तरफ कश्मीर से आगे की ओर रवाना होंगी। अब इसीलिए आगे जब हम आए हैं तो वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि आखिर क्यों उसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता है। मजबूती के नाम पर इतना बेजोड़ कि न मिसाइलों का इस पर असर कोई होगा, न एयर स्ट्राइक का असर होगा। ये इतना कॉन्क्रीट NATM न्यू ऑस्ट्रिया टनल मेथड के नाम से इसे बनाया जाता है कि जिसमें एक एक करके मशीन आगे मूव करती है। यहां धीरे धीरे धमाके हुए, एक एक करके मलबा पीछे ले जाएगा और उसी के साथ साथ इस पूरे कंक्रीट को स्ट्रक्चर को आगे जोड़ा गया और इस पूरे हिस्से की मजबूती इतनी है जिसकी वजह से ये टन अपने ऊपर हजारों लाखों करोड़ों क्विंटल का जो टन का जो भार है बर्फ का, क्योंकि हम जोजिला पास के हुए बताऊं बिल्कुल जोजिला पास के नीचे है उसी टनल के भीतर और यह रास्ता 6 महीने लगभग बंद हो जाता है। 30 से 40 फीट की बर्फ हो जाती है, -30 डिग्री का तापमान होता है। अब उसी में यह भी कोशिश की गई कि सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, तो इस तरह के शाफ्ट है, वेंटिलेशन पॉइंट्स हैं। यहां से निकलते इस टनल का ऊपर मोहना देखिए कितनी ऊंचाई है, लगभग 70 से 80 फीट, और ये पहली संभवतः ऐसी टनल बनाई जा रही है जिसमें जो स्केप ट्यूब है, स्केप टनल सिंगल ट्यूब में, वो ठीक इसके सतह के ऊपर होगी, लगभग 60 फीट के ऊपर। मनीष जरा दिखाइए इस तरफ, और ये वो ट्यूब है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसी के ऊपर स्केप टनल होगा, वेंटिलेशन पॉइंट होगा, और जब ये तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जब आखिर सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, पहाड़ का सीना चीर करके सुरंग खोदना। सुरंग तैयार हो गई है, 13 किलोमीटर की सुरंग अब तैयार है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, सेफ्टी हजार देखने हैं, और उन चुनौतियों के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन और उसके बाद सड़क पहले ही तैयार हो चुकी है, तो ये जरूर मान सकते हैं कि 1.5 साल के भीतर ये रास्ता खुल जाए और उसके बाद कभी भी जोजिला पास के बंद होने के चक्कर में ना तो कभी लॉजिस्टिक की दिक्कत होगी, ना कश्मीर से कारगिल की कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, और ना ही सामरिक हितों के साथ किसी तरह की चुनौती झेलनी पड़ेगी। नेहा,
0: इसके अलावा आज का पूरा मौका बेहद भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम मंत्रीगण मौजूद थे, LG की मौजूदगी थी, CM वहां पर थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी बेहतर होने से कई और चीजों को इससे फायदा मिलेगा, सिर्फ पर्यटक ही नहीं अन्य आयाम भी इससे खुलेंगे।
1: और उन आयाम में आप देखिए कि कश्मीर की आबादी को, आप अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, कश्मीर की आबादी उनकी जरूरतों को द्रास के, मेरे पीछे जो लोग हैं ना ये सब द्रास से आए हैं, द्रास कारगिल वहां से ये देखने के आए हैं कि इनके लिए अब ये रास्ता बंद नहीं होगा। जो जिला में जब 30 फीट की बर्फ होती थी तो BRO की मशक्कत बहुत ज्यादा बढ़ती थी, वो मशीनें लगाते थे, रास्ता खोलते थे, एक लेन खुलता था दूसरा बंद हो जाता था, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि ये जो कनेक्टिविटी है, अब आप समझिए आपके व्यापार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे, कारोबार का अवसर बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बहुत कुछ अपने साथ लेकर के आती है, विकास की परियोजनाएं लाती हैं, रास्ते खोल जाते हैं, और इसीलिए आज यहां पर कि अगर जो उमर अब्दुल्ला यहां पर पहुंचे हैं, नितिन गडकरी हैं, राज्यपाल भी यहां पर हैं, तो लद्दाख के भी जो बीजेपी के नेता थे वो भी तक यहां पहुंचे थे, क्योंकि अल्टीमेटली विकास के जो मॉडल है उसी को लेकर के वो आगे जाएंगे कि देखिए जो असंभव था इतनी ऊंचाई पर, यानी दुनिया में सबसे इतनी ऊंची ऊंचाई पर 13 किलोमीटर की सुरंग बना दी, तो अपने आप में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, तो बिल्कुल असंभव था। इसीलिए हम थोड़ी देर में भी कोशिश करें कि आखिर कहां तक गया, क्योंकि 13 किलोमीटर अभी खुल चुका है, सड़क भी तैयार है, लेकिन अभी भी हम उन्हीं का जायजा लेने के लिए इलाकों में निकले थे, समझने के लिए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों थी, हर कोई जानता था, लेकिन अब कितने बेहद समय में स्टेट ऑफ द आर्ट वेरी एडवांस और इस तरह इतने दुर्गम हिमालय का सबसे दुर्गम इलाका है और वहां पर वो सुविधा बना दी गई है जिस जो न सिर्फ दो राज्यों को जोड़ रहा, आप सीधे समझिए कन्याकुमारी से लद्दाख सड़क मार्ग से 12 महीने ने यहाँ अब हम बिल्कुल आ जा सकते हैं।
0: ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आपके जरिए इस जोजिला पास की तस्वीरें देखी, ब्रेक थ्रू अब अचीव हो गया है, इतिहास यहाँ पर रच दिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, बिछड़े सभी बारी बारी, जहां ममता बनर्जी चुनाव में क्या हारी, पार्टी में साथ छोड़ने वालों की जैसे होड़ लग गई, एक एक करके ममता का सब साथ छोड़ रहे हैं, पार्षद हो विधायक हो सांसद तक ममता से मुंह मोड़ चुके हैं। सबसे ताजा झटका सांसदों ने दिया है, खबर यह है कि 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के अलग गुट को मान्यता देने के लिए खत लिख दिया है। आज शाम स्पीकर ओम बिरला दिल्ली लौट रहे हैं और तभी साफ होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं।
2: So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal.
3: Preeti, this party was made of its workers. This party was not made of these Aya Ga Ram Gaya Ram.
4: वो कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है। जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे किया।
5: 40 साल से ममता बनर्जी की विश्वस्त रही काकोली घोष को अब अपनी दीदी पर विश्वास नहीं रहा। ममता के खिलाफ बगावत की अब वो अगुवा है। जिस शताब्दी रॉय का राजनीतिक भविष्य ममता ने संभाला सवारा, वो अब ममता का भविष्य तबाह करने पर तुली है। और ये फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। ममता से बारी बारी सभी बिछड़ रहे हैं, अपनों का साथ छूटता जा रहा है, विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही है। पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं।
2: I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor and my leader. And I have been with her even in the days when she was not in power. I have contested in 5 elections and lost before 2009. So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal, I have left. It is not that I was with her when she was not in power.
5: ममता बनर्जी कितनी अकेली और असहाय हो गई हैं, ये सोमवार को दिल्ली में साफ हो गया। सोमवार को एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर पूरी मुनादी के साथ। इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाई, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है। शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी 20 सांसद बगावत करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन टीएमसी का कहना है कि स्पीकर को खत काकोली घोष की तरफ से गया और वो अब पार्टी की चीफ व्हिप नहीं रहे, उनकी जगह पहले ही कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया गया था।
6: इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग, पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले, तब तो सब कुछ ठीक था, बैकग्राउंड कुछ नहीं है इसमें, बीजेपी का खेल है, ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है, पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, दीदी के साथ हूँ, खड़ा हूँ।
5: तो अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है, उन पर है कि वो बागियों को सदन में मान्यता देते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती फंसती और अकेली पड़ती जा रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
0: इसी के साथ ही रुकेंगे शो से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले।

0: पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Today's jazz brings the movement forward. Modern voices, contemporary sound, and players shaping what jazz sounds like now. From Herbie Hancock to Pat Metheny, Esperanza Spalding, and more. Feel the jazzy energy with Deep Roots. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Jazz to start listening now.
6: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
1: In association with
0: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
1: हिंट, बड़े आराम से
0: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
1: विमल, बोलो जुबां केसरी।
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

के घर बैठक, शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात। काकोली ने किया 20 सांसों के साथ का दावा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस को दी नसीहत, क्षेत्रीय दलों को तवज्जो न देने पर सुनाई खरी खोटी। पूछा आज कहां है डीएमके, सीट लेने पर नहीं, जीतने पर करें फोकस।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी में कई शहरों से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे। कहीं पहचान छुपाकर संबंध बनाने की बात सामने आती है, तो कहीं नाम बदलकर धोखा देने की, कहीं पहले धर्म बदलवाकर लड़की को अगवा करने का आरोप लगता है, और कहीं धर्म के नाम पर धोखाधड़ी का जाल बुना जाता है। दो मामले तो लखनऊ के ही है, जहां एक परिवार बीते 20 दिन से लड़की की तलाश में भटक रहा है। दूसरे मामले में पहचान छुपाकर शादी का झांसा देने और शोषण का आरोप लगा है। यूपी के शामली का केस पहले चर्चा में है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई शहरों में आ रहे धर्मांतरण के मामलों के बीच सीएम योगी ने आज एक बड़ा और सख्त बयान दिया है। योगी ने कहा कि भगवान राम यत्न करके उत्तर दक्षिण को जोड़ा, उन्होंने नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण पेश किया। ये लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए आदर्श उदाहरण हो सकता है।
1: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पर चिंता व्यक्त की, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा, और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुभाव क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया।
0: लखनऊ में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया, जिसके तार पीजीआई से जुड़ते दिख रहे हैं। आरोपी है कि पहले बैला फुसलाकर लड़की को जाल में फंसाया गया, फिर उसे अगवा किया गया। बड़ी बात यह कि परिवार वाले इस पूरे मामले में लखनऊ एजी पीजीआई के एक डॉक्टर को सबसे बड़ा मददगार बता रहे हैं।
2: अभी लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद वाले चाल की पड़ताल चल ही रही है। किसी बीच लखनऊ के एक और बड़े अस्पताल से जुड़े डॉक्टर की लव जिहाद वाली साजिश में शामिल होने की बात सामने आ गई। मामला लखनऊ पीजीआई से जुड़ा है। एक युवती के गायब होने पर परिवार वालों ने जबरन धर्मांतरण और अपहरण का आरोप लगाया। पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है, कैसे साजिश की बात सामने आ रही है, ये बताने से पहले इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक लड़की नकाब पहने नजर आ रही है। लड़के की दूसरी तस्वीर भी नकाब में ही है। तीसरी तस्वीर में आरोपित इरशाद अली भी लड़की के साथ ही नजर आ रहा है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इसे लव जिहाद से जोड़कर बताया जा रहा है, और इस केस का पीजीआई कनेक्शन क्या है। लापता लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि एसी के काम के सिलसिले में इरशाद अली उनके घर आया, फिर बहनों से परिवार वालों से संपर्क बनाया, परिवार वालों के साथ कुछ तस्वीरें ली, फिर बेटी की तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे परेशान करने लगा।
3: आया, मैं ये एसी का काम करता था, तो मेरे बेटे को पहले फंसाया इसने, तो मेरे घर तक एसी के काम में ले जाने लग गया और मेरे घर तक आया और उसी टाइम रक्षाबंधन का टाइम था, मेरे बच्चे राखी बंधवा रहे थे, उसी टाइम आकर के बैठ गया, बीच में आकर के बोलने लगा बहन मेरे भी राखी बांधो, और मेरे बच्चों के साथ फोटो करवाया, मेरे बच्चों का फोटो हटा करके और मेरी बेटी का फोटो लगा दिया उसने, और उसी ब्लैकमेल में उसको पता नहीं कैसे उसने ब्लैकमेल करने लगा उस फोटो।
2: परिवार की माने तो पुलिस में इसकी शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपित की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई।
4: पिछले एक साल से परेशान करता चला रहा है सर, हम इसको इसकी शिकायत हम थाना पीजीआई में कई बार कर चुके हैं। एक बार हमारी लड़की को लेकर के हमको अपने हवाले करने को ले कह रहा था कि हमारी अपनी लड़की को मेरे हवाले कर दे नहीं तो साले जान से मार दूंगा सर। फिर मेरे सिर पे बार कर दिया, मैंने एक FIR किया, FIR को NCR में बदल दिया, तो डॉक्टर अजमल ने इसकी जमानत ली है और डॉक्टर अजमल इसकी आए दिन मदद करते रहते हैं।
2: अब परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी 21 मई को नौकरी के लिए बाहर गई, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग बेटी के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही इस पूरी साजिश में PGI के एक डॉक्टर के शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है।
5: KGMU के धर्मांतरण की तरह PGI में डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा है कि वह मददगार है उस आरोपी का, जो एक युवती हिंदू युवती को लेकर फरार हो गया है। यही नहीं, इससे पहले वह घर में घुसता है, वो भी रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता है और उसके बाद नमाज की बात करता है, बुर्का की बात करता है, और अब माता पिता का आरोप है कि वह लड़की को लेकर सीरिया चला गया है, क्योंकि वह बात बात पर सीरिया की बात कहता था। इस धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर सनसनीखेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू संगठन भी अब आगे आ गए हैं और लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आखिर किस तरीके से एक शख्स पूरी तरीके से इस लड़की को लेकर फरार हुआ है और अब सर्च ऑपरेशन जारी है।
2: आरोप सनसनीखेज हैं, मामला गंभीर है। लखनऊ PGI से जुड़ा एक डॉक्टर भी शक के दायरे में है। इन आरोपों के बीच पुलिस की जाँच तेज है, CCTV की पड़ताल हो रही है, लड़की के कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लड़की को सुरक्षित लाकर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक।
0: तो लखनऊ के KGMU के बाद अब PGI परिसर की युवती के अपहरण के आरोप सनसनीखेज हैं। परिवार वालों का आरोप यह भी है कि उनकी बेटी को अगवा कर सीरिया ले जाने की धमकी दी गई थी, जिसे लेकर परिवार वालों की अब चिंता और ज्यादा बढ़ गई।
6: मेरी लड़की को तो जबरदस्ती बैठा के ले जा रहा है बाबा जी, कुछ करिए बाबा जी,
3: मदद करे मेरी बाबा जी, मेरी बेटी गुलाम है बाबा जी, कैसे भी आन जोर के प्रार्थना करती हूँ मैं।
2: परिवार रो रो कर गुहार लगा रहा है कि करीब 20 दिनों से लापता उनकी बेटी का पुलिस पता लगाए, बेटी को किसी तरह सुरक्षित घर वापस लाया जाए, क्योंकि इस परिवार ने कई दिनों से जो कुछ झेला है वो बेहद डरावना है और उसका अंजाम उससे ज्यादा खौफनाक, क्योंकि अपनी बेटी की तलाश में जुटा ये परिवार अब ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रहा है कि कहीं ये लड़की धर्मांतरण वाले किसी बड़े जाल का शिकार तो नहीं बनी, क्योंकि पिता की माने तो आरोपित पहले भी लड़की को सीरिया ले जाने की धमकी दे चुका था। इन्हीं धमकियों के चलते पूरा परिवार बेहद डरा हुआ है।
4: ये सर इनकी पहले कुछ दिन पहले कुछ गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाने के बाद इनके संपर्क में आया और ये पहले इनके पिताजी की भी मदद करते थे। एक इस पश्चिम कल्ली पश्चिम में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इनका एक धंधा चलता है, ये हिंदू लड़कियों को फंसा करके एक गैंग बना के रखे हैं, जिसमें मैंने पीछे वाली जो एक एप्लीकेशन दिया था उसमें एक संगठन के बारे में मैंने लिखा है, जो मैंने कंप्लेंट महिला आयोग को दिया था। महिला आयोग में मेरी लड़की
7: का संगठन है,
4: ये मुस्लिम संगठन है, कोई बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं और ये संगठन में चला करके लड़कियों को सीरिया भेजने की बात करते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सीरिया में भेज दूँ, धमकी दी इस बात की हमको धमकी दी है कि तुम्हारी लड़की को हम शादी कर लेंगे और सीरिया भेज देंगे। बताइए 21 मई से परेशान है सर, हमारी लड़की घर नहीं आई तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो रहा है सर, हमारी पत्नी बीमार पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा सर, अनहोनी हो जाएगी, हमारी लड़की को बरामद करा दे साहब, लड़की अगर ना वापस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी सर मार दे।
7: परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में युवती की गतिविधियां दर्ज हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। दावा है कि अगर इन तस्वीरों की पड़ताल की जाए, आरोपित के संपर्क के लोगों से सख्ती से पूछा जाए तो जल्द उनकी लड़की का पता चल सकता है। इसके लिए लड़की का परिवार सीएम योगी से गुहार लगा रहा है।
4: बाबा जी से हमारी अपील है कि बाबा जी ये कहते हैं कि बाबा जी हिंदू लड़कियों को छेड़ने नहीं देंगे, लेकिन हम मेरी लड़की को तो जबरदस्ती बैठा के ले जा रहा है। बाबा जी कुछ करिए, बाबा जी
3: मदद करें मेरी। बाबा जी मेरी बेटी गुलाम है, बाबा जी कैसे भी आन जोर के प्रार्थना करती हूँ मैं। मंत्री जी,
7: मामला बेहद हैरान करने वाला है। परिवार वालों के आरोप गंभीर है और अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इस केस की कड़ियां धर्मांतरण के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी मिल सकती हैं। पूरी जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक।
0: और बात शामली के लव जिहाद की। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये साजिश रची। कई साल तक लड़के को बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश हुआ। धर्म बदलने वाले भले ही मर्जी से इस्लाम कबूलने का दावा कर रहा हो, लेकिन परिवार इस कबूलनामे के पीछे डर की आशंका जता रहा है।
8: कभी लव जिहाद जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, कभी जिम जिहाद जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई, तो कभी दोस्ती जिहाद। गाजियाबाद में 28 तारीख को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है। इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा हुआ है। एक ही चेहरे के दो रूप। इस युवक का नाम है आयुष मलिक, ये यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है, लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है, इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है।
9: आपका नाम क्या हो चुका है?
10: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
9: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
10: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
8: आयुष मलिक जो अब मोहम्मद अली है, उससे सवाल किया गया कि उसका धर्म परिवर्तन कहाँ हुआ। जवाब सुनिए, हैरान रह जाएंगे।
10: धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
9: अच्छा,
8: आयुष का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। आयुष बताता है कि पाकिस्तान के एक मौलाना का वीडियो देख देख कर उसके भीतर इस्लाम अपनाने की इच्छा हुई।
10: ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी का देखता था, डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
9: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
10: धर्म परिवर्तन क्यों कराते?
9: अच्छा,
10: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गए और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
9: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
10: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, तो मैं प्रभावित उन सब से हूँ। तो ये सिर्फ एक तरीका कि उन्होंने बयान बताया कि समझाया, कुरान शरीफ को समझा दिया, वो बात बता दी दीन की, हदीस की।
8: ऐसा नहीं है कि आयुष ने एक दिन में इस्लाम अपना लिया, वो काफी वर्षों से इस्लाम के रंग ढंग सीख रहा था, वो मौलवियों को सुनता था और उस पर अमल करता था।
9: क्या कनेक्टिविटी था कि आप मोहम्मद अली
10: को सीखता था? ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि मुझे आज पसंद आया और कल से मैं मुसलमान हो गया। धीरे धीरे करके सीखा, जाना पहचाना, निभाया उसको, अपनाया उसको।
9: लंबा वक्त लगा?
10: बहुत लंबा वक्त लगा, 2007-08 से सीखा सर।
9: शादी कहाँ
10: से सीख रहे? शादी मस्जिद के पास जगह थी, वहां पे भी।
8: आयुष चोरी छिपे इस्लाम की डगर पर चल चुका था। वो चोरी छिपे नमाज अदा करता था, लेकिन इस बार उसने खुले में नमाज पढ़ी तो मालूम चल गया कि उसके अंदर परिवर्तन तो बहुत पहले हो चुका था।
10: पहले ईद की नमाज बाहर पढ़ता था, इस बार पहली बार ईदगाह में सामने में पढ़ी, तो तस्वीर आई वो वायरल कर दी उन्होंने, फोटो वोटो खींच के, बाहर लोग जानते नहीं आ जाने सब एक दूसरे को, छोटा सा।
9: अब आयुष मलिक नहीं बनना है?
10: आयुष मलिक तो आयुष मलिक डॉक्यूमेंट्स में आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो।
8: अब सवाल ये है कि क्या आयुष मलिक धर्मांतरण कराने वाले किसी रैकेट का शिकार हुआ? इसका जवाब भी बिना लाग लपेट के आयुष देता है।
9: चूंकि इस तरह से देश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट है, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही?
10: दूर है सर जी, वो मेरे से दूर है। अगर कोई रैकेट है इस तरीके का तो मेरे से अलग है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है।
9: नहीं, आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने बोला कि भाई शुरुआत में, तो शुरुआत कहाँ से हुई? एकदम शुरुआत 17 साल का आयुष मलिक, 18 साल का आयुष मलिक, 13 साल का आयुष मलिक, कैसे शुरुआत हुई आपकी?
10: जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल अल्लाह पढ़ो,
9: दिखाओ
10: बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल अल्लाह पढ़ो आपको ताकत आएगी।
9: किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे?
10: यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी, तो मैंने पढ़ा धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा मेरी ताकत आ गई एकदम, अरे ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था।
9: कौन सा यूट्यूब था जिसको देखा और आपके हाथ कांपने बंद हो गए?
10: ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथ तो अब भी कांप रहे, देखो हाथ कांपने थोड़ा बंद हो गए, मैं तो आपको रेंडमली वैसे मैसेज बता रहा।
9: और क्या क्या यूट्यूब में देखा आपने?
10: YouTube में और क्या क्या देखा? YouTube में बहुत सारी चीजें देखी, ये सब पूरी जिंदगी वीडियो एक मिनट में कैसे बताऊंगा।
8: आयुष बताता है कि कैसे उसके इस्लाम अपनाने की जर्नी कैसी थी।
10: दीन की बात है, सबके सामने है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो, खुले दिल से पढ़ लो, कोई भी पढ़ सके, किसी को अच्छी लगी किसी को बुरी लगी, क्या पता कोई 10 में से एक चीज अपना भी ले। मैंने 10 में से 8 चीज, 9 चीज, 10 चीज अपनाई।
9: तो वो सब यूट्यूब में मोस्टली देखा आपने?
10: यूट्यूब में है, सारी अवेलेबल है।
9: सजेस्ट किसने किया था?
10: सजेस्ट की बात नहीं है, आप कुछ भी आपके मन में सवाल आएगा आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, गूगल करोगे यूट्यूब के लिंक आते हैं, इसमें सजेशन की बात नहीं है कुछ भी।
8: आयुष मलिक मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी ने उसका धर्मांतरण कराया। वो बार बार एक ही रट लगाए हुए है कि उसे इस्लाम में रुचि थी, वो बचपन से ही पूजा पाठ करने के बजाय नमाज पढ़ना पसंद करता था।
9: देखिए ये आयुष मलिक मोहम्मद अली, अब ये इतने इन्फ्लुएंस, जरा इनकी तस्वीर दिखाइए, ये इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इन्वेस्टिगेशन में, कई इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है, कोई किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसको डी रेडिकलाइज करना काफी ज्यादा टफ होता है। शामली पुलिस ने एक बेहतरीन काम किया इस मामले में, और चांदनी कुरैशी उसके पिता को गिरफ्तार किया है, मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई यूपीएटीएस की, बाकी अदर एजेंसियों की, एक सुनियोजित धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, और इसमें जब किसी का ब्रेन वॉश होता है, वो अपना धर्म परिवर्तन करा लेता है, तो वो इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उसको डी रेडिकलाइज करना काफी टफ होता है। तो ये आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली थे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बन रही है आधुनिक तकनीक की नया मिसाल जोजिला सुरंग को अपना आखिरी ब्रेक थ्रू मिल गया है। कश्मीर लद्दाख के बीच स्थित ये जोजिला टनल का सफल ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में ये ब्रेक थ्रू किया गया, और इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद रहे। आखिरी ब्लास्ट के साथ कश्मीर की लद्दाख की ओर से मीन मार्ग आपस में जुड़ गए हैं। ये सुरंग 9.5 मीटर चौड़ी, 8 मीटर ऊंची और 14 किलोमीटर लंबी है। ये सिंगल ट्यूब दो लेन सड़क सुरंग होगी। ये सुरंग समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
13: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
16: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: In association with
18: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
11: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
18: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
19: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
20: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
14: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
15: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
21: Oh, ouch.
15: However you make money work, we can work with that.
16: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
22: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
11: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
17: In association with
18: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
11: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
5: Schwarber to right field, and it will leave.
4: From the first pitch of the season to the stretch run,
5: and that's the ball game.
4: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुड़वा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुर्मत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।

0: अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा, भाप रिजोर्ट में शिफ्टिंग। 18 जून को होनी है वोटिंग, मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। ममता को सबसे बड़ा झटका, विधायकों के बाद सांसद भी बागी, शताब्दी रॉय के घर बैठक। शुभेंदु अधिकारी ने भी की मुलाकात, काकोली ने किया 20 सांसदों के साथ का दावा। इंडिया ब्लॉक की बैठक में अखिलेश ने कांग्रेस को दी नसीहत, क्षेत्रीय दलों को तवज्जो न देने पर सुनाई खरी खोटी। पूछा आज कहां है डीएमके, सीट लेने पर नहीं जीतने पर करें फोकस। सत्ता की सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी, कल रचेंगे इतिहास, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने की तारीफ। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू कामयाब, पहाड़ में हुआ आखिरी ब्लास्ट, नितिन गडकरी और मनोज सिन्हा रहे मौजूद, सालों भर कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with Bharat.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानचु दीक्षित। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और न्यूज रूम लाइव 2 बजते ही हम सारी खबरें आपको दिखाते हैं इस न्यूज रूम लाइव से। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी खबरें जिनके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, तो वो खबरें लाइन से हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीएमसी में सुनामी कहां तक जाएगी ये, क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त परेशान है, टूट रुकने का नाम नहीं ले रही है, पार्षद विधायक सांसद सब अलग हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे और वो दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता देगी, 2027 का पैतरा, कांग्रेस और अखिलेश अब आग बबूला, क्योंकि बड़ी बैठक हुई लेकिन इस बैठक में अखिलेश ने ऐसा क्या कह दिया कि आगे की संभावनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर वो भी हम आपको बता दें, तीसरी बड़ी खबर क्या होगी, मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है, तो वो डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे जोजिला की आखिरी बाधा खत्म हो गई, डिटेल में आपको बताएंगे किससे बाहर को कितना क्या फायदा होगा, ठीक दोपहर 2:30 बजे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर वो आपको बता दे, और ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब 12 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो ऐसे में एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है, और बड़ा आयोजन बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से करने की तैयारी की जा रही है मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर। और ये बताया जा रहा है कि जितने सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थल जाएंगे और पीएम मोदी के लिए प्रार्थना की जाएगी। कल से शुरू हो रही प्रगति पथ यात्रा में भाग लेंगे सारे सांसद, मंत्री, विधायक और नेता, और ये बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं और इंफ्रा प्रोजेक्ट पर भी नेता जाएंगे। और जैसे आमतौर पर होता है जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाता है, और जो सांसद होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो ऐसा ही कोई बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हिमांशु, क्या तैयारियां की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से?
2: देखिए, जितने सांसद और मंत्री हैं वो प्रगति पथ पे जाएंगे, यानी कि जितने इंफ्रा प्रोजेक्ट है वहां जाएंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सम्मेलन करने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके साथ मुलाकात करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो कई जगह मंदिरों के अंदर भी जाने का कार्यक्रम जो है वो रहेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा है उसके लिए वो प्रार्थना भी करेंगे, और आगे वो और देश की सेवा करें इसके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। तो तमाम इस तरीके से जो है कार्यक्रम जो है आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। ये रिकॉर्ड पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था जो इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले जो रिकॉर्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे बन गया है। हाँ। और कल सबसे पहले एनडीए की बैठक होगी जिसमें सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आने हैं, उनके साथ साथ जो है एनडीए के कई नेता रहेंगे। परसों गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जिसमें देश भर के सभी मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले हैं, और तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम जो है वो चलते रहेंगे। सभी सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को ये कहा गया है,
0: तो मतलब कुल मिलाकर ये तैयारी की जा चुकी है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दो, और ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, अलग अलग जगह धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे, अब इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा बयान आया और वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने यत्न करके उत्तर दक्षिण को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है ये इसको उदाहरण है, और ये लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण हो सकता है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जा रही है, उन्होंने बड़ा बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, पुरातन काल में भी आया था, वर्तमान में भी आ रही है, तो नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और कहा कि भगवान राम ने नारी गरिमा की रक्षा की एक मिसाल रखी, आज भी वो देखी जाती है। इस बात का जिक्र कहा, लव जिहाद को रोकने के लिए यह आदर्श उदाहरण है। रावण के बहाने कहा निशाना यहां पर साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यह बात आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद को रोकने के लिए यह एक आदर्श एक उदाहरण है। उत्तर को दक्षिण से भगवान राम ने जोड़ा है यत्न करके। ये भी कहा कि खरदूषण मारीच सुबाहु ये लैंड जिहाद से जुड़े हुए थे, पुरातन काल को अभी से जोड़ते हुए कि उदाहरण देने की कोशिश की है कि कहीं पर भी तंबू गाड़ दिया तो वो भी लैंड जिहाद ही हुआ। कहा क्या है, किस ओर इशारा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बयान सुनिए।
1: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें सचेत रहना होगा, याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा, और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे।
0: मुख्यमंत्री योगी तो एक्टिव हैं, 2027 की भी तैयारी चल रही है। अब लोगों के मन में एक सवाल ये चल रहा है कि क्या 2027 में पूरा इंडिया गठबंधन विपक्ष एकजुटता के साथ आगे दिखाई दे सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक होती है। अब उस बैठक को लेकर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अब काफी कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कल की बैठक में सबसे ज्यादा जोर गठबंधन की एकता, आपसी बातचीत, साझा मुद्दों पर एकजुट होकर आगे बढ़ने की रही। लेकिन इन कोशिशों के बाद कल की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद कांग्रेस के मूड का पता नहीं लग पाया कि क्या कल अखिलेश ने कांग्रेस पर ज्यादा सीटें नहीं मांगने का दबाव बनाया है। ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि ये कहा है कि अलग अलग जगहों पर हालात और परिस्थितियों को देखते हुए दलों को सपोर्ट करना चाहिए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं।
2: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये तस्वीर गठबंधन की एकता की सुनहरी मिसाल पेश करती दिखी। ममता को भले ही सोनिया की सहानुभूति का आलिंगन मिला हो, लेकिन इस बैठक में राहुल के साथ की कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन ने यूपी चुनाव की अहमियत साबित कर दी। और जब मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश को बोलने का मौका दिया गया तो अखिलेश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने नाराजगी का पिटारा खोल दिया। अखिलेश ने पूछा, आज डीएमके कहां है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बिठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए।
3: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी, तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
2: और आखिरकार अखिलेश यूपी के मसले पर आए और कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो तीन कैटेगरी में बंटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में लड़कर दो नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीट ऐसी है जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दो नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद को दावेदार समझने लगी है। 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना चुके हैं। खासकर टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश बेहद संजीदा है और खबर है कि अखिलेश ने संभावित उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है और स्थानीय पार्टी नेताओं के फीडबैक के आधार पर सूची बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन इस सर्वे टीम की अगुवाई कर रहे हैं, यानी अखिलेश अपनी छांटी हुई सीटें कांग्रेस को ऑफर करने का मन बना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें मंजूर होंगी। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि बैठक बहुत ज्यादा सफल रही, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? यहाँ पर अगर बात की जाए बीजेपी की तो ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि खींचतान साफ दिखाई दे रही है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने।
4: ये देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष के हर नागरिक के परिवार के सदस्य की तरह लोगों का केयर करते हैं। आज जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने सफलता हासिल की है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
0: सर उत्तर प्रदेश की खबरें नहीं आ रही है, बिहार की भी बात आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाए गए सम्राट चौधरी पर और कहा कि रेवड़ी की तरह बांटी जा रही है सुरक्षा, जो सिक्योरिटी की बात की जा रही है। सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव बड़ा हमला बोल रहे हैं और पिछले कुछ वक्त से आपको याद होगा किस तरह के हालात थे। अब कहा जा रहा है जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जिसका कुछ लेना देना नहीं, उसको बंगला मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर कह दिया है।
5: चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। रेवड़िया जैसे बांट, रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं।
0: हर जगह इस वक्त खबरें देखी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। राज्यसभा का रण क्या समीकरण है हम आपको बताएंगे। विधानसभा में मतदान करेंगे कितने, 228 विधायकों की बात की जाएगी और 228 विधायक वोट करेंगे। बीजेपी के पास कितने हैं? बीजेपी के पास इस वक्त आप देखेंगे तो 164 विधायक हैं, 164 बीजेपी के पास। अब ये सब जोड़ तोड़ की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को जो जीत तय है वो बताया जा रहा है कि 2 राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत बिल्कुल तय है। अब वहां पर बात कांग्रेस की भी आती है, 3री सीट के लिए 10 विधायक चाहिए बीजेपी को। अगर तीसरा भी अपना उम्मीदवार जिताना है तो राज्यसभा में पहुंचाना है तो 10 विधायक चाहिए। अब ऐसे में आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस को भी थोड़ा सा खतरा, डर सताने लगा है और इसीलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। क्योंकि कांग्रेस के पास कितने हैं? कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं। अब 1 सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है, कांग्रेस की जीत। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास अतिरिक्त वोट 10 हैं, ये बात कही जा रही है। तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बीजेपी के पास चले जाएं, ये डर सताता रहता है। तो इसी वजह से अब वहां रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई और अपने अपने लोगों को संभालने की कोशिश की जा रही है, उनको एक जगह रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
6: ये देखिए सामान इनका यहाँ रखा हुआ है, ये साथ में क्योंकि परिवार के लोग भी जा रहे हैं तो ये सामान है, और इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम 10 दिन का सामान जो है वो लेकर के, क्योंकि परिवार के लोग भी साथ में रहेंगे। और ये विधायकों की गाड़ियां हैं जो लाइन से इस वक्त भोपाल एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में आके खड़ी हो गई हैं, इन्हीं से लगातार विधायक बाहर निकल रहे हैं और फिर सीधे एयरपोर्ट के भीतर जा रहे हैं। तो एक एक करके अब विधायकों की शिफ्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। जो जानकारी आज तक को मिली है उसके मुताबिक सभी विधायकों को पहले भोपाल एयरपोर्ट पर एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, साथ ही में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहां मौजूद होंगे। विधायकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, समझाइश दी जाएगी और फिर उन्हें एक साथ विशेष विमान के जरिए यहां से कर्नाटक ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में अगले 10 दिन अब ये सभी विधायक एक साथ रहने वाले हैं, जिसके बाद 18 तारीख को जिस दिन मतदान होना है उसी दिन विधायकों को वापस भोपाल लाया जाएगा और सीधे एयरपोर्ट से उन्हें विधानसभा ले जाकर के राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो सब लोग अपना सामान उठा के एयरपोर्ट की तरफ पहुंच गए, धीरे धीरे निकल रहे हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अब कद्दावर नेता हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उनका क्या कहना है, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं।
7: पहले दो नाम ऐलान होते हैं और नामांकन के ठीक आखिरी दिन तीसरा नाम भी आ जाता है मीनाक्षी नटराजन के सामने।
8: नहीं, 10 विधायक कम है, फिर भी बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है। कैंडिडेट किसके सामने दिया है? एक गांधीवादी महिला के सामने। गांधीवादी महिला आरक्षण की बात करने वालों की असली पोल खुली। जो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं उन्होंने एक ओबीसी के साथी को उनके सामने कैंडिडेट बनाया, केवट को। अगर केवट से प्यार था, ओबीसी से प्यार था, तो उनको पहले नंबर पे क्यों नहीं बनाया वहां पंजाब।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें कि पीओके में हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की नारेबाजी शुरू हो गई है, जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग इस वक्त सुलग उठी है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जबरदस्त उबाल है। मुनीर की सेना के खिलाफ स्लोगन नारेबाजी हो रही है और यह बताया जा रहा है 27 लोगों की मौत के बाद जो पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मारे गए हैं, अब लोगों का गुस्सा भड़क गया। हालात तब और बेकाबू हो गए जब पीओके में चल रही एक शोक सभा पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। सोचिए, शोक सभा पर फायरिंग कर दी। मुनीर आर्मी के नरसंहार में 27 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों की नाक में अब दम कर दिया गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, शोक सभा थी वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग और अब गुस्सा आक्रोश, इससे पहले भी हमने देखा है और अब फिर देख रहे हैं ये?
9: बिल्कुल ठीक है हिमांशु, आपने बीते 3 सालों के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के इलाके के अंदर लोगों का जो जबरदस्त गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। बात थी कि किसी तरीके से समाधान का फॉर्मूला निकाला जाएगा, लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करेगी सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से जो वादा खिलाफी की गई, लोगों को जो लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, उसके बाद 9 जून को शटर डाउन जो प्रोटेस्ट है उसका कॉल दिया गया था और जिस समिति ने जिससे सरकार अब तक बात कर रही थी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी, उसको पाकिस्तान की सरकार ने 5 जून को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स वहां तैनात कर दिए गए। चाहे रावला कोट हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे सुदनोती हो, चाहे दरियाल हो, इन तमाम इलाकों के अंदर लोगों का जबरदस्त गुस्सा न केवल सड़कों पर फूट रहा है, पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के अंदर बताया जा रहा है करीब 27 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर के दौरान जब विरोध प्रदर्शन हुए थे इस इलाके के अंदर तो 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 3 पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों की मौत भी हुई थी उस घटनाक्रम के अंदर। और लगातार पीओके के इलाके के अंदर जो लोगों का गुस्सा है वो नजर आ रहा है, चाहे 2023 के अंदर आटे और बिजली की कीमतों को लेकर होने वाला प्रदर्शन हो या फिर जो वहां पर स्कूल और कॉलेजेस के एडमिशन के अंदर जो बाहर से आए हुए लोगों को जिस तरीके से वहां बसाया जा रहा है जिस कारण से लोगों को लग रहा है कि उनके हित प्रभावित हो रहे हैं उसका मामला हो, अब जो रेफ्यूजी सीट्स हैं उनको लेकर 12 सीटें जो हैं उनको अबॉलिश करने वाला जो मामला था उसका मसला हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो नाराजगी है उसे कहीं ना कहीं सुलझाने में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज नाकाम रही है। और एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है हिमांशु, वो पाकिस्तान जो अपने इलाके के कश्मीर, अपने कब्जे वाले कश्मीर को जिसको अनधिकृत कब्जा किया है उसे आजाद कहता है। लेकिन
0: यहाँ आप हमारे साथ बने रही और ये हर बार होता आया है जब भी पाकिस्तानी रेंजर्स वहां की आम जनता पर जुल्म ढाते हैं उसके बाद फिर उनको खदेड़ती भी है पाकिस्तान की जनता। और वो तस्वीर हम एक बार फिर से दिखा देते हैं कि यार हालात देखिए आप, ये देखिए सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में ये लोग कहां सड़कों पर है, हाथ उठाए, आवाज बुलंद किए हुए, गाड़ियों पर झंडे लेकर, ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जो कुरान है उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रणय, इससे पहले हमने ये देखा है जैसा जिक्र किया जा रहा था कि पहले भी ऐसा हुआ है और उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को आम जनता ने खदेड़ा है, क्या यहाँ पर भी ये आग और धधक सकती है, ये और लंबा खिंच सकता है मामला लग रहा है?
9: बिल्कुल, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं मानशु ये ददियाल की तस्वीरें हैं पीओके के इलाके के अंदर, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स को रावलाकोट की तरफ जो है भीड़ में जो है दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा है। खासतौर पर पाकिस्तान की रेंजर्स की तरफ से जो जो टीयर गैस यानी जो आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे उन्हें भी पकड़कर जो प्रदर्शनकारी हैं वो वापस जो रेंजर्स हैं जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ फेंक रहे हैं और काफी अफरा तफरी की जो स्थिति है वहां पर है। हालांकि रिपोर्ट्स अभी भी जो ठीक रिपोर्ट्स हैं लगातार रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं, इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि वहां पर एक कम्युनिकेशन क्रैकडाउन किया गया है, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है और किसी तरीके से केवल कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तविकता में इस समय वहां पर स्थिति कितनी भयावह और कितनी खराब होगी। जी
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणय इस जानकारी के लिए, और यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: This is the sound of Jack, buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. Oh, ouch. However you make money work, we can work with that.
13: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
15: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
14: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
16: You're listening to MSNBC.
14: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
17: సోకుడు

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: WGU offers an affordable path to becoming a teacher. Our Bachelor of Arts in Elementary Education program is online, flexible, and built around a flat-rate tuition model. That means you can complete as many courses as you can handle for each term without paying more, giving you more control over the costs of your education. It's a sustainable investment in a career that truly changes lives, yours and your future students. Your path to the classroom starts at WGU. Learn more at wgu.edu.
4: No ticket, no line, just showtime. Qwello Concerts is the destination for music lovers. With thousands of electrifying concerts and music documentaries. Try Qwello Concerts, that's Q-E-L-L-O, for free on Amazon Prime Video today.
5: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
11: In association with
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
13: भीषण आग की दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की हैं, जहां हीट यूनिट में हुए हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल एक बड़ी क्रेन से स्टील के लैडर को ऊपर उठाया जा रहा था, जो नीचे आ गिरा। यह हादसा अत्यधिक तापमान की वजह से पिघले हुए इस्पात से भरी एक करछुल में विस्फोट के कारण हुई। पिघला हुआ स्टील नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा। हादसे के बाद सीसीटीवी यूनिट में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना मिलने के बाद गृह मंत्री बंगलापुरी अनीता तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों में 5 परमानेंट कर्मचारी हैं, जबकि 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वे स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना से काफी व्यथित हैं और उन्होंने घायलों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा भाप, रिजॉर्ट में शिफ्टिंग। 18 जून को होनी है वोटिंग। मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। टीएमसी के बागियों को ममता के समर्थकों का चैलेंज, हिम्मत है तो पार्टी छोड़कर जीते चुनाव। 20 सांसदों के बगावत का दावा, कई पार्षद भी छोड़ रहे हैं टीएमसी। 70 के सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी कल रचेंगे इतिहास। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर रायडू और देवेगौड़ा ने की तारीफ। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। पाकिस्तान के कब्जे से निकलने को बेताब हुआ पीओके। मुजफ्फराबाद में मुनीर आर्मी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। पाक रेंजर्स की गोलियों से 27 लोगों की मौत के बाद भड़का गुस्सा। सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू कामयाब। पहाड़ में हुआ आखिरी ब्लास्ट। नितिन गडकरी और मनोज सिन्हा रहे मौजूद। सालों भर कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख।

हिमालय का सीना चीरकर हिंदुस्तान ने असंभव को संभव कर दिखाया। एक आखिरी विस्फोट के साथ आज जोजिला टनल में वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया गया, जिसके बाद कश्मीर को करगिल लद्दाख से साल के 12 महीने जोड़ा जा सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा और मैं ग्राउंड जीरो में लद्दाख के द्रास जिले के उस पूर्वी पटल पर हूं जहां से जोजिला सुरंग की शुरुआत होती है। आज एक के साथ वो ब्रेक थ्रू हासिल हो चुका है और मौका खास था। अब इस सुरंग को देशवासियों को समर्पित करने की तैयारी है और इसीलिए इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे।

हिंदुस्तान का गौरव है चोचिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग की अंतिम बाधा को ट्रिगर किया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया।

0: आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है, मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी सुरंग है। ये कामयाबी अब हिंदुस्तान के नाम है।
1: सुरंग के इस ब्रेक थ्रू या यूं कहें कि आखिरी विस्फोट को देखने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनके साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहां पर पहुंचे हैं। और खासकर जोशीला की ये सुरंग जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 12 महीने जोड़ेगी, उनके लिए एक ऑक्सीजन लाइन हो जाएगी कनेक्टिविटी 12 महीने, खासकर जोशीला दर्रा जो कि बेहद दुर्गम हो जाता है सर्दियों में। ऐसे में ये परियोजना दोनों राज्यों के लिए, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सामरिक नजरिए से भी अगर देखें तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि लगातार सरकार की नजर इस पर रही है और सरकार भी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से, हिमालय की परियोजनाओं में से एक है। और इसी का जायजा लेने के लिए और इस दिन को विटनेस करने के लिए नितिन गडकरी, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम सारे लोग यहां पर इस दर्रे के पास पहुंचे हैं।
0: 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। देश को समर्पित किए जाने से पहले आखिरी ब्रेक थ्रू काफी अहम है। सुरंग की पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुँच बेहतर हो जाएगी। आवागमन, लॉजिस्टिक्स और सामरिक पहुँच को भी मजबूती मिलने वाली है। मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, लद्दाख आज तक।
1: सुरंग का ये पूर्वी महीना उस जोजिला के दर्रे में, जोजिला पास के नीचे है, जो साल के 6 महीने बर्फ में डूबा रहता है। 30 से 40 फुट की बर्फ, तो -30 डिग्री का तापमान, जिसके चलते कश्मीर और कारगिल एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाते थे। लेकिन इस सुरंग के बनने के बाद अब ये कनेक्टिविटी रीस्टोर हो जाएगी। दो केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। बर्फबारी के चलते जो राज्य एक दूसरे से संपर्क टूट जाता था, ये सुरंग उन राज्यों को आपस में जोड़ देगी।
2: कश्मीर की वादियों में जब पारा माइनस से नीचे जाता है तो जिंदगी जमने लगती है। पूरा इलाका बर्फिस्तान बन जाता है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी होती है। नतीजा ये होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। लेकिन अब जोजिला सुरंग के रूप में ऐसा अचूक कवच तैयार हो रहा है जो हर मौसम में जनजीवन को महफूज रखेगा। ना तो यहां खराब मौसम की मार पड़ेगी और ना ही गाड़ियों की रफ्तार थमेगी। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस टनल को ऐसे बनाया गया है कि मुश्किल दौर में भी कश्मीर और लद्दाख आपस में जुड़े रहेंगे और जिंदगी की रफ्तार तेज रहेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा।
3: 13.5 किलोमीटर लंबी ये ऐतिहासिक टनल है और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हाईएस्ट अगर ऑल्टीट्यूड्स में जो टनल्स हैं ये सबसे लंबी है, तो एक विश्व कीर्तिमान भी है कई तरीके से। और उसके बगैर अगर पूरे देश की बात करें और खासकर लद्दाख का जो क्षेत्र है उनके लिए ये वरदान है, एक गेम चेंजर है, क्योंकि पूरा इलाका ठप हो जाता था विंटर्स में। जोजिला पास जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पासेस में से एक है, बहुत दुर्गम, बहुत नटोरियस, कई सारी जाने ले चुका है एवलॉन्चेस और वो बंद हो जाता था। उसकी वजह से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे लद्दाख के, सेना के लिए इश्यूज थे। ऑल वेदर जो है एक सीमलेस कनेक्शन सेना भी चाहती थी, डिफेंस चाहता था। तो किसी भी तरीके से आप देखें इसको तो बहुत कुछ बदलने वाला है इस क्षेत्र के लिए।
2: कुदरत की मार के बीच पहले कश्मीर से सोनमर्ग का सफर चुनौती भरा था, लेकिन जेड मोड टनल बन जाने के बाद सोनमर्ग का रास्ता 12 महीने के लिए खुल गया है। अब इस सुरंग से सोनमर्ग के आगे लद्दाख की सड़क पर साल भर आवाजाही जारी रह सकेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले इस टनल की कई खासियत है। ये ऑल वेदर है, इसे सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बनाया गया है, यानी दोनों ओर से गाड़ियों का आवागमन होगा। सुरक्षा के नजरिए से इसमें इवैक्यूएशन टनल भी तैयार किया गया है। सुरंग में हर साल 150 मीटर पर राहत बचाव कार्य के लिए जगह दी गई है, जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति में किया जा सकेगा।
1: जोजिला टनल की सुरक्षा के लिए कई सारी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बेहद खास बनाती है। मसलन आप अगर अटल टनल में गए रोहतांग टनल में तो जमीन के नीचे वहां एक स्केप टनल बनाई गई है। अब इस 13 किलोमीटर के शाफ्ट में कई जगह मान लीजिए अगर कोई हादसा होता है रेस्क्यू इवैक ऑपरेशन हो तो 3 ऐसी जगहों पर शाफ्ट बनाए गए हैं इवैक पॉइंट बनाया गया है जहां से लोगों को निकाला जा सके। लेकिन अगर कोई गाड़ी पलट जाती है किसी तरह के आग लग जाती है कोई रेस्क्यू इमरजेंसी स्थिति होती है तो इवैक टनल कहां होगा। ये चूंकि सिंगल क्यूब है एक सिंगल टनल है और इस सुरंग में आगे ऐसे 2 लेन का रास्ता है लेकिन यहां पर इवैक टनल सड़क के नीचे ना होकर के आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है टनल में क्योंकि इसका जो डायमीटर है ये बहुत ज्यादा है व्यास जो सुरंग का है तो ऐसे में ये पहली टनल होगी जिसमें इवैक्यूएशन पॉइंट दरअसल जमीन के ऊपर यानी जो छत का हिसाब देख रहे हैं निर्माणकार। तो जैसे ही टनल की खुदाई चुकी पूरी हुई है अब ये 13 किलोमीटर एक छत इसके ऊपर बनेगी यानी नीचे से 2 लेन की गाड़ियां जाएंगी और इसके ऊपर 13 किलोमीटर इसके साथ एक छत चलेगी।
2: आधुनिक तकनीक के जरिए इस टनल को छत के जरिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। इवैक्यूएशन टनल ऊपरी हिस्से में बनाया जा रहा है नीचे गाड़ियां दौड़ेंगी और उसके ठीक ऊपर ये इवैक्यूएशन टनल होगा। पूरे 13 किलोमीटर की सुरंग में सांस लेने में दिक्कत न हो इसके लिए वेंटिलेशन का भी ख्याल रखा गया है। सुरंग के अंदर पर्याप्त लाइटिंग और अन्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा लद्दाख आज तक।
1: ये जो टनल अगर बन जाएगी कितनी सुविधा हो जाएगी आप लोगों
4: को? बहुत बढ़िया सर ये बन जाने से बहुत बढ़िया हमको बढ़िया हो गया जी ना आसान हो गया बिल्कुल। बर्फ में बहुत दिक्कत होता है ना हमको गाड़ी स्लिप करते हैं बहुत दिक्कत होता है।
1: सर्दी में कैसे आना जाना होता था जो जिला पास से होते?
4: सर्दी में तो बहुत प्रॉब्लम है सर पूरा बर्फ जम जाता है पूरा पानी जम जाता है बहुत बर्फ आते हैं बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में दिक्कत होता है पेशेंट वेशेंट जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। अब ये बनने से बहुत अच्छा हो जाए हमको बहुत बढ़िया हो जाए।
1: इतने सालों से आप आते जाते रहेंगे कश्मीर से लद्दाख कितना अनुभव आपने कितनी दुनिया देखी इस इतनी मुश्किलों में?
5: हैरान कुन देखा हैरान कुन बिल्कुल अच्छा सा।
1: आप कहाँ से आए?
6: करगिल से।
1: करगिल से हाँ। करगिल वालों के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है?
6: ये बहुत बड़ा तोहफा है सर ये हमारा लाइफ लाइन है। हम जब पैदा हुए थे जब से हमें होश संभाला तब से हमें पता है जुजला टनल की हम डिमांड कर रहे थे लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की वसादत से जो है हमारी देरेना मांग पूरा हो गया। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत आभारी हैं बहुत शुक्रगुजार हैं।
1: मुश्किलें याद आती हैं जब इस रास्ते आप लोग कश्मीर से ठंड में आते आइए बताइए।
6: सर मत पूछिए क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब जो ही रास्ता ओपन होता है और क्लोजिंग के टाइम में पेशेंट्स हर किसी को कितने कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है अल्लाह बेहतर जानता है।
1: लद्दाख वालों को करगिल वालों को कितना फायदा होगा इससे?
6: ये 100% फायदा है इससे नुकसान कहाँ होगा?
1: किस तरह का फायदा होगा?
6: ट्रांसपोर्ट लाइन में आने जाने के लिए राशन पानी के लिए 6 महीने के लिए कटअप रहता है। आप खुद समझदार है आप अंदाजा लगाओ 6 महीने के लिए कटअप रहता है हर चीज का शॉर्टेज रहता है हर सब्जी हो चावल हर चीज का शॉर्टेज रहता है।
1: सर्दी का टाइम कैसे बीतता था आप लोगों के लिए? विंटर का टाइम कैसा जाता था?
5: सर्दी के टाइम तो हम लोगों को इतना दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हमको आदत है इधर बैठने की। बाकी तो इस साल तो 2-3 साल हो गया।
1: आपको कारगिल का वो युद्ध याद है जब इसी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को पाकिस्तान अपनी गोलीबारी से कश्मीर से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था। ये जुजिला सुरंग हर दुश्मन के हौसले को पस्त कर देगी क्योंकि सुरंग के बाद भारतीय सेना को ताकत मिलेगी। 6 महीने बंद रहने वाला ये जुजिला पास अब उसर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुरंग भारतीय सेना को साल के 12 महीने उसकी सुविधा का हर सामान रसद हथियार बरामद कराएगी बेरोक टोक। फिर चाहे कितनी भी बारिश हो कितनी भी बर्फबारी हो ये रास्ता भारतीय सेना को ताकत देगा क्योंकि एक तरफ चीन है दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का बंद होना अपने आप में देश के लिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती थी लेकिन जोजिला सुरंग उस चुनौती का जवाब है।
7: हिंदुस्तान की आन बान शान है ये जोजिला सुरंग। संकट काल का ये सुरक्षा कवच करीब करीब तैयार है। इसका ढांचा इतना मजबूत है कि इस पर ना तो हवाई हमलों का कोई असर होगा ना मिसाइल हमले से इसे नुकसान पहुंचेगा। और ना ही एटॉमिक अटैक का ही कोई खतरा होगा। ऑल टाइम वेदर के लिए तैयार की जा रही इस सुरंग से सेना की ताकत बढ़ी है दरअसल कश्मीर और लद्दाख का ये रूट सामरिक रूप से काफी अहम है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मैप पर इस सुरंग की भूमिका काफी ज्यादा रहने वाली है। इस टनल की वजह से सामरिक सीमा क्षेत्र में परिचालन आसान होगा, साथ ही लॉजिस्टिक तैयारी को और मजबूती मिलने वाली है। जुजिला सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच जुजिला के उस इलाके में पड़ती है जो साल के चार महीने -30 डिग्री तापमान झेलता है। भारतीय सेना के लिए वो दौर बेहद मुश्किलों भरा होता है। भीषण सर्दी के दौरान लद्दाख में तैनात जवानों के लिए राशन, ईंधन और गोला बारूद की सप्लाई एक तरह से बंद हो जाती है। ये इलाका पूरी तरह कट ऑफ रहता है। इस सुरंग के तैयार हो जाने से भारी बर्फबारी के बीच चीन और पाकिस्तान की सीमा तक सैनिकों को अब उस मुश्किल दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही पड़ोसी दुश्मन देश की सीमा पर जवानों की तैनाती भी उतनी ही जल्दी हो सकेगी, साथ ही भारी भरकम हथियारों को भी तुरंत पहुंचाया जा सकेगा।
1: ऐसी घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन चलाया जा सके, 13 किलोमीटर इस लंबी सुरंग में सांस लेने की दिक्कत ना हो उसके लिए वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा, और इतना ही नहीं, ये सुरंग इतनी खास इतनी मजबूत है कि ना इस पर मिसाइल हमलों का असर होगा, ना इस पर परमाणु बम का कोई असर हो सकता है। और ये न सिर्फ कश्मीर को कारगिल से जोड़ेगी बल्कि चीन और पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी को देखते हुए भारत की सैन्य जरूरतों को भी जुजिला की ये सुरंग साल भर पूरा करेगी।
7: आज का ब्रेक थ्रू मिलना निश्चित रूप से देश के सामरिक मोर्चे पर अहम कामयाबी है। वीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, लद्दाख आज तक।
1: ये सुरंग सिर्फ सपना नहीं था बल्कि कारगिल, द्रास, लद्दाख, कश्मीर, सोनमर्ग, यहां रहने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान बनकर आया है। स्टेट ऑफ द आर्ट इस तकनीक से डेवलप इस सुरंग को बनाने के लिए एक लंबा समय जरूर लगा, लेकिन इंजीनियर्स के मंसूबों ने, उनके हौसले ने, भारतीय तकनीक ने वो कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था, लेकिन आज वो संभव हो चुका है। इस टनल के बीच, सुरंग के भीतर जब मैं आता हूं तो पता चलता है कि कैसे हमारे इंजीनियर्स ने दुनिया में सबसे ऊंची 11,500 फीट की ऊंचाई पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जो देश की सामरिक ताकत को मजबूत करेगा, दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ेगा, और तो और साल के 12 महीने कन्याकुमारी से लद्दाख का आवागमन बेहद आसान कर देगा।

0: 14 अक्टूबर 2020 यही वो तारीख थी जब इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद पहला धमाका किया गया था और उसके साथ ही तेज हो गया था इस सुरंग का निर्माण। 5 साल 7 महीने पूरे हो चुके हैं उस लम्हे को। इस गुजरे वक्त में अब सुरंग का निर्माण अपने आखिरी पड़ाव पर है। पिछले साल 15 मार्च को ही प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा कर लिया गया था। तब से यहाँ खुदाई का काम लगातार जारी था और अब आज आखिरी ब्रेक थ्रू भी पूरा कर लिया गया है। अंतिम ब्रेक थ्रू मिलने के बाद इस परियोजना के जल्दी पूरा हो जाने की उम्मीद है। सोजिला सुरंग का पूर्वी मुहाना द्रास के बीना मार्ग में है, जबकि पश्चिमी मुहाना गांदरबल के बालटाल में है। आज के ब्रेक थ्रू के बाद अब दोनों मुहाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी इसे पूरी तरह से परिचालन लायक बनाने में कुछ और वक्त लगेगा।
1: हम जोजिला टनल के उस पूर्वी पटल के उस मुहाने पर हैं जहां से शुरुआत हो रही है। अब इस टनल की खासियत दरअसल ये है कि इस निर्माण कार्य के साथ जैसे जैसे आगे ड्रिलिंग होती गई, जो न्यू ऑस्ट्रियन टनल मैकेनिज्म है उसके तहत क्या किया जाता है, मशीन आगे खड़ी होती है, यहां पर छोटे छोटे धमाके किए गए और उसके बाद जैसे जैसे जगह बनती गई मटेरियल पीछे आता गया। और उसी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती होती है इस तरह के कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब टनल खुल गई है तो कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया और ये इतना सुरक्षित बनाया जाता है ताकि ये गिरे ना। अब चूंकि ये 13 किलोमीटर लंबी काम है तो जैसे जैसे टनलिंग आगे पूरी हुई, ब्रेक थ्रू के बाद बड़ी चुनौती है कि इस स्ट्रक्चर को बनाया जाए। इसी के साथ आप यहां तारपोलिन जो देख रहे हैं, तारपोलिन का काम है इसको वाटरप्रूफ बनाए रखना और इसी के लिए बड़ी चुनौती यह है कि इसको वाटरप्रूफ भी बनाए ताकि पानी का जो लीकेज है, क्योंकि कई जगहों पर 300 से 400 मीटर भी नीचे पहाड़ के नीचे आएगा तो पानी का लीकेज ना हो। और
0: जोजिला सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया जा रहा है। यह हिमालय की ज्योग्राफिकल कंडीशन में सबसे कारगर तकनीकी है। इस सुरंग के निर्माण में कई मुश्किलें आईं, लेकिन तमाम बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए निर्माण अब पूरा होने वाला है और देश को ये बेशकीमती तोहफा मिलने वाला है। मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, लद्दाख आज तक।
1: कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। भारत के वैज्ञानिकों ने बस वही हौसला दिखाया, हिमालय का सीना चीरकर असंभव को संभव करते हुए इस जोजिला दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर दिया। ब्रेक थ्रू पूरा हो गया है, अब थोड़ा सा समय बाकी है, ये सुरंग जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद कारगिल, द्रास, लद्दाख, जम्मू कश्मीर को साल भर जोड़ा जा सकेगा। ये अभूतपूर्व है, अविश्वसनीय है। जोजिला में इस सुरंग पर लद्दाख के द्रास सेक्टर से मनीष भिधुड़ी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
6: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
7: Oh, ouch.
6: However you make money work, we can work with that.
8: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही। समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर ये याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है। दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
1: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं, और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
5: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Tune In's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Tune In has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere. In a soul.
8: ओ माता की, गंगा माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
9: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया। मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा। भाप रिसोर्ट में शिफ्टिंग, 18 जून को होनी है वोटिंग। मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। टीएमसी के बागियों को ममता के समर्थकों का अब सीधा चैलेंज, हिम्मत है तो पार्टी छोड़ो और चुनाव जीतो। 20 सांसदों के बगावत का दावा, कई पार्षद भी छोड़ चुके हैं टीएमसी। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी कल रचेंगे इतिहास। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने का रिकॉर्ड। नायडू और देवगौड़ा ने की तारीफ। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। पाकिस्तान के कब्जे से निकलने को बेताब। पीओके मुजफ्फराबाद में मुनीर आर्मी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। पाक रेंजर्स की गोलियों में 27 लोगों की मौत के बाद भड़का गुस्सा। सबसे ऊंचे और मॉडर्न सोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू कामयाब। पहाड़ में हुआ अंतिम विस्फोट। नितिन गडकरी और मनोज सिन्हा रहे मौजूद। हर मौसम में कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach in association.
0: सबसे ऊंचा मॉडर्न सोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू कामयाब। पहाड़ में अंतिम ब्लास्ट हुआ। नितिन गडकरी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। सोजिला पास टनल प्रोजेक्ट का एक मील का पत्थर बड़ा मील का पत्थर है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसका निरीक्षण किया और ब्रेक थ्रू समारोह हुआ। समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर यह सोजिला सुरंग बनाई जा रही है। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का ब्रेक थ्रू का काम भी पूरा। कश्मीर और लद्दाख के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। 3 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगा। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कतें भी खत्म होगी। सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ। एमपी में 6 साल के बाद फिर से रिसोर्ट पॉलिटिक्स की वापसी। क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी। आज बेंगलुरु जा रहे कांग्रेस विधायक, अगले 10 दिन बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा जाएगा कांग्रेस विधायकों। सोमवार शाम को विधायकों को 10 दिन के हिसाब से बैग पैक करने के लिए कहा गया। 18 जून को मतदान से पहले लौटेंगे भोपाल। तीसरी सीट को लेकर फंस गया है पेस और मीनाक्षी नटराजन के सामने बीजेपी के महेश केवड़ को उतारा गया है। 18 जून को राज्यसभा के 3 सीटों के लिए मतदान है। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवड़ को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया। लखनऊ में श्रीराम कथा महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा संदेश। कहा कि सीता माता के अपहरण और भगवान राम के संघर्ष से समाज को सीख लेने की जरूरत। सीएम योगी ने जन जागरूकता पर दिया जोर। कहा कि लव जिहाद रोकने के लिए रामायण आदर्श उदाहरण।
2: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
0: सीएम योगी का दावा कि धार्मिक जनसंख्या के बदलने की साजिश पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। यूपी ने 2020 में सख्त कानून बनाया। रामायण के पात्रों का उदाहरण देकर बोले सीएम के लैंड जिहाद के खिलाफ समाज को एकजुट होना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी का दबदबा। कांग्रेस को यूपी में सीमित सीटें देने पर रणनीति पर मंथन। अखिलेश यादव ने दिखाई सकती यूपी चुनाव में कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है सपा। यूपी चुनाव 2027 को लेकर आरएलडी की रणनीति थे। संगठन में बड़े बदलाव के साथ नई सीटों पर भी नजर। बीजेपी गठबंधन में मजबूत हिस्सेदारी के लिए पार्टी ने शुरू किया मंथन। मुरादाबाद रैली के बाद से एक्शन मोड में आरएलडी। जयंत चौधरी ने बूथ लेवल पर मांगी ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी चुनाव में 25 से 30 सीटों की दावेदारी की तैयारी। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर आरएलडी का बड़ा बयान भी। अनुपम मिश्रा बोले कि नई सीटों पर भी हम दांव लगाएंगे। सीट शेयरिंग विवाद पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। उदयवीर सिंह बोले कि क्षेत्रीय दलों को अपनी बात रखने का पूरा हक है। गठबंधन इंडिया में बढ़ी हलचल। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे चुनाव। आरएलडी पर भी निशाना। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन। 29 लाख अभ्यर्थी शामिल। 30,000 सीसीटीवी से निगरानी। नकल विहीन परीक्षा पर जोर। यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन और कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। अयोध्या चढ़ावे विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। ये ट्रस्ट का मामला, जांच रिपोर्ट का इंतजार जरूरी। केजीएमयू हार्ट स्टेंट मामले में जांच भी तेज। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। 1 साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड का तलब किया गया और फीडबैक को मरीजों के सबूत बनाया जाएगा। केजीएमयू हार्ट स्टंट घोटाला के मामले में अनियमितताओं पर सख्ती, थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई, संबंधित कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग की भी तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए, हार्ट स्टंट मामले में निगरानी में केजीएमयू के नियमित कर्मचारी ही अब करेंगे। स्टंट घोटाले के बाद से दवा खरीद पर भी नजर, कई विभागों के खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रुपए पर पहुंचे। आज तक के असर से बदली तस्वीर, रिंद नदी पर 27 करोड़ का पक्का पुल का निर्माण शुरू, 70,000 ग्रामीणों में खुश। राजूपाल हत्याकांड में दोषी करार, शूटर आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त जमानत, आबिद को मिली जमानत पर सवाल भी उठे। लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे युवतियों से ऑटो चालक ने सुनसान इलाके में ले जाकर किया दुष्कर्म का प्रयास, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। कानपुर स्टेशन पर अभ्यर्थियों का सैलाब, स्पेशल ट्रेनों के दावों के बीच में व्यवस्था पर सवाल। लखनऊ में 90 साल पुराने गर्ल्स स्कूल पर लगा ताला, छात्राओं अभिभावकों का प्रदर्शन, पढ़ाई बचाने को मुख्यमंत्री से गुहार। स्कूल बंद होने के विरोध में सड़क पर उतरी छात्राएं, विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल बचाने की मांग। लखनऊ में पीजीआई परिसर में युवती के अपहरण का मामला, लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज, अपहरण से लेकर विदेश ले जाने तक के आरोप। हरदोई में बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य के पुत्र से विवाद के बाद से हुआ एसडीएम पर पथराव, सर में पत्थर लगने से एसडीएम घायल, पुलिस ने पहरा बढ़ाया। वाराणसी में गंगा से विशाल शिवलिंग हुआ बरामद, 2500 साल पुराना होने का दावा है, श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा। गंगा किनारे मिला ही दो क्विंटल वर्जनी शिवलिंग और इसे मौर्य काल से जोड़ा जा रहा है। फैजल खान को कोर्ट से मिली है राहत, जिला जज ने उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। फायरिंग मामले में फैजल खान दो गार्ड्स उसके पहले ही हो चुके हैं जेल में बंद और कोर्ट ने पुलिस से मामले में सबूत और केस डायरी भी तलब की थी। वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज हुई थी एफआईआर, पुलिस के मुताबिक गार्ड्स ने फायरिंग की बात स्वीकार की है। रोशन आनंद की जमानत याचिका पर भी आदेश सुरक्षित। अरविंद केजरीवाल का आरोप, पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की कार्रवाई, छोटे कारोबारियों को परेशान करने का दावा। ईडी रेड्स के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन का ऐलान, पूरा पंजाब व्यापारियों के साथ है कहा। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने फिर से थमाया नोटिस, आज शाम 5 बजे बुला गया। विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में सीआईडी पूछताछ करना चाहती है, सूत्रों के मुताबिक अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज। कोलघाट में प्रशासनिक बैठक के दौरान सियासी हलचल, मुख्यमंत्री और अधिकारी भी बैठक में, और इसमें टीएमसी खेमे से जून मालिया की मौजूदगी चर्चा का विषय जरूर बनी है। कोर्ट ले जाते समय टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर अंडा फेंका गया, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल। बिहार विधान परिषद चुनाव, 10 उम्मीदवारों के हलफनामे सामने आए, संपत्ति और शिक्षा का भी खुलासा। आरजेडी के सुनील कुमार सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, 54 करोड़ की संपत्ति, करोड़ों की ज्वेलरी का भी ब्यौरा। बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह की संपत्ति में भी इजाफा, 19 करोड़ 44 लाख की दौलत, हलफनामे में पत्नी ज्योति सिंह का नाम बरकरार है। जेडीयू उम्मीदवार निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है, 8 में से 5 सेमेस्टर पूरे किए थे। उम्मीदवारों की संपत्ति में बड़ा अंतर, किसी के पास करोड़ों की दौलत, किसी के पास न गाड़ी है न कोई बड़ी अचल संपत्ति है। सिंगापुर के दौरे से वापस लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बीटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी राबड़ी निवास पहुंचे। सुरक्षा हटाए जाने के बाद लालू यादव पहली बार पटना पहुंचे और आरजेडी के कार्यकर्ता आवास के बाहर पहरेदारी करते दिखे। हुगली में टीएमसी पार्षद मौसमी विश्वास का बड़ा आरोप, यूट्यूबर पर ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की ब्लैकमेल करने का दावा, ब्लैकमेलिंग से परेशान टीएमसी पार्षद सड़क पर रो पड़ी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में 4 मंजिल इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगे, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग बुझाई। ग्रेटर कैलाश एनक्लेव में घरेलू सामान में अचानक लगी आग, 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रित हुई। ओमान की खाड़ी में अमेरिका की कार्रवाई, 24 भारतीय तेल टैंकर एमटी मेरीवैक्स को रोके जाने का दावा किया। अमेरिकी सेना का दावा है कि नाकेबंदी उनके उल्लंघन करे थे टैंकर पर कार्रवाई, 24 भारतीय चालक दल के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट से टैंकर के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है। ईरान की ओर बढ़ रहे एंटी मेरीवैक्स को अमेरिकी सेना ने रोका, निर्देशों की अनदेखी का आरोप। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कार्रवाई के बाद से ईरान की ओर जा रहा तेल का टैंकर एंटी मेरीवैक्स का अब रास्ता बदल चुका है। यूएनएससी में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को नरसंहार बताया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को घेरा है, आम नागरिकों की मौत और मानवीय कानून उल्लंघन का आरोप लगाया। भारत का आरोप कि आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आड़ में नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन, पाकिस्तानी आर्मी गो बैक के नारों से पूरा इलाका गूंजा। पीओजे के में कथित मानवाधिकार उल्लंघन, नागरिकों की मौत और इंटरनेट प्रतिबंधों के विरोध में प्रवासियों और प्रदर्शनकारियों ने पाक अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन किया।

0: गोवा के बम्बोलिया में 42वें ईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन, मुख्यमंत्री सावंत हुए शामिल। पटना में भारत के पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावन कुमार का भव्य स्वागत हुआ, मंत्री श्रेयसी सिंह ने दी बधाई। देहरादून में जौनसार भाबर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आगाज, मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। ओमान दड़ के बाद सैंकर पर मिसाइल हमले के बाद से ओमान एयरफोर्स ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों का रेस्क्यू किया, भारत ने धन्यवाद भी दिया। नासा के अंतरिक्ष यात्री जेसिका मे ने स्पेस एक्स ड्रैगन से सदर्न लाइट्स की शानदार तस्वीरें साझा की हैं, स्पेस एक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की मौत, घर में ही चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में वन विभाग के कई क्षेत्रों में लगी है आग, बुझाने का प्रयास भी जारी। हापुड़ में नाबालिग किशोरी से कथित अपहरण के मामले में आरोपी साहिल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, युवती बरामद है, मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पीएमएलए के तहत ईडी का सर्च ऑपरेशन, हैम्पटन स्काई रॉयल्टी लिमिटेड मामले में भी आवास और दफ्तरों पर यह छापेमारी। पंजाब यूपी और दिल्ली नोएडा में ईडी की कार्रवाई है, लुधियाना जालंधर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी। ग्रेटर नोएडा में घर से बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, वीडियो वायरल। गुरुग्राम में जो खाकी है दागदार हुए, शराब ना पीने वाले मेजर को जबरन शराबी साबित करने की कोशिश हुई, चेकिंग के नाम पर दादागिरी करते दिखाई दिए पुलिस वाले। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ फिर से बुलडोजर एक्शन, लोगों ने जताई नाराजगी, इलाके में सुरक्षा बल की तैनाती। मेरठ में शादी का झांसा देकर मुस्लिम युवक पर 10 साल तक शोषण का आरोप है, युवती ने लगाया लव जिहाद का आरोप। आराम में सोए हुए बुजुर्ग किसान को उठाकर ले गए बदमाश, बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, जमीनी विवाद में हत्या। कानपुर में 12 साल की बच्ची को पड़ोसी ने कहा चोर, आहत होकर बच्ची ने घर में किया सुसाइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्भवती को ले जा रहे एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब, एम्बुलेंस में ही डिलीवरी करवाने पड़े। टिहरी गढ़वाल में युवक को दोस्ती पर ही भारी और मारपीट में युवक की जान चली गई। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लगभग 90 टन चिकन वेस्ट जब्त किया गया, जिसमें मछली पालन के लिए अवैध फीड के रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तालाबों में भेजा जा रहा था। पुंछ में आग लगने से 13 दुकानें जलकर खाक, घटना के बाद डीआईजी ने घटनास्थल का दौरा किया। कल जारी होगा आलिया भट्ट और शर्वरी बाग स्टारर फिल्म अल्फा का टीजर, 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज से पहले फिल्म वेलकम टू द जंगल का जलवा सूत्रों के मुताबिक फिल्म ने सैटेलाइट और ओटीटी राइट से 120 करोड़ रुपए कमाए। 15 साल बाद अक्षय और अनीस बज्मी आए साथ, मुंबई में चल रही अनाम फिल्म की शूटिंग, फिल्म में अक्षय के साथ विद्या बालन, राशि खन्ना भी मुख्य भूमिका। फिल्म नो एंट्री के सीक्वल पर बड़ा अपडेट, निर्देशक अनीस बज्मी ने दी जानकारी, फिल्म नो एंट्री 2 पर चल रहा है काम। डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जीवन बीमा योजना का पहला पोस्टर जारी, फिल्म में डबल रोल में दिखाई देंगे अरशद वारसी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग सुलग उठी है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जबरदस्त उबाल पाक अधिकृत कश्मीर में देखने को मिल रहा है और हालात अब बेकाबू दिखाई दे रहे हैं, जबरदस्त बवाल है, गुस्सा है, खुलेआम मुनीर की सेना के खिलाफ अब स्लोगन लग रहे, नारेबाजी हो रही है, पीओके में आक्रोश का ये लावा भड़का है, 27 लोगों को मार डाला आसिम मुनीर की फौज ने, 27 लोगों को मारा है, खुलेआम मानवाधिकार अधिकारों का उल्लंघन हुआ है पाक अधिकृत कश्मीर में, ये लोगों का गुस्सा है, पाकिस्तानी सरकार और वहां की हुकूमत, वहां की सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की गोलियों से 27 लोग मारे गए। हालात तब बेकाबू हुए जब पीओके में चल रहे एक शोक सभा पर इन पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग कर दी। आसिम मुनीर के इस नरसंहार में, इस कत्लेआम में 27 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब इस घटना के बाद से पाकिस्तानी सेना वहां के हुक्मरानों के नाक में लोगों ने दम कर दिया। आप सड़कों पर ये प्रोटेस्ट देखें, ये भारत का हिस्सा है पाक अधिकृत कश्मीर, वहां पर किस तरह से जुल्म हो रहा है, 27 लोगों को मार डाला गया, 27 लोगों का कत्लेआम कर दिया पाकिस्तान ने, कत्लेआम कर दिया आसिम मुनीर ने, लोग बेबस और अब सड़कों पर उतरकर, अब आंखों से आंखें मिलाकर, लाल आंखें दिखाकर आसिम मुनीर की सेना का सामना कर रहे हैं लोग, बल्कि सिर्फ सामना नहीं कर उनको पीछे खदेड़ने के लिए भी सड़कों पर अब खड़े हो गए। यह गुस्सा यह आक्रोश देखने को मिला सड़कों पर जब पाकिस्तान की आर्मी आसिम मुनीर की सेना को पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनको पीछे खदेड़ा है लोगों ने ही, 27 लोगों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया, गोलियों से भून दिया, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं इस समय। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। खाट, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई अस्पताल नहीं, देखिए कैसे ताबड़तोड़ गोलियां आम लोगों पर बरसाई गई, उसका विजुअल है। ऐसा नहीं हवाई हवाई बता, आप तस्वीर देखिए। और गोली लगने के बाद गिरते ये वहां के आम कश्मीरी हैं। एक तरफ भारत जहां कश्मीर में लोग खुशहाल, तरक्की की राह पर, पर कैपिटा इनकम में आगे जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, टनल्स बन रही हैं अत्याधुनिक, दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर, वहां पर कितना जुल्म, कितना सितम ढाया जा रहा है लोगों पर। आप इस तस्वीर को देखिए। अब ब्रिटेन तक पहुंच गई है पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए गए नरसंहार के गूंज। एक बड़ी खबर आपको देते हैं, लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तानी सरकार जो आसिम मुनीर है उनके खिलाफ ये हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया, लोगों ने नारेबाजी की है। पाकिस्तानी सेना के द्वारा की गई गोलीबारी का जमकर विरोध किया गया। तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सत्ता ने पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया।
1: हम करेंगे, हम करेंगे, हमारा है आजादी, आजादी।
0: ये नाराजगी, ये बवाल, ये आक्रोश सब आपने देख लिया है, लेकिन 27 लोगों को भून दिया पाकिस्तान की आसिम मुनीर की सेना ने, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ हैं। अशरफ, उन बेगुनाहों का क्या कसूर, बेकसूर लोगों को क्यों मार रही है पाकिस्तानी सेना, क्यों मार रहा 27 लोगों को?
2: दरअसल अगर देखें तो ये बहुत पुराना मामला है पीओके में, जहां लगातार लोग प्रदर्शन पिछले 2 साल से कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तीव्रता तबाही, जब वहां पर ज्वाइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई, जो कई सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समूह है, उसमें आम लोग शामिल हैं। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना की जो दादागिरी, न सिर्फ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान जो कि अलग प्रांत बनाया है पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एरियाज के नाम से, वहां पर भी लोगों का ये रोष है, उन पर काफी दबाव डालती है पाकिस्तानी सेना शुरू से ही। और अब ये उग्र हो गया है, क्योंकि हमने देखा जब इमरान खान की सरकार थी तब कुछ हद तक बातचीत की प्रक्रिया सरकार की इन लोगों के साथ शुरू की गई थी, लेकिन जब से आसिफ मुनीर वहां के सेना प्रमुख भी बन गए हैं, चीफ ऑफ स्टाफ भी बन गए हैं, तब से इन लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर पिछले साल भी कई सारे लोग मारे गए थे, जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, बड़े लंबे विरोध प्रदर्शन हुए थे। और अब ये कल से हम देख रहे हैं कि दोबारा जो है ये प्रदर्शन तीव्रता पकड़ रहे हैं। और जब लोग मारे जाते हैं तो जाहिर है कि उग्र भीड़ हो जाती है, वो सेना के कैंपस पे, सेना के ठिकानों पर, पुलिस के ठिकानों पर हमला करती है। और उसी बीच जो है पुलिस का दावा है,
0: लेकिन अशरफ ऐसा भी नहीं कि कोई पहली बार है, लेकिन अब लोग ऐसा लगता है कि ज्यादा सहने को तैयार नहीं है, और ये दिखाई दे रहा है सड़कों पर उतर कर, जब आप खुद हाथ में पत्थर ले लेते हैं और मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये मालूम होते हुए कि सामने वालों के हाथों में बंदूकें हैं, वहां की आर्मी सशक्त है और वो गोली चलाएगी, उसके बावजूद भी ये उनकी हिम्मत है, ये उनके हौसले हैं जो सड़कों पर दिख रहे हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गोलीबारी को लेकर एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी को लेकर 50 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने चिंता जता दी है। 50 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने नाराजगी और चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर ब्रिटिश सांसदों ने सवाल उठाए। ब्रिटिश सांसदों ने अब पत्र लिखा है, तत्काल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हटाने, शांतिपूर्ण बातचीत की बहाली के लिए राजनयिक कदम उठाने की भी मांग की गई है, या अपील की गई है। हम आपको लेटर भी दिखा रहे हैं आपको। 50 से ज्यादा ये सांसद है जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक्सपोज होता पूरा दिख रहा है। 50 ये वो सांसद हैं ब्रिटेन के जिन्होंने नाराजगी जाहिर की है। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh, yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
10: $20 billion of precious metal sold to 1.8 million customers means Atmex knows how to help you find the investment you want, when you want it. Our logistics experts get it to you fast, and our support team is ready to solve any issue by phone, email, or chat. Over 220,000 reviews have one common thread: satisfied customers insisting we're the best precious metals retailer. When you're ready to join them, shop Atmex.com. That's APMEX.com.
11: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
12: Oh, ouch.
11: However you make money work, we can work with that.
7: Mobile carriers, message, and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटिफुल

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
1: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
2: Oh, ouch.
1: However you make money work, we can work with that.
3: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: Jazz fans, rejoice. Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
5: In association with
6: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
5: Hint, bade aaram se.
6: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Vimal, bolo zuba kesri.
7: Punjab National Bank, bharose ka prati.
8: ये सहमति बनी कि एसआईआर मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। वो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रोसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है, हम सभी यूनानिमसली इसको दी है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा, वहां रिजॉर्ट में शिफ्टिंग। 18 जून को होनी है वोटिंग। मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। टीएमसी के बागियों को ममता के समर्थकों का चैलेंज, हिम्मत है तो पार्टी छोड़कर जीते चुनाव। 20 सांसदों की बगावत का दावा, कई पार्षद भी छोड़ रहे हैं टीएमसी। के सर्वोच्च शिखर पर पीएम मोदी कल रचेंगे इतिहास। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने की तारीफ। 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। पाकिस्तान के कब्जे से निकलने को बेताब हुआ पीओजे के। मुजफ्फराबाद में मुनीर आर्मी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश, पाक रेंजर्स की गोलियों से 27 की मौत के बाद भड़का गुस्सा। सबसे ऊंचे और मॉडर्न जोजिला टनल में अंतिम ब्रेक थ्रू कामयाब। पहाड़ में हुआ आखिरी ब्लास्ट, नितिन गडकरी और मनोज सिन्हा रहे मौजूद। हर मौसम में कश्मीर से जुड़ा रहेगा लद्दाख।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं खबरें असरदार, आपके साथ हूं मैं नेहा बासन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि नीट परीक्षा मामले से जुड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा को लेकर जायजा लिया है, पूरे सिस्टम को किस तरीके से एनटीए दफ्तर में किया जाता था वहां पर तैयारियों का जायजा शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा को लेकर लिया है। ये परीक्षा दरअसल दोबारा होनी है, तो ऐसे में कोई गड़बड़ी, कोई धांधली दोबारा ना हो, शिक्षा मंत्री खुद एनटीए के दफ्तर पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए।
2: चाहिए क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है, उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पे पहुंच जाना, जिस जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है। इस बार हम लोग थोड़ा और ज्यादा प्रिकॉशन लिए हैं, इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था और आज मीटिंग हो गया है। पिछले दिनों में महाराष्ट्र की खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने मीटिंग लिया। मैंने बीते काल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस विषय में फिर बातचीत की थी। राज्यों की एक प्रस्तुति हो रही है, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव इस बार परीक्षा की रिजल्ट सटीक समय में ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें, निर्भुल तरीके से री नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे, आप उसमें सहयोग करें।
3: और बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी होंगे सर?
4: एक और बात, जिस तरीके से आप इस बार कह रहे हैं कि एयर फोर्स का भी उपयोग करेंगे, इस बार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम होंगे, क्योंकि जिस तरीके से साइबर अटैक इन तमाम चीजों को भी चीजें हम देख रहे हैं?
2: देखिए, चुनौती अनेक प्रकार की पहले भी रही है, इस बार भी है, लेकिन हमने जैसे आपको कहा ना, भारत सरकार की सभी व्यवस्था, स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी स्तर की मीटिंग, मैंने इस बीच में आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, आज मैं शाम को देश की स्वास्थ्य मंत्री जी को मिलूंगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी नज़र है इस विषय में, सारे वरिष्ठ नेतृत्व की इस पर निगरानी है, हम सबकी सहयोग पा रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सहयोग करने, मेरा पूरा भरोसा है, हम इसकी दायित्व को उतार पाएंगे।
4: एक और बात, जो पिछले दिन आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था मौसम अनुकूल है छात्रों का, उसको लेकर भी खास ख्याल रखा जाएगा।
2: मैंने जो राज्य के साथ बातचीत हमारी हो रही, सारे को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि उस समय के मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार, विशेष करके हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, जब जब भी एनटीए की इस प्रकार की बड़ी परीक्षा हुई है, उनके सहयोग रही है, इस बार भी उनकी तैयारी हो रहा है। स्वयं हमारे डीजी लगभग सभी कलेक्टरों से प्रत्यक्ष बात भी कर रहे हैं, एक समय में हम राज्यों के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, जिस राज्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता उसको भी ध्यान दिला रहे हैं।
4: एक और बात, अभी आपने कहा कि इस बार एनटीए को स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि इसमें जो लूपहोल्स है, दिक्कतें हैं, वो दूर हो, जैसे कभी इस तरीके से दोबारा दिक्कतें ना आए, तो क्या क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?
2: देखिए, इस विषय का अभी अनुसंधान चल रहा है, सीबीआई उसकी तह तक जा रही है, पिछले दिनों में गड़बड़ी क्या हुई, कहाँ हुई, मेरा पूरा भरोसा सीबीआई के ऊपर है, और सीबीआई को हमने अनुरोध भी किया है, जिन दोषियों को इस बार पकड़ा गया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सीबीआई उनकी क्रिमिनलिटी को तय करके उन पे केस करे, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल किया जाए, उनको एकदम एग्जाम्पलरी दंड भी दिया जाए। उसके अलावा जिन लोगों की हमारे साथ एग्रीमेंट था, एक पैक्ट था कि भाई वो लोग अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, उन्होंने कमिटमेंट को ब्रिज किया है, ट्रस्ट को ब्रिज किया है। हमने एनटीए को दायित्व दिया है कि उसके कानून समीक्षा करे, क्या उनके ऊपर सिविल लायबिलिटी की भी केस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। एनटीए कानूनी सलाह कर रहा है उस विषय में भी ध्यान देने के लिए।
5: सर इस मामले को लेकर ये भी खबरें आती है कि प्रधानमंत्री खुद जो है
2: हाँ स्वयं निश्चित देखो ये जब मैंने इतने सारे विषय का कह रहा हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी इतने सारे सरकार के बड़े बड़े नेतृत्व जब इन्वॉल्व है स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी दायित्व दिए वो चिंता कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं इस सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है आप रखिए हम जो जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे सटीक परीक्षा करवाएंगे।
1: तो सभी राज्यों के साथ तालमेल बिठाया गया है इस बार नीट परीक्षा को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। उन्होंने नीट परीक्षा को लेकर अब एनटीए दफ्तर का जायजा लिया है क्योंकि लगातार सवाल एनटीए की कार्य प्रणाली को लेकर उठ रहे थे। उनके सीनियर अफसर और दिग्गज जो लोग थे उस दफ्तर में तैनात उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। और अब बात उत्तर प्रदेश की जिसके चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ एनडीए के सामने कड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। तमाम कोशिशों के बावजूद कल की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो खरी खोटी सुनाई है उसके बाद ये सवाल मौजूद हो गया है कि क्या अखिलेश ने कांग्रेस पर ज्यादा सीटें नहीं मांगने का दबाव बनाया है।
6: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये तस्वीर गठबंधन की एकता की सुनहरी मिसाल पेश करती दिखी। ममता को भले ही सोनिया की सहानुभूति का आलिंगन मिला हो लेकिन इस बैठक में राहुल के साथ की कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन ने यूपी चुनाव की अहमियत साबित कर दी। और जब मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश को बोलने का मौका दिया गया तो अखिलेश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने नाराजगी का पिटारा खोल दिया। अखिलेश ने पूछा आज डीएमके कहां है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बिठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए।
7: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
6: और आखिरकार अखिलेश यूपी के मसले पर आए और कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो तीन कैटेगरी में बंटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में लड़कर दो नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीट ऐसी है जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दो नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद को दावेदार समझने लगी है। 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना चुके हैं। खासकर टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश बेहद संजीदा है और खबर है कि अखिलेश ने संभावित उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है और स्थानीय पार्टी नेताओं के फीडबैक के आधार पर सूची बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन इस सर्वे टीम की अगुवाई कर रहे हैं। यानी अखिलेश अपनी छांटी हुई सीटें कांग्रेस को ऑफर करने का मन बना रहे हैं लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें मंजूर होंगी। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर इस वक्त सीआईडी की टीम पहुंची है। अभिषेक बैनर्जी को आज बुलाया गया था। अभिषेक को नोटिस देने के मामले में ममता के घर इस वक्त सीआईडी की टीम मौजूद है। कई बार समन जा चुका है सीआईडी की तरफ से, लेकिन अभिषेक बैनर्जी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। अभिषेक को नोटिस देने गई है सीआईडी। तो ममता बैनर्जी चुनाव में क्या हारी? पार्टी में साथ छोड़ने वालों की जैसे होड़ सी लग गई है। एक एक करके सब ममता का साथ छोड़ रहे हैं। पार्षद हो, विधायक से सांसद तक ममता से मुंह मोड़ रहे हैं। 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने के लिए खत लिख दिया है।
8: सो इट इज यूजलेस टू से दैट जस्ट बिकॉज शी इज नॉट इन पावर इन वेस्ट बंगाल।
9: Preeti, this party was made of its workers. This party was not made of these aaya ga ram gaya ram.
10: वो कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई, आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है। जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा।
11: 40 साल से ममता बनर्जी की विश्वस्त रही काकोली घोष को अब अपनी दीदी पर विश्वास नहीं रहा। ममता के खिलाफ बगावत की अब वो अगुवा हैं। जिस शताब्दी रॉय का राजनीतिक भविष्य ममता ने संभाला सवारा, वो अब ममता का भविष्य तबाह करने पर तुली है। और ये फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। ममता से बारी बारी सभी बिछड़ रहे हैं। अपनों का साथ छूटता जा रहा है, विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही है। पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया है। यहां तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं।
8: आई हैव बीन विद ममता बनर्जी फॉर 40 इयर्स। शी हैज बीन माय गाइड, माय मेंटर एंड माय लीडर। एंड आई हैव बीन विद हर इवन इन द डेज व्हेन शी वाज नॉट इन पावर। आई हैव कॉन्टेस्टेड इन 5 इलेक्शंस एंड लॉस्ट बिफोर 2009। सो इट इज यूजलेस टू से दैट जस्ट बिकॉज शी इज नॉट इन पावर इन वेस्ट बंगाल आई हैव लेफ्ट। इट इज नॉट दैट आई वॉज विथ हर व्हेन शी वॉज नॉट इन पावर।
11: ममता बनर्जी कितनी अकेली और असहाय हो गई हैं, ये सोमवार को दिल्ली में साफ हो गया। सोमवार को एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर पूरी मुनादी के साथ। इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाई, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है। शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी 20 सांसद बगावत करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन टीएमसी का कहना है कि स्पीकर को खत काकोली घोष की तरफ से गया और वो अब पार्टी की चीफ व्हिप नहीं रहे। उनकी जगह पहले ही कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया गया था।
12: इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था, बैकग्राउंड कुछ नहीं है इसमें, बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, दीदी के साथ हूँ, खड़ा हूँ।
11: तो अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है। उन पर है कि वो बागियों को सदन में मान्यता देते हैं या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती फंसती और अकेली पड़ती जा रही है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
1: और ममता के लिए बुरी खबर का सिलसिला थम नहीं रहा है। झटका लगता है और जब तक वो उस झटके से संभल पाती हैं, दूसरा झटका उन्हें झकझोर देता है। टीएमसी में आया राम गया राम की ऐसी रेस चल पड़ी है कि फिरहाद हकीम जैसे ममता के विश्वस्त भी बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
13: 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। आने वाला दिन में और भी अच्छा हो।
11: सही फरमा रहे हैं शुभेंदु, मौसम बदल रहा है, बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। शुभेंदु के लिए मौसम खुशगवार और मजेदार है, पहली बार बंगाल की सत्ता के बाहर है। पूर्ण बहुमत की सरकार है तो टीएमसी में फूट और बगावत का ज्वार है, मतलब कि मौसम की मार ममता बनर्जी झेल रही है। उनके लिए मौसम इतना दुश्वार है कि हर कदम पर अब चुनौतियों की भरमार है। दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिए। सोमवार को ममता के एक और विश्वस्त फिराद हकीम ने ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात की। फिराद हकीम कोलकाता के मेयर रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही पद छोड़ दिया। कल उन्हें विधानसभा में संदीपन साह के साथ ऋतव्रत के चैम्बर में जाते देखा गया था। फिराद हकीम का परिचय किसी से छिपा नहीं है, वो ममता की कोर टीम के सदस्य रहे। ममता ने उन्हें कोलकाता का मेयर बनाया। जब भी केंद्र से लड़ाई में प्रशासनिक मदद की जरूरत पड़ी तो फिराद हकीम ममता के साथ खड़े दिखे, लेकिन अब उनकी निष्ठा डगमगाती दिख रही है।
14: सर आपने मीटिंग किया है,
15: आपकी की ममता बंदोबस्त संघ छाड़ ले,
16: नो कमेंट्स।
14: बहुत सांसद
11: फिराद और यूसुफ, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने पद और मौका दिया, लेकिन वक्त बदलते ही सब बदल रहे हैं। खबर ये आई कि ममता बनर्जी बरहानपुर सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा जाना चाहती है। खबर ये भी आई कि यूसुफ पठान ने बरहानपुर सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, वो वहाँ से सांसद है। खुद यूसुफ पठान ने ऐसी किसी घटनाक्रम से इनकार किया है और कहा है कि उनसे किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया।
17: अरे कुछ नहीं, मैंने वो मुझे हराने के लिए वहाँ तैनात किया गए थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए उनको तैनात किए गए थे मुझे हराने के लिए और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए। ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाई जान को वोट दो, इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं हूं, दादा मतलब हिंदू है, इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो, तो किसका मैंडेट था ये?
11: लेकिन ममता के वफादारों की तरफ से यूसुफ पठान पर हमले हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कहा,
18: क्या आपको अमित शाह ने बुलाया है जो दिल्ली जाने की इतनी जल्दी है? थोड़ी हिम्मत दिखाओ, आपने देश के लिए खेला है, हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है, थोड़ी शर्म करो और साहस दिखाओ।
11: जाहिर है अगर धुआं उठ रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं आग भी भड़की है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।
1: बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया है, जिसके तार पीजीआई से जुड़ते दिख रहे हैं। आरोप यह है कि पहले बहला फुसलाकर लड़की को जाल में फंसाया गया, फिर उसे अगवा कर लिया गया। बड़ी बात यह कि परिवार वाले इस पूरे मामले में लखनऊ पीजीआई के एक डॉक्टर को सबसे बड़ा मददगार बता रहे हैं।
19: अभी लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद वाले जाल की पड़ताल चल ही रही है। किसी बीच लखनऊ के एक और बड़े अस्पताल से जुड़े डॉक्टर की लव जिहाद वाली साजिश में शामिल होने की बात सामने आ गई। मामला लखनऊ पीजीआई से जुड़ा है। एक युवती के गायब होने पर परिवार वालों ने जबरन धर्मांतरण और अपहरण का आरोप लगाया। पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है, कैसे साजिश की बात सामने आ रही है, ये बताने से पहले इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक लड़की नकाब पहने नजर आ रही है। लड़के की दूसरी तस्वीर भी नकाब में ही है। तीसरी तस्वीर में आरोपित इरशाद अली भी लड़की के साथ ही नजर आ रहा है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इसे लव जिहाद से जोड़कर बताया जा रहा है और इस केस का पीजीआई कनेक्शन क्या है? लापता लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि एसी के काम के सिलसिले में इरशाद अली उनके घर आया, फिर बहनों से परिवार वालों से संपर्क बनाया, परिवार वालों के साथ कुछ तस्वीरें ली, फिर बेटे की तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे परेशान करने लगा।
20: आया, मैं ये एसी का काम करता था तो मेरे बेटे को पहले फंसाया इसने, तो मेरे घर तक एसी के काम में ले जाने लग गया और मेरे घर तक आया और उसी टाइम रक्षाबंधन का टाइम था, मेरे बच्चे राखी बंधवा रहे थे, उसी टाइम आकर के बैठ गया, बीच में आकर के बोलने लगा बहन मेरे भी राखी बांधो, और मेरे बच्चों के साथ फोटो करवाया, मेरे बच्चों का फोटो हटा करके और मेरी बेटी का फोटो लगा दिया उसने, और उसी ब्लैकमेल में उसको पता नहीं कैसे उसने ब्लैकमेल करने लगा उस फोटो।
19: परिवार की माने तो पुलिस में इसकी शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपित की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई।
16: पिछले एक साल से परेशान करता चला आ रहा है सर। हम इसको इसकी शिकायत हम थाना पीजीआई में कई बार कर चुके हैं। एक बार हमारी लड़की को लेकर के हमको अपने हवाले करने को ले कह रहा था कि हमारी अपनी लड़की को मेरे हवाले कर दे नहीं तो साले जान से मार दूंगा सर। फिर मेरे सिर पे वार कर दिया, मैंने एक FIR किया, FIR को NCR में बदल दिया। तो डॉक्टर अजमल ने इसकी जमानत ली है और डॉक्टर अजमल इसकी आए दिन मदद करते रहते हैं।
19: अब परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी 21 मई को नौकरी के लिए बाहर गई, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग बेटी के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही इस पूरी साजिश में पीजीआई के एक डॉक्टर के शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है।
21: KGMU के धर्मांतरण की तरह पीजीआई में डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा है कि वह मददगार है उस आरोपी का, जो एक युवती, हिंदू युवती को लेकर फरार हो गया है। यही नहीं, इससे पहले वह घर में घुसता है, वो भी रक्षाबंधन पर राखी बंधवाता है और उसके बाद नमाज की बात करता है, बुर्का की बात करता है। और अब माता पिता का आरोप है कि वह लड़की को लेकर सीरिया चला गया है, क्योंकि वह बात बात पर सीरिया की बात कहता था। इस धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर सनसनीखेज सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू संगठन भी अब आगे आ गए हैं और लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आखिर किस तरीके से एक शख्स पूरी तरीके से इस लड़की को लेकर फरार हुआ है और अब सर्च ऑपरेशन जारी है।
19: आरोप सनसनीखेज हैं, मामला गंभीर है। लखनऊ पीजीआई से जुड़ा एक डॉक्टर भी शक के दायरे में है। इन आरोपों के बीच पुलिस की जांच तेज है, CCTV की पड़ताल हो रही है, लड़की के कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लड़की को सुरक्षित लाकर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक।
1: खबरें असरदार मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
22: एकोजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिना गड़बड़ी होगी परीक्षा। अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा भाप, रिकॉर्ड में की शिफ्टिंग, 18 जून को होनी है वोटिंग, मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। टीएमसी के बागियों को ममता के समर्थकों का चैलेंज, हिम्मत है तो पार्टी छोड़कर जीते चुनाव, 20 सांसदों के बगावत का दावा, कई पार्षद छोड़ रहे हैं टीएमसी। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रचेंगे इतिहास, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने की तारीफ, 10 जून को तोड़ेंगे पंडित नेहरू का रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से निकलने को बेताब पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, मुजफ्फराबाद में मुनीर आर्मी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश, पाकिस्तान रेंजर्स की गोलियों से अब तक 27 की मौत के बाद भड़का गुस्सा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो गुड।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। हम आपको सीधे लिए चलेंगे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर, जहां इस समय पाकिस्तान की सेना एक स्वतंत्रता संग्राम को रौंद रही है। जो पाकिस्तान खुद बारूद की ढेर पर बैठा है वो दूसरों के घर में आग बुझाने की नौटंकी कर रहा है, जो उसे करना नहीं चाहिए। लेकिन हर तरह से दिवालिया हो चुका पाकिस्तान, उसकी बेशर्मी, किस तरह से वो दुनिया को बेवकूफ बनाने की साजिश रच रहा है, ये पूरी कहानी मैं आपको चार तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये आपके स्क्रीन पर इस समय चार तस्वीरें हैं। इस वक्त पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स, यानी पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय, वहां पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, लेबनान के आर्मी चीफ जनरल रोडोल्फ हिकल को शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनरल हिकल इस समय पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान ईरान अमेरिका के बीच बिचौलिया इस समय बना हुआ है। दूसरी तरफ लेबनान पर इसराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो आग बरसा रहे हैं, सीज फायर लगभग दम तोड़ चुका है। और जो फ्लॉप ब्रोकर है आसिम मुनीर, जो दलाली कर रहा है हर ओर, ये रावलपिंडी में दुनिया को शांति का ज्ञान बांट रहा है। लेकिन उसी के घर में क्या हो रहा है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर जनरल आसिम मुनीर खिड़की खोले और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर नजर डाले, POJK पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर, वहां पर स्थिति देख ले, आग लगी हुई है वहां पर वहां की आवाम स्वतंत्रता चाहती है, फ्रीडम चाहती है। और जिस वक्त वो लेबनान के आर्मी चीफ से हाथ मिला रहे हैं, उसी तरफ पाकिस्तान की सेना अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर गोलियां बरसा रही है। मतलब जनरल डायर ने क्या किया होगा जो इस समय पाकिस्तान की सेना पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में कर रही है, और जो विरोध है, जो विद्रोह है, जो स्वतंत्रता की आग है, वो आपको पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की सड़कों पर दिखेगी। POJK में, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में, जो वहां की आवाम है, दरअसल है तो वो हमारे लोग, हमारी भारत की वो का इलाका है, पूरा अवैध कब्जे में है पाकिस्तान के 1947 से। वहां पर पाकिस्तान की पंजाब सूबे से आई सेना गोलियां चला रही है, लाशें बिछा रही है, हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। जनता जो वहां की आवाम है, वो ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, मुनीर हाय हाय, आसिम मुनीर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी वापस जाओ कह रहे हैं, पाकिस्तान में आसिम मुनीर के दहशतगर्द होने के नारे लग रहे हैं पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में। सच तो इस समय यह है कि पाकिस्तान वो नाकाम और फ्लॉप दलाल है जो ना तो अमेरिका और ना ही ईरान के बीच समझौता करा सका है, ना ही लेबनान को सुलगने से रोक पा रहा है, और ना ही क्योंकि पाकिस्तान में केवल अवैध जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पाकिस्तान का एक एक सूबा, क्या खैबर पख्तूनख्वा, क्या बलूचिस्तान, क्या सिंध और क्या पाकिस्तान का पंजाब सूबा, वहां पर पाकिस्तान की सेना ने तहरीके लब्बैक पे गोलियां चलवा दी थी। लेकिन ये तो पाकिस्तान की वो आवाम है, दो चीजें उनमें इस समय कमी है, एक हिम्मत नहीं है, दूसरा पेट में उनके दाना नहीं है। तो जब पेट में दाना नहीं है, अनाज नहीं है, गोलियां खा रहे हैं, अनाज नहीं खा पा रहे हैं, तो कैसे विद्रोह करेंगे। पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन दुनिया की क्या वो खाक बुझाएगा आग, जमीनी स्थिति क्या है, ये हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।
3: उबल रहा है पीओके, पीओके में इंटरनेट बंद, सेना तैनात, गोलीबारी से बिगड़े पीओके के हालात, 25 से ज्यादा की मौत, कई घायल। संगीनों का साया, मुनीर का असली चेहरा सामने आया। पाकिस्तान से ब्रिटेन तक प्रदर्शन का दौर, विद्रोह दबाने को पाक लगा रहा सेना का जोर। पाकिस्तान की सरकार और सेना की हरकतें जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, तो विद्रोह की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आखिर क्यों विद्रोह की आग में जल रहा है पीओके? आखिर क्यों पाकिस्तान सरकार और सेना के हाथों से फिसल रहा है पीओके का नियंत्रण? इस खास पेशकश में देखिए पाकिस्तानी हुकूमत की साजिशों और आवाम के आंदोलन का हर अपडेट, हर एक्शन।
0: सोचिए, जनाजे पे गोलियां चला देते हैं पाकिस्तान की आर्मी वाले पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में। जो इस समय आजादी की जंग है ना, वो बुलंद हो रही है। आवाम अब सड़कों पर उतर आई है, क्या मुजफ्फराबाद, क्या बिंबर, क्या कोटली, क्या रावलाकोट, शहर शहर, कस्बा कस्बा इस समय सुलग रहा है। और बड़ी खबर इस समय पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फराबाद से आ रही है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान की सेना ने खुलेआम जम्मू कश्मीर की आवाम पर, यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम पर गोलीबारी कर दी है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले जो प्रदर्शन चल रहा है, हम आपको वो तस्वीरें थोड़ा छिपा रहे हैं, ओट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों का जो दावा है, उनका कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों को गोली मारी गई है। वहां अखबार या मीडिया के मुताबिक 27 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध समय गोलियां बरसा रही है। ये जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुजफ्फराबाद की है। आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं और लोगों का चिल्लाना भी सुन सकते हैं। सुनिए, पाकिस्तान आर्मी गो बैक के नारे लग रहे हैं इस समय, पाकिस्तान आर्मी गो बैक, ये नारे लग रहे हैं पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के मुजफ्फराबाद में। और अब ये कहा जा रहा है कि एक लॉन्ग मार्च में सब आ जाएं, अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरह इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, अगर आवाम नहीं निकली, अब अगर आवाम नहीं निकली तो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो कश्मीरी वहां के हैं, जो पाक अधिकृत जम्मू के लोग हैं, वो बेहद परेशान हो जाएंगे। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये जो लॉन्ग मार्च की बात इस समय चल रही है, पाकिस्तान आर्मी गो बैक आसिम मुनीर की तुलना जनरल डायर से की जा रही है, दरअसल हो क्या रहा है इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में?
4: देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तानी कब्जे वाला जो कश्मीर है, उस पीओके के इलाके के अंदर जबरदस्त क्रैकडाउन इस समय देखने को मिल रहा है। उस जनता के खिलाफ जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत से अवैध तरीके से कब्जाए हुए इस इलाके को कथित तौर पर आजाद बताने की कोशिश की थी। ना वहां पर इस समय आजादी नजर आ रही है, ना वहां पर कश्मीरियत नजर आ रही है। वहां नजर आ रहा है तो केवल पाकिस्तान का चलता हुआ चाबुक, उसकी चलती हुई गोलियां और आंसू गैस के गोले। और ये सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि वो आवाम अपना हक मांग रही है। वो मांग रही है कि वहां के स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो उनके बच्चों के लिए सीट्स हैं, वो सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए, उनको वो जगह मिलनी चाहिए। साथ ही बाहर से जिस तरीके से लोगों को लाकर बसाकर वहां डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ नाराजगी है। आटे और बिजली से शुरू हुआ ये जो लोगों का विरोध प्रदर्शन था, बीते 3 सालों के दौरान हमने देखा है कि हर बार उस पर झूठे दिलासे दिए गए, कमिटीज बनाई गई, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया गौरव। और यही वजह है कि अब जो जनता का गुस्सा सड़कों पर नजर आया है, चाहे वो मिंबर के इलाके में हो, चाहे वो रावलाकोट के इलाके में हो, चाहे दरियाल के इलाके के अंदर हो, सीधी नॉर्थ के इलाके के अंदर हो, इन तमाम शहरों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेट बैन के बावजूद, कम्युनिकेशन क्रैकडाउन के बावजूद, वो बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान के FCTC वहां पर लगातार जो है वो ज्यादतियां मुसलसल कर रही है। और जिस तरीके से वहां पर क्रैकडाउन किया,
0: ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये अब वहां की आवाम कह रही है। इस बड़ी खबर पर आप नजर रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि न जाने कितने नकाब, कितने झूठ, कितनी साजिशें अपनी वर्दी के अंदर छिपाकर घूमता है पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के और हुक्मरान। कहने को तो दुनिया भर में शाबाज शरीफ और मुनीर शांति दूत बनकर घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखिए, अपने ही देश में, कभी बलूचिस्तान में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध पानी के लिए रो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहां कॉलोनी निकालकर जब पानी अपने लिए रख लेती है, तो कभी पाकिस्तान के पंजाब में तहरीके लब्बैक पर गोलियां चला दी जाती है। और अब ये देखिए पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के पंजाब सूबे से लाए रेंजर्स गोलियां चला रहे हैं, पाकिस्तान की सेना गोलियां चला रही है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के हक मार रहे हैं। दुनिया ये सच्चाई जानती है, आज तक ये सच्चाई दुनिया को दिखा रहा है। अब अपने घर में शांति कायम रख पाने में नाकाम पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पाकिस्तान की सेना है, वो अपने जैकबूट्स, अपने बूट के तले पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर की आवाम को दबाना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर तक, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, और पाकिस्तान के सब पंजाब सूबे में भी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से लोग परेशान हैं। हर दूसरे दिन विरोध की खबरें आती हैं। भारत के जिस जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर, और इसमें वो गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है, अवैध रूप से पाकिस्तान उसे अपना नॉर्दर्न एरियाज कहता है, वो हमारा है, पाकिस्तान उसे कब्जाए बैठा है, वहां के जो हालात है ना, क्योंकि जो मुफलिसी है, पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, उनकी आर्मी सारा पैसा खा जाती है, जनता के लिए पैसा है नहीं, वहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, जो पाकिस्तान की आर्मी का गढ़ माना जाता है, वहां लोग अपने परिवारों में से अपने परिवार के सदस्यों को बेच देते हैं, कभी चीनियों के हाथ तो कभी कहीं और, ताकि दो वक्त की रोटी खा सके। यह है जमीनी स्थिति पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सेना अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों पर गोलियां बरसा रही है क्योंकि आटा नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान की आर्मी वो आटा ले जाती है, वहां आटा भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अंतिम संस्कार और शोक सभा में जो लोग जा रहे हैं उन्हें तक बख्शा नहीं जा रहा है, इस कदर नाराजगी है, क्योंकि वहां भी मतलब पाकिस्तान की सेना को कफनचोर तक यहां कहा जा रहा है, वहां गोलियां चलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी खौफ सेना के खिलाफ जो नाराजगी है समेत इस कदर बड़ी हुई है कि उसकी गूंज आपको लंदन में भी सुनाई देगी। पाकिस्तान के उच्चायोग के दरवाजे पर वहां के जो मीरपुर के इलाके के लोग, चाहे मीरपुरी सारे ना हो, लेकिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं, कह रहे हैं जो वहां के प्राकृतिक संसाधन है, जो नागरिक संसाधन है, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ऐशो आराम के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो नेता हैं उनकी नीयत इतनी खोटी है कि इस खूबसूरत इलाके को वो बेच रहे हैं। इसके खिलाफ हर वर्ग के लोग इस समय सड़कों पर हैं और इस समय गोलियां भी खा रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। जमीनी स्थिति क्या है, 9 जून यानी आज के दिन पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में एक बड़े बंद की बात की गई, लेकिन लोगों से क्या कहा, वहां पर जो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनसे कहा गया कि अपने घर से आ जाएं और बैठे रहें तब तक जब तक पाकिस्तान की सेना निकल ना जाए। हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में शाबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको नारेबाजी भी सुनवाएंगे। स्थानीय पुलिस और सेना के जवानों के साथ इस इलाके में लगातार झड़पों की खबरें आ रही हैं। इस बंद का जो आह्वान है वो JCAA नाम के संगठन ने किया है, जिस पर चार दिन पहले प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का आलम है, लेकिन लोगों ने सेना के खिलाफ इस कदर गुस्सा दिखाया कि जगह जगह लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। सुनिए,
5: सरकार हमें, हम आतंकवादी नहीं, हम बागी हैं।
0: और इस समय बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी का अत्याचार इस समय पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहा है, विदेश मंत्रालय ने भी इस पर एक बयान दिया है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में बर्बरता की खबरें हमने भी देखी हैं, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश बेनकाब हो गई है, बर्बरता के कारण प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, ऐसा रणधीर जायसवाल एडिशनल सेक्रेटरी और प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के, उनका कहना है। क्या कहा उन्होंने? POJK में इस समय जो संग्राम चल रहा है, आजादी की जो लड़ाई चल रही है, उस समय क्या कहना है उसका, सुनिए।
6: देम बीइंग इंडियन नेशनल्स, दे ऑल 24 हैव बीन रेस्क्यूड एंड दे आर सेफ। आवर एम्बेसी for this purpose, for the evacuation and rescue purpose, they contacted the Omani authorities who swung into action. We were in touch with several other stakeholders, including Ministry of Shipping here and MRCC and other stakeholders. We thank and we are grateful to the Omani government for their excellent little support details in rescue about mangoes and fruits. I don't have an visibility on this particular issue, but I guess Commerce Ministry would be in a better position to.
0: अच्छा, प्रश्न यहाँ ये उठता है, आखिर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जो जम्मू और कश्मीर है वो उबल क्यों रहा है, और खासतौर पर अब आखिर क्यों वहां पर जो नागरिक है वो पाकिस्तान की सेना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वहां की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। आखिर क्यों पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज आने से अभी भी कतरा रहा है? क्योंकि वहां के लोगों का कहना यह है कि एक बात तो साफ है, जब भी आपको हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ना होता है तो आप पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को आड़ बना लेते हैं, वहां बम जो गिरते हैं वहां गिरते हैं, लेकिन जब वहां पर रसद सामग्री देने की बात आती है, शिक्षा देने की बात आती है, जब वहां कॉलेज और अस्पताल बनाने की बात आती है, तो सारा पैसा पाकिस्तान के पंजाब सूबे में चला जाता है, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के टुकड़ों को बेचा जाता है, वहां कश्मीरी कम और पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान ज्यादा क्यों आ गए हैं, देखिए ये रिपोर्ट।
7: लगातार फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है जी।
3: संगीनों के साए में गूंज रही आजादी की आवाज, शरीफ और मुनीर की करतूतों से POK नाराज, नापाक सरकार से मुक्ति के अभियान का आगाज, जनाजे में जुटे लोगों पर गोलीबारी, ये नरसंहार पड़ेगा मुनीर को भारी। मुनीर की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की करतूतों से लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो रही है। इस बार मुनीर की सेना ने POK में सारी हदें पार कर दी हैं। POK में लोग काफी वक्त से बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले 9 जून को बंद का ऐलान किया गया और उससे पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और सेना के खिलाफ लोगों के इकट्ठा होने से मुनीर इस कदर भड़के हुए थे कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को इन लोगों पर खुलेआम गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि रावलकोट में शोक सभा में शामिल 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और कई लोगों के लापता होने का भी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है। पीओके के लोगों का आरोप है कि उनकी आवाज को गोलियों की आवाज से दबाया जा रहा है, बुनियादी सुविधाएं तक इस इलाके में नहीं दी जा रही हैं और इस बारे में पिछले साल हुए मुजफ्फराबाद समझौते की कई शर्तें या तो लागू नहीं की गई हैं या फिर उन्हें आंशिक तौर पर ही लागू किया गया है। नाराजगी इस कदर है कि लोग कह रहे हैं कि न्याय नहीं दे सकते तो हमारे ऊपर एटम बम ही गिरा दो।
8: कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो, तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक के आजादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
3: प्रदर्शनकारी सेना और पुलिस के रवैये से बेहद खफा है। उनका कहना है कि हमें गेहूं और बिजली चाहिए, गोलियां नहीं।
9: क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या जब हम ऐसे अपने बुनियादी हकों लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा? दोस्तों, एक इंसान जब अपना पूरा मन प्रोग्राम करके अपने रास्ते की तरफ जा रहा होता है तो उसको आप पकड़ के गिरफ्तार करने की कोशिश करते हो, उधर आप लोगों के ऊपर फायरिंग चलाते हो, तो फिर मुझे बताया जाए ये कौन सी जमहूरियत है? आखिर मुझे भी बताया जाए कि जब आप बात करते हो तो आप कहते हैं ये मुल्क जमहूरियत में, तो जमहूरियत का नाम लेता है, तो मुझे बताया जाए ये कौन सी जमहूरियत है।
3: 9 जून के बंद के ऐलान के बाद पीओके में हालात और खराब होते जा रहे हैं। पूरे इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। मुनीर के लिए अपने घर को संभालना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। खैबर से लेकर बलूचिस्तान तक विद्रोह की ज्वाला कई बार उनके मंसूबों को जला चुकी है। हर बार पाकिस्तानी सेना को स्थानीय लोगों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे आवाम पूरी तरह से शहबाज शरीफ की सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी है। एक तरफ शरीफ और मुनीर की जोड़ी पाकिस्तानी शहरों में शांति स्थापित करने में ही नाकाम साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ वो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए दुनिया भर में शांति दूत बने घूम रहे हैं। उनकी नीयत का ही नतीजा है कि ना तो उनके घर में शांति देखने को मिल रही है, ना ही ईरान में। आज तक ब्यूरो।
0: दरअसल ये सारी लड़ाई अधिकारों की है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में वहां की आवाम को अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सीटों का जो आरक्षण है उसमें भी फायदा बाहरी लोगों को है। किस तरह से आप पीओके की राजनीति का नंबर गेम देखिए। 12 सीटों को लेकर जो खूनी बवाल है, 53 सीटें हैं, 45 सामान्य है, 8 आरक्षित सीटें हैं जो महिलाओं के लिए, उलेमा के लिए, टेक्नोक्रेट और विदेश में रहने वाले कश्मीरियों के लिए है। 12 शरणार्थियों के लिए भी आरक्षित सीटें हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। यहां पर भी बाहरी लोग वो फायदा ले जाते हैं और इसी से गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर जो बवाल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोग आटा मांग रहे हैं, लोग नौकरियां मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे तो अपने कोई है ही नहीं जो हमारी बात उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आरक्षित सीटों की वजह से स्थानीय प्रतिनिधित्व कम हो रहा है, यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग ना उन्हें स्कूल मिल रहे हैं, ना कॉलेज मिल रहे हैं, ना उनकी असेंबली में, वैसे भी वहां पर सरकार संसद तो केवल नाम मात्र के है, लेकिन उसमें भी बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। पीओके में 27 जुलाई को जो चुनाव होने वाले हैं, इमरान खान की पार्टी ने 42 में से 25 सीटें जीत ली थी, उन्होंने सरकार बनाई। इमरान खान इस समय जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तान में, और आसिम मुनीर जानबूझकर इमरान खान को जेल में सड़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर इमरान खान बाहर आ गए तो आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू, आसिम मुनीर की यही कोशिश है कि इमरान खान को जेल में ही खत्म कर दिया जाए ताकि उसका एक छत्र राज पाकिस्तान में बतौर फील्ड मार्शल निरंतर चलता रहे। लेकिन अब वहां पर विरोध की, विद्रोह की, स्वतंत्रता की आग न केवल बलूचिस्तान में बल्कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दे रही है। और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning. One heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Flexibility is the foundation of WGU School of Education. With WGU, you have the option to take courses when it works for you. And while our programs are centered around you and your schedule, you'll never go it alone. You'll have one-on-one mentorship and support from faculty every step of the way. From day one to graduation, WGU empowers you to become the best teacher you can be. Learn more at wgu.edu.
15: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
16: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
5: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल,
6: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी?
5: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल,
6: सीबीएसई के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
5: छात्रों को दिया मंच,
6: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
7: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
8: आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
5: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर,
6: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
5: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

एक पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पकड़े गए लोगों पर हुए सख्त कार्रवाई, उन्हें ऐसी सजा मिले जो बने मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मामले पर नजर, री एग्जाम को लेकर पुख्ता बंदोबस्त। अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा भांप, रिजॉर्ट में शिफ्टिंग, 18 जून को होनी है वोटिंग, मीनाक्षी नटराजन की सीट, हंसने का डर। दिल्ली में सोनिया ममता की मुलाकात के बीच कोलकाता में टीएमसी सुप्रीमो के घर पहुंची सीआईडी की टीम, सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी को नोटिस देने गई थी एजेंसी।

पर नायडू और देवेगौड़ा ने की प्रशंसा, 10 जून को तोड़ेंगे पंडित नेहरू का रिकॉर्ड। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सेना की बर्बरता पर भारत का कड़ा जवाब, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ठहराए पाकिस्तान को जवाब दे, नाकामी छिपाने की पाकिस्तान की कोशिश, मानवाधिकार का भारी उल्लंघन, 27 की मौत।

0: इसराइल ईरान में फिर छिड़ेगा महासंग्राम। इसराइली हमलों से दहल उठा लेबनन। हिजबुल्ला के हमलों का भयानक जवाब। दक्षिणी लेबनन में तबाही और बर्बादी। क्या ट्रंप की चेतावनी से टल गया ईरान पर हमला? नेतन्याहू अगली बार न रुकेंगे न झुकेंगे। ईरान से नई डील के लिए ट्रंप ने तय की डेडलाइन। ट्रंप करेंगे करार या नेतन्याहू मचाएंगे हाहाकार?
1: और रणभूमि के इस भाग की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। कल ईरान और इसराइल के बीच 15 घंटों तक जंग रही। बड़ी खबर उसी जंग को लेकर है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि कल हुए इसराइल के हमले में ईरान के दो सैनिकों की मौत हुई। पहली बार ईरान ने कल के हमले में मौत को लेकर यह बयान दिया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ये दोनों जो सैनिक हैं ईरान के, वो एक एयर डिफेंस यूनिट में तैनात थे। कल इसराइल ने पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। उन्हीं हमलों के दौरान ईरान की एयर डिफेंस यूनिट के दो सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बारे में ईरान ने आज औपचारिक तौर पर बयान दिया कि इजरायली एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स में उसके दो सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद ईरान और इजरायल इस समय दोनों एक दूसरे पर वार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्ला पर वार निरंतर इजरायल की तरफ से जारी है और हिजबुल्ला के लड़ाके भी उत्तरी इसराइल को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं और इसी पर अंदेशा यह है कि यह जंग फिर भड़क सकती है। और इस वक्त ईरान और इसराइल के साथ चली 15 घंटे की जंग को लेकर एक और खुलासा हो रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर एक बड़े और भीषण हमले का हुक्म दे चुके हैं। रनवे पर इसराइल के लड़ाकू विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च होने के लिए लॉक्ड है, लेकिन चंद मिनट पहले ही, यानी जैसे ही ईरान पर हमले का आखिरी ऑर्डर देने वाले थे नेतन्याहू, उन्होंने फिर एक ऑर्डर दिया कि ये अटैक इस समय ना हो। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत, जिसमें नेतन्याहू को दी गई एक सख्त चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी कि अगर इसराइल ने ईरान पर फिर हमला किया या बड़ा हमला किया तो इसके बाद वो जंग अकेले ही लड़नी पड़ेगी। अमेरिका जंग से अलग हट जाएगा, अमेरिका उनके साथ जंग में शामिल नहीं होगा। और इसके बाद ही खबर यह है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिर से अटैक करने का जो फैसला है वो पलट दिया, लेकिन यह भी साफ किया कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो इसराइल की तीनों सेनाएं, इसराइल की वायुसेना, नौसेना और सेना, पूरी ताकत के साथ ईरान और ईरान समर्थित आतंकी संगठनों का जवाब देगी। दरअसल रविवार से लेकर सोमवार दोपहर तक ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कई बार बातचीत हुई और दोपहर आखिरी बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि झगड़े को अब और आगे न बढ़ाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के चैनल 12 न्यूज से कहा कि मैंने नेतन्याहू को चेतावनी दे दी कि अगर उन्होंने इस हालात में युद्ध को और आगे बढ़ाया या बदल दिया तो ईरान के खिलाफ इसराइल अकेला पड़ जाएगा। जब 5 देशों ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने को कहा तो मैंने ईरान के खिलाफ इसराइल की जवाबी कार्रवाई का दायरा सीमित करने की कोशिश की। इसके बाद नेतन्याहू ने ईरान पर अगला हमला रोक दिया, लेकिन इसराइल की सेना ने इस दौरान जबरदस्त इसराइल की सेना में भी कंफ्यूजन रहा कि अगला हमला करना है या नहीं। अगला हमला तो नहीं किया, लेकिन हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशंस को और तेज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख के बाद नेतन्याहू ने ईरान पर हमला तो रोक दिया, लेकिन एक बात साफ है कि इसराइल ईरान का जो प्रॉक्सी है, यानी उसका जो आगे युद्ध लड़ता है आतंक का युद्ध हिजबुल्ला, उसे बख्शने के मूड में नहीं है। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्ला दोनों को एक खुली चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान और हिजबुल्ला ने फिर से हमला किया तो इसराइल अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। हिब्रू भाषा में पहले से रिकॉर्डेड 3 मिनट से कम के बयान में नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार की बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया तो उन्होंने आईडीएफ को पूरे ईरान में सैन्य और आर्थिक ठिकानों पर हमले का हुक्म दे दिया। जैसे ही ईरान और हिजबुल्ला ने हमला रोका तो इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई को और आगे नहीं बढ़ाया, उस पर ब्रेक लगा दिया, यानी एस्केलेट नहीं किया। लेकिन अक्टूबर में चुनावी जंग लड़ने जा रहे नेतन्याहू न केवल ईरान को बल्कि ट्रंप को भी यह बता देना चाहते हैं कि अगर इसराइल पर दोबारा हमला होता है तो फिर इसराइल किसी को सुनेगा नहीं, वो ईरान पर और हिजबुल्ला पर और हमले करेगा। हिजबुल्ला और ईरान को दी गई चेतावनी आखिर है क्या, हम आपको वो सुनवाते हैं।
2: איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה. וזה גם לא יקרה, לא במשמרת שלי.
1: और नेतन्याहू की चेतावनी के बावजूद इसराइल पर जो हमले हैं, इसराइल के हमले ईरान के प्रॉक्सीज पर वो रुक नहीं रहे हैं। इस बार ईरान ने अपने प्रॉक्सी यानी जो एक छद्म आतंकी संगठन है हूथी विद्रोही को यमन में, उन्हें भी सक्रिय कर दिया है। नेतन्याहू के चेतावनी के कुछ घंटे बाद इसराइल पर यमन से ड्रोन अटैक से हमला हुआ। यह हमला इसराइल के तटीय शहर इलात में हुआ। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलात के ऊपर मंडरा रहे हूथी ड्रोन को मार गिराया। इलात बंदरगाह के पास तैनाती इजरायली नौसेना के युद्धपोत में लगे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और सफलतापूर्वक हवा में ही उसे ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर ड्रोन हमला किया। लेबनान से 2 ड्रोन इसराइल की सीमा में घुसे लेकिन उन्हें भी मार गिराया गया। इसराइल से इस सीजफायर का उल्लंघन सीधे तौर पर माना जा रहा है हूथी और हिजबुल्ला विद्रोहियों के खिलाफ। इसराइल ने कहा है कि उसके ऑपरेशन जारी रहेंगे। और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि इसराइल किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका जवाब देगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भी अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 2 या 3 दिन में ईरान के साथ एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। ट्रंप का यह बयान बीती रात आया। उन्होंने यह भी बताया कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनकी बात मान ली, क्या बातचीत हुई उसे भी विस्तार से बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल पर हमला हुआ था इसीलिए इसराइल ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके लिए नेतन्याहू को गलत नहीं कहा जा सकता, अगर हमला नहीं होता तो इसराइल पलटवार नहीं करता। सुनिए।
3: A very good conversation, and he was hit, and he hit back, and I can't blame him for that. But he was hit; he hit back, forth, and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away; it'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
1: तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन इस तरह की बातें वो पहले भी कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल डील की तारीफ की बल्कि ये कहा कि अब तो बस शांति हो ही जाएगी। ट्रंप 8 से 10 बार कह चुके हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं, अगले 2 दिन में हो जाएगी, अगले 3 दिन में हो जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा, कई बार ये कह चुके हैं। खुद ट्रंप ने ईरान के साथ तोड़ी थी परमाणु डील, यानी जो एक ज्वाइंट एक्शन प्लान दोनों ही देशों का के बीच में था, JCPOA, डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर निकल आए थे, लेकिन ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसके बारे में हमने आपको अभी विस्तार से बताया, इसमें बकायदा इसमें US, UK, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी, यानी P5+1 6 देश, उन्होंने बकायदा गारंटी ली थी। जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, IAEA की किस तरह से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की किस तरह से निगरानी होगी, परमाणु कार्यक्रम पर रोक के बदले पाबंदी से राहत मिलेगी, ईरान का जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा उसे दिया जाएगा, लेकिन ट्रंप ने कहा ये डील बहुत बुरी है और वो इससे बाहर आ गए, मैं और बेहतर डील करूंगा। लेकिन बेहतर डील करने के बजाय युद्ध और शुरू हो गया, डील नहीं हुई और दुनिया अब इसका खामियाजा भुगत रही है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का मौका मिल गया है। ट्रंप उसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर अब एक नई डील चाहते हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये डील बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन ऐसा वो कई बार पहले भी कह चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और हॉर्मूज को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसमें जो सवार दोनों क्रू थे, उन क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया। अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है, एक अटैक गनशिप है, AH-64, एक क्लोज एयर प्रोटेक्शन टैंकों के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों के लिए, जहाजों के लिए ये है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दुर्घटना का शिकार हुए पायलट इस समय सुरक्षित हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका मंगलवार को इस घटना की पूरी रिपोर्ट जारी करेगा, यानी कल 8 जून को ये दुर्घटना हुई और अगले 2 दिनों में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कल ही अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में एक ऐसी कार्रवाई की जिसमें 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी। दरअसल अमेरिकी सेना ने नाकेबंदी तोड़ रहे एक बड़े मालवाहक जहाज पर एक सटीक एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले एक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने ओमान की खाड़ी में एक मर्चेंट टैंकर मैरिवेक्स नाम के टैंकर पर सटीक निशाना साधा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक चेतावनी को नजरअंदाज कर ईरान की तरफ बढ़ रहे जहाज के इंजीनियरिंग और स्टीयरिंग रूम को मिसाइल से उड़ा दिया गया, जिससे जहाज वहीं रुक गया। अच्छा, ये पलाऊ के झंडे तहत तले चलने वाला जो जहाज था, ईरान से तेल तस्करी के लिंक के कारण पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था। बड़ी चिंता यह थी कि इस जहाज पर 24 जो क्रू थे वो भारतीय थे। राहत की खबर यह कि हमले के बाद एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ओमान की वायुसेना और भारतीय अधिकारियों की मुस्तैदी की वजह से जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया और पूरी कार्रवाई में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अच्छा, ईरान की धमकी के बावजूद लेबनान पर इसराइल का जो हमला है वो इस समय भी जारी है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ एक भीषण हमला बोल दिया है। इसराइल के हवाई हमले में 8 लोगों की मौत की खबर इस समय सामने आ रही है। इसराइल का यह हमला एक मशहूर लेबनानी इलाके में हुआ। हमले से कुछ देर पहले इसराइल की सेना ने नागरिकों को वो इलाका खाली करने का आदेश दे दिया था। ये दक्षिणी लेबनान के टायर इलाके से बेहद चौंका देने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां इसराइली वायुसेना ने इतनी भीषण बमबारी की कि पूरा रिहायशी इलाका एक तबाह हो गया। और एक बड़ी खबर भारत से। दुनिया का जो सबसे ऊंचाई वाला और बेहद खास इलाका है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का जोजिला सुरंग का वो इलाका, जोजिला दर्रे का इलाका, आज यहां इतिहास रचा जा रहा है। आज यहां आखिरी ब्रेक थ्रू कर लिया गया है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
4: जिला ब्रेक थ्रू होने के बाद आज तक आज उसी दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरने वाला है। हम इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है। मैं जोजिला सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच हूं, द्रास से यानी लद्दाख से श्रीनगर की ओर आगे बढ़ा हूं लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बाद, और तब हमें दिखाती है कि कैसे तकनीक और इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इस सुरंग का निर्माण किया गया जिसका डायमीटर अपने आप में विशालकाय है। और इसी तरह की विशालकाय मशीनों का इस्तेमाल करके जो नैटम टेक्नोलॉजी कहते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के जरिए इस सुरंग को बनाया गया, फिर उसके स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी ढांचे के रूप में अगर आप देखें तो सुरंग का दोनों मुहाना आपस में मिल चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। और अब ऐसी ही मशीनें जब दोनों तरफ से, चूंकि लॉजिस्टिक आना जाना आसान हो जाएगा, और इस तरह कुछ इस तरह की रेल ट्रैक बनाए गए, इन रेल ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, इससे इनका मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है और इसीलिए निर्माण कार्य को बहुत ज्यादा आसानी से और उसको काफी रफ्तार मिलती है। और आखिरकार दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर जोजिला निर्माणाधीन टनल से होते हुए लद्दाख के द्रास जिले से अब हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले पहुंच चुके हैं। तो पूर्वी पटल जो थे वो लद्दाख में आता था और ये इलाका अब दरअसल गांदरबल में है, अब हम जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ये टनल जोड़ेगी, सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। 13 किलोमीटर का रास्ता इस निर्माणाधीन इमारत से आज तक की टीम ने जायजा लिया, निर्माण की हर वो तस्वीर हमने देखी है कि कैसे एक मार्वल इंजीनियर जिसे कहा जाता है, तकनीक का आधुनिकतम, सबसे आधुनिक नमूना जो अब इस हिमालय के बीचों बीच जो तैयारी हो रही है, जल्दी ही ये उन तमाम लोगों के लिए भी तैयार होएगा। अभी कुछ समय जरूर लगेगा क्योंकि निर्माणाधीन है, लेकिन एक बार ये बनकर तैयार हो गया तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी।
1: लद्दाख को साल भर जोड़े रखने में इस टनल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, सामरिक दृष्टि से LOC हो या LAC, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। और इसका बरसों से इंतजार था, 2026 में एक सपना साकार हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go, so you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.

हिंदुस्तान का गौरव है चोचिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग की अंतिम बाधा को ट्रिगर किया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया।

0: आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है, मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी सुरंग है। ये कामयाबी अब हिंदुस्तान के नाम है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। देश को समर्पित किए जाने से पहले आखिरी ब्रेक थ्रू काफी अहम है। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। आवागमन, लॉजिस्टिक्स और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलने वाली है। मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, लद्दाख आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR car, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
5: सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है.
6: तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति
5: और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे. हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला. हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है. राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था. लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग. रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं.
7: एक घर के भीतर कुछ लोग हैं. दीवार पर जीसस का क्रॉस है. यहाँ भीड़ जमा है. आरोप है कि यहाँ कुछ सनातन धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया जा रहा है. धर्म परिवर्तन की यह खबर हिंदू दल के नेताओं को लगी तो मामला सुलग उठा. हिंदू शेर सेना के पदाधिकारी तुरंत यहां पुलिस के साथ पहुंचे. सुनिए यहां क्या बात हो रही है.
8: हिंदू हो ना?
9: हाँ, हिंदू है सर.
8: तो यहाँ क्या कर रहे हो?
9: यहाँ सर वो है, बताइए
8: आप अपने घर में क्या करा देंगे?
9: ये सर हम बताएंगे. हाँ. ये सर हम बताएंगे, ये नहीं बताएंगे.
8: अच्छा,
9: देख लीजिए. नमस्कार.
8: हाँ, नमस्कार.
9: मैं इतना मैं परेशान था.
8: हाँ.
9: ये सब बात को बताएंगे, मैं बताऊंगा. चोरी नहीं कर रहा हूँ मैं सर.
8: हाँ.
9: मेरी सुन लीजिए.
8: आप परेशानी बता.
9: ठीक, परेशानी मैं बताऊंगा.
8: भैया ये इनकी डायरी ले लीजिए. डायरी बाइबल होगी और डायरी होगी.
7: घर के भीतर सभा आयोजित करके हिंदू समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था.
10: आज स्थानीय लोगों द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिली कि रामनगर, जो कि रामकोट थाने के पास पड़ता है, वहां पर कुछ लोगों द्वारा ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. इसकी सूचना हमको मिली, जिस पे हम लोगों ने वहीं थाने में एक एप्लीकेशन दी और पूरी पुलिस टीम के साथ जाकर वहां जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे थे, जिसमें एक लखीमपुर का व्यक्ति था मंजीत कुमार नाम का, और जिसके घर पर यह धर्म परिवर्तन हो रहा था, उन लोगों को वहां जाकर पकड़वाया.
7: अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें एक व्यक्ति की पहचान लखीमपुर खीरी निवासी मंजीत के रूप में बताई जा रही है, जबकि 2 अन्य विष्णु और नंद किशोर स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस ने मौके से बाइबल समेत कुछ अन्य धार्मिक साहित्य भी बरामद किया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अरविंद मोहन मिश्रा, सीतापुर आज तक.
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए
12: इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पकड़े गए लोगों पर हो सख्त कार्रवाई, उन्हें ऐसी सजा मिले जो बने मिसाल, पीएम मोदी की मामले पर नजर, री एग्जाम को लेकर पुख्ता बंदोबस्त। अपने विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु लेकर चली कांग्रेस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का खतरा भांप, रिसॉर्ट में शिफ्टिंग, 18 जून को होनी है वोटिंग, मीनाक्षी नटराजन की सीट फंसने का डर। दिल्ली में सोनिया ममता की मुलाकात के बीच कोलकाता में टीएमसी सुप्रीमो के घर पहुंची सीआईडी की टीम, सूत्रों के मुताबिक अभिषेक को नोटिस देने गई थी एजेंसी। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी कल रचेंगे इतिहास, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद का कीर्तिमान बनाने पर नायडू और देवेगौड़ा ने की तारीफ, 10 जून को तोड़ेंगे नेहरू का रिकॉर्ड। पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता पर भारत का बड़ा जवाब, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ठहरा है जवाबदेही, नाकामी छिपाने की पाक की कोशिश, मानवाधिकार का भारी उल्लंघन, 27 की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। इन दिनों देश में सियासी दंगल ऐसा मचा है कि कोलकाता से दिल्ली तक और दिल्ली से लखनऊ तक तापमान सर चढ़ा हुआ है। एक तरफ कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है तो दूसरी तरफ अब कल यानी 10 जून को एनडीए की बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक मोदी राज के खिलाफ प्लान बनाने के लिए हुई, एनडीए की बैठक मोदी राज के 12 साल के कामकाज के प्रसार का प्लान बनाने के लिए होगी। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश से लेकर तमाम क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से शिकवा शिकायतों की और यूपी चुनाव में ज्यादा सीटों की हसरत नहीं पालने की नसीहत भी दे दी, तो दूसरी तरफ बंगाल में अधीर रंजन चौधरी टीएमसी और ममता के खिलाफ मोर्चा खोला बैठे हैं। आज थोड़ी देर पहले एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंची, दूसरी तरफ बंगाल सीआईडी की टीम पैरामिलिट्री लेकर कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट वाले घर पर अभिषेक बनर्जी को खोजने पहुंच गई थी। तो इतनी हलचलों के बीच चर्चा ये हो रही है कि इंडिया गठबंधन मिलजुल कर कैसे बीजेपी की सियासत का मुकाबला कर पाएगा। एक तरफ टीएमसी टूटी जा रही है और बीजेपी पर सवाल उठा रही है, तो अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेसी नेता ममता राज और टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल की शिकस्त को देखते हुए इंडिया गठबंधन यूपी में फतेह के मोर्चे को तैयार करना चाहती है, लेकिन यह सियासी कोशिश का ऊंट किस करवट बैठ पाएगा कहना फिलहाल मुश्किल है। पक्ष विपक्ष के चुनावी जंग में इन्हीं तमाम संभावनाओं और आकांक्षाओं पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
3: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
4: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
3: अखिलेश ने शुरुआत क्या की, कांग्रेस के रवैये से दुखी सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना अपना दुख सामने रखना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर ही हमले करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भी चुनाव में कांग्रेस मनमाने तरीके से फैसले लेते रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा कि डीएमके टीएमसी सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल में राहुल और प्रियंका ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। उद्धव ने कहा कि बिना संयोजक के ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चेहरा तो तय करें।
5: We raised the issue, they explained in what context such statements were made, that's all.
6: When India alliance is a broad-based alliance against BJP, how the topmost leader of the alliance can state that? See, left parties are part of BJP. So this is a fundamental question. So this was raised.
3: बैठक से बाहर निकले लेफ्ट नेताओं ने कहा कि सोनिया और राहुल ने सप्रेम शिकायतें सुनी और कबूल की, लेकिन उनकी सफाई लेफ्ट को कबूल नहीं।
7: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
3: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए। बात सीट की नहीं, जीत की है। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा। हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है, जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
8: हालांकि सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
3: वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की तारीख कुछ ऐसी है कि 2017 में जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश को सीट बंटवारे में 298 सीट मिली, लेकिन 311 सीटों पर लड़ गए। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर रही 15.11%। इसी तरह कांग्रेस के हिस्सों में 105 सीटें मिली थी, लेकिन 114 पर लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट था तब 6.14, लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों दलों में बात नहीं बन पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों ही दलों का प्रदर्शन खराब हुआ था और कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%। कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर 2 सीट केवल जीत पाई और स्ट्राइक रेट गिरकर 0.50% रह गया। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों दल फिर साथ आए, और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ गठबंधन में, तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती, दर रही 59.68%। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती, 41.17% की दर पहुंची थी। अखिलेश का विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले 2 गुना से अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है, इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांग सकती है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो अब इंडिया गठबंधन के सामने असली चुनौती अगले साल जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तब होने वाली है, और क्या उस वक्त इंडिया अलायंस की यह बैठक कारगर साबित होगी, क्योंकि मुख्य विषय इस बात को लेकर भी था कि क्या कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर अपने सहयोगी दलों से कैसे बात करती है, क्या एनडीए की तरह इंडिया गठबंधन के भीतर भी ये सारे मसले चुनाव से पहले सुलझाए जा सकते हैं या नहीं सुलझाए जा सकते, कितना फायदा होगा इंडिया अलायंस को कल की बैठक का, चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से चर्चा में शामिल होंगे, मोहम्मद एहतिशामुल हक ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है कोलकाता से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और आशुतोष और प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तीन सवाल मेरे पैनल के सामने, कल की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत होगा या और कमजोर होगा, क्योंकि कई सवाल अखिलेश यादव तेजस्वी यादव और बाकी सहयोगी दल भी उठा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि डीएमके को अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या करेगी, कई सवाल इसको लेकर बाकी है। दूसरा सवाल, क्या टीएमसी की कांग्रेस में विलय की खबरों में थोड़ी भी सच्चाई है या सिर्फ शिगुफा, थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही है, वहां से लेकर भी कुछ खबरें आएंगी, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तीसरा सवाल, क्या कल अखिलेश यादव की शिकायतों के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन की राह और कठिन होगी क्या, क्योंकि अखिलेश यादव सबसे पहले यह सवाल उठाते हुए कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर इस वक्त टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर, जिसकी बात मैं कर रहा था, विलय को लेकर तरह तरह की अफवाह शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से टीएमसी में लगातार टूट फूट होती जा रही है, उसी वक्त यह बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी का सोनिया गांधी से बार बार मिलने के पीछे कहीं ये भी बड़ी खबर हो सकती है क्या। सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें छपी है कि कल की बैठक में भी ममता बनर्जी के सामने मर्जर का विकल्प रखा गया था, टूट रही टीएमसी की हालत को देखते हुए क्या ममता की पार्टी का विलय होगा, यह बड़ा सवाल है। थोड़ी ही देर पहले ममता बनर्जी करीब एक घंटे की मुलाकात के बाद 10 जनपद से निकली है, और इससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज कह चुके हैं कि ममता को अब कांग्रेस पार्टी में विलय कर देना चाहिए। राहुल गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल क्या अपडेट है, सोनिया गांधी से आखिरकार ममता बनर्जी की मुलाकात होती है, कल भी हम देख रहे थे बगल में बैठी थी तब भी ये खबरें चल रही थी, अधीर रंजन चौधरी एक तरफ कह रहे हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस टिक नहीं सकती, बेटर ये होगा कि उनमें जो नाराज लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में चले आए, तो क्या अधिकृत तौर पर मर्जर की कुछ बातें।
4: देखिए फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस पर लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर एक लंबे वक्त के अंतराल के बाद आज मुलाकात हुई ममता बनर्जी की, एक घंटे ये बैठक चली है, और आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए ममता बनर्जी यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो एक मॉरल सपोर्ट, एक पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल कर सके गांधी परिवार से, सोनिया गांधी से। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जाहिर है उनकी बड़ी से है लोकसभा के अंदर, लोकसभा में जो टीएमसी के सांसद हैं वो बागी हैं। जहाँ तक बात है अधीर रंजन चौधरी की, ना सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि अन्य नेता भी ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप नहीं जाना चाहते बीजेपी के अंदर और आप संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे पास आ जाइए, वो तो हमलावर है ममता बनर्जी के ऊपर, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर किसी ने खत्म किया है बंगाल के अंदर तो वो टीएमसी ने खत्म किया है कांग्रेस पार्टी को। तो एक तरफ आप ये देखिए कि समय दिया जाता है, 4 बजे की अपॉइंटमेंट दी जाती है ममता बनर्जी को 10 जनवरी की तरफ से, और ठीक उसी समय जो बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी बंगाल के वो हमला करते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, और साफ तौर पर ये कहते हैं कि देखिए हमारा कोई रास्ता नहीं है ममता बनर्जी या टीएमसी के साथ में, और ये सत्ता के भूखे लोग हैं। तो आप अभी ये कह सकते हैं कि एक महीन,
0: राहुल अभी थोड़ी देर पहले आपने अधीर रंजन चौधरी से बात की थी, आप जरा मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मुझे इस पर आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन जरा अधीर रंजन चौधरी ने आपसे क्या कहा था वो भी जरा एक बार दिखा देते, क्योंकि 3 दिन पहले जब मुझसे बात कर रहे थे तब भी उन्होंने यही प्रस्ताव वहां पर रखा था, लेकिन उनका असली मानना यह है कि तृणमूल कांग्रेस अब टिक नहीं पाएगी, जरा एक बार सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर राहुल गौतम के पास दोबारा चलेंगे।
9: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, आज से नहीं सालों से कहते आ रहे हैं, ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
0: जैसे ही सत्ता से दूर हो जाएगी पार्टी खत्म हो जाएगी राहुल। एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी इससे दोहरा रहे हैं और इसी वक्त ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात भी वहां पर कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर भी तृणमूल कांग्रेस को समा लेने के लिए बातचीत हो रही है? क्या वो उसके लिए तैयार है? और खास करके राहुल गांधी, क्योंकि ममता बनर्जी के रिश्ते सोनिया गांधी से तो हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन दिक्कत राहुल गांधी को लेकर हमेशा उनकी रही है।
4: देखिए, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिश्ता है वो बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं है जैसा ममता बनर्जी और सोनिया गांधी का रहा। और मुझे याद है कि जब गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही थी बंगाल के अंदर, उस समय भी राहुल गांधी ने बंगाल के नेताओं को कहा था कि अब गठबंधन नहीं होने वाला, आप तैयारी करिए। और फिर 294 सीटों पर, तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। जहां तक ये बात है मर्जर होने की, देखिए इसको लेकर अभी भी आप कह सकते हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तमाम चीजें जो है वो हवा में है। इसका कारण यह है कि देखिए, आपका जो लेजिस्लेटिव पार्टी है वो बागी हो गया है, आपका लोकसभा का दल बागी हो गया है, तमाम तरफ से घिरी हुई है। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तब सीआईडी की टीम
0: हवा में तब शुरू होती है जब हवा का रुख वहां पर बदलना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से झटके खा रही है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी और मांग की थी कि इंडिया अलायंस की बैठक यहां पर होनी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कुछ इसके बारे में कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अब यह वक्त आ चुका है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के भी टूटे हुए धड़े अब एक साथ आ जाए, फिर उसमें ममता बनर्जी हो सकती है या महाराष्ट्र में शरद पवार भी हो सकते हैं?
10: देखिए साहिल जी, जो मोदी जी की दिल्ली की सरकार है वो एक साल के अंदर गिर जाएगी, ये सबको भी पता है, राहुल जी ने भी बता चुके हैं, लोगों को ऐसा महसूस भी हो रहा है, क्योंकि इस देश अब इससे तो बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब गिर जाएगी तो विपक्ष की भूमिका बड़ी हो जाती है। उस समय की भूमिका को निभाने के लिए विपक्ष लामबंद हो रहा है, विपक्ष हम सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उस समय मध्य चुनाव हो या जो भी चीज़ हो, इस देश को विपक्ष ही बचा सकता है। मोदी जी के बस में नहीं है, जो नेशनल डिजास्टर अलायंस है NDA, उसके बस में नहीं है कि इस देश को बचा सके। उसका नाम ही है नेशनल डिजास्टर अलायंस, देश को बर्बाद कर रहा है। लोकतंत्र तो पसंद नहीं है हमारे आदरणीय मोदी जी को, विपक्ष पसंद नहीं है, प्रश्न पसंद नहीं है, मतभिन्नता पसंद नहीं है, तो उसको तोड़ते हैं। आज से नहीं, आप शुरू करिए, जब से सत्ता में आए हैं उत्तराखंड से शुरू हुआ था सरकारों को लूटने का, उसके बाद वोट को लूटने की शुरुआत हुई और अब देश को लूट रहे हैं। 15.5 लाख तक के घोटाले हो जा रहे हैं, चर्चा नहीं होती, कोई परीक्षा ठीक से करा नहीं पाते हैं, पूरा द्वीप का द्वीप बिक जा रहा है, अरबों पेड़ करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं, महंगाई कहां तक पहुंची है, किसी चीज को मना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि आप लोग विदेश में जाइए, इनके कितने मंत्री कितने जुडिशरी के लोग क्या करने विदेश में गए हैं, खुद ये और इनके कितने CM रोजाना रैलियां कर रहे हैं, एक एक रैली के बसें गाड़ी घोड़ा तेल पानी देखिए ना, तो सिर्फ ज्ञान बघारना, इससे देश नहीं चलता। देख लिया देशवासियों ने कि भैया आप कुछ नहीं संभाल सकते, हर चीज पे हर जगह करप्शन और आपकी इनकम्पेटेंसी दिख रही है कि लोग ऊब चुके हैं। एक पीढ़ी 10 साल बहुत होता है, 18 साल का नौजवान 28 साल का हो गया,
0: लोग
10: उसे नौकरी पाने का
0: तो अवसर खो दिया। वो बात, ये बात क्यों नजर आ रही है कि आज भी इंडिया अलायंस के गठबंधन की जब मीटिंग होती है तब सबसे पहले बार अखिलेश यादव यहां पर सवाल उठाना शुरू करते हैं कि भाई जरा सीट शेयरिंग ठीक से किया करिएगा, जरा कोऑर्डिनेशन रखा करिएगा, बिना कोऑर्डिनेशन के हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तो बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज के दिन में क्या, जो मैंने सवाल पूछा था
10: जी, जवाब दो
0: कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि अगर लोहा लेना है तो साथ में आकर लड़ना होगा, अलग अलग लड़ेंगे तो फंसते रहेंगे। जिस तरीके से RJD के नेता भी वही कह रहे थे कि एन मूवमेंट पर आकर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए, तो ये थोड़ा बदलाव भी चाहिए ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए।
10: जी जी बता रहा हूँ साहिल जी, देखिए इंडिया गठबंधन पॉलिटिकल लोगों का गठबंधन है, नॉन बायोलॉजिकल किसी का नेतृत्व इसको नहीं है। तो जहाँ पॉलिटिकल लोग हैं, तमाम अपनी अपनी विचारधाराओं के लोग हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे ही। हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल पर्सनालिटी का लीडरशिप नहीं है, हमारे पास बायोलॉजिकल पर्सनालिटी का लीडरशिप है। और दर्जनों हैं जो PM से बेहतर क्षमता रखते हैं। और ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, पिछले 24 के चुनाव में भी बता रहे थे 400 पार आप लोग, और आप लोगों के एक्सपर्ट एनालिस्ट और जो जर्नलिस्ट हैं बता भी हमने देखा सुना, अब बता रहे थे यूपी में 73 से 75 सीटों से कम नहीं आएगा बीजेपी का, ये सब बता चुके हैं आप लोग पिछले चुनाव, फिर वो शुरू हो रहा है, कहीं नहीं मिलने वाली, सब लोग समझ गए हैं बैसाखियों पे।
11: एक साल के बाद अगर मोदी सरकार नहीं करेगी तो दोबारा आपसे भी मैं पूछूंगा सर, क्योंकि अभी आपका दावा ही है।
10: हाँ हाँ एकदम।
11: और 24 के बाद में जिस तरीके से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, वो भी वहां पर देखा जाएगा, तब भी आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चुनाव हम हार सकते हैं, और एक के बाद एक देख रहे हैं कि लगातार चुनाव हार रहे हैं।
10: चुनाव हम लोग साहिल जी चुनाव लूटा जा रहा है, चुनाव हो कहां रहा है आपको लगता है क्या? आप अपने ईमान से पूछिए, दिल से, क्या चुनाव खरीदे नहीं जा रहे हैं, वोट खरीदे नहीं जा रहे हैं, क्या संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्षता पूर्वक भूमिका निभा रही हैं?
11: प्रेम शुक्ला जी,
10: अब बोलते भले कुछ हो, लेकिन
11: मिलाकर अभी भी इंडिया अलायंस, खास करके कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बैठी हुई है कि एक साल के बाद आपकी सरकार गिर जाएगी। भाई पूरी पूरी ताकत तो आपके पास है, आपके पास अभी बहुमत तो साफ शब्दों में यहां पर नजर दिखाई दे रहा है, नंबर्स में तो साफ हमें बहुमत यहां पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी किस बात का इंतजार कर रही है आज की स्थिति में? इंडिया अलायंस की गठबंधन में तो कुछ और ही बातें सामने आती है।
12: देखिए इंडिया अलायंस खुद जो है खंड खंड होने के कगार पर है, और जो है आपने अखिलेश सिंह से जो प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्न का आपको उत्तर मिला क्या? क्योंकि उनके पास उत्तर है ही नहीं, उनको यहां वहां बातें करने के अलावा क्या है उनके पास? अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई, इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल जो है वो समाजवादी पार्टी है कांग्रेस के बाद, वो इनको भाषण दे रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव इनको सीटें नहीं देनी है। दूसरे नंबर का जो घटक दल है वो खंड खंड है, उसके तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 28 सांसदों में से 20 सांसद ये कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे, हम एनडीए की तरफ जा रहे हैं, ये उनके 20 सांसदों का फैसला है। तीसरा सबसे बड़ा जो दल है वो है डीएमके, वो इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियां इनको आंख दिखा रही हैं, आम आदमी पार्टी आने को तैयार नहीं हुई। इनको जो है शिवसेना के पास इतना समय नहीं था कि वो फिजिकली इनकी जो है बैठक में वो हाजिरी लगाने के लिए आते। अब ये रोना रो रहे हैं बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी भ्रष्टाचारी, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, तब जो है बेरोजगारी दर 5.6% थी, आज 3.1% है। महंगाई दर की बात कर रहे हैं, महंगाई दर 10% से ज्यादा थी, और कोरोना काल की विपत्तियों के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई दर 5% से ज्यादा कभी नहीं रही। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, 16 करोड़ लोगों को घर, हर घर नल से जल मिल गया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए, हर घर बिजली पहुंच गई, 4 करोड़ मुसलमान।
11: लेकिन चुनाव जीतने का राज तो इंडिया को साथ में रखने का ही है ना,
12: गैस के कनेक्शन
11: मिल गए। तो यही लगता है ना कि इंडिया अलायंस अभी भी अपने पार्टनर्स को साथ में नहीं रख पा रही है।
12: देखिए ऐसा है, हमारा जो है जब 2014 में मोदी जी सरकार में आए थे तो एनडीए की 5 राज्यों में सरकार थी, आज 21 राज्यों में सरकार है, 39 घटक दल एनडीए के हैं, इनके तो घटक दल रोज जो है बिछड़े बारी बारी वाली दशा है इनकी, और ये बिछड़े बारी बारी वाले ये कह रहे हैं कि जो है एनडीए की सरकार चली जाएगी। एनडीए का तो रोज जो है खेमा मजबूत होता चला जा रहा है, राज्य हमारी जो है सत्ता का सूत्र जो है जनता हमको सौंप रही है और इनसे सत्ता के सूत्र छीन रही है। अब एसआईआर पर जो है रोना रोते हैं, केरल में एसआईआर, अच्छा तो और शशि थरूर इनके नेता हैं, और शशि थरूर ने कहा कि अगर केरल में एसआईआर नहीं हुआ होता तो फर्जी वोटों के बल पर सीपीएम फिर सत्ता में आ जाती। शशि थरूर जो हैं उनकी बातों का जवाब अखिलेश प्रताप सिंह के पास नहीं है। ये केरल में एसआईआर ठीक है, तमिलनाडु में एसआईआर ठीक है, बंगाल
11: तो
12: में ठीक नहीं है।
11: फिलहाल तो इंडिया अलायंस की बैठक में तो समाजवादी पार्टी ने ही कुछ सवाल वहां पर खड़े किए हुए हैं, नहीं, फिलहाल तो इंडिया अलायंस की बैठक में समाजवादी पार्टी ने ही सवाल खड़े किए हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली चुनौती तो उनको ही फेस करनी है अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे अभी उत्तर प्रदेश में। आशुतोष वर्मा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर हमले करते हैं। पहला हमला तो आपकी आप ही का शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस कल की बैठक में भी पहला भाषण सहयोगी दलों की तरफ से अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, तो पहला तो हमला उन्होंने किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में भी कांग्रेस ने मनमाने फैसले किए। उसके बाद आपकी तरफ से यह भी कहा गया कि सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की होनी चाहिए, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिल पाएगी। यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अखिलेश यादव यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर साथ में लड़ना है तो कोऑर्डिनेशन के साथ में लड़िएगा, आयन मूवमेंट पर कोऑर्डिनेशन करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। तेजस्वी यादव भी अपनी अपनी भूमिका यहां पर रख चुके हैं।
13: साहिल भाई देखिए, दो चीजें हैं। अखिलेश यादव जी ने यह बोला कि जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है और जो कांग्रेस की राज्य स्तरीय लीडरशिप है, इसमें समन्वय नहीं है। और इस लाइन में अपने आप में चीजें समझ में आ जाती हैं कि जो भी सेंट्रल लीडरशिप है वो अखिलेश यादव जी से हर तरीके की बात करती है, चाहे वो सोनिया गांधी जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, चाहे राहुल गांधी भी हों, लेकिन कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें और इतनी गैर जिम्मेदाराना भाषा रहती है कि हमें कभी कभी जवाब देके देना भी नहीं पड़ता, इग्नोर करना पड़ता है। जब हमारे गठबंधन की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, तो ये किसने इनको जाके बीएसपी के ऑफिस में हालचाल लेने के लिए भेज दिया था? क्या कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप इतनी गैर जिम्मेदाराना है, या कांग्रेस के कुछ छद्म तरीके के नेता उल्टे सीधे बयानात बोलते रहते हैं? आप पश्चिम से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक उल्टी सीधी बातें करते हैं। हमने यही कहा कि अगर ये समन्वय ठीक नहीं होगा तो मुश्किलें आएंगी, और ये हम अकेले नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ साफ कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने कंटेस्टेंट डिस्कस ही नहीं किए। तो अगर हमको सिर्फ चुनाव लड़ना है तो आप भी लड़िए, हम भी लड़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर चुनाव जीतना है तो उसमें रणनीति मजबूत होगी, और रणनीति

0: सीट पे लड़ेगा, राजभर कितनी सीट पे लड़ेंगे, तो अभी दाएं बाएं देखना शुरू कर देंगे। तो हमारे गठबंधन में देखने से पहले आप अपने गठबंधन को संभालिए, स्थिति बड़ी नाजुक है वहां पर, कुछ लोग भाग के आने वाले हैं हमारी तरफ।
1: देखिए अब साहिली मैं जवाब दे रहा हूँ, साहिली सुनिए, अब आपने मुझे अवसर दिया मैं बोल रहा हूँ। साहिली देखिए, आज आप इंडिया गठबंधन पे बहस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी डरी हुई इंडिया गठबंधन से, कारण ही वही है और यही उसको रिप्लेस करेगी। अब वो चाहती है कि हम किसी तरह से सर्वाइव कर ले, नहीं कर पाएगी, बातचीत से ही समाधान निकलता है। हमारा एक परिवार है, परिवार में सब सारे दल अपने अपने विचारधारा से हैं, अपने सबने साथ दिया है, हमने चाहे उन्होंने सबने सरेंडर नहीं किया है इस विचारधारा से, हमारा अलायंस है। आप क्या तो कुछ सरेंडर ही क्या कहे, सरेंडर सब भी छोटा है एनडीए नेशनल डिजास्टर अलायंस में, वहां तो बस नागपुर घराने से पर्ची आई, काम खत्म हो गया। हम लोग हराएंगे और ये देश की जनता इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द
2: कुछ शिकायतें,
1: जल्द से जल्द।
2: एहतेशाम जी शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आशुतोष हमारे साथ में है। आशुतोष जी, जो पूरी बातचीत यहां पर उभर कर सामने आ रही है, उससे एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गिले शिकवे हैं। एहतेशाम जी एक बार फिर जुड़ गए, मुझे आपसे पूछना है, एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर, ये पूछना है कि भाई तृणमूल कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद अब एकदम गले लग रही है, मिल रही है, कांग्रेस पार्टी भी अंदर से खुश हो रही है, अधीर रंजन चौधरी तो बोलेंगे ही ना चुनाव हार गए तुरंत टूट गई, क्या यह भी बातचीत हो रही है कि अब मर्ज हो जाना चाहिए कांग्रेस के भीतर? अगर पहले ही आप ये सब चीजें कर लेते तो हो सकता है कि आज हार का सामना नहीं करना पड़ता।
3: बिल्कुल सही साहिल जी, बहुत स्पष्ट रूप से आपने कहा, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां थी जिसका आपने जीता जागता सबूत 4 तारीख को आपको देखने को मिला है। कहीं न कहीं अगर हम लोग अगर सही से अगर काम करते तो आज ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलती। देखिए सबसे दुख की बात है कि जनता तो हमें बहिष्कार किया ही किया, उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि साहिल जी जिन्होंने 80 सीट हमारी ममता बनर्जी का जीत किया है, उन्होंने भी हमारी उच्च स्तरीय नेता को बहिष्कार किया, तो बहुत दुख की बात है। खासकर तृणमूल कांग्रेस में अभी दुख की घड़ी चल रही है, समझते हैं कि आने वाले दिनों में बिखरने की आप पूरी परिस्थिति हो गई, इसलिए कि हमारे तृणमूल कांग्रेस की जो परिस्थिति है दो गुट में बढ़ चुके हैं, आप देखिए विधायक भी है, और कल जो परिस्थिति एक तरफ हमारे इंडिया गठबंधन ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी और दूसरे तरफ समझ लीजिए कि हमारे ही 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनडीए का समर्थन कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो परिस्थिति है उच्च स्तरीय नेता हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी की लेकर करके आज इतना मामला, अगर हम समझते हैं कि थोड़ी सी अगर हमारी नेत्री ममता बनर्जी अगर थोड़ी सी मैनेज कर लेती है अगर इनको अभिषेक बनर्जी को, तो आज ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलता।
2: आशुतोष जी आशुतोष जी, चुनाव के हार ने 2024 के बाद इंडिया अलायंस को हम अलग तरीके से देख रहे थे, माना जा रहा था कि एक रिसर्जेंस है एक तरीके से विपक्ष का, लेकिन 2024 के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, अब इस पर यह मुद्दा अलग है कि अब ये कह रहे हैं कि चुनाव लूटे गए या हार गए, उसके बाद उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से एसआईआर किया गया 100 कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन चुनाव हार गए, उसके बाद इंडिया अलायंस के भीतर एक नए सोच की शुरुआत कल की मीटिंग के बाद हुई है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि सहयोगी दल भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी वहां पर एक्सेप्ट करने को लगी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हाँ मुझे अगर स्टेट यूनिट कुछ कहता है तो मैं वो कह देता हूं, जो लेफ्ट का आरोप था कि आप हमें बीजेपी की बी टीम कैसे कह सकते हैं, तो क्या एक नई सोच इंडिया अलायंस के भीतर?
4: देखिए साहिल, 2024 के चुनाव में जो कामयाबी इंडिया गठबंधन को मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से रोका था, उससे जो मोमेंटम बना था उस मोमेंटम को पूरे इंडिया गठबंधन ने बहुत ही रॉयल तरीके से अगले 2 सालों में गवाया है। अगर आप मानते हैं कि वहां वोट चोरी हुई है या एसआईआर की वजह से हुए, तो फिर आपने उस चुनाव में हिस्सा क्यों लिया? अगर आपने चुनाव में हिस्सा लिया, उस चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट किया, तो मानना पड़ेगा कि चुनाव साफ सुथरे तरीके से हुए, अब रोना बंद होना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जहां इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को यह समझना चाहिए कि आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी अमित शाह की एनडीए से है, जहां सारे लोग एक जुबान में बात करते हैं, अगर टीवी चैनल्स पर आकर या अलग अलग अगर गठबंधन के साथी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, तो इसका गलत मैसेज ही जाएगा और इसका एनडीए और बीजेपी को ही फायदा होगा।

0: इसलिए कम से कम इतनी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए कि कैसे एक भाषा में एक जुबान बोले। अगर कोई कंप्लेन भी करनी होती तो अंदर, ऐसा नहीं कि एनडीए में कंप्लेन नहीं है। आपने देखा चिराग पासवान की पार्टी दो धड़ों में टूट गई थी, चाचा भतीजा अलग अलग हो गए थे
1: हाँ
0: आज, और उसी चिराग
1: हाँ
0: पासवान का इस्तेमाल किया गया जनता दल यूनाइटेड की पार्टी को कमजोर करने के लिए। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज उनको राज्यसभा ने
1: नहीं मिल
0: उनको
1: पाया उनको,
0: नहीं मिल
1: नहीं
0: पाया है,
1: विधान
0: तो
1: परिषद नहीं दे पाई, नहीं
0: वहां
1: मिल
0: भी
1: पाई।
0: झगड़े हैं। लेकिन कोई खुलकर पब्लिकली नहीं बोलता है, कम से कम इस बात की सराहना तो करनी चाहिए। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर गठबंधन बन रहा है या बनने की कोशिश हो रही है, तो एक वन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और सारे दलों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको पुराने गिले शिकवे भुला के साथ आना चाहिए, एक भाषा में बोलना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, नहीं तो 2029 तक आधे नेता जेल के अंदर होंगे और आधों की पार्टी खत्म हो जाएगी।
1: लेकिन आशुतोष, वहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट यूनिट मुझे अगर कुछ कहता है तो मैं बोल देता हूं, अगर स्टेट यूनिट मुझे कह रहा है कि लेफ्ट के खिलाफ मुझे ये बोलना चाहिए कि बीजेपी की बी टीम है तो मैं बोलूंगा।
0: नहीं,
1: इसी बात
0: मैं
1: को लेकर तो
0: साहिल,
1: सीपीआई के नेता राजा वहां पर कह रहे थे कि ये गलत है, अगर
0: साहिल
1: स्टेट यूनिट
0: राजा,
1: मुझे कह रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना है तो मैं बोलूंगा।
0: नहीं नहीं साहिल, एक बात समझ लीजिए, लेफ्ट के नेताओं की कंप्लेन का कोई आधार ही नहीं है। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी गठबंधन लेफ्ट गठबंधन से चुनाव लड़ रहा था, तो क्या वहां पे वो पिनराई विजयन की आरती उतारेगा बैठ के, या पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की आरती उतारेगा? अगर आप इतने ही टची हो तो आप इंडिया गठबंधन में मत आइए, आप अलग अपना गठबंधन बनाइए लेफ्ट के नेता। भाई त्रिपुरा से आप गायब हो गए, पश्चिम बंगाल से आप गायब हो गए हैं, आप केरल में भी गायब होना चाहते हैं। तो ये जो पब्लिक स्टेटमेंट चिट्ठी लिखी जा रही है, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये बंद होना चाहिए। अन्यथा लेफ्ट फ्रंट हो चाहे जो, अगर उनको लगता है कि इस गठबंधन में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो आप अपना अलग कुनबा बनाइए और अपना चुनाव लड़िए, और उसके बाद 2029 के पहले आप गायब हो जाइए पूरे सीन से।
1: संगीत रागी, आप चुनाव में हार के बाद सबके गुरूर टूट चुके हैं। एक वक्त था जब तृणमूल कांग्रेस सवाल पूछा करती थी कि राहुल गांधी हु, और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं, यानी कौन राहुल गांधी, और आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी पिछले 24 घंटे में 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही है। क्या अब यह मर्जर का वक्त आ गया है? क्या आप देख रहे हैं कि मर्जर होगा? क्योंकि वैसे भी अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ी रहे हैं तो साथ में रहकर, एक ही पार्टी में रहकर लड़िए।
2: देखिए साहिल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी की पार्टी हो, इन सबों ने कांग्रेस पार्टी से जमीन छीनी है, ये ध्यान रखना चाहिए। और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि वो अपनी जमीन कांग्रेस को वापस जाने दें। तो कांग्रेस कांग्रेस के मांस को ये नोच करके खाएंगे ही खाएंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी अपने बल पर तभी खड़ी हो सकती है जब समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर नष्ट हो जाए। यदि तेजस्वी नष्ट होंगे तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का वहां पर मैंडेट जो है वो बेहतर तरीके से अपने पक्ष में खींच सकता है। आज तृणमूल कांग्रेस
1: ये
2: राहुल
1: बात तो
2: गांधी के
1: बीजेपी को
2: पास
1: भी
2: आ
1: लागू
2: रही है,
1: होती है।
2: कांग्रेस पार्टी भी आ रही है, तो ये नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। बीजेपी में अभी वो ऐसी परिस्थिति नहीं है, मैं इसका जिक्र कर देता हूं। और आज तृणमूल कांग्रेस यदि आ रही है तो वो इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस खत्म होने की स्थिति में है, बर्बाद होने की स्थिति में है। दूसरी बात, बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल पर चर्चा हो जानी चाहिए एक बार इस देश में। नरेंद्र मोदी आज जहां पर है वो अपने संघर्षों के बदौलत है, किसी की दया कृपा पर नहीं है। राहुल गांधी जहां पर हैं वह अपनी बंसावली के कारण वहां पर हैं, कोई मेरिट से वहां पर नहीं है। यदि मेरिट से होता तो जो अपने पार्टी को 23-23 इलेक्शन हरवाए उसके बावजूद भी वो सर्वश्रेष्ठ नेता वहां पर बना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कारण से होते हैं। पहली बात कि भाई सत्ता, अभी अखिलेश जी ने कहा कि ये रिप्लेस यही करने वाली है। अरे भाई, रिप्लेस करने के लायक बचोगे तब ना? तृणमूल कांग्रेस रिप्लेस करने के लायक बची है क्या? कांग्रेस रिप्लेस करने के लायक बची है क्या? पांच राज्यों में आप,
1: आशुतोष
2: चार
1: जी,
2: राज्यों में आप गठबंधन का धर्म क्या नहीं आते हैं? डीएम थे तो आपके साथ, जब आपके गर्दिश के दिन थे तब डीएम के आपके साथ था, और आप एकाएक उस पार्टी के साथ चले गए जो आपको सत्ता में जाकर के लाने के लिए खाली की, इसलिए क्योंकि हमारा इंडी गठबंधन का
1: आशुतोष जी जवाब दीजिए,
2: है।
1: क्योंकि तुरंत
2: आप विजय के साथ
1: आपने
2: चले गए,
1: आपने उंगली
2: ये
1: उठा ली थी,
2: आपका चरित्र और
1: मैंने देख
2: नैतिकता
1: लिया था।
2: बताता है, ये राजनीतिक
1: देखिए
2: संस्कार आपके बताते हैं।
0: देखिए संगीत रागी जी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भाई पैरा वो प्रधानमंत्री जी नॉन बायोलॉजिकल है तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा, तो इस पर नाराज होने की बात क्या है भाई? वो तो उनका खुद का स्टेटमेंट है, टीवी इंटरव्यू में दिया स्टेटमेंट है,
2: नहीं
0: वो
2: नहीं
0: खुद
2: नहीं
0: तो मानते हैं
2: नारा
0: मैं नॉन
2: नहीं, नहीं नहीं
0: बायोलॉजिकल
2: नहीं
0: हूँ।
2: नहीं हर आदमी नहीं,
0: अरे भाई
2: ये बातें बहुत गलत है, गलत तरीके से प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं आप। हर आदमी कहता है कि मैं डेस्टिन्ड हूं, बहुत सारे ऐसे सोचने वाले, मैं भी सोचता हूं कि
0: मैं
2: मैंने
0: फिर
2: कोई
0: से
2: ऐसा बड़ा पुरुषार्थ
0: ठीक है,
2: नहीं किया था, लेकिन आज
0: फिर से
2: जहां
0: मैं
2: हूं
0: कह देता हूं।
2: ईश्वर का प्रताप है कि मैं यहां पर हूं,
1: चलिए आज की
2: लेकिन
1: स्थिति में,
2: उसको गलत तरीके
1: आज
2: से
1: की
2: कोट
1: स्थिति में
2: करके आप
1: प्रधानमंत्री को 12 साल पूरे हो रहे हैं।
2: बायोलॉजिकल
1: हाँ जी आशुतोष, मुझे मुझे
2: राहुल गांधी
1: मुझे एक
0: मुझे
1: एक एक बात हम एक बात इस चर्चा में हम मिस कर रहे हैं, एक एक बात इस चर्चा में हम मिस कर रहे हैं आशुतोष जी।
0: ठीक है साहिल,
1: ठीक है आशुतोष जी, एक एक एक बात हम इस चर्चा में मिस कर रहे हैं
0: प्लीज।
1: ठीक है आशुतोष जी, एक बात हम इस चर्चा में मिस कर रहे हैं, एक एक छोटी सी बात, क्योंकि इसका जवाब आप ही से मिल सकता है मुझे। ये डीएमके को तो मिस किया वहां पर इंडिया अलायंस के बैठक में, कई अलायंस पार्टनर्स बोलने लग गए कि भाई डीएमके भी हमारे साथ होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को कोई मिस नहीं कर रहा है।
0: देख मैं उसके सवाल के जवाब पहले बता दूं उनको कि दरअसल संगीत रागी आरएसएस से आते हैं और मोहन भागवत की बात को भी नहीं सुनते हैं। मोहन भागवत ने कहा था कुछ लोग अपने आप को भगवान समझने लगे हैं, तो कम से कम मोहन भागवत की बात ही सुन लो, बीजेपी में तो आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। दूसरी बात देखिए, अभी पंजाब में
1: समय खत्म हो जाएगा,
0: पंजाब में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से चुनाव लड़ना है, इसलिए अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक गठबंधन में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी शायद इस लायक
2: ही बड़े मजेदार बात है, आज नहीं
0: वो
2: रह सकते हैं, कल साथ साथ खड़े हो जाएंगे। एक दिन गाड़ी
1: आप ले, इंडिया अलायंस की 11वीं बैठक हुई है,
2: कहेंगे कि नहीं हम तो साथ साथ।
1: प्रधानमंत्री मोदी को 12 साल पूरे हो रहे हैं और 12 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए कल एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पूरे देश भर जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री है और सहयोगी दलों के नेता भी उसमें शामिल होने वाले हैं, सहयोगी दलों के अध्यक्ष उसमें शामिल होने वाले हैं। तो एक चर्चा एनडीए के भीतर यह होगी कि 12 साल के कार्यकाल के बाद अब एनडीए को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या इंडिया अलायंस भी उसी तर्ज पर अपनी यूपी चुनाव के पहले बातचीत होती है या नहीं होती, उस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: इन एसोसिएशन विद
4: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
3: हिंट, बड़े आराम से
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
6: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
8: नाइन्थ को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा हो।
9: सही फरमा रहे हैं शुभेंदु, मौसम बदल रहा है बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। शुभेंदु के लिए मौसम खुशगवार और मजेदार है, पहली बार बंगाल की सत्ता की बाहर है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो टीएमसी में फूट और बगावत का ज्वार है। मतलब कि मौसम की मार ममता बनर्जी झेल रही है। उनके लिए मौसम इतना दुश्वार है कि हर कदम पर अब चुनौतियों की भरमार है। दो घटनाक्रमों पर गौर कीजिए। सोमवार को ममता के एक और विश्वस्त फिराद हकीम ने ऋतव्रत बनर्जी से मुलाकात की। फिराद हकीम कोलकाता के मेयर रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनते ही पद छोड़ दिया। कल उन्हें विधानसभा में संदीपन साह के साथ ऋतव्रत के चैम्बर में जाते देखा गया था। फिराद हकीम का परिचय किसी से छिपा नहीं है, वो ममता की कोर टीम के सदस्य रहे। ममता ने उन्हें कोलकाता का मेयर बनाया। जब भी केंद्र से लड़ाई में प्रशासनिक मदद की जरूरत पड़ी तो फिराद हकीम ममता के साथ खड़े दिखे, लेकिन अब उनकी निष्ठा डगमगाती दिख रही है। फिराद और यूसुफ, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने पद और मौका दिया, लेकिन वक्त बदलते ही सब बदल रहे हैं। खबर ये आई कि ममता बनर्जी बरहमपुर सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा जाना चाहती है। खबर ये भी आई कि यूसुफ पठान ने बरहमपुर सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, वो वहाँ से सांसद है। खुद यूसुफ पठान ने ऐसी किसी घटनाक्रम से इनकार किया है और कहा है कि उनसे किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन ममता के वफादारों की तरफ से यूसुफ पठान पर हमले हो रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर कहा,
10: क्या आपको अमित शाह ने बुलाया है? जो दिल्ली जाने की इतनी जल्दी है, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। आपने देश के लिए खेला है, हमारे जिले ने आपको भारी बहुमत से जिताया है, थोड़ी शर्म करो और साहस दिखाओ।
9: जाहिर है अगर धुआं उठ रहा है तो अंदर कहीं ना कहीं आग भी भड़की है। अनुपम मिश्र, कोलकाता आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए। अखिलेश ने शुरुआत क्या की, कांग्रेस के रवैये से दुखी सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना अपना दुख सामने रखना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर ही हमले करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भी चुनाव में कांग्रेस मनमाने तरीके से फैसले लेते रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा कि डीएमके टीएमसी सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल में राहुल और प्रियंका ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। उद्धव ने कहा कि बिना संयोजक के ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चेहरा तो तय करें। बैठक से बाहर निकले लेफ्ट नेताओं ने कहा कि सोनिया और राहुल ने सप्रेम शिकायतें सुनी और कबूल की, लेकिन उनकी सफाई लेफ्ट को कबूल नहीं। बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की तारीख कुछ ऐसी है कि 2017 में जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश को सीट बंटवारे में 298 सीट मिली, लेकिन 311 सीटों पर लड़ गए। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर रही 15.11%। इसी तरह कांग्रेस को हिस्सों में 105 सीटें मिली थी लेकिन 114 पर लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट था तब 6.14, लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों दलों में बात नहीं बन पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों ही दलों का प्रदर्शन खराब हुआ था और कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%। कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर 2 सीट केवल जीत पाई और स्ट्राइक रेट गिरकर 0.50% रह गया। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों दल फिर साथ आए और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ गठबंधन में, तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती, दर रही 59.68%। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती, 41.17% की दर पहुंची थी। अखिलेश का विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले 2 गुना से अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है, इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांग सकती है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: क्या टीएमसी के कुछ और सांसद बागी गुट में शामिल हो सकते हैं? क्या ममता के खिलाफ कुछ और सांसद एनडीए के खेमे में जाने की तैयारी में हैं? क्या अभी कुछ और ऐसे नाम सामने आने बाकी हैं जिन्होंने टीएमसी से बगावत की तैयारी कर ली है? ममता की पार्टी में मची उठा पटक के बीच ये भी एक बड़ा सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है। अब तक न ही ममता ने अपनी पार्टी से मिले सांसदों की बगावत पर कोई जवाब दिया है, न ही इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कोलकाता से दिल्ली तक बिखरती पार्टी को लेकर ममता बनर्जी तो चुप हैं, लेकिन उनकी सांसद महुआ मोइत्रा बोल रही हैं। महुआ मोइत्रा ने बगावत करने वाले सांसदों को कहा कि हिम्मत है तो वो सब इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर दिखाएं। इसके साथ महुआ मोइत्रा ने यूसुफ पठान पर भी निशाना साधा है। दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी कि यूसुफ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था ताकि ममता उस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। ममता की पार्टी में संकट है तो ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है। एक दिन पहले सुखेंदु रॉय ने अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी को कई लोग मनमाने तरीके से चला रहे हैं। इस बगावत ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब बागी सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही वो लोकसभा अध्यक्ष को बताने वाली हैं कि वही असली टीएमसी हैं। तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह का आलम यह है कि जो नेता कल तक ममता बनर्जी को दीदी कहकर संबोधित करते थे वो अब खुलेआम उनका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। इसे ममता बनर्जी के सियासी कद में आई कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हर दिन बीतने के बाद ममता बनर्जी का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन, धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता बनर्जी की मुलाकात, बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। सत्ता के शिखर पर मोदी का महाकीर्तिमान, कल टूटेगा नेहरू का रिकॉर्ड, बनेंगे लंबे समय, सबसे लंबे समय तक देश की कमान संभालने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, दिग्गज भी मुरीद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 तलाक, एसिड अटैक पीड़िताओं को मिलेगा घर और हेल्थ कवर, रामकथा में बोले सीएम, जिनकी भारत में आस्था नहीं उनके लिए देश धर्मशाला नहीं। और पीओके में पाकिस्तान की क्रूरता पर भारत का कड़ा जवाब, नाकामी छिपाने के लिए की 27 बेगुनाहों की हत्या, वैश्विक समुदाय से की जवाबदेही तय करने की मांग।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Whenever they met me, Didi, you are so beautiful. Didi, your sari is so nice. Didi, your par is so good. Didi, your skin is glowing. Now you see, Didi is back.
1: इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं, इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था।
2: मौसम बदल रहा है ना।
3: आई हैव बीन विद ममता बनर्जी फॉर 40 इयर्स।
4: कल्याण जी किसको ट्रेटर बोला, क्यों बोला मुझे मालूम नहीं, और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल की सियासत में, राजनीति में कह लीजिए, बड़ा उबाल, बड़ा परिवर्तन। और शुभेंदु अधिकारी धीरे से पूछ रहे हैं कि मौसम बदल रहा है ना। जी हाँ, ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बड़ी है। आज सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। तस्वीरें उसकी आप देख रहे हैं। ये मुलाकात करीब एक घंटे तक चली है। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी गले भी मिली थी। ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी कहीं ना कहीं। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के इस गले मिलने के सिलसिले में कई राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। और तो और, कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब छोड़िए, वापस कांग्रेस में आ जाइए। ममता ने ये राजनीतिक दांव उनके सांसदों के बगावत के बीच चले हैं। वो आती हैं दिल्ली, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठती हैं, उसके बाद वो सोनिया गांधी से अलग से मुलाकात करती हैं। 20 सांसदों की बगावत के दावे के साथ काकुली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और एनडीए को समर्थन करने की घोषणा की है। आज टीएमसी ने बागी सांसदों पर जोरदार हमले किए, चुनौती दी कि हिम्मत हो तो इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़कर दिखाएं। टीएमसी का दावा है कि बागियों के कैंप में सिर्फ 12 लोकसभा सांसद हैं और ऐसे में उनके पास 2/3 बहुमत है ही नहीं। क्या है पूरा माजरा आपको बताएंगे। अगर अब जैसे काकुली घोष का दावा क्या है, उनका दावा है कि 20 सांसद उन्हें मिलाकर ममता बनर्जी के खिलाफ है। क्या है 2/3 का बहुमत का आंकड़ा, क्या कहता है दल बदल कानून, क्या कर सकते हैं ये सांसद, अलग पार्टी या फिर बीजेपी में विलय, इन सब पर हम आपको फैक्ट्स बताएंगे। लेकिन उधर आज कोलकाता में सीआईडी ममता के घर पहुंची। सीआईडी टीएमसी के विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में जांच कर रही है। आपको याद होगा जब नेता विपक्ष की बात हो रही थी और ये कहा गया टीएमसी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से, कि उनके पास विधायकों के हस्ताक्षर हैं, तो एक चिट्ठी उन्होंने सौंपी थी स्पीकर को। अब उस चिट्ठी में विधायकों ने दावा किया कि उनके फर्जी सिग्नेचर डाले गए थे, उसी की जांच चल रही है। तो सवाल है कि पहले विधायकों और अब सांसदों की इस बगावत के बाद ममता बनर्जी के पास विकल्प क्या है। क्या ममता बागियों से लड़कर टीएमसी को संकट से उबार पाएंगी या फिर ममता के विकल्प खत्म हो रहे हैं। बागी भरपूर, ममता मजबूर। हल्ला बोल में करेंगे चर्चा, पहले ये रिपोर्ट। जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी। लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं।
1: हमारे 29 एमपी जीत करके आए, सब तृणमूल, मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की, इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया, उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए।
0: टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे।
2: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं तो पार्टी को तोड़ने के लिए
1: वही कर रहा है।
2: और अमित शाह इज द पर्सन, व्हेनेवर दे मेड दीदी वाज सो ब्यूटीफुल, दीदी योर साड़ी सो नाइस, दीदी योर पार इज सो गुड, दीदी योर स्किन इज ग्लोइंग, दिस ऑल फीमेल एमपीज वर डूइंग दैट, नाउ यू सी दीदी इज बैड। दिस पीपल्स लव टू रिमेन विद द पावर।
0: इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं, सिद्धांतों के लिए है।
3: इट इज यूजलेस टू से दैट जस्ट बिकॉज शी इज नॉट इन पावर इन वेस्ट बंगाल आई हैव लेफ्ट, इट इज नॉट दैट आई वॉज विथ हर व्हेन शी वॉज नॉट इन पावर, बट एट दैट टाइम देयर वॉज पॉलिसी which was pro people agenda for poor people of the state of West Bengal, when she was not even the chief minister, she was working for the people. But in the last 3-4 years, the work has been suboptimal, their development has been suboptimal, lot of financial irregularities have cropped in which are being proved today.
0: फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितब्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई थी।
4: सर आपने मीटिंग किया है,
5: आपने की ममता बंद बताया है संघ छाड़ने?
6: नो कमेंट्स।
5: बहुत सांसद
6: नो कमेंट्स, नो कमेंट्स।
0: ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो। गद्दारी या फिर आजादी, वो कह रहे हैं कि हमने, चूंकि अब पार्टी बदल चुकी है, वो नहीं है जैसी ममता बनर्जी पहले थी, इसलिए हम उनसे अलग हो रहे हैं। बहरहाल 20 सांसदों का टूट जाना, अगर वाकई काकुली घोष के आरोपों में, बातों में दम है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। यानी एक तो वहां पर नेता विपक्ष बनकर 60 विधायकों को ले गए हैं रितब्रत बनर्जी, और इधर अब दिल्ली में भी अगर काकुली घोष सांसदों के साथ इतना बड़ा झटका देती है तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल है। इस बीच शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, शांतनु सेन पूर्व सांसद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पहले उनका रुख करते हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं ममता बनर्जी के घर से, और आलोक शर्मा जी, मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया ना, आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार आपके पास आ रही हूं मैं, हमारे साथ तापस मिश्रा भी जुड़ गए हैं, और तापस हमारे सहयोगी तापस सेनगुप्ता अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से हैं। अनुपम, ममता बनर्जी के घर पर टीम आई है ये जांचने के लिए सीआईडी की हस्ताक्षर वाली जो चिट्ठी विधायकों की दी गई थी वो सही है या नहीं है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? और इधर ममता बनर्जी तो सोनिया गांधी से मिल रही हैं।
7: जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ममता बनर्जी के घर के ठीक बाहर हूं, और ये उनका घर है, मैं आपको दिखाता हूं, 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट। हरीश चटर्जी स्ट्रीट में जो उनका आवास है, ऑफिशियल आवास है, उसके भीतर सीआईडी की टीम इस वक्त, जो कार्यालय है टीएमसी का, ये जो प्रमाइसिस है, प्रमाइसिस के भीतर ही एक कार्यालय है टीएमसी का, वहां पर 9 सदस्यों की टीम इस वक्त पहुंची है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल ये जो हस्ताक्षर वाला मामला था, इसी सिलसिले में सीआईडी की टीम यहां पहुंची थी लगभग 4:30 बजे के आसपास। आधे घंटे तक उनको भीतर नहीं घुसने दिया गया, अंततः उनको इजाजत मिली भीतर जाने की, और भीतर जाकर वो जो टीएमसी का ऑफिस है, दफ्तर है, वहां पर फिलहाल सीआईडी की टीम सर्च कर रही है। इस बीच कल्याण बनर्जी भी यहां पहुंचे हुए हैं एज ए लॉयर, मदन मित्रा और कुणाल घोष भी पहुंचे हैं, हालांकि मदन मित्रा और कुणाल घोष घर के बाहर बैठे हुए हैं, इस तरफ वो बैठे हुए हैं बाहर पर, उनको उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी न हो, इस चलते वहां पर वो भीतर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन भीतर में कल्याण बनर्जी जरूर गए हैं, उनका कहना है कि वो एज ए लॉयर भीतर गए हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह यहां पर जो टीएमसी, जो ममता बनर्जी का आवास है, उसके ठीक बाहर मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी, दो मदन मित्रा और कुणाल घोष दोनों बाहर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति, ये हालात फिलहाल कोलकाता में जो ममता बनर्जी का आवास है उसके ठीक बाहर का है। बात की थी, उनका कहना है,
0: बात कीजिए अगर बात करने को तैयार होते हैं कि क्या चल रहा है।
7: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुणाल घोष अभी हमारे साथ हैं, मदन मित्रा भी हैं। दादा, ये जो अभी ममता बनर्जी वहां पर हैं, दिल्ली में हैं, और यहां पर रेड हो रही है, क्या बोलेंगे?
8: क्या है ये, तो ये ममता बनर्जी जो दिल्ली में है, ये प्रोग्राम तो पहले से अनाउंस्ड है, इंडिया ब्लॉक का प्रोग्राम है, बहुत सारे मीटिंग्स है, और वो मौका देखकर यहां पर ये रेड के नाम पे ये जो वो लोग कर रहा है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। पब्लिक देख रहा है, 7 times MP, 4 times सेंट्रल मिनिस्टर, 2 times रेलवे मिनिस्टर, 3 times चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तो रोज यहां पर ही बैठती थी, तो 2 दिन के लिए नहीं है, उस मौका में ये लोग ये इन्वेस्टिगेशन बार बार, हमारा लीडर शुभाशीष चक्रवर्ती बार बार बोला है, अरे उनको लौट ना दीजिए तो काल परसों आ जाएंगे, तो ये तो उनका ये पॉलिटिकल रेड है, पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना है, वो कर रहे हैं।
0: ठीक है,
7: बिल्कुल अंजना,
0: एक बार उनसे पूछे। इधर उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल ही रही हैं, कांग्रेस में ही वापस आ जाएं। अगर सांसदों से कुछ प्रतिक्रिया इस पर ले पाए आप।
7: जी देखिए, मैं पूछने की कोशिश करूंगा, वहां पर मीटिंग भी चल रही है सोनिया गांधी के साथ दीदी की, तो कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस में जा रही हैं, या ऐसी कोई संभावना भी हो सकती है।
8: इंडिया जोट का मीटिंग था, उसके बाद एक फॉलो अप में वो दो पार्टी का मीटिंग या दूसरा सब इम्पोर्टेंट मीटिंग है।
0: ठीक,
8: इसीलिए
0: ठीक है, धन्यवाद आपका अनुपम। एक बार तापस के पास जल्दी से चलते हैं। तापस, जल्दी से आप बताइए, क्या यहाँ पर भी अभिषेक बनर्जी के भी दफ्तर पे कुछ हो रहा है?
9: जी देखिए, बिल्कुल, हम अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इस गेट को पूरी तरीके से बंद रखा गया है और साथ में ये बैरिकेडिंग कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यहां पर जब सीआईडी की टीम पहुंची थी, यहां भी उन्हें रोका गया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि सीआईडी के जो अधिकारी है वो बाहर बैठे हुए हैं, गेट को गार्ड कर रहे हैं। उन्हें प्राइमरीली अंदर जाने के लिए रोका जा रहा था, लेकिन बातचीत करने के बाद वो अंदर गए हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर की जिस रेजोल्यूशन की बात की जा रही थी, जिस रेजोल्यूशन में हस्ताक्षर किए गए थे, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो ढूंढने के लिए सीआईडी की टीम आई है, और वो उसी के वजह से ममता बनर्जी के आवास के साथ जुड़े हुए जो तृणमूल के पार्टी ऑफिस है वहां भी पहुंची है टीम, यहां भी पहुंचे। काफी देर हो गई है, अभी भी ये तलाशी जारी है। हालांकि सीआईडी का कहना है कि ये पूरा जो तहकीकात है एक बहुत अहम मोड़ पर खड़ा है, इसलिए अभिषेक बनर्जी कब लौटेंगे इसके लिए इंतजार करना हम पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो यहां पर आए हैं और यहां भी काफी बड़ी टीम आ पहुंची है। कल अभिषेक बनर्जी की तरफ से एक याचिका पहले दायर की गई थी, ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि कल हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है, या और याचिका ये सीआईडी के इस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उसकी कल हियरिंग हो सकती है। तो अब देखना यह होगा कि एक तरफ ये सीआईडी को अंदर से क्या कुछ मिलता है, तो दूसरे छोर पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका की सुनवाई होनी है उसमें अदालत का क्या कुछ रवैया रहता है, क्या ऑब्जर्वेशन अदालत की ओर से दिया जाता है, क्या अभिषेक बनर्जी को कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा या फिर नहीं दिया जाएगा।
0: ठीक है, आप दोनों ही नजर बनाए रखिए, अगर कोई भी और हलचल होती है तो फौरन वहीं का रुख करेंगे। इस बीच सभी खास मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए जल्दी से, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक तरफ ममता बनर्जी मिल रही है सोनिया गांधी से, उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता और एक बार कंटेस्ट भी कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, क्या कह रहे हैं सुनिए।
10: जो बोया सो काटा, ममता जी ने ही बीजेपी को हाथ पकड़ करके बंगाल में ले गई। टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी, शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
0: तो दित्राज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, अगर इतना टाइम तो टूटने में शिवसेना को भी नहीं लगा था। जल्दी से एक बार स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है, मैं ये मान रही हूं कि स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अभी भी टीएमसी में ममता बनर्जी के धड़े के साथ है और शांतनु सेन दूसरा पक्ष रखेंगे। शांतनु दा पौनेर है, तो अगर वापस आप कैमरे के आगे आ जाएं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अब तो कांग्रेस पार्टी वाले भी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए क्या हालत है, इतने टाइम में तो शिवसेना को भी टूटने में बड़ा टाइम लगा था, लेकिन यहां तो सब कुछ तुरंत हो गया। जी
11: नहीं, ये तो एक तरह की साइलेंट इमरजेंसी चल रही है देश के अंदर में, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है तो ये साफ साफ है। और जो लोग, मुझे तो हंसी आती है, जो लोग दीदी के सामने हम लोग बैठे वहां पर अगर गाना गाती है, तुम्हारे हृदय मजारे राखवो छेड़े देबो ना, ये गाना अपने बंगाल के लोकल फोक संगीत है, तुमको दिल में रखेंगे छेड़े छोड़ेंगे नहीं।
0: कौन
11: लोग अगर ऐसी बातें कर रहे,
0: कौन
11: नाम छोड़ दीजिए, जितनी बहुत लोग है, जितनी महिलाएं सब, जितनी दीदी को, दीदी के बारे में इतना ये लोग क्या बोल रहे, अभिषेक बनर्जी खराब है, एक आदमी पे उसको स्केप बोर्ड बना दो, तुम्हारे इलाके में तुमने शासन किया, लोकसभा में अगर आप एक दीदी ने उसके उनके भरोसे पूरा छोड़ के रखा, एक किसी की भी बात कर रहा हूं, ये जो 15-20 MP है, तो वहां का शासन वही चला रहे हैं, स्थानीय नेता चला रहे हैं, और आप आरोप दे देंगे एक संगठन चलाने वाले जनरल सेक्रेटरी का? ही इज नॉट इंटरेस्ट। अभिषेक बनर्जी कभी भी गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर नहीं किए, डायरेक्ट इंटरफेयर उनका स्टेट गवर्नमेंट में कभी नहीं हुआ, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में उनका इंटरव्यू नहीं था, इन्हीं नेताओं का था अधिकतर, यही लोग दीदी की किचन कैबिनेट तक भी थे, और आज अगर ये बात कर रहे हैं और दीदी की जगह अभिषेक बनर्जी को बता रहे हैं, यही आईपैक ने 2024 में, देखिए हर चीज स्ट्रेटेजी से चलती है, इवेंट से चलती है, चुनाव भी आजकल मॉडर्नाइजेशन है, बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर में आईपैक स्ट्रेटेजी, आईपैक की जगह कोई भाई पैक हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी और छोटी से छोटी पार्टी भी उसका इस्तेमाल करती है, मगर उनको कैसे फंसाया गया आईपैक वालों को, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है कि 20 तारीख को दिनेश चंदेल को बुला लिया, उठा लिया और 30 को छोड़ दिया बिना किसी क्वेश्चन के लोअर कोर्ट के अंदर में, उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलते हैं,
0: ठीक है,
11: नीट की परीक्षा के बारे में नहीं बोलते हैं।
0: शांतनु जी, शांतनु जी, वो कह रहे हैं नीट की परीक्षा के बारे में ये लोग नहीं बोलते हैं जो अलग हो गए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास शहजाद जी और आलोक जी। शांतनु जी वो ये कह रहे हैं कि यही लोग पहले खूब बड़ाई करते थे दीदी की, गाना गाते थे दीदी के लिए, और कल्याण जी ने तो बड़ा पूरा एकदम नकल उतार के कहा कि सुंदर साड़ी, सुंदर स्किन ग्लो करता है, पर्स बहुत सुंदर है दीदी बोलते थे, और बाद में सब भाग गए हैं सत्ता के डर से, मतलब केंद्र सरकार के डर से।
2: दीदी का साथ हम भी तो थे, जितना आदमी सीपीएम के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उसको लगा कि उस टाइम कांग्रेस में रहते हुए सीपीएम के साथ लड़ नहीं सकता है, सब तो दीदी को देख के तृणमूल में आई थी, और तृणमूल में रहते हुए सीपीएम का खिलाफ लड़ाई किया था, और अभी पिछले 15 साल दीदी का साथ तो ये सब था, लेकिन आपको पब्लिक मैंडेट मानना पड़ेगा, जिस तरीके से हिमालयन करप्शन हुआ और इस करप्शन के खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया गया, आप मेरा बात बोलिए ना, हम जब 2023 में हम तो उस टाइम सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस टाइम हम आरजी कर का करप्शन का सब डॉक्यूमेंट ममता दी का ऑफिस में हेल्थ डिपार्टमेंट में 99 में देके आए थे
0: जी।
2: लेकिन उसके बारे में जांचकारी तो दूर की बात, मेरे को वहां से निकाल दिया गया, इस तरह का इंसिडेंट का नतीजा भी आ रहा है, संदीप घोष अभय इंसिडेंट का।
0: एक सवाल है शांतनु जी, शांतनु जी एक सवाल है, लेकिन आप ही थे जो कुछ महीने पहले तक, मतलब रिजल्ट आने के पहले तक ममता दीदी की तरफ से लड़ रहे थे ना टीवी पे, आप भी डिफेंड कर रहे थे ममता जी को, एक सेकेंड सर, तो उस पक्ष का ये पूछना है कि ये अचानक से दिल कैसे पलटा, पहले आपको यही करप्शन, आप भी कह रहे हैं कि 23 में आपने 99 में भेजा था पूरा कंप्लेंट आरजी कर का, लेकिन उसके बाद भी आप ममता दी के साथ बने रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि यही सांसदों ने टीएमसी में ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव जीता है ना, तो तुरंत बाद आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं?
2: जब आप सवाल किया है, मेहरबानी करके मेरा जवाब आपको सुनना पड़ेगा। हम आरजी कर के बारे में आवाज उठाया था, अभया के इंसिडेंट का बाद हमने वोकल हुआ था, इसलिए मेरे को सस्पेंड कर दिया गया 14 महीने के लिए, हम सस्पेंड रहा, लेकिन मेरा साथ जो हुआ है, मेरा बीवी जो भी एक डॉक्टर है उनको गुंडा द्वारा पीटा गया, सबसे बड़ा बात मैं एक ओनली डॉटर, एक डॉटर है जो अर्जी कर का स्टूडेंट हुआ करती थी, उसको जिस तरीके से डराया गया, धमकाया गया, हमको मालूम नहीं है आपका घर में छोटा लड़की और छोटा स्टूडेंट है कि नहीं, शायद होगी, उसको फाइनली डराया गया, मेरे को डराया गया, इसके बाद भी ज्यादा बोलोगे तो हम लोग देख लेंगे तुम्हारे डॉक्टर फाइनल MBBS कैसे पास करके डॉक्टर बन सकता है, जो मेरा ऊपर हम पार्टी का MP रहने का बाद भी मेरा ऊपर इतना विंडिक्टिव हो सकता है, मेरा रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती कैंसिल करने का सोचता है और हमको कोर्ट में जाके उसका जस्टिस लाना पड़ता है, मेरा बीवी जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर है, हमारा पार्टी का MLA गुंडो लाके उनको फिजिकली असोल्ट करता है, हम लोग पार्टी में बोलने का बाद भी कुछ जस्टिस नहीं मिलता है, पुलिस को बोलने का बाद भी कुछ जस्टिस नहीं मिलता है, इसके बाद भी अगर जब मेरा डॉटर का बारे में मेरे को थ्रेटन करे, आफ्टर ऑल आई एम ए फादर फर्स्ट, इसलिए मेरे को डरना पड़ा, हम सस्पेंडेड रहा, और फाइनली मेरे को जब चुनाव का पहले सस्पेंडेड मेरे से लिफ्टेड हुआ, हमको कुछ कहना पड़ा, लेकिन हम डर के मारे थे, अगर हम कुछ कह देते ये लोग इतना इतना विंडिक्टिव है, इतना खतरनाक है, मेरे को जेल भेज देते उसमें कोई परवाह नहीं है, हम पॉलिटिकल पर्सन है, हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा एक लौती डॉटर
12: उनका फाइनल एमबीबीएस अगर रोक दिया जाता, उसका डॉक्टरी का फाइनल सर्टिफिकेट अगर नहीं दिया जाता मेरे कारण, तो हम तो खुद को खमा नहीं कर सकते ना, इसलिए मेरे को सोचना पड़ा। और ये मेरा जैसे ऐसे हम नहीं है, यानी बहुत सारा सेक्टर में, एडुकेशन सेक्टर में हो, इंडस्ट्री सेक्टर में हो, कुछ ऐसा आदमी होगा, हैंडपिक्ड आदमी, जो ममता बनर्जी को समझाने का कोशिश किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ममता बनर्जी सबका ऊपर भरोसा नहीं करती थी। उनका जो अपना एक रैकेट था, वो जो कह देती थी, वो अगर कह दिया कि अभी शाम 6 नहीं सुबह 6 बज रहा है, तो वो उन्हीं को बिलीव करके बोलता था कि नहीं अभी सुबह 6 बज रहा है, और जो कह रहा है कि शाम 6 बज रहा है उसको पनिश करो। ये हिटलरी एटीट्यूड के लिए आज ये देखना पड़ा।
13: स्वयं प्रकाश जी बहुत गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप भी, मतलब अब जब वो एक्चुअल फैक्ट्स दे रहे हैं अपनी बेटी के बारे में दे रहे हैं, आप देख रहे हैं।
11: मुझे पता है, मेरे बड़े बड़े बड़े भाई है, दादा है मेरे, और मेरा बहुत अच्छा संबंध है इनसे, और चूंकि इनकी व्यक्तिगत, इनके ऊपर में जो आक्रमण हुआ, मैं भी उनका मैं जानता हूं। मगर क्या है, मैं बताता हूं, ऐसे ग्राउंड लेवल में जो चीज हुई है कुछ एक जगह, जिसके अंदर में शांतनु सेन दीदी खुद आती थी पोस्ता मार्केट के अंदर में, वहां पर दीदी का खुद का भाषण है कि आप 2023 में बोली कि यहां पे जो पार्किंग वगैरह जो होती है वो बाकायदा मीडिया के, बोले यहाँ पे कोई भी तरह का नहीं होना चाहिए। व्यापारियों की कंप्लेन थी, दीदी ने भाषण पे कहा, और दीदी ने उन लोगों को भी कहा, थाने को भी कहा, मगर पुलिस ने के कुछ अफसर थे जो लोग लालची थे, उनकी वजह से ऐसे काम हुए।
13: शांतनु जी क्या शिकायत कर रहे हैं, बच्चों की शिकायत, बेटी की शिकायत कर रहे हैं, डराने धमकाने की बात कह रहे हैं, आप ट्रैफिक पर ले जा रहे हैं। एक सेकंड सर, अब बाकी दोनों को भी शामिल कर लेते हैं बहस में, लेकिन दल बदल कानून कैसे आपको मदद कर सकता है ये भी आपको स्वयं प्रकाश जी बता सकते हैं, क्योंकि सवाल है कि क्या वाकई टीएमसी के बागी नंबर गेम की बाजी जीत रहे हैं। बागियों का दावा है कि उनके पास 20 सांसद हैं, 28 में से 20 सांसदों के समर्थन का मतलब है 2/3 और उससे एक ज्यादा, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ये जो मैजिक नंबर है वो 19 का है, जो अगर काकुली की तरफ है तो उनके लिए बड़ी जीत होगी। उधर टीएमसी का दावा है कि बागियों के पास सिर्फ 12 सांसद हैं। सवाल है कि बागियों के विकल्प क्या क्या है, पहला अलग पार्टी बनाए, दूसरा बीजेपी के साथ विलय करें, तीसरा इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ें। लेकिन अब जो बड़ी बात है, बागी सांसदों के लिए 19 का ये मैजिक नंबर दल बदल कानून के नजरिए से देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक अगर 2/3 सांसद किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं तो अयोग्य नहीं घोषित होंगे। टीएमसी के लोकसभा सांसदों को का 2/3 बहुमत का नंबर है 19, जो मैजिक नंबर है। मैं यहां अप्रैल में राघव चड्ढा समेत 7 आप सांसदों के बीजेपी के विलय का भी केस बताना चाहती हूं। राघव चड्ढा का ग्रुप 10 में से 7 सांसदों के साथ बीजेपी में वो शामिल हो गए, उन्हें राज्यसभा के सभापति ने मान्यता दे दी, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है और बागी 7 आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को मिली मान्यता को चुनौती दी है, चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि दल बदल कानून के तहत पहले 2 पार्टियों का विलय जरूरी है, जो यहां इस केस में नहीं हुआ है। और यही शहजाद पूनावाला जी, मेरा आपसे प्रश्न होगा कि क्या जो कपिल सिब्बल कोर्ट कर रहे हैं वो सही है कि अगर आपको पहले पार्टियों का विलय होना होगा, और ये जो बागी दड़ा है ये भी हमने विधायकों को भी देखा, ऋतव्रत बैनर्जी को, वो तो कह रहे थे कि ममता ही उनकी लीडर है, पार्टी तो अभी अलग नहीं हुई है।
14: देखिए, हो सोई जो राम रखी राचा, रची रेखा रखा, कोई करी तर्क बढ़ावे साखा। तो मुझे लगता है कि इन सारी पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसके मुंडन की शुरुआत करना जरूरी नहीं है। परंतु मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज मैंने शब्द सुना गद्दार, और पहली बार मुझे लगा कि गद्दार शब्द की परिभाषा देखनी चाहिए, ये गद्दार शब्द की परिभाषा, क्योंकि कीर्ति आजाद ने गद्दार शब्द इस्तेमाल किया। कीर्ति आजाद जी के पिताजी थे कांग्रेस में, वहां से वो छोड़ गए कीर्ति आजाद और बीजेपी आए, बीजेपी में 2 बार वो एमपी रहे, जब मंत्री नहीं बन पाए तो वो छोड़कर कांग्रेस गए, कांग्रेस में 7 साल रहे, वहां पर एक बार चुनाव भी लड़े, जब वहां पे चुनाव लड़कर हार गए तो उसके बाद वो टीएमसी गए। ये व्यक्ति उनको गद्दार बोल रहा है जिन्होंने 40 वर्ष ममता बनर्जी के साथ बिताए, ये काकोली गोश्त दस्तेदार का कहना है। दूसरी बात, गद्दारी की परिभाषा हमको तय करनी चाहिए। भाई गद्दारी जो 2 बजे तक 4 तारीख को कह रहे थे माय ब्रदर स्टालिन, और 5 बजे माय ब्रदर स्टालिन को छोड़कर माय ब्रदर विजय के साथ चले गए, चलिए ये भी गद्दारी नहीं है। 1998-99 में जिन लोगों ने कांग्रेस तोड़कर टीएमसी बनाई, वो भी गद्दारी नहीं थी। गद्दारी जब 6 बसपा के विधायक सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, उनको तोड़कर अपने साथ मिला लिया कांग्रेस पार्टी में, तब भी वो गद्दारी नहीं दिखी उनको। गद्दारी वो भी नहीं थी कि जॉन ब्रिटास को आज मीटिंग में इंडिया अलायंस के बुलाया था और उन्हीं के नेता को जेल भेजने की बात कर रहे थे। और मैं तो अंजना जी पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत में तमिलनाडु भी तो है ना। जब तमिलनाडु में विजय जी और कांग्रेस की सरकार लगातार एडीएमके के एमएलए तोड़ती है, तो उस पर एक डिबेट मैंने आज तक नहीं देखा। आज तक एक डिबेट उस पर की गई हो कि भाई एडीएमके के एमएलए कैसे आपके साथ आ रहे, उस पर एक डिबेट नहीं होती। और यहां पर 61-70 एमएलए अलग हो जाते, कहते ममता बनर्जी हमारी एडवाइजर बने, हम तो चाहते हैं कि केवल ममता बनर्जी हमारे साथ रहे, अभिषेक बनर्जी से हमें नाराजगी है। तो वो कहा जाता है कि भाई देखिए हमारे साथ आ गए। किसी ने जाकर कहा कि सांसदों को उनके साथ नहीं बैठना है जो अभिषेक बनर्जी और महुआ मोहित्रा वाला फैक्शन है, और वो अलग बैठना चाहते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि हम ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई इंदिरा गांधी ने 1969 में कांग्रेस को अलग करके अपनी कांग्रेस बनाई थी, सबसे इस्तीफा करवा के चुनाव लड़वाया था क्या? उन्होंने तो अपनी कांग्रेस बना दी थी, तो कर देती ना उस समय, वो भी इस्तीफा कर देती जो आज बोल रहे। और हमारा तो कोई इंटेंशन नहीं है पार्टी तोड़ने का, पर किसका इंटेंशन है पार्टी तोड़ने का मैं बताता हूं। अधीर रंजन चौधरी का बयान, कांग्रेस कहती है कि टीएमसी के जो 60 विधायक है कांग्रेस आकर ज्वाइन कर दे, यही चीज उदित राज ने भी कही है। और उदित राज और अधीर रंजन चौधरी दोनों कह रहे हैं कि जो टीएमसी के साथ हो रहा है वो उन्हीं के करतूतों की वजह से हो रहा है। तो मैं तो समझना चाहता हूं कि अंजना जी इसमें मेरा क्या रोल है।

0: वायदे करते हैं मोदी जी भूल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जो प्रकरण हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात आपने की, अभी दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें एक विधायक 10 साल बाद बहाल हो गया है। एक दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय महाराष्ट्र के लिए, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि स्पीकर उस फाइल के ऊपर बैठ गए हैं, योग्यता और अयोग्यता जो है। आज हालत यह है कि सीआईडी भी इनकी है, सीएम भी इनके हैं, स्पीकर चाहे विधानसभा में हो और चाहे संसद में हो वो भी सब इनके हैं। तो जिस तरह से आज यहां पर एक ध्यान भटकाने के लिए रेड हुई है, पूरी तरह से ये ध्यान भटकाने के लिए रेड की गई है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास सारा डाटा नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगे जा सकते किसके सिग्नेचर कैसे हैं? अब मुझे बताइए कि 20 की, 21 की, आप 25 की लिस्ट दे देते। आपने 21 की, 20 की जानबूझ के लिस्ट दी क्योंकि आपके पास 12-13 लोग थे, जो टीएमसी कह रही है। अब क्या कहेंगे बाद में कि साहब इसमें से जो है 2/3 टूट के हम आ गए, इसको कौन वेरीफाई करेगा? इन सब चीजों को वेरीफाई करने में 2 से 3 साल चले जाएंगे क्योंकि सब इनके। आपने कहा पहले एक फैक्शन आया, फिर उसमें से 2/3 आ गया, तो जो 4 हैं वो अपनी अलग पार्टी बना लें। तो आपने पूरी तरह से वहां के लोकतंत्र की हत्या करने में कोई किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में कहीं ना कहीं छोटी सी कमी भी है कि जिस तरह से वहां पर अब आप दो दो तीन तीन फैक्शन बना लेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से आज काकोली घोष हो, शांतनु सेन हो, ये जब सब जो उद्गार निकाल रहे हैं, अरे भाई आप 1 महीने पहले इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, 2023 में आपके साथ धक्का हुआ जो आप बता रहे हैं, तो 2023 से और 24 चुनाव आया तो 24 में छोड़ देते आप, 24 में बीजेपी के साथ चले जाते आप, कहते कि ममता बनर्जी बहुत खराब है, 24 के भी 26 में आप आ गए, और 26 में भी जब गए, जब ममता बनर्जी की पार्टी हार गई। अगर ममता बनर्जी की पार्टी जीत गई होती तो ये सारे के सारे फिर वही कह रहे होते कि ममता जी आपकी चप्पल बहुत अच्छी है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल यंग दिख रही हैं, आपका चश्मा बहुत सूट कर रहा है, यही सारे लोग बोलते। ये बीजेपी की पूरी कारस्तानी है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वहां पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। हम ममता बनर्जी के खिलाफ थे, हमने चुनाव लड़ा, हम लोकतंत्र को बचाना चाहते थे।
1: ठीक है,
0: जो ममता बनर्जी की कमियां थी हम उसको आज भी कहने से नहीं पीछे चुकेंगे।
1: ठीक है,
0: लेकिन जो बीजेपी ने किया अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके कर्नाटक, मध्य प्रदेश,
1: अरे अधीर रंजन जी को सुनिए ना, आलोक जी एक बार अधीर बाबू को सुनिए, उसके बाद से आपके शहजाद जी के पास चलें, जल्दी से सुनाइए।
2: ये ममता बनर्जी खुद हमारे वहां जाके इस शख्स को अपना उम्मीदवार बनाते हुए ये प्रचार में ये कहने लगे कि इस बार मुसलमान को वोट दो, इस बार भाई को वोट दो, भाईजान को वोट दो, इतने सालों से तुम दादा को वोट दे रहे हैं, दादा मतलब मैं हूं, दादा मतलब हिंदू है, इतने सालों से तुम हिंदू को वोट देते आ रहे हो, इस बार भाईजान को दिया करो, मतलब उनके उम्मीदवारों को दिया करो। तो किसका मैंडेट था ये? वो तो ये भेजा गए थे मुझे हराने के लिए। मैं जिस दिन से हार गई मकसद खत्म ममता बनर्जी की। तो जिस लोगों को, जिस व्यक्ति को, जिस शख्स को उन्होंने सिर्फ एक हराने के लिए वहां तैनात किए थे, वो अपने मर्जी पे चले, आपके बात क्यों सुनेंगे?
1: आलोक जी आप इस पे बोलेगा, लेकिन उससे पहले शहजाद जी उनकी बात का भी जवाब दीजिए। और साथ ही आलोक शर्मा जी का कहना है कि सारी कारिस्तानी बीजेपी की है, अगर इतने लोग आज अलग हो रहे हैं तो आप रीजनल पार्टीज को तोड़ना चाहते हैं।
3: मैं सबका पॉइंट वाइज जवाब देता हूं। अंजना जी, हमने तमिलनाडु की ओर एक मिनट के लिए दिशा की थी, वहां पे इन्होंने क्या बोला कि हॉर्स ट्रेडिंग हम करने वाले थे। हमारा एक विधायक है तमिलनाडु में, वन सिंगल, क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले थे वहां पे? वन विधायक से और हॉर्स ट्रेडिंग करते तो क्या डीएम के साथ में थी उसके साथ? क्या बात करते, क्योंकि एडीएम के तो हमारे साथ है। वहां पे एडीएम के का नंगा नाच हो रहा है वहां पे, उनको तोड़ने का एक डिबेट नेशनल टीवी पे नहीं है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलते हैं, मेरा लिया हुआ विधायक चमत्कार, और दो कोई और पार्टी अपनी छोड़ के जाए तो वो गुनेगा, ये डबल स्टैंडर्ड्स। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि भाई केसेस करप्शन के फाइल कर देते हैं, डरा देते हैं। ये किसने निकोबार में चोकोबार खाते हुए कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है? राहुल गांधी, 15 साल से सबसे भ्रष्ट सरकार, ये किसका स्टेटमेंट है? मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। और आप लोग अधीर रंजन चौधरी का ये बयान दिखा रहे हो, अच्छी बात है, मैं आपको भेज देता हूं ये बयान, 4 जून का बयान है ये, ये बयान में वो खुद बोल रहे हैं 60 एमएलए को ओपन ऑफर है, कांग्रेस ज्वाइन

0: करो, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। ये कांग्रेस के पास उन विधायकों को बुलाना, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। अगर वो अपनी पार्टी कहे कि वो असली टीएमसी है, वो हॉर्स ट्रेडिंग है। पर कांग्रेस ओपनली ऑफर कर दे, कांग्रेस को तो 100 खून माफ है। उसके बाद मैं आना चाहता हूं भाई, चुनाव लड़ने के बाद ये कह रहे काकोली घोष दस्तीदार वाले पैनल को कि भाई आप लोग जो है रिजाइन कर देते 24 में, तो आप टीएमसी के नाम पर चुनाव जीते। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, आप तो मुझे बताइए कि आप लोग चुनाव जो है लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े क्या केरलम में? अभी तो इंडिया अलायंस में क्यों इधर एक के साथ एक मिलकर बैठ गए इंडिया अलायंस में, और बंगाल में तो टीएमसी के खिलाफ 294 कैंडिडेट्स उतारे, तो इंडिया अलायंस में कैसे एक साथ बैठ गए? आप करें तो बिल्कुल सही।
1: एक खबर आ रही है, एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक कल होने वाली है, कल दोपहर 3 बजे भारत मंडपम में ये बैठक होगी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के साथ साथ सबसे लंबे अवधि तक एक निर्वाचित पीएम के तौर पर वो एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, और उसी कड़ी में ये 12 साल पर बैठक कल होने वाली है एनडीए के मुख्यमंत्रियों की। जल्दी से दो लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए शहजाद जी, मैं आलोक जी से जवाब लूंगी
0: 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल अंजना जी, जो अभी आपने पहले विजुअल्स दिखाया और उस पर दो रिपोर्टर को लाइव लिया, वो विजुअल्स है कालीघाट में, जो ममता बनर्जी का रेसिडेंस वहां पे है, पर वो पार्टी हेडक्वार्टर है और वहां पे कोई रेड नहीं हो रही। प्लीज रिपोर्ट्स पढ़िए, वहां पर 3 बार नोटिस सर्व हुई। अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट गए सिग्नेचर फोर्जरी के मामले में, उनको राहत नहीं मिली तो वो नोटिस सर्व करने गए। पर मैं पूछना चाहता हूं, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या लेना देना? वो तो लिस्ट दी गई साइन करके एलओपी बनाने के लिए स्पीकर को, पर उसमें फॉर्ज सिग्नेचर्स निकले, जिसमें कि मुस्लिम एमएलएज ने कहा, बारुल इस्लाम के साथ 60 एमएलएज ने कहा कि ये फॉर्ज सिग्नेचर्स है। इसमें इलेक्शन कमीशन कहां से आया? और आलोक शर्मा एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठकर इतना बड़ा झूठ दो विषय में बोलते हैं, और वो फैक्ट फ्री कुछ भी बोल सकते हैं। उनको पूछे इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है उस सिग्नेचर फॉर्जरी में।
1: ठीक है शहजाद जी, एक तो हमने भी रेड नहीं बोला है, हमने बताया कि सीआईडी की टीम पहुंची है, वहां पर जांच कर रही है। आलोक जी दोनों बातों का जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ स्वयं जी और शांति।
0: मैं आपके बारे में नहीं, आलोक के बारे में बोल रहा हूँ। आलोक के बारे में
1: बोलिए आलोक जी।
2: मैंने आप ही के चैनल पे मैंने सुना कि सिग्नेचर जो है उनकी जांच करने के लिए वहां गई है। मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास हर फॉर्म में सिग्नेचर है, हर कैंडिडेट के सिग्नेचर है, फोटो है, सब कुछ है, तो इलेक्शन कमीशन से सारा डाटा ले लेते। वहां उनका घर तो है नहीं विधायकों का कि उनके सिग्नेचर वो लेने गए, और ना ही बैंक है कि बैंक से जाकर वो सर्टिफाइड कॉपी लाएंगे कि भाई वो अपने चेकबुक पे कैसे सिग्नेचर
0: कार्यालय है।
2: तो मुझे लगता है कि ये केवल इंडिया गठबंधन की कल जो अच्छी बैठक हुई थी, तो पार्टी कार्यालय में क्या सिग्नेचर लेने गए हैं? वो कमाल कर रहे हैं यार, आप इलेक्शन कमीशन के पास है ऑफिशियल सिग्नेचर, बैंक अकाउंट है, बैंक से डाटा
0: लेने
2: यार। चलो ठीक है, ध्यान रखना
0: आप लोगों को। क्या फैक्ट्स का
2: कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्या बात करते हो यार? इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही नॉमिनेशन भरता है,
0: वही तो देख रहे
2: आपको है। पता नहीं है कुछ भी, ये मोदी जी की तरह सबको।
0: अरे भाई एलओपी
2: छोड़िए ना भाई, इलेक्शन कमीशन के पास तीनों सेट ओरिजिनल जमा होते हैं, तीनों सेट ओरिजिनल जमा होते हैं, फोटोकॉपी जमा नहीं होती। शांत रही, आप लोग झूठ बहुत बोलते हैं बीजेपी वाले। ये मोदी जी ने, सुधांशु जी ने सारे प्रवक्ताओं को झूठ बोलना सिखा दिया। वापस आते हैं, देखिए मुद्दा ये है कि वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी से काम नहीं चलता है तो ये विधायक चोरी करते हैं, विधायक चोरी से भी काम नहीं चलता तो सांसद चोरी करते हैं, और सांसद चोरी भी से भी काम नहीं चलता तो पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रच देते हैं। यही हम कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की हत्या करने में ये लोग किसी भी रूप से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जो जो लोग बीजेपी गए, मैं शांतनु सेन और तमाम लोग जो जा रहे हैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं। एक बार वो पंजाब वाले बिट्टू से पूछ लेना, 2 साल की राज्यसभा दी पार कर दिया बाहर। उसके बाद वीरेंद्र सिंह से पूछ लेना, जो जो गए हैं वहां पर और जिन जिन पार्टियों ने इनका साथ दिया है, चाहे वो अकाली हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे बीजेडी हो, बीजेपी ने एक को भी नहीं छोड़ा है। तो जो लोग आज टीएमसी से खुश होकर जा रहे हैं वो सोच के जाएं कि बीजेपी में जाके उनकी राजनीतिक हत्या तय है, बीजेपी छोड़ेगी नहीं एक को भी। हमारे यहाँ से भी प्रवक्ता साहब गए थे,
1: बिट्टू जी से लेके वो सबका नाम ले रहे हैं।
2: दुर्भाग्य ये है,
1: बीरेंद्र सिंह का सबका कह रहे हैं कि जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा।
0: सवाल तो ये होना चाहिए अंजना जी कि ऐसा कौन सा प्रेम है इनको पुत्र मोह से, परिवार मोह से, कि ये पार्टी बर्बाद हो जाती है परंतु परिवार मोह नहीं जाता। सन सेट हो जाता है पार्टी का पर सनराइज के चक्कर से बचते नहीं है। और इसी चक्कर में सुप्रिया सुले की पार्टी टूटी, इसी चक्कर में आरजेडी डूबी, इसी चक्कर में कांग्रेस डूबी, इसी चक्कर में आज टीएमसी का ये हाल है भतीजे मोह में। सवाल तो यह है कि टैलेंट आप रिटेन नहीं कर पाते। मान्यवर मैं भी कांग्रेस से निकला हूं और मान्यवर आपको यह भी बता दूं हेडगेवार जी भी कांग्रेस में थे एक समय पर जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की। तो आप अंदर भीतर जाकर देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है अंजना जी, मैं पूछ रहा हूं कि ये एडीएमके के एमएलए तोड़े तमिलनाडु में तो चमत्कार, कांग्रेस ओपनली बोले कि टीएमसी के एमएलए मेरे पास आ जाओ तो चमत्कार, और बीजेपी बोल रही है साफ हमें कोई नहीं चाहिए। स्वपन दास गुप्ता क्या, श्रमिक भट्टाचार्य क्या, दोनों ने कहा कि हम किसी को नहीं ले रहे फिर भी हम गुनेगार। ये डबल स्टैंडर्ड आज स्थापित हो गया नेशनल टीवी पे कि कांग्रेस कितनी बेशर्म है। उनके नेता का बयान मैं दिखा रहा हूं, एक बात नहीं बोले। बोलिए अधीर रंजन चौधरी का ऑफर गलत है, बोलिए अधीर रंजन चौधरी गलत है।
1: आलोक जी
3: देखिए, ममता बनर्जी हमारी पार्टी से टूटकर गई है, टीएमसी हमारी पार्टी से बनी, उसके बाद संजय राउत जी का भी स्टेटमेंट आया, तमाम लोगों का स्टेटमेंट आया कि भाई आप लोग हमारे घर से गए थे, अगर वापस आना चाहते हैं तो आ जाइए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, ना ही जिस स्टैंड अधीर रंजन जी का है, और चाहे अभी आपने जो हमारे चेयरमैन साहब का स्टैंड दिखाया, हमारा ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। अगर टीएमसी अपने घर में कोई फैसला लेती है हम उस पर विचार करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी रूप में कोई चीज गलत है, हमने उनकी पार्टी को तोड़ लिया हो, कुछ कर लिया हो, वो इंडिया गठबंधन में थी और इंडिया गठबंधन की बैठक में आई कल, वो जिस तरह से बीजेपी करती है कि सारे भ्रष्टाचारी हैं और फिर सारे भ्रष्टाचारी हमारे घर में आ जाते हैं। अरे भाई सारे भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस के जितने आरोप लगाए ये सुमेंदु अधिकारी को इतना भ्रष्टाचारी बताया था, आप लोगों ने तो कैमरे पर रिलीज किया था, वो हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी निकाल दी थी, और ये आम आदमी पार्टी वाले सारे भ्रष्टाचारी थे, ये सब दारू का पैसा लेकर गए और ये सारे भाजपा में चले गए। तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देश समझ चुका है, आप केवल पोलराइजेशन करते हैं, पोलराइजेशन करके नोटबंदी के पैसे से, पीएम केयर्स फंड के पैसे से इन विधायकों को तोड़फोड़ करते हैं, और अगर कोई लालच में नहीं आता तो ईडी सीबीआई भेज देते हैं। ये मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप तो मतलब जो फंड भी लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में।
1: जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, आलोक जी दो लाइन में, शांतनु सेन को क्या लालच होगा, वो इस बार लड़े भी नहीं है चुनाव, उनको क्या लालच है? अच्छा स्वयं प्रकाश जी आप ही बता दीजिए।
4: हाँ स्वयं देखिए मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, नहीं बने। इनकी जो धर्मपत्नी है वो काउंसिलर है वार्ड की, और इनके बहुत से और भी काम धंधे हैं वहां पर। तो हर आदमी अपना व्यापार अपने लोगों को बचाना है, ग्राउंड लेवल तक बचाना है।
1: शहजाद जी जल्दी से दो लाइन का रिस्पॉन्स, वो कह रहे हैं आप तोड़ते हैं सबको अपने पैसे से, और ये भी वही कह रहे हैं।
0: तो मुझे बता दीजिए कि 1998 में जब शरद पवार जी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाए तो हमने लालच दिया था, और अगर शरद पवार जी हमारे एजेंट थे तो आज इंडिया लाइंस में क्यों है, क्या ममता?
1: वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत का कश्मीर तेजी से बदल रहा है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्यों भारत ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब मिसाइल्स पर माउंट कर दिए हैं, और इसके बाद बताएंगे कि क्या असम के स्कूल में हिंदू बच्चे को बीफ वाला टिफिन खिलाया गया, और आखिर में बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में गैंग्स ऑफ धर्मांतरण की अब खैर नहीं। देखते रहिए आज तक।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाई टेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
2: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
1: सिंह जैसी
3: शक्ति मुझ में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
8: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
9: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
7: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
10: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
8: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
7: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
7: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
15: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
7: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
15: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
7: छात्रों को दिया मंच।
15: उज्मा हमारे साथ कोटा से और अदिति मुंगेर से हैं और तानिया कोटा से हैं और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
16: नहीं, देखिए इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
17: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही।
7: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
15: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
7: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
18: गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की, संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं।
19: संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर दो बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैंड मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं, देखिए अभी यहां पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहां पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहां पर जो की जा रही थी। और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहां पर लगातार जो जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहां पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर जो बनी हुई है। यहां पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है नजर आएंगे और देखिए किस तरीके से जो यहां पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहां पर मौके पर मौजूद है।
18: ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी।
20: ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी। और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है।
18: अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है।
21: जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर ही काम किया गया कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही है या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके।
18: 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी। लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे। इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है। फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई। ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो

0: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था। लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है। लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही। समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर यह याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है। कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है, और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है। दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है।
1: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं, और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: ओ माता की जय, ओ माता की जय, गंगा माता की जय, जय श्री राम।
3: बंगाल में बीजेपी की सरकार और एक्शन लगातार जारी है। शुभेंदु के बंगाल में सत्ता संभाले आज 30 दिन हो गए हैं। वो लगातार अपने हिंदुत्व कार्ड पर अमल में जुटे हुए हैं। सनातन के जयकारे के साथ सरकार का नया फरमान आया है। शुभेंदु सरकार ने कह दिया है कि बंगाल में सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा। आदेश बहुत साफ है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मदरसों के सर्वे के दौरान उनकी कार्यप्रणाली, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी वैधता की जांच की जाएगी। सर्वे से जांच की तैयारी है कि सभी मदरसों में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, सभी के पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र होगा कि संबंधित मदरसा आवासीय है या नहीं, उसे फंड दिया जाता है या नहीं, और साथ ही ये भी कि वहाँ क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। इसमें आदेश दिया गया है कि मदरसों के निर्माण, उनके रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, वैध कागजात की जांच, छात्रों की संख्या, वहाँ पढ़ाने वाले मौलवियों की संख्या और अन्य कर्मचारियों के आंकड़े भी मुहैया कराए जाएं। बंगाल के अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा से संबंधित विभाग ने 5 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। बीजेपी अक्सर टीएमसी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाती रही है। अब सत्ता संभालते ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन मोड में है। वो साफ कहते हैं कि सेकुलरिज्म का दीमक बंगाल के विकास को चाट गया। मदरसों का सर्वे शुभेंदु सरकार का नया सियासी कार्ड है। अब बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि शुभेंदु बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बंगाल के मंत्री भी कह रहे हैं कि इस फैसले से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और संस्थानों की निगरानी से व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। मदरसे के सर्वे के आदेश पर अमल की तैयारी है। अब बंगाल में मदरसों को लेकर आंकड़े भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त 609 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें 395 हाई मदरसा, 112 जूनियर हाई मदरसा और 102 सीनियर मदरसा हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 685 गैर मान्यता प्राप्त मदरसा भी हैं। 2026-27 के अंतरिम बजट में ममता सरकार ने अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अब सरकार हवाला दे रही है कि इन सभी मदरसों के सर्वे का मकसद अपडेट डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भविष्य में मदरसा से जुड़ी की जाने वाली प्लानिंग को लेकर मदद मिल सके। राज्य सरकार कह रही है कि तुष्टिकरण की राजनीति पर चोट जारी रहेगी। मदरसों के सर्वे का फैसला होने के बाद अलग अलग जिलों में तैयारी पूरी है। राज्य सरकार ने सर्वे की रिपोर्ट 5 जुलाई तक मांगी है। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।

0: माहौल में हम बहस में आज चर्चा कर रहे थे टीएमसी के बदलते हालात पर ममता बैनर्जी के चैलेंज के बारे में। ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए साथ तक नेहा के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। शाम के 7 बजने वाले आज तक के इस खास शो में अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर।

0: जानकारी छुपाने का आरोप, बीजेपी का जश्न। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात, बागी काकुली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान, राज की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, काली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन, धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। पीओजेके में पाकिस्तान की क्रूरता पर भारत का कड़ा जवाब, नाकामी छिपाने के लिए 27 बेगुनाहों की हत्या, वैश्विक समुदाय से की जवाबदेही तय करने की मांग। शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी कैंसिल यानी कि रद्द कर दी गई है। बीजेपी नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का विरोध किया था और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की थी। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता नॉमिनेशन रद्द होने के बाद जश्न मना रहे हैं। हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप मीनाक्षी नटराजन पर लगा, उसके बाद जांच में पाया गया कि यह सत्य है और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, क्या जानकारी छुपाई थी या फिर गलत दी थी मीनाक्षी ने?
1: देखिए, आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में उनके खिलाफ तेलंगाना की अदालत में एक मामला लंबित था, उसकी जानकारी छुपाई थी, जिसमें उन्हें आरोपी नंबर 4 बताया गया था। लेकिन ये जानकारी जो है मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में छुपाई थी, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि ये, क्योंकि वो सांसद भी रह चुकी हैं और इसीलिए ये गंभीर माना गया। उन्हें 6:30 बजे तक का समय दिया गया था शाम को कि वो अपना पक्ष सामने रखें, लेकिन उनकी दलीलें जब सुनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दलीलें सुनी गई, तो उसमें यह पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन को जो नोटिस दिया गया था कोर्ट की तरफ से, जो समन भेजा गया था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया था। बावजूद
2: इसमें अवसर मिला, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया, और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है।
3: देखिए, हमारे बीच में संकेत गुप्ता जी हमारे एडवोकेट हैं, जिन्होंने पूरे प्रकरण को तर्कपूर्वक आरओ साहब के सामने रखा और रखने के बाद आरओ साहब ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में क्या तर्क था, मैं समझता हूँ संकेत गुप्ता जी बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे।
4: सबसे पहले आप सभी लोगों,
0: इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है। यहाँ राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक ने परिमल नथवानी के नाम पर आपत्ति जताई है और आपत्ति में कहा गया कि नामांकन पत्र में कहीं उनका नाम परिमल नथवानी लिखा है, कहीं अन्य स्थानों पर इसे नथवानी परिमल लिखा गया है। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल कोंगारी ने कुछ अन्य कॉलम्स पर भी आपत्ति जताई है। अपराध वाला कॉलम छोड़ने पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक और नामांकन जिस पर आपत्ति दर्ज की गई है वह रांची से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार, ये नामांकन दाखिल करते हुए इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, परिमल नथवानी इनका नाम है, कहीं पर ये नाम दर्ज है, कहीं पर नथवानी परिमल लिखा गया है, इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। तलबनामे में जानकारी छिपाने का, अधूरी जानकारी देने का, नाम कहीं पर अलग अलग लिखने का, ये तमाम आरोप इन पर लगे हैं। ये रांची से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी, कांग्रेस ने अब आपत्ति दर्ज की है। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, नाम को अलग अलग तरीके से लिखना यह भी गलत माना जाता है, और किन मामलों में आपत्ति दर्ज की गई है, कोई कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है इन्होंने?
5: इसमें जो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से हमारी बात हुई और जो सामान्य प्रक्रिया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक अगर थोड़ी सी लिपिकीय भूलो, जिसको हम टाइपो मिस्टेक बोलते हैं, अगर वो है तो उसको सुधारने का मौका मिलता है। ये निर्वाचन अधिकारी तय करते हैं कि कौन सी गलतियां, अगर टाइपो मिस्टेक है तो उसे सुधारने का नाम में या किसी अन्य चीज में, लेकिन उम्र और जन्मतिथि को लेकर अगर कुछ गड़बड़ी है तो नामांकन रद्द होने का आधार हो सकता है। तो ऐसे में निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस दिया है, कल सुबह तक इस सारी गलतियों के बारे में उनका जवाब मांगा है कि क्या शुद्ध और सही होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि परिमल नाथवानी, उन्होंने अपना नाम नाथवानी परिमल लिखा है, तो हो सकता है कि उसको सुधारने का मौका दे दिया जाए। लेकिन अगर प्रस्तावक के नाम, प्रस्तावक के दस्तखत या अन्य कुछ कई कॉलम ऐसे हैं जिन्हें खाली छोड़ दिया जाए या जिनमें गलत जानकारी भरी जाए तो नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नोटिस का जवाब क्या आता है और उसे निर्वाचन अधिकारी क्या प्रक्रिया के तहत उसको मान्य करते हैं या फिर उनका नामांकन रद्द करते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की, जिन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है। ममता बनर्जी के घर के साथ साथ अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट ऑफिस पे सीआईडी टीम पहुंची। ये दौरा एमएलए के जाली हस्ताक्षर के कथित मामले की जांच के सिलसिले में हुआ और सूत्रों के मुताबिक ये कदम तब उठाया गया जब पहले समन जारी होने के बावजूद अभिषेक भवानी भवन में पेश नहीं हुए। अभिषेक दिल्ली में है और उन्होंने सीआईडी से समय बढ़ाने की मांग की।
6: यहाँ पर ही बैठती थी तो दो दिन के लिए नहीं है, उस मौका में ये लोग ये इन्वेस्टिगेशन बार बार, हमारा लीडर शुभाशीष चक्रवर्ती बार बार बोला है अरे वो उनको लौट ना दीजिए तो काल परसों आ जाएंगे। तो ये तो उनका ये पॉलिटिकल रेड है, पॉलिटिकल माहौल क्रिएट करना है, वो कर रहे हैं।
0: इधर अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी शिकंजा कस रही है, उधर टीएमसी में टूट का डर बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी और केजरीवाल से मुलाकात कर विपक्ष को एकजुट करना चाह रही है, मगर उनकी खुद की पार्टी में विद्रोह की आग थदक रही है।
7: ममता बनर्जी मुश्किल में है, पार्टी से लगाम छूट रही है और पार्टी तेजी से टूट रही है। ममता के विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही है। पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं।
8: इट इज यूजलेस टू से दैट जस्ट बिकॉज शी इज नॉट इन पावर इन वेस्ट बंगाल आई हैव लेफ्ट, इट इज नॉट दैट आई वाज विद हर व्हेन शी वाज नॉट इन पावर।
7: ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही हैं, केजरीवाल से मिल रही हैं और कल जब विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और वो भी चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर। इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाया, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है। शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था कि टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई। अब ममता के साथ वाले सांसद भड़के हुए हैं।
9: इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग, पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले, तब तो सब कुछ ठीक था, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है।
7: अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है, उन पर है कि वो बागियों को सदन में मान्यता देते हैं या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे घिरती फंसती और अकेली पड़ती जा रही है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।
0: एक तरफ टीएमसी नेताओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और इन कार्रवाइयों के साथ ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी चरम पर है। आज एक बार फिर टीएमसी के एक नेता पर अंडे और टमाटर बरसाए गए।
10: टीएमसी के नेता पर अंडे और टमाटर की बारिश हो रही है। देखिए टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सब्यसाची दत्ता को जब कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस पहुंची तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सब्यसाची का विरोध कर रहे लोग उन पर अंडे, टमाटर और गोबर फेंकने लगे। कोर्ट परिसर में ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सब्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। पश्चिम बंगाल में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। टीएमसी के जिन नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उन पर पब्लिक अंडे और टमाटर बरसा रही है। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तभी यह अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में हमला हुआ था। टीएमसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश तक तो ठीक है मगर अंडा फेंककर विरोध करने का एक पैटर्न बनता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: तो क्या उत्तर प्रदेश में जनाब इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ एनडीए के सामने कड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है? यह सवाल कल दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मौजूद हो गया है क्योंकि कल की बैठक में सबसे ज्यादा जोर गठबंधन की एकता पर था लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यहीं पर खरी खरी सुना दी थी।
10: राहुल गांधी के बगल वाली कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन को देखकर समझा जा सकता है कि यूपी की सियासत में नए समीकरण को संवारने की कवायद होनी है क्योंकि अखिलेश ने जब बोलना शुरू किया नाराजगी का पिटारा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
11: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी।
10: अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कहा कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद ना करते हुए जमीनी हकीकत समझनी होगी, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी।
12: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
10: दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है लेकिन समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें दे सकती है।
13: हमारा गठबंधन स्पष्ट कह रहा हूँ सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
10: लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन को जनता नकार चुकी है।
14: देखिए आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है।
10: यूपी के चुनाव में अभी वक्त है लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: उधर आज रामकथा के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने लैंड यार्ड का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज कसा।
15: आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहू क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया।
0: बिहार की बात करेंगे जहां पर राबड़ी देवी के बंगले पर बवाल मच गया। आज लालू यादव सिंगापुर से लौटे हैं और माना जा रहा है कि बंगला खाली करने का फैसला अब लिया जाएगा। उधर तेजस्वी यादव ने इसी मामले में सीएम शिवराज चौधरी पर अभद्र बयान दिया है।
7: करीब एक सप्ताह के बाद सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे तो सियासी पारा चढ़ा हुआ था। लालू से राबड़ी के बंगले और सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सवाल हुआ।
16: सुरक्षा को वापस ले लिया गया लालू जी।
7: मगर लालू यादव कुछ नहीं बोले। इधर राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का नोटिस मिल चुका है। माना जा रहा है कि लालू के लौटने के बाद राबड़ी ये बंगला खाली कर देंगी, मगर बंगला खाली करने के पहले बंगले पर बवाल मचा हुआ है।
16: अगर जांच कराई जाए तो सबके कितने कितने घर निकलेंगे, कहां कहां घर निकलेंगे, और ये सरकारी घर है, अब सरकार बदल गई है।
7: इसी मसले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप भी सुनिए।
17: सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे।
7: तेजस्वी का बयान बताता है कि बंगले पर सरकार के नोटिस ने आरजेडी के भीतर तिलमिलाहट भर दी है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ कहा था कि राबड़ी देवी को बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। पटना से शशिभूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और बात नीट पेपर लीक मामले की, जिसमें जारी घमासान के बीच आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय अधिकारियों को शामिल किया गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के दफ्तर में दोबारा नीट परीक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग की, जहां उन्होंने एक बार फिर छात्रों को भरोसा दिया कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी।
18: त्रुटि शून्य नीट इस बार करके देंगे। और फिर और एक बार मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बार परीक्षा की रिजल्ट सटीक समय में ले आएंगे, जिससे बच्चों की लर्निंग टाइम लॉस ज्यादा ना हो। बच्चों को फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पढ़ाई में ध्यान दें, निर्भुल तरीके से री नीट की एग्जामिनेशन हम कर लेंगे।
0: और अब यूपी में संतों का विवाद, जिसकी बात एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने राम भद्राचार्य की हत्या की आशंका जताई है, तो राम भद्राचार्य ने भी आशुतोष ब्रह्मचारी पर पलटवार कर दिया है।
19: यदि मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है।
17: आशुतोष ब्रह्मचारी के वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है, इससे मुझे इससे डर लग गया है। तो आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूं। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए।
0: और बात हिंदुस्तान के एक बड़े ऐतिहासिक कदम की, जिसे देश की सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
7: जोजिला टनल में किए गए इस धमाके के साथ ही हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया।
20: जोजिला ब्रेक थ्रू होने के बाद आज तक आज उसी दुनिया की सबसे ऊंची 13 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुजरने वाला है। हम इसी सुरंग से लद्दाख के द्रास से अब आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, वो इलाका बालटाल के पास जहां इसका दूसरा मुहाना है।
7: इस टनल को ऐसे बनाया गया है कि मुश्किल दौर में भी कश्मीर और लद्दाख आपस में जुड़े रहेंगे और जिंदगी की रफ्तार तेज रहेगी। हिमालयी मार्गों में से एक रास्ते पर साल भर संपर्क सुनिश्चित होगा।
20: मैं जोजिला पास के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे उस जोजिला टनल के बीचों बीच के हिस्से में हूँ। ये वो जगह है जहाँ आज ब्रेक थ्रू हुआ है। तो अब मैं लद्दाख का द्रास जिला पार कर चुका हूँ और लगभग अब कश्मीर के गांदरबल जिले की ओर हूँ। और यहाँ पर दरअसल ये एक दीवार आप देखेंगे 2 से 2.5 मीटर का हिस्सा था और ये इसी को धमाके से उड़ाना था। यहीं पर एक धमाका होता है और उसी आखिरी विस्फोट के साथ ये ब्रेक थ्रू हो गया। ये टनल अब दोनों मुहाने इसके जुड़ गए हैं, ये दीवार हट चुकी है, एक रास्ता खुला है जिसके चलते अब हम लद्दाख छोड़ करके आज पहली बार कश्मीर जाएंगे उस रास्ते से जो पारंपरिक तौर पर साल के 6 महीने तो बंद रहता था।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर ₹5 का विशेष डाक टिकट जारी किया गया, ₹75 का स्मारक सिक्का जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सरकारी और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स ने अभियान की सफलता में अहम योगदान दिया है। पीएम एसएमए के तहत हर गर्भवती महिला को निशुल्क प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। जेपी नड्डा ने डॉक्टर्स, नर्सेज और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। और अब शेयर बाजार की कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 395 अंक मजबूत होकर 73,919 और निफ्टी 119 अंक चढ़कर 23,242 के स्तर पर बंद हुआ है। शेयर बाजार की मजबूती के बीच रुपए में भी आज बढ़त देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 95.36 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं सराफा बाजार में भी आज तेजी का रुख रहा। सोना 1,816 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 1,52,584 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 4,447 रुपए बढ़कर 2,45,607 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। तो ये थी खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी
8: शक्ति मुझ में।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: इन एसोसिएशन विद
13: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: हिंट, बड़े आराम से
13: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
12: विमल बोलो जुबां केसरी।
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिजटेक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से, जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिजटेक पर।
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: So it is useless to say that just because she is not in power in West Bengal.
1: Preeti, this party was made of its workers. This party was not made of these Aaya Ga Ram Gaya Ram.
2: वो कोई कुछ करने वाला नहीं है दुनिया में। अरे भाई आम जनता ने तुमको चुन के भेजा है, जिन्होंने भेजा है उन्होंने तुमको नीचे गिरा।
3: 40 साल से ममता बनर्जी की विश्वस्त रही काकोली घोष को अब अपनी दीदी पर विश्वास नहीं रहा। ममता के खिलाफ बगावत की अब वो अगुवा है। जिस शताब्दी रॉय का राजनीतिक भविष्य ममता ने संभाला सवारा, वो अब ममता का भविष्य तबाह करने पर तुली है। और ये फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है। ममता से बारी बारी सभी बिछड़ रहे हैं, अपनों का साथ छूटता जा रहा है, विश्वस्त बागी बनते जा रहे हैं और दीदी अकेली, बहुत अकेली पड़ती जा रही है। पहले जनता ने साथ छोड़ा, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब सांसदों ने भी साथ छोड़ दिया है, यहां तक कि पार्षद भी साथ छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कितनी अकेली और असहाय हो गई हैं, ये सोमवार को दिल्ली में साफ हो गया। सोमवार को एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त उनके पांव के नीचे की जमीन खिसकाने की तैयारी चल रही थी। भूपेंद्र यादव के घर बागियों ने बैठक की और चोरी छिपे नहीं, डंके की चोट पर पूरी मुनादी के साथ। इस बैठक से जब शुभेंदु अधिकारी निकले तो मीडिया को विक्ट्री साइन दिखाई, यानी ये साफ कर दिया कि सांसदों को लेकर भी खेला हो चुका है। शाम को शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक हुई और फिर लोकसभा स्पीकर को खत गया जिसमें लिखा था टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में बैठने की अलग व्यवस्था की जाए। ये चाहत जताई गई कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और बागी गुट की नेता के तौर पर काकोली घोष को मान्यता देने की मांग की गई। आपको बता दें कि लोकसभा में टीएमसी के अभी 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, यानी 20 सांसद बगावत करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन टीएमसी का कहना है कि स्पीकर को खत काकोली घोष की तरफ से गया और वो अब पार्टी की चीफ व्हिप नहीं रहे। उनकी जगह पहले ही कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया गया था। तो अब गेंद लोकसभा स्पीकर के पाले में है, उन पर है कि वो बागियों को सदन में

आज की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले, दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार सख्त, प्रशासन को देनी होगी छात्रों की जानकारी। सीएम ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश, स्कूल कॉलेज के समय पर नहीं चलेगी कोचिंग।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। विशेष में आज बात लव जिहाद की करेंगे, जिसे लेकर यूपी में लगातार सियासत हो रही है। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर जांच जारी हुई है, उसके बीच अब लखनऊ के पीजीआई से लव जिहाद के मामले में हड़कंप मच गया है, जहां एक बच्ची पिछले कई दिन से लापता है, जिसे सीरिया भेजने की धमकी दी जा रही है।
1: बाबा जी से हमारी अपील है कि बाबा जी ये कहते हैं कि बाबा जी हिंदू लड़कियों को छेड़ने नहीं देंगे, लेकिन हम मेरी लड़की को तो जबरदस्ती बैठा के ले जा रहा है। बाबा जी कुछ करिए, बाबा जी
2: मदद करें मेरी। बाबा जी मेरी बेटी गुलाम है, बाबा जी कैसे भी आन जोर के प्रार्थना करती हूँ मैं।
3: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार है एक बेबस माँ बाप की, जो पिछले कई दिनों से अपनी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई, जहां इरशाद नाम के शख्स ने उनकी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है।
1: पिछले एक साल से परेशान करता चला रहा है सर। हम इसको इसकी शिकायत हम थाना पीजीआई में कई बार कर चुके हैं। एक बार हमारी लड़की को लेकर के हमको अपने हवाले करने को ले कह रहा था कि हमारी अपनी लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो जान से मार दूंगा सर। फिर मेरे सिर पे बार कर दिया, मैंने एक एफआईआर किया, एफआईआर को एनसीआर में बदल दिया, तो डॉक्टर अजमल ने इसकी जमानत ली है और डॉक्टर अजमल इसकी आए दिन मदद करते रहते हैं।
3: इस मामले को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखना होगा, जिसमें अलग अलग तस्वीरों में एक लड़की नकाब में नजर आ रही है। वहीं एक और तस्वीर है जिसमें इरशाद अली लड़की के साथ नजर आ रहा है। परिवार का आरोप है कि घर में एसी ठीक करने आया इरशाद पिछले काफी वक्त से उन

0: की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था।
1: ये एसी का काम करता था तो मेरे बेटे को पहले फंसाया इसने, तो मेरे घर तक एसी के काम में ले जाने लग गया और मेरे घर तक आया और उसी टाइम रक्षाबंधन का टाइम था, मेरे बच्चे राखी बंधवा रहे थे, उसी टाइम आकर के बैठ गया बीच में, आकर के बोलने लगा बहन मेरे भी राखी बांधो, और मेरे बच्चों के साथ फोटो करवाया, मेरे बच्चों का फोटो हटा करके और मेरी बेटी का फोटो लगा दिया उसने, और उसी ब्लैक मैन में उसको पता नहीं कैसे उसने ब्लैक मैन करने लगा उस फोटो को लेकर के, उसी से करने लगा, और फिर मेरी बेटी की शादी रुकी और शादी रुकी उसी से, उसको लड़के को गंदी वीडियो बना के दिखा दिया कि शादी टूट गई, उसको लेकर के मेरी लड़की गई कंप्लेंट करी वहां जा करके थाने में।
0: अभी लखनऊ के KGMU में लव जिहाद वाले जाल की पड़ताल चल ही रही है कि इस बीच लखनऊ के एक और बड़े अस्पताल से जुड़े डॉक्टर के लव जिहाद वाली साजिश में शामिल होने की बात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ये परिवार पिछले कई सालों से PGI में रह रहा है, जो PGI के डॉक्टर पर धर्मांतरण का गैंग चलाने का आरोप लगा रहा है, जहां उसकी बेटी को सीरिया भेजने की धमकी दी जा रही है।
2: ये सर इनकी पहले कुछ दिन पहले कुछ गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाने के बाद इनके संपर्क में आया और ये पहले इनके पिताजी की भी मदद करते थे। एक इस पश्चिम कल्ली पश्चिम में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में इनका एक धंधा चलता है, ये हिंदू लड़कियों को फंसा करके एक गैंग बना के रखे हैं, जिसमें मैंने पीछे वाली जो एक एप्लीकेशन दिया था उसमें एक संगठन के बारे में मैंने लिखा है, जो मैंने कंप्लेन महिला आयोग को दिया था, महिला आयोग में मेरी लड़की
3: का संगठन है,
2: मुस्लिम संगठन है, कोई बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं और इस संगठन में चला करके लड़कियों को सीरिया भेजने की बात कहते हैं कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सीरिया में भेज दू, धमकी दी इस बात की, हमको धमकी दी है कि तुम्हारी लड़की को हम शादी कर लेंगे और सीरिया भेज देंगे।
0: परिवार का आरोप है कि PGI में धर्मांतरण के इस खेल में कई और शिकार बनाए गए हैं, जहां इरशाद अली डॉक्टर के साथ मिलकर पूरी साजिश रचता है।
1: बनाता है, ये एक झुग्गी में रहती थी उसी काम वाली, तो शर्म के मारे अपनी बच्ची को लेकर के वहां से चले गए वे लोग, हमको बताया था कि ये तुम्हारी लड़की की का, इसने कई लड़कियों को बनाया है,
2: हिंदू लड़कियों को बर्बाद कर चुका है।
3: वही PGI कॉम्प्लेक्स में रहते हैं,
2: मैं PGI कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ मैं, मुझे कैंपस में रहते हुए 19 साल हो गया।
0: परिवार के मुताबिक उनकी बेटी 21 मई को नौकरी के लिए बाहर गई, जिसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग बेटी के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
2: हमारी लड़की घर नहीं आई तो हमारा रो रो के बुरा हाल हो रहा है सर, हमारी पत्नी बीमार पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा सर, अनहोनी हो जाएगी, हमारी लड़की को बरामद करा दे साहब, लड़की अगर जिंदा वापस हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अभी सर मार देंगे।
3: संपर्क हो पाया नहीं हो पाया?
2: कोई संपर्क नहीं हुआ है, पुलिस बार बार आश्वासन देती है मदद करने के लिए, कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई मदद का कोई तरीका इनका नजर नहीं आ रहा है, कैसी मदद कर रहे हैं ये कोई पता नहीं है साहब, हम तो सिर्फ यही मान सकते हैं कि ये हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कैसी मदद कर रहे हैं ये हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, हम बहुत परेशान हैं सर, ये मुस्लिम है सर, लेब जहाद करके सर कोई ना कोई हमारी बिटिया को कहीं कुछ करने दें सर, हमको डर है, बहुत ज्यादा डर है सर।
0: अब मामले में हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं, जिन्होंने साफ किया है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।
4: पता चला है कि डॉक्टर अजमल भी लव जिहाद उन्होंने किया, उनकी पत्नी यादव परिवार से आती है और उन्हीं के द्वारा ये दलित समाज की इस बच्ची को गायब कराया गया, क्योंकि ये लगातार उस जो लड़का है अभियुक्त उसको छुड़ा के ले जाते हैं अपना पैसे के दम पे, और ये जो है लगातार उसकी पैरवी कर रहे हैं, अपने ताकत का रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका नाम भी FIR में कहीं ना कहीं नहीं आया है जहाँ तक मेरी जानकारी है।
0: आरोप सनसनीखेज हैं और मामला बेहद गंभीर, जहां लखनऊ PGI से जुड़ा एक डॉक्टर शक के दायरे में है। इन आरोपों के बीच पुलिस की जांच तेज है, CCTV की पड़ताल हो रही है, लड़की के कॉल रिकॉर्ड की भी जांच हो रही है, ताकि जल्द से जल्द लड़की को सुरक्षित लाकर पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
5: उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर लव जिहाद की साजिश का जिक्र किया, तो वहीं इसके खिलाफ सख्ती से निपटने की बात कही। वहीं योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए।
6: इसका उदाहरण है, याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा, याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी।
7: हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं, लव से प्यार नहीं उन्हें, लैंड से प्यार है। आप गोरखपुर में पता कर लो सब ज्यादा रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, तो उन्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। और फिर धार्मिक कार्यक्रमों में हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमें जोड़ता है, सनातन धर्म हमें प्रेम का रास्ता दिखाता है, सनातन धर्म हमारा एक दूसरे को भाईचारे को बढ़ावा देता है, सनातन में सबसे बड़ी बंधुत्व है। इसीलिए मैंने कहा कि बंधु राष्ट्र बने, और सनातन सत्य का रास्ता है। तो जो सरकार के मुखिया हैं वो सत्य का रास्ता नहीं अपनाते, उनके पास सत्य का रास्ता नहीं है।
8: सर, प्रधानमंत्री मोदी के 10-12 साल पूरे हो रहे हैं नेहरू के बाद, अब तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का खिताब प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है।
7: खिताब तो उन्हें बहुत मिलेंगे, अगर मेरे साथ अभी पेट्रोल पंप पे चलो आप, तो शायद आजादी के बाद इतना महंगा डीजल पेट्रोल कभी नहीं बिका होगा। और लोगों ने आपदा में आविष्कार किया है कि सिलेंडर को चूल्हा बना लिया।
5: उधर मेरठ और बरेली से भी लव जिहाद के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी।
0: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
9: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप मांगे थे दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
10: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
9: 11 साल से।
10: अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया, अब क्या करा है?
9: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
10: क्या नाम है उसका?
9: वशील। और उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना।
5: विशेष वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
5: सिंह जैसी
7: शक्ति मुझ में।

हिंदुस्तान का गौरव है चोचिला टनल। ये वो सुरंग है जो संस्कृतियों को जोड़ने जा रही है। ये सुरंग जो देश की सामरिक क्षमता को बढ़ाने जा रही है। ये वही सुरंग है जिसकी बदौलत मौसमी संकट में भी देश के उत्तरी हिस्से आपस में जुड़े रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग की अंतिम बाधा को ट्रिगर किया और एक धमाके के साथ सुरंग में आर पार का रास्ता तैयार हो गया।

0: आज हुए आखिरी धमाके के साथ ही अब सुरंग के दोनों छोर एक दूसरे से मिल गए हैं। इस धमाके के बाद सुरंग के अंदर खुदाई का काम एक तरह से पूरा हो रहा है। इस सुरंग का निर्माण 11,578 फीट यानी 3,550 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई करीब 13 किलोमीटर है, मतलब ये कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी सुरंग है। ये कामयाबी अब हिंदुस्तान के नाम है। 1 अक्टूबर 2020 को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ था और करीब 6 साल बाद अब आखिरी ब्रेक थ्रू भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। देश को समर्पित किए जाने से पहले आखिरी ब्रेक थ्रू काफी अहम है। सुरंग के पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद श्रीनगर और लद्दाख के बीच द्रास, कारगिल, लेह और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच बेहतर हो जाएगी। आवागमन, लॉजिस्टिक्स और सामरिक पहुंच को भी मजबूती मिलने वाली है। मीर फरीद के साथ आशुतोष मिश्रा, लद्दाख आज तक।
1: भीषण आग की दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की हैं, जहां हीट यूनिट में हुए हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल एक बड़ी क्रेन से स्टील के लैडर को ऊपर उठाया जा रहा था, जो नीचे आ गिरा। ये हादसा अत्यधिक तापमान की वजह से पिघले हुए इस्पात से भरी एक करछुल में विस्फोट के कारण हुई। पिघला हुआ स्टील नीचे काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आ गिरा। हादसे के बाद सीसीटीवी यूनिट में भीषण आग लग गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई के घायल होने की खबर है। हादसे की सूचना मिलने के बाद गृह मंत्री वंगलापुड़ी अनीता तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों में 5 परमानेंट कर्मचारी हैं, जबकि 3 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वे स्टील प्लांट में हुई दुर्घटना से काफी व्यथित हैं। उन्होंने घायलों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख के मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर ₹5 का विशेष डाक टिकट जारी किया गया, ₹75 का स्मारक सिक्का जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सरकारी और निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स ने अभियान की सफलता में अहम योगदान दिया है। PMSMA के तहत हर गर्भवती महिला को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। जेपी नड्डा ने डॉक्टरों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया।
3: और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदृष्टि का ये कार्यक्रम था वो है, उसको एक जिसे कहा जा सकता है कि एक लक्षित तरीके से, टारगेटेड तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुई है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/depositdisclosures for fees and details.
2: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckled politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
4: Money, money, money, money, every month.
5: Soch badlo aur bank bhi.
6: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए। अखिलेश ने शुरुआत क्या की, कांग्रेस के रवैये से दुखी सभी क्षेत्रीय दलों ने अपना अपना दुख सामने रखना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राज्यों में सहयोगियों पर ही हमले करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भी चुनाव में कांग्रेस मनमाने तरीके से फैसले लेते रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों पर बात तक नहीं की जाती है। वीसीके ने कहा कि डीएमके, टीएमसी, सीपीएम सबको चुनाव में कमजोर किया गया। लेफ्ट ने कहा कि केरल में राहुल और प्रियंका ने हमारे ऊपर ही बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था। उद्धव ने कहा कि बिना संयोजक के ऐसे काम नहीं चलेगा, एक चेहरा तो तय करें। बैठक से बाहर निकले लेफ्ट नेताओं ने कहा कि सोनिया और राहुल ने सप्रेम शिकायतें सुनी और कबूल की, लेकिन उनकी सफाई लेफ्ट को कबूल नहीं। बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो तीन कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर दो नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग की तारीख कुछ ऐसी है कि 2017 में जब गठबंधन हुआ तो अखिलेश को सीट बंटवारे में 298 सीट मिली, लेकिन 311 सीटों पर लड़ गए। समाजवादी पार्टी 47 सीटें जीती और दर रही 15.11%। इसी तरह कांग्रेस के हिस्सों में 105 सीटें मिली थी लेकिन 114 पर लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट था तब 6.14, लेकिन जब 2022 के चुनाव आए तो दोनों दलों में बात नहीं बन पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों ही दलों का प्रदर्शन खराब हुआ था और कांग्रेस की बुरी हालत हो गई थी। 2022 में समाजवादी पार्टी 346 सीटों पर लड़कर 111 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 32.08%। कांग्रेस 399 सीटों पर लड़कर 2 सीट केवल जीत पाई और स्ट्राइक रेट गिरकर 0.50% रह गया। इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश का साथ आना ही एक दूसरे के बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए 2024 में दोनों दल फिर साथ आए और जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ गठबंधन में तब समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती। दर रही 59.68%। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती, 41.17% की दर पहुंची थी। अखिलेश का विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले दोगुना से अधिक का स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा है, इसी आधार पर वो ज्यादा सीटें मांग सकती है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: एमपी में राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भड़की कांग्रेस। दिल्ली में जयराम रमेश के नेतृत्व में चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा। बीस सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। एनडीए को समर्थन करने का ऐलान किया। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार। अमित शाह संभाल रहे हैं कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक। नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले, दोषियों को मिले सख्त सजा। री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और कोचिंग को लेकर बिहार सरकार सख्त। प्रशासन को देरी होगी छात्रों की जानकारी। सीएम ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश, स्कूल कॉलेज के समय पर नहीं चलेगी कोचिंग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। सियासत को लेकर कहा जाता है कि इसमें कोई स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होता। 2 साल पहले आज ही के दिन पहली बार एक दशक बाद नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत पड़ी। ये वो वक्त था जब इंडिया गठबंधन के नेताओं के हौसले बुलंद थे। इसमें से ममता बनर्जी भी शामिल थी, लेकिन आज 2 साल बाद ममता बनर्जी के साथ उन्हीं के विधायक और सांसद खेला कर रहे हैं और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो TMC के कांग्रेस में विलय तक की उठने लगी है।
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, NDA की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में TMC के बागियों के समर्थन के बाद NDA एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी NDA की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में TMC बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने NDA को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब TMC के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं CID और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और TMC, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर TMC नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती, उसी दौरान CID की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती।
2: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय CID की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम CID की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
6: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
0: ममता बनर्जी के सुर बिल्कुल बदले हुए हैं। 2 साल पहले वो कांग्रेस के बारे में कहती फिरती थी कि वो अपनी विश्वसनीयता खो रही है। साल 2021 का चुनाव जीतने के बाद तो ममता के करीबी फिरहाद हाकिम ने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी को सिर्फ टीएमसी हरा सकती है, कांग्रेस को टीएमसी से सीखना चाहिए, अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो जाए। 2 साल बाद यही फिरहाद हाकिम अब ममता को छोड़कर बागी गुट से मिल चुके हैं। कांग्रेस में विलय को लेकर सबसे पहले शरद पवार ने बयान दिया था। 8 मई 2024 को शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगले 2 साल में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ और अधिक समन्वय के साथ काम करेंगी। शरद पवार ने भविष्यवाणी की कि इनमें से कुछ क्षेत्रीय दल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी में विलय करेंगे। पवार से पूछा गया कि क्या यही मानदंड उनकी पार्टी पर भी लागू किया जाएगा। इस पर शरद पवार ने कहा कि मुझे कांग्रेस और एनसीपी में कोई अंतर नहीं दिखता, वैचारिक तौर पर हम गांधी और नेहरू की विचारधारा को मानते हैं। सवाल यह है कि क्या शरद पवार की भविष्यवाणी को ममता बनर्जी सही साबित करेंगी। टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में है, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किल में है। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटर से हमला कर रही है।
1: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया। सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश में आज सुनाई गई राजनीतिक रामकथा की खबर से अब खबरदार करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जेहाद से लेकर लैंड जेहाद तक से करते हैं। कहते हैं कि खर दूषण मारीच जैसे राक्षस लैंड जेहाद करते थे, सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जेहाद के अंत का आदर्श मॉडल आज मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
7: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
7: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
7: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरभूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
7: आखिर खरभूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
8: बहुत अच्छा, बहुत
7: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर टूटेगी? खबरदार करता ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीट देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहती है। तो क्या इसीलिए कल एक ट्रेलर अखिलेश यादव कांग्रेस को दे चुके हैं?
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
9: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
10: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
11: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
12: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
1: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव
13: ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: इस वक्त की एक बड़ी खबर से खबरदार कर दें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी रद्द होने के बाद दिल्ली में कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर गेट के बाहर कांग्रेस के नेताओं को पहले रोका गया। वहां पर कांग्रेस कहने लगी कि गेट नहीं खोला जा रहा है। सुरक्षाकर्मी कांग्रेस नेताओं को कह रहे हैं कि अंदर कोई है नहीं।
14: मुझे कहानी सुना रहे हो। मैं 35 साल से मैं सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो, वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते क्या है?
15: लगा हुआ है।
14: ऑप्शन को बुलाओ। अरे यार मैं यहाँ 10 मिनट से खड़ा हूँ यार, बुला रहे हो। चाची का देने के लिए अप्रूवल, क्या बात है?
16: सर टाइम आपको ऑनलाइन टाइम
14: अभी 1 घंटे पहले डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है यार, आप क्या बात कर रहे हो?
16: तो सर हम तो ऐसे तो नहीं घुसने देंगे आपको।
14: हम कहाँ घुस रहे हैं? हम याचिका लेकर जा रहे हैं
13: कि मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के बाहर। और आप देखिए यहाँ पर फुल पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं दरअसल इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पर्चा खारिज किया गया है कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन का, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी बहुत गुस्से में है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से पर्चा खारिज किया गया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीरों के अंदर आपको केसी वेणुगोपाल नजर आएंगे, सचिन पायलट यहां मौजूद है, भूपेश बघेल है, जयराम रमेश है। और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि अब यह मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं है बल्कि ये मामला बढ़कर अब सीट चोरी का हो गया, यानी राज्यसभा की जो सीट है मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की वो बीजेपी ने चुरा ली है। इलेक्शन कमीशन पर वो आरोप लगा रहे हैं लेकिन ये धरने पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप इस रास्ते को यहां से खाली कर दीजिए, क्योंकि कई कर्मचारी चुनाव आयोग के अभी अंदर हैं और उनको अपने घर जाना है, बाहर निकलना है। ऐसे में आप इस रास्ते को खाली कर दीजिए। यहां पर धारा 163 लगी हुई है। आप देखिए अभी भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं धरने पर, वो अपना प्रदर्शन आप एक तरीके से कर रहे हैं। और आप अगर आप सुन पाए अनाउंसमेंट को, दोबारा से अनाउंसमेंट की जा रही है, बोला जा रहा है कि यहाँ पे असेंबली धरना अलाउड नहीं है, यहाँ पर आप लोग नहीं बैठ सकते, धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है और आप इस जगह को खाली कर दीजिए। दरअसल मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से फिर क्योंकि नंबर तो पूरे थे लेकिन उसके बाद बीजेपी ने भी अपना एक उम्मीदवार दिया। लेकिन आज तकरीबन 6:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि उनका जो पर्चा है खारिज कर दिया गया है। उनके ऊपर ये आरोप लगाया था बीजेपी ने कि उन्होंने एक आपराधिक मुकदमा जो है उसको लेकर चीजों को छुपाया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उन पर कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है और जिस केस की बात की जा रही है उसमें मात्र एक नोटिस आया था मानहानि को लेकर, उसमें कोई FIR दर्ज नहीं है। ऐसे में जो जिस प्रकार से बीजेपी क्या भ्रष्टाचारी अब आयुष्मान योजना में गरीबों के दिल में लगने वाले स्टेंट तक का पैसा खाने लगे हैं? खबरदार करता सवाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया है, जहां लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाया लेकिन फाइल में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया।
0: आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी की आशंका के बाद जांच तेज कर दी गई। जांच में सामने आया है कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से अधिक बार स्टेंट लगाए गए हैं।
15: एक तरफ तो केजीएमयू में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं जिसकी एक वृद्ध जाँच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
6: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
0: आपको हम नकली दवाई की फैक्ट्री से खबरदार कर चुके हैं लेकिन अब आज नकली डॉक्टरों की फैक्ट्री से फिर खबरदार करते हैं क्योंकि राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने लायक नहीं लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी से खेलने लगे हैं।
1: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने के बाद भारत लौटता है लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
17: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे

0: को फ्री में सिलेंडर दिया गया। लेकिन अब ईरान युद्ध की आग की वजह से क्या वापस उज्ज्वला योजना की महिलाओं को चूल्हे पर आना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी गई है।
1: सिलेंडर रह गए साल के, उसमें कैसे करें हम लोग?
2: फिर तो वही लकड़िया वाला दिक्कत हो गया। 4 गो सिलेंडर से थोड़े महीना में कम से कम 12 गो मिलना चाहिए।
3: 4 गो पर से गरीब लोग की करते, अब मिलते नहीं है।
4: अब जब 4 राखी है तो कम ना पड़ेगी
5: क्या? फिर महंगाई चूल्हा जलाने को मजबूर करने लगी है क्या? युद्ध की आग से महंगी होती गैस वापस धुएं में खाना बनाने की मजबूरी में झोंकने लगी है क्या? फिर से देश की उन्हीं ग्रामीण महिलाओं को लकड़ियों के भरोसे खाना बनाना होगा, जिन्हें प्रधानमंत्री धुएं वाले चूल्हे से गैस सिलेंडर वाले चूल्हे तक लेकर आए। लखनऊ शहर से ज्यादा दूर नहीं, 1 घंटे से कम दूरी पर बख्शी का तालाब इलाका है, मनोहरी देवी लकड़ी बटोर कर लाई। इन्हें अभी नहीं पता कि सरकार ने उज्ज्वला योजना में सब्सिडी वाला सिलेंडर 9 से घटाकर 4 कर दिया। बस इतना जानती कि पहले ही सिलेंडर सब्सिडी वाला कम मिलता था,
6: क्योंकि 4 करने जा रही है सरकार, तो 4 से कैसे काम चलेगा साल भर?
4: 4 से न कहां काम चली, जब 8 होती है 8 में है काम नहीं चलती है तो 4 में कितना चल जाए? 12 होते हैं 12 में है नहीं चला, 12 में 12 महीना चलो हो गए, साल हो गवा, और ये 4 में है कहां पूर पड़ी?
6: सरकार के जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि सालाना जो है गरीब परिवार को औसतन 4 सिलेंडर की ही आवश्यकता है। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? सही है गलत है?
4: सही कहाँ है, 4 हुई है तो कहाँ सही है, गलत नहीं है।
6: तो अभी चूल्हे में आज खाना कैसे पका आपका?
4: अब चूल्हे में है लकड़ी लगाया कहीं है तब बना।
5: निर्मला चूल्हे में आलू की सब्जी पका रही है, क्योंकि सब्सिडी वाला सिलेंडर तो है लेकिन उसमें गैस नहीं। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या भी घट गई, चूल्हे के भरोसे साल में कई बार इनको रहना पड़ता है।
6: आप देखें तो नीचे आग, ऊपर चूल्हा और ऊपर एक कड़ाही और उसके ऊपर निकलता हुआ धुआं वापस से इन घरों में लौट आया है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिलेंडर से खपत नहीं हो रही है। निर्मला
7: जी,
6: सिलेंडर है आपके पास, उसके बाद भी चूल्हा?
7: जी सिलेंडर हमारे घर में अटते नहीं है, इसलिए
6: अटते नहीं मतलब पूरा नहीं हो पाता है?
7: नहीं होता।
6: कितना सिलेंडर आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा, मिलेगा?
7: मेरे घर में सर 8-9 लोग हैं है। तो 1 महीना एक सिलेंडर चलता है,
6: 12 सिलेंडर
7: जी।
6: तो योजना जब शुरू हुई थी तब तो 12 ही मिल रहा था, तब चल रहा था काम?
7: तब तो काम चल रहा था,
6: बहुत अच्छा था तब सब कुछ
7: जी।
6: अभी तो 9 के बाद अब 4 करने जा रहे हैं सालाना,
7: तो सर 4 सिलेंडर करने जा रहे हैं तो 4 ही महीना तो चलेगा,
6: और बाकी बचे 8 महीने चूल्हे पर?
7: मैंने सर चूल्हे पे बनाऊंगी।
5: उज्ज्वला योजना में अब साल में सिर्फ 4 सिलेंडर के लिए सब्सिडी मिलेगी, इससे पहले 9 सिलेंडर मिलते थे। हर सिलेंडर पर सरकार 300 रुपए करीब सब्सिडी देती। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च हुई थी, तब हर साल 12 सिलेंडर की सब्सिडी मिलती थी, पिछले साल घटाकर 9 कर दिया गया, अब इसे घटाकर 4 तक ले आए। सब्सिडी वाला सिलेंडर घटा तो गरीब परिवारों की चिंता बढ़ी है। जयपुर के धावास की रहने वाली मोहिनी देवी और उनकी सास श्रवणी देवी के परिवार में 6 लोग हैं। रोटी तो चूल्हे पर बनाते हैं, बाकी खाना उज्ज्वला गैस के चूल्हे पर। अब साल भर में 7 से 8 LPG सिलेंडर लगते थे, महंगाई पहले से बढ़ी, ऐसे में सरकार के सब्सिडी वाले सिलेंडर कम करने के फैसले से ये गैस नहीं भरवा पाएंगे।
8: मिलता था 9, अब 4 कर दिए तो क्या दिक्कत आएगी?
9: अब दिक्कत आएगी, महंगाई खूब ज्यादा बदरी से धंधा रोजगार को बच्चा का, तो अब तो ज्यादा मान दिक्कत ही आओगी। 9 में तो माँ को काम से आ जाए तो 5 आदमी का मान, अब 4 में तो काम ही बहुत ज्यादा कम पड़ेगी, आज दिक्कत आओगी।
5: भोपाल में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी पूछने लगी है कि नेताओं के लिए तो कुछ भी नहीं घटता, क्या सारा घटने का काम जनता के लिए किया जाता है?
10: सरकार को 4 सिलेंडर नहीं 8 सिलेंडर करना चाहिए, इससे हमको दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है, हमको बहुत परेशानी हो रही है।
5: सरकार का तर्क है कि योजना के तहत औसत 4-5 सिलेंडर ही गरीब परिवार साल भर में ले रहे हैं। ईरान युद्ध के कारण पेट्रोलियम कंपनियों को 1 सिलेंडर करीब 1600 रुपए का पड़ता है। उज्ज्वला योजना में हर सिलेंडर पर घाटा करीब 1000 रुपए है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत करीब 90 रुपए बढ़ चुकी है, इस पर भी करीब 700 रुपए का घाटा है। सरकार ने सब्सिडी का बिल घटाने के लिए ही ये फैसला किया है, लेकिन इस फैसले का असर मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में दिखा, जहां वापस गरीबों के घर में चूल्हा जलने लगा।

0: एक सिलेंडर 915 रुपए से 1000 रुपए तक का अलग अलग जगहों पर मिलता है। गरीब को इसी में अब केवल 4 सिलेंडर पर सब्सिडी वापस मिलेगी। गरीब आदमी के पास यही सवाल है कि फिर वो 950 रुपए का सीधा सिलेंडर आगे कैसे लेगा। जहां दिहाड़ी पर काम होता है वहां सिलेंडर के लिए पैसा कैसे निकलेगा, इसीलिए चूल्हे पर लौटाए।
1: तंगी बहुत महंगी हो गई हमारी, उज्ज्वला की तंगी है, क्या फायदा हुआ उससे मिलने से, वही तंगी महंगी हो गई फिर भी। अच्छा। हाँ, चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है खाना।
2: वही महिलाएं जो गैस की टंकी नहीं ले पाती हैं, जो गैस की टंकी नहीं भरवा पाती हैं, वो अब वापस से लकड़ी के चूल्हों पर आ गई हैं और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर हो गई।
0: यही हाल गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिला।
3: आज के टाइम में जब आप बाटले के भाव ऐसे बढ़ा रहे हो, बच्चों के एजुकेशन है, बच्चों को पढ़ाना है, घर में कमाने वाला एक जन है, और पहले जितनी सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद हो गई है, तो इसमें तो हमारा नुकसान ही है।
0: देश की राजधानी तक में चूल्हा जलता हुआ उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के घर पे दिखा।
4: चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, अभी कुछ दिन 15 दिन गैस से बनाते हैं, 20 दिन अगर ज्यादा दिन बचते हैं तो फिर चूल्हा जोड़ के हम बनाते हैं, इधर से लाते हैं चुपचाप के, अपना गुजारा करते हैं।
0: महाराष्ट्र के पुणे की लाभार्थी चुभते हुए सवाल पूछती हैं।
5: हम 4 सिलेंडर देंगे तो कैसा करेंगे भैया, कैसा जिएंगे, कैसा हम लोग, हम यहाँ क्या हम पैसे छापते क्या, हाँ क्या करते हम, ये आमदार कामदार नगर सेवक कुछ भी है ना, वो 4 बिल्डिंग है उनके, 4 घर है, 4 औरतें है, वो इनका बिल हमारे माथे पे लगाते हैं।
0: युद्ध की वजह से आए संकट में ये पहली बार है जब गरीबों तक सीधा असर इसका आया है।
6: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के मामले में ये खबर है। अब हंगामा बढ़ गया है, मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है। चुनाव आयोग के गेट पर काफी देर तक हंगामा हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को अंदर जाने की आज्ञा मिली है। केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल को एसी दफ्तर में जाने दिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी देने के बाद कहा कि कल हमें फिर से बुलाया जाएगा। ये पूरा मामला राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके बाद अपना विरोध दर्ज करवाने कांग्रेस के ये नेता पहुंचे। सुनिए। राहुल गौतम हमारे संवाददाता, चुनाव आयोग दिल्ली के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या हो रहा है वहां पर, क्या बोले हैं जयराम रमेश, दिख भी रहे हैं वो अंदर सुरक्षा कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है बताइए।
7: देखिए, बहुत कुछ हुआ इस दरवाजे पर इलेक्शन कमीशन के, जहां पर मैं मौजूद हूं। धरने पर बैठ गए दो मौजूदा सांसद केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस प्रकार से पर्चा दाखिल खारिज किया गया है मीनाक्षी नटराजन का, वो पूर्ण तरीके से गैर कानूनी है, उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं है, जैसा कि माहौल बनाया जा रहा है। और उसके बाद धरने पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, काफी मान मनोबल के बाद उनको अंदर अलाउ किया गया। दो व्यक्ति अंदर गए, केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल। अंदर मिलने के बाद जब वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि अब हम कल दोबारा आएंगे, क्योंकि हमें कल सुना जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई एश्योरेंस दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, हमारा जो रोष प्रदर्शन है वो जारी रहेगा अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो फिलहाल तो वो जो मुलाकात होनी थी वो हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, और अब धीरे धीरे करके नेता यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन एक बात,
6: राहुल, हम दोबारा आपके पास आएंगे। राहुल गौतम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल आया है उसमें बड़े नेता शामिल हैं, भूपेश बघेल भी वहां पर शामिल हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको, फिर राहुल से बात करेंगे। आ रहे हैं राहुल आपके पास।
8: बैठे वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में, तब जाके हमको 2 जने के अलाउ किया, जाके एप्लीकेशन दे सकते हो, मतलब बड़ी कृपा की निर्वाचन आयोग ने हमारा एप्लीकेशन ले लिया, चर्चा नहीं।
9: सर, क्या आप लोगों को जो राहुल दिया गया है भूपेश,
10: आप लोगों को अभी भी उम्मीद है कि जो नामांकन रद्द करने का फैसला है वो वापस लिया जा सकता है?
8: देखिए, अभी हमने एप्लीकेशन दिया, अब उसका फैसला क्या आता है वो हम देखेंगे, और फिर हमारे पे लीगल ऑप्शन तो हमारे खुले भी है, जा सकते हैं।
9: मगर सर, जो ग्राउंड दिया गया है तो एप्लीकेशन
10: कोई
9: काउंसिल लिया
11: ജനാധിപത്യം എത്രമാത്രം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തെളിവാണ്. ഇതിനെതിരായി നിയമപരമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും പോരാടും. അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറായില്ല. ഞങ്ങൾ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വന്നു അകത്തുനിന്ന് കയറി കൊടുക്കാൻ. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ അത് കുത്തിയിരുന്നതിന് ശേഷം അത് കുത്തിയതിനു ശേഷം
6: प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से बाहर निकलते हुए दो लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई. एप्लीकेशन उनसे ले ली गई है और उसके बाद उन्हें जाने दिया गया. कल फिर से बुलाया गया है. लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है. कुछ कानूनी जानकारी छुपाए जाने का उन पर आरोप है. बीजेपी ने इसे सत्य की जीत बताया तो कांग्रेस इसे सीट चोरी बता रही है. राहुल, क्या ऐसी कोई संभावना अब नजर आती है कि नामांकन को फिर से चुनाव आयोग स्वीकार करेगा? मीनाक्षी नटराजन का नामांकन स्वीकार होगा या अब खत्म? अब राज्यसभा का उनका नामांकन रद्द तो रद्द, अब कुछ नहीं हो सकता. संभावना क्या क्या है?
7: देखिए सईद, आपके सवाल का मैं जवाब दूं, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा. आप देखिए इलेक्शन कमीशन का ये ऑफिस है और आप देखिए इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से इसको बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई अंदर अब ना घुस सके, कोई यहां पर प्रदर्शन ना कर सके. आप देखिए चारों तरफ अगर आप देख पाए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, पुलिस अधिकारी है और इसको पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया है. जहां तक आपका सवाल आपने पूछा, देखिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी फाइनल से होती है, यानी वो जो फैसला करता है वो बाइंडिंग होता है तमाम लोगों के ऊपर. आप उसको लीगली चैलेंज कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर जो ऐसी इलेक्शन पिटीशन होती है उनमें कई साल निकल जाते हैं और कई बार ये मौकों पर यह देखा गया है कि टेन्योर पूरा हो गया लेकिन मामला चलता रहता है. तो अब फिलहाल राहत मिलने की तो बहुत कम संभावना है कांग्रेस पार्टी को और शायद इसीलिए थोड़ा गुस्सा है वो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आमतौर पर हमने ऐसा नहीं देखा है कि दो दो सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग धरने पर बैठ जाएं इलेक्शन कमीशन के गेट के बाहर क्योंकि वो जानते हैं कि आपको ज्यादा किया जा नहीं सकता और इसीलिए अब आप कह सकते हैं अब राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत होगी. इसकी एक लड़ाई कोर्ट के अंदर जरूर होगी, कोर्ट को अप्रोच किया जाएगा लेकिन कोशिश होगी कि इसकी एक राजनीतिक लड़ाई भी इसको बनाया जाए. और साफ तौर पर आप देखिए अब हमको भी हटाया जा रहा है यहाँ से, सईद कहा जा रहा है कि आप थोड़ा बाहर हो जाइए. तो लेकिन जो स्थिति है वो जाहिर है, ये है कि
6: अच्छा जो धरने पर बैठे थे भूपेश बघेल ने कहा कि हम धरने पर बैठ गए हैं इलेक्शन, तो वो धरना खत्म हो गया, सब लोग चले गए हैं या अभी हैं, बैठे हैं धरने पर?
7: नहीं, धरना पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है. दरअसल दोनों पक्षों में ये बात हुई कि हम दो लोगों को अलाउ करेंगे. केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल अंदर भी गए इलेक्शन कमीशन के अंदर दफ्तर के और उनके बाद उन्हें कहा गया कि आप कल दोबारा आइए, अब आपको सुना जाएगा. इलेक्शन कमीशन की जो कल की अब मुलाकात होगी जब क्योंकि ये डेलीगेशन वापस लौटेगा और इनके पास बहुत सारी चीजें हैं कहने की, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं है जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं मीनाक्षी नटराजन के मामले में. मात्र एक डेफेमेशन नोटिस उनको मिला था.
6: राहुल, हम ये समझना चाहते हैं,
7: एफआईआर दर्ज नहीं है.
6: राहुल, अगर मान लीजिए इस तरह से इलेक्शन कमीशन किसी का नामांकन रद्द करता है और उस उम्मीदवार की तरफ से आपत्ति आती है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं कि हमने ये जानकारी छुपाई है, हम पर कोई केस दर्ज है, वो जानकारी हमने अपने नामांकन में नहीं दी, तो क्या पहले ऐसा हुआ है? क्या दोबारा नामांकन को स्वीकार किया जाता है या इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है? उन्होंने अगर आपका नामांकन रद्द कर दिया, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट, अब आप चुनाव में नहीं हैं.
7: देखिए, दो तरह की गलतियां होती हैं. एक तो टाइपो एरर्स होते हैं जिसके लिए आमतौर पर आपको छूट दे दी जाती है. आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर आपको कहता है कि आप इसको ठीक कर लीजिए. और दूसरा होता है जिसमें आप पर ये आरोप लगते हैं कि आपने चीजों को छुपाया. ये सेम आरोप मीनाक्षी नटराजन पर लगा कि उन्होंने हैदराबाद के अंदर एक जो मुकदमा दर्ज है उसको लेकर उन्होंने चीजों को छुपाया. हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे आरोप को खारिज कर दिया. उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है लेकिन क्योंकि जो ऑफिसर होता है जो पूरी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं वही उन्हीं का फाइनल से होता है और वो लीगली बाइंडिंग होता है. आपके पास कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, इसीलिए कोर्ट जाने से पहले वो जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है कि इलेक्शन कमीशन आया जाए, इलेक्शन कमीशन के अंदर उनको इन्फॉर्म किया जाए. कह सकते हैं कि जो अधिकारी जो वहां पर चुनाव को पूरा देख रहे थे वो एक तरीके से.
6: राहुल, एक बात और बताइए,
7: तो इलेक्शन कमीशन
6: बताइए
7: उन्हीं का से होता है.
6: एक बात और बताइए, रिटर्निंग ऑफिसर जो था, जिस तरह से चुनाव आयोग के इस अधिकारी ने नामांकन को रद्द किया, मीनाक्षी नटराजन के इस नामांकन की क्या बीजेपी के किसी नेता या बीजेपी की तरफ से शिकायत हुई थी या वो क्या आधार था जिससे चुनाव आयोग के उस अधिकारी को ये पता चला कि ये जानकारी छिपाई गई?
7: देखिए, बाकायदा बीजेपी के एक नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी कि जो मीनाक्षी नटराजन है उन्होंने कुछ जो चीजें हैं वो छुपा ली हैं, उसमें एक आपराधिक मामला है वो उन्होंने नहीं बताया है। बाकायदा एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से तमाम चीजों का ब्यौरा दिया है।
6: बहुत धन्यवाद राहुल आपका। एक कोर्ट केस चल रहा है मीनाक्षी नटराजन का, जिस कारण रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि यह नामांकन हमने रद्द किया गया बीजेपी की शिकायत के बाद। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब से कुछ ही पलों में हमारी साथी अंजना ब्लैक एंड व्हाइट लेकर आपके साथ होंगी। आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
7: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: EU सोच बदलो और बैंक भी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
13: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
12: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: इन एसोसिएशन विद
20: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
8: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी, लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है, साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे। इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है। फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई। ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
9: Therefore, those who are making the allegations against the party and want to see differently, they must follow the pathway of Sukendu Sukarai. They must show their political morality by resigning as member of parliament. I do not know how many persons are there at all, signed this. But fact is this, such an important document has not come in public domain. Creates a suspicion about the letter, author, and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency sit with the Trinamool Congress workers, face them.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको एक ऐसी हकीकत दिखाएंगे जो सरहद पार के हुक्मरानों को बेनकाब कर देगी। आज हमारा जम्मू कश्मीर विकास की नई कहानी लिख रहा है जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। आज आपको जलते पीओके की वो खौफनाक तस्वीरें दिखाएंगे जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान की बर्बर सेना ने रावलकोट में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 27 निहत्ते लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पूरे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान सरकार की वादा खिलाफी। आटे बिजली की जगह उन्हें बंदूक की गोलियां मिल रही हैं। आज हालात ये है कि भुखमरी से तड़पते पीओके के लोग रो रो कर कह रहे हैं कि सीधे परमाणु बम गिरा दो ताकि ये रोज का जुल्म खत्म हो जाए। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी है। सिप्री की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत ने इतिहास में पहली बार अपने 12 परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर तैनात कर दिया है, यानी अब हमारे परमाणु हथियार सीधे अटैक मोड में है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि स्कूल में क्या पहनने के बाद क्या खाएं ये भी सरकार तय करेगी। ये विवाद असम के एक स्कूल से शुरू हुआ जहां 5 मुस्लिम बच्चे खाने के टिफिन में बीफ लेकर आए। आरोप है कि उन्होंने ये बीफ 2 हिंदू बच्चों को खिलाने की कोशिश की, ऐसा आरोप है। जब इसकी जानकारी उन बच्चों के माता पिता को हुई तो बवाल मच गया और बहस छिड़ गई कि स्कूल में बच्चे टिफिन में क्या ला सकते हैं क्या नहीं। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में गैंग्स ऑफ धर्मांतरण की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण का उदाहरण देते हुए ऐसे गैंग्स को सख्त चेतावनी दे डाली है। लेकिन आज का कोई भी विश्लेषण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारा देश इन माओं की पीड़ा महसूस नहीं करेगा। जब कोई वीर सैनिक इस देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उस सैनिक का परिवार भी इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देता है, ऐसी कुर्बानी जो अक्सर गुमनामी में ही रह जाती है। और इन शहीदों के परिवारों का दर्द कोई नहीं जान पाता। शादी की उम्र होती है और शादी की उम्र में शादी की मेहंदी लगने से पहले या शादी के कुछ दिन बाद और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले जब कोई वीर सैनिक इस देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो वो अपने पीछे कई अधूरी ख्वाहिशें, कई सपने और एक टूटा हुआ परिवार छोड़ जाता है। और किसी भी सैनिक के लिए ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। कल जब ऐसे ही वीर जाबाजों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब इनके परिवारों के आंसू खुद में भावनाओं का एक ज्वार समेटे हुए थे और शायद ये कह रहे थे कि बेटा हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर गर्व है। 25 साल के प्रवीण प्रभाकर भी इन्हीं वीर जाबाजों में से एक हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने पीछे परिवार में एक ऐसा शून्य अब छोड़ दिया है से कभी भरा नहीं जा सकेगा। मरणोपरांत कीर्ति चक्र ग्रहण करते हुए जब उनकी मां का सब्र टूटा, फूट फूट कर रोने लगी तो पूरा हॉल गमगीन हो गया। और ये तस्वीरें बता रही थी कि शहीदों और उनके परिवार की कुर्बानी से ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं और इस देश में शान से तिरंगा लहराता है। इनको नमन। देखिए
1: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
1: भारत की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो हमारे सैनिक हैं, जो देश से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें अपनी शहादत भी प्यारी लगने लगती है। और इसीलिए आज हम इन शहीदों को नमन करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे असली हीरो हैं, ये हमारे असली नायक हैं। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को शहीद जवानों के नाम तब याद आते हैं जब उन पर बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म बनती है, जब बड़े पर्दे पर शहीदों का किरदार हमारे कलाकारों द्वारा निभाया जाता है, तब जाकर उनको शहीदों की याद आती है या फिर उन पर आंसू गिराते हैं। अफसोस की बात यह है कि लोगों को इन कलाकारों का अभिनय तो याद रह जाता है लेकिन वो असली नायकों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए करगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा पर जब साल 2021 में शेरशाह फिल्म बनी तब एक बड़े शहर में कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन करने के लिए इस फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले एक कलाकार की तस्वीरें लगा दी गई। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप सोचिए, कैप्टन बत्रा की जगह जिसने फिल्म में काम किया था उनकी फोटो। हमारे देश में शहीदों की कहानियां लोग तभी जानते हैं जब इन पर कोई फिल्म बनती है और ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाती हैं। लोग देखना चाहते हैं। हमारे देश में किसी भी आम फिल्म की औसत कमाई 10 से 30 करोड़ रुपए होती है लेकिन जो फिल्में शहीदों, जो फिल्में देशभक्ति पर बनती हैं उनकी कमाई अक्सर 50 करोड़ से ज्यादा होती है और कई बार 100 करोड़ के पार। हमें इन बॉलीवुड फिल्मों से कोई आपत्ति नहीं है और अच्छी बात है क्योंकि इन फिल्मों के जरिए हमारी शहीदों की कहानी कम से कम घर घर तो पहुंचती है, कम से कम लोग उनकी बात को याद तो रखते हैं। इन फिल्मों के जरिए उनकी कहानियां तो अमर अजर हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे शहीदों की कुर्बानी तभी याद रखी जाएगी जब इस पर फिल्म बनेगी? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये देश अपने वीर सैनिकों को अपने दिल में रखे शहादत फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे जवानों की शहादत से अमर बने? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको जलते हुए पीओके और बदलते जेएनके के बारे में बताते हैं। जलते पीओके का मतलब है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहां इस वक्त सेना और लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कई निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया है। जबकि यह बदलता जेएनके हमारा जम्मू कश्मीर है जो विकास की नई कहानी लिख रहा है और आज ये एशिया की सबसे लंबी टनल ने कश्मीर में अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। ये वो बदलाव है जो कुछ देश पाकिस्तान के झूठे दुष्प्रचार में देख नहीं पाते या भारत विरोध के कारण देखना नहीं चाहते लेकिन आज हम आपको इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग आजादी क्यों मांग रहे हैं और असिम मुनीर को दहशत गर्द बताते हुए नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रावलकोट से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां एक शोक सभा, ये एक शोक सभा है और शोक सभा में शामिल हुए हजारों लोगों पर पाकिस्तान की सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये वही पाकिस्तान है जो ईरान का युद्ध रुकवाना चाहता था। देखिए,
2: we'll be right back.
1: ये गोलियां सिर्फ रावलकोट में नहीं चली हैं, बल्कि पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्टिस्तान में इस वक्त खून खराबा हो रहा है। और ऐसे मुनीर की सेना ऐसी मार काट मचा रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जब आप इस हिंसा के पीछे का कारण जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस किस्म का देश है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जब पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब पाकिस्तान की सरकार ने मुजफ्फराबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय हुआ था कि जिस पीओके से पूरे पाकिस्तान को 10-15% बिजली मिलती है, उस पीओके के साथ इंसाफ किया जाएगा। उसे ना सिर्फ बिजली की आपूर्ति होगी बल्कि बिजली सस्ती दरों पर भी इन इलाकों को दी जाएगी, सस्ती बिजली का वादा। यह भी तय हुआ था कि पीओके के लोगों को गेहूं अनाज पर सब्सिडी दी जाएगी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे ताकि पीओके के लोगों को उनका हक मिले। और इसी में यह भी लिखा था कि जैसे पंजाब और सिंध प्रांत में सड़कें बनती हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया होगा जिस पीओके की आज बात हो रही है ना, जहां विरोध हो रहा है, उस पीओके में विकास का वी भी नहीं पहुंचता। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर ना सड़कें हैं, ना लोगों के लिए अच्छे कोई भी इंतजाम किए जाते हैं। तो वादा यह किया गया था कि पीओके में अब बुनियादी ढांचा, सड़कें सब बनाई जाएंगी और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएंगी और अस्पतालों को बिना डॉक्टर्स के नहीं छोड़ा जाएगा। अब इन सारी मांगों पर पाकिस्तान की सरकार ने अक्टूबर 2025 में सहमति दी थी और इन्हें लागू करने का वादा भी किया था। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी जब इस समझौते की शर्तें लागू नहीं हुई, तब पीओके के लोगों ने असीम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। ये कहा कि मुनीर ही वो दहशतगर्द है जो पीओके के लोगों का दमन कर रहा है और इसीलिए इस बार उसके खिलाफ पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन होंगे। इसके लिए ज्वाइंट आवामी एक्शन कमिटी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इनमें शहजैब हबीब नाम के एक लड़के की हत्या की। इस हत्या से पीओके में तनाव फैल गया और ये योजना बनाई गई कि बड़ी संख्या में लोग रावलकोट में इकट्ठा होंगे और रावलकोट में इकट्ठा होकर इस प्रदर्शनकारी की शोक सभा में शामिल होंगे। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने लोग जो ये शोक सभा वहां पर आयोजित की गई थी, उसने शोक सभा में शामिल हुए हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी और मौके पर 27 लोगों को सीधा मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पीओके पूरी तरह शांत हो गया है और देखते ही देखते मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली, रावलकोट, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तमाम इलाकों में हिंसा की आग फैल गई है। ये इलाके सुलग रहे हैं। जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हुए, पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर दिया है। उसने कई इलाकों में सेना को सड़क पर उतार दिया है। असीम मुनीर ने खुद पीओके के लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, जिससे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। ना सिर्फ लोगों की हत्याएं हुई बल्कि 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई जगह छापे मारे गए हैं, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के दफ्तरों को भी सील कर दिया गया है। देखिए, अब पाकिस्तान का एक और गजब का कारनामा आपको जरा दिखाते हैं। जिस वक्त पीओके गृह युद्ध की आग में सुलग रहा है, तब उसी वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान और लेबनान में युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रावलपिंडी के सेना मुख्यालय में असीम मुनीर की मुलाकात लेबनान के आर्मी चीफ जनरल रुडोल्फ हेकाल से हुई। और सिर्फ मुलाकात नहीं हुई है, असीम मुनीर की उनके साथ ये चर्चा हुई कि पाकिस्तान लेबनान में शांति की स्थापना के लिए क्या मदद कर सकता है। मतलब लेबनान की चिंता है और पीओके में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। सवाल यही है कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के क्षेत्र की बड़ी चिंता सता रही है। सोचिए इन्हें लेबनान की चिंता है, लेकिन पीओके में मारे जाए लोगों का दर्द नहीं दिखता। और सोचिए कि जो पाकिस्तान खुद जल रहा है, जो खुद अशांत है, जो अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, वो दूसरे देशों के लिए शांति प्रयास कर रहा है। पीओके के लोग इस बार पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इसको भी गंभीरता से समझिए। वहां सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़, आसिम मुनीर दहशतगर्द है और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ ये नारे लगा रही है। सुनिए।
2: मुझे फख्र है आप पर, आप सब लोगों पर फख्र है। जो जो दोस्त जहां जहां से भी आया, आप सारे हमारे माथे का झूमर है।
1: जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य साकिब इलियासी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के लिए परमाणु हथियार बनाया था, लेकिन वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इसीलिए अब पीओके के लोग ये चाहते हैं कि इस परमाणु बम को उन पर गिरा दिया जाए ताकि उन पर होने वाले जुल्म का पूरा किस्सा एक बार में ही खत्म हो जाए। देखिए,
3: और 9 तारीख को पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम कहते हैं, लाओ, अगर हमारा हक मलकियत नहीं दे सकते, हमारा हक हुक्मरानी नहीं दे सकते, तो हम बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ्फुज़ के लिए है। नहीं काम आया। हक मलकियत हक हुक्मरानी नहीं दे सकते, तो मार दो आजाद कश्मीर पे, खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा बयान यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो, तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत हक की आजादी हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
1: सोचिए पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की ऐसी हालत कर दी है। आपने सुना उनको, वो कह रहे कि हमारे ऊपर परमाणु बम गिरा दो। और मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाले अमेरिका को भी इनकी पीड़ा इनका दर्द दिखाई नहीं देता, ना ही विश्व के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों को। पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो उससे हक मांग रहे हैं। चाहते हैं कि उन्हें सरकार से सस्ती दरों में बिजली मिले, ये उनका अधिकार है। पीओके में कई बड़ी नदियां हैं, दिखाते हैं हम आपको एक एक करके, जिन पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर पाकिस्तान अपनी जरूरत की 10-15% बिजली का उत्पादन करता है। लेकिन यह बिजली पीओके के लोगों को ना मिलकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को चली जाती है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। पंजाब और सिंध प्रांत के मुकाबले पीओके में आटा भी महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, बेरोजगारी ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार इन लोगों को रियायत देने के लिए कुछ नहीं करती है। जिस वक्त पूरे पाकिस्तान की 19.9 यानी लगभग 20% आबादी कुपोषण की शिकार है, पीओके में यही आंकड़ा 29% है। पीओके की 57.1% आबादी ऐसी है जिनके सामने भुखमरी का संकट है। 25.9% लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी खाना नसीब नहीं होता, जबकि 5.7% लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कई दिन खाना नसीब नहीं होता। और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये हालात और भी बदतर है। पीओके के ऊंची पहाड़ी इलाकों में 90% परिवारों के सामने भुखमरी का संकट है। और इस भुखमरी के कारण पीओके के 39% बच्चे जो हैं उनकी हाइट सामान्य से कम है, और 14% जो हैं वो अंडरवेट हैं और कई कुपोषण के शिकार हैं। और हर 1,000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं। पीओके में ज्यादातर लोग खेती पशुपालन करते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी आबादी को पर्याप्त पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा। यह हाल भी तब है जब सिंचाई के लिए 70% पानी पीओके से ही बहकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में पहुंचता है। और जब इन्हीं सारी बातों को पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर उठाते हैं तो बेरहमी से सेना गोलियां चला देती है। आप खुद पीओके के इन लोगों को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि वो गेहूं मांगते हैं तो उन्हें गोलियां मिलती हैं, और उनकी जिंदगी को असीम मुनीर ने अपनी सेना से जहन्नुम बना दिया है। देखिए,
4: आखिर कोई तो मजलूम कश्मीरियों की भी आवाज सुने। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या जब हम ऐसे ही अपने बुनियादी हकूक लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा? आए दिन जब हम अपने 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं तो आप हमें बदले में शहादत देते हो? हम आटा सस्ता बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं तो हमें आप बदले में लाशें देते हो? मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों से अपील करती हूँ कि खुदा रा हमारे हकूक के लिए आवाज बुलंद करें, हमारे साथ खड़े हों।
5: रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और इतलात ये है कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं।
6: ओवरसीज भाइयों के हवाले से बात करूंगा कि हमारे पास आखिरी सारा वही ओवरसीज भाई है, क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल ब्लैक डाउन करके हमें कत्ल किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि आप जिस तरह दुश्मन है आप हमारे और हमें उस तरह मार रहे।
1: पीओके में जो हो रहा है वो स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है और मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला। रावलकोट की जिस शोक सभा में पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई उनमें दावा है कि 19 छोटे छोटे बच्चे, 7 गर्भवती महिलाएं भी मारी गई हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है वो इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन मानता है जो असीम मुनीर की सेना ने किया है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं और इनकी जांच कराई जाती है तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के तहत असीम मुनीर को उनके पद से बर्खास्त करके जेल में डाला जा सकता है और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन सन्नाटा है। सिर्फ यही नहीं, पीओके में इस वक्त पूरी तरह ब्लैकआउट है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क बंद है, पत्रकारों की पहुंच सीमित है, बाहरी दुनिया से संपर्क कटा हुआ है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पीओके के वीडियो बाहर ना जाए, मौतों का पता ना चले, अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू ना हो। ये सारी बातें पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड की गवाही दे रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मानवाधिकारों के इस उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया कोई कदम उठाएगी और क्या मुस्लिम देश पीओके के मुसलमानों के लिए आवाज आज उठाएंगे? अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को सेना की सुरक्षा मुहैया कराता है और जिस पाकिस्तान में अमेरिका और यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण मिली हुई है उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पीओके में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी अपना हक मांग रही है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कह रही है, वहां उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इससे बड़ा पाकिस्तान का पाखंड हो नहीं सकता। आपको यकीन नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने 14,000 अतिरिक्त जवान पीओके में भेजे हुए हैं, 14,000। इनमें 6,000 जवान फ्रंटियर कंस्टेबुलरी के हैं, 5,000 जवान पाकिस्तान रेंजर्स के हैं, 2,000 इस्लामाबाद पुलिस के हैं और 1,000 सिंध पुलिस के हैं। यानी पीओके में आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों को सैन्य स्तर की कार्रवाई से कुचला जा रहा है। बहुत देशों में इस पर चुप्पी है। हालांकि ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने इस पर चिंता जताई और इनमें भी इकबाल मोहम्मद ने यह कहा है कि उनके जानने वाले बहुत सारे लोग अभी पीओके में अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे और पीओके में मुसलमानों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इस मुद्दे पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया और स्थिति के लिए असीम मुनीर को जिम्मेदार बताया है। तो ये कह रहे हैं ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, यानी सीधा इशारा असीम मुनीर पर है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान कोई सरकार, कोई नेता, कोई राजनेता नहीं चलाता, पाकिस्तान वहां की फौज चलाती है, पाकिस्तान को असीम मुनीर चलाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसके लिए दुनिया को उसे जरूर जवाबदेह ठहराना चाहिए। सुनिए
7: आपका दूसरा आपका सवाल था पाक अधिकृत कश्मीर को लेके, तो एक चीज मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहां बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा।
1: अब तक आपने उस पीओके को देखा जिस पर पाकिस्तान ने आजादी के बाद कब्जा कर लिया था। आज तक वहां लोगों का दमन हो रहा है, लेकिन इस जलते पीओके के बाद अब आप बदलते जम्मू कश्मीर को देखिए। और यह हमारा जम्मू कश्मीर है जो विकास की नई नई कहानियां लिख रहा है। आज कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का मतलब यह है कि इस टनल में जो आखिरी चट्टान बची थी उसे भी हटा दिया गया और अब यह टनल आने वाले दिनों में आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। जिस वक्त पीओके के लोग सस्ती बिजली, अनाज पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, तब कश्मीर में जोजिला टनल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल यानी दो तरफ के रास्ते वाली टनल बन गई है जो समुद्र तट से 11,578 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस टनल को जोजिला के एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे में बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी और ये कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के मीना मार्ग से जोड़ेगी। अब तक बर्फबारी के दौरान साल में 5 महीने लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता था। लोगों के पास सिर्फ हवाई यात्रा का एक विकल्प बचता था, लेकिन इस टनल के बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। अभी कश्मीर के गांदेरबल से लद्दाख के करगिल जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस टनल के बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। और कश्मीर के बालटाल से लद्दाख के मीना मार्ग की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर अब 14 किलोमीटर की रह जाएगी। और यही नहीं, ये टनल सेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि इसके बनने से चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों और सैन्य सामान को तेजी से पहुंचाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए,

0: और ये पहली ऐसी टनल होगी जिसका व्यास अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है, और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एस्केप गेट, वेंटिलेशन शाफ्ट, ये सब जमीन के 25 से 30 फीट ऊपर बनाई जा रही है ताकि अगर कोई हादसा हो, कोई ऐसी घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन चलाया जा सके 13 किलोमीटर इस लंबी सुरंग में।
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर आई है। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पहली बार अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग मिसाइलों पर माउंट कर दिया है। यानी पहले भारत अपने परमाणु हथियारों को अलग रखता था और जिन मिसाइलों से इन्हें लॉन्च किया जाना है उन्हें अलग रखा जाता था, लेकिन अब भारत ने अपनी इस नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब हमने अपने कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर लगा दिया है और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है और भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर क्या नया सोच रहा है। अब सिप्री की इस नई रिपोर्ट में क्या है, ये रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 12,187 थी जो पिछले साल से 54 कम है। इनमें भी दुनिया के 85.84% परमाणु हथियार अकेले रशिया और अमेरिका के पास हैं। रशिया के पास है 5,420 परमाणु हथियार और अमेरिका के पास 5,042 परमाणु हथियार। और सोचिए, यह वही अमेरिका है जो परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बताता है, ईरान के खिलाफ युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और अमेरिका के बाद चाइना के पास 620 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 370, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 190, पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास कुल 60 परमाणु हथियार हैं। भारत इस सूची में छठे स्थान पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि

क्योंकि अमेरिका बात तो ये करता है कि वो बहुत बड़ा शांति दूत है, लेकिन शांति दूत के निशान और हरकतें क्या ऐसी हो सकती हैं? तो ये हमने आपके लिए तमाम जो 10 बड़ी कंपनीज हैं वो निकाल दी हैं। आखिर ये कंपनीज जो हथियार बनाने वाली टॉप 10 कंपनीज हैं, उनमें एक एक करके गिनते हैं अमेरिका के कितने हैं। इसको येलो कर लेती हूं मैं। ये देखिए, पहला लॉकहीड मार्टिन, कमाई इनकी $64,650 है, $64,650 मिलियन जो लिखा हुआ है। उसके बाद आइए दूसरी कंपनी, फिर आपको अमेरिका का झंडा दिख रहा है, $34,600 मिलियन RTX। फिर तीसरी कंपनी भी नॉर्थरॉप ग्रूमन, किसकी कंपनी है? अमेरिका की, $37,850। उसके बाद आइए तो ब्रिटेन की एक कंपनी आती है, BAE सिस्टम्स। फिर अगली कंपनी दो किसकी? अमेरिका, जनरल डायनेमिक्स और बोइंग, हथियार बनाने वाली ये कंपनीज आ गई। उसके बाद आइए रोस्टेक, रोस्टेक है रशिया की कंपनी जो 7वें नंबर पर है। और उसके बाद से एविक है, ये दो चाइनीज कंपनी है, चाइना की, एविक और CEIC। उसके बाद से जो 10वें नंबर पर कंपनी है वो फिर है 16,210 पर। अब आइए असल आंकड़े पर, कैसे खुलती है अमेरिका की पोल, किस देश में कितनी कंपनियां हैं। टॉप 10 कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनीज अमेरिका में ही है, 6 कंपनीज, उससे कहीं कम 2 कंपनीज चाइना में, ब्रिटेन में 1 कंपनी और रशिया में भी 1 कंपनी। तो इससे पूरी तस्वीर आपको समझ में आ गई कि आखिर ये हमने क्यों दिखाया है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि भाई अमेरिका की 6 कंपनियां टॉप, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हथियार करती है उनमें टॉप 6 कंपनियां हैं टॉप 10 में, और बातें करता है शांति दूत बनता है पूरे विश्व में। ईरान पर इसीलिए हमला किया है कि भाई उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब बड़े हथियार सप्लायर और खरीदार जो हैं उसमें भी आपको सबसे पहले कौन सी कंट्री दिख रही है बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका वही देश है जो हथियारों के मामले में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, निर्यात में हिस्सेदारी, तो इससे आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है अमेरिका, ये है उसका नंबर। उसके बाद फ्रांस आई, ये कोई मुकाबला भी है? दूसरे नंबर पर फ्रांस है, लेकिन फ्रांस जो हथियार एक्सपोर्ट करता है कितना है? 9.8%, कहां 42% और कहां 9.8%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फासला है और अमेरिका कितना आगे है। उसके बाद आइए रशिया पर, रशिया 6.8, जर्मनी 5.7 और 5.6 चाइना। तो ये है पूरा खाका जो एक तरह से पोल खोलता है अमेरिका की। अब आ जाइए दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं आपको, हथियार खरीदने वाले देश। तो हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, उसमें आपको सबसे पहले और युद्ध की वजह से भी दिख रहा है यूक्रेन 9.7% पर। उसके बाद है भारत 8.2% पर, इसको रेड कर लेते हैं, और यहां पर ये देखिए 9.7% के साथ सबसे ऊपर है यूक्रेन, फिर है 8.2% वाला भारत, और उसके बाद है 6.8% वाला सऊदी, फिर है कतर 6.4 और पाकिस्तान 4.6। तो इससे आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन? अमेरिका। और सबसे बड़ा बायर कौन? तो वो है यूक्रेन। तो ये है पूरी स्थिति जो एक तरह से अमेरिका की पोल खोलती है कि भाई वो बात तो करते हैं शांति की, कह रहे हैं कि हमने ईरान पर इससे अटैक किया है ताकि वो परमाणु ताकत ना बन जाए, लेकिन जब बात हथियारों की आती है तो सबसे ज्यादा टॉप 10 कंपनीज में उसी की कंपनियां हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको इस बहस के बारे में बताते हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप ले सकती है। एक बच्चे, क्योंकि देखिए हमारे सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, 5 जून को असम के एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के 5 छात्र अपने टिफिन में बीफ लेकर आए। बात असम की है। ये 5ों छात्र मुस्लिम समुदाय से थे जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ने वाले 2 हिंदू बच्चों को जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की, ये आरोप लगाया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जो परिवार वाले जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उनका ये कहना है कि जबरन खिलाने की कोशिश हो रही थी। अभी इस पूरे मामले में बात अटकी हुई है, जांच चल ही रही है, लेकिन जब ये मामला स्कूल के प्रिंसिपल और इन हिंदू छात्रों के माता पिता तक पहुंचा उन्होंने घटना का विरोध किया है। उन्होंने ये पूछा कि अगर स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं तो मुस्लिम छात्रों को अपने टिफिन में बीफ लाने की छूट कैसे मिल सकती है, दूसरा वो किसी भी हिंदू छात्र को जबरदस्ती

0: कैसे खिला सकते हैं। ये मामला असम के गोलपारा जिले के एक सरकारी स्कूल में सामने आया है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 57% है। ये आबादी के आंकड़े हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल जिला होने के कारण इस मामले में सांप्रदायिक रूप पूरा इस इंसिडेंट ने ले लिया है। बात अब इतनी बढ़ गई है कि हिंदू छात्रों के परिवारों ने पुलिस में FIR दर्ज करा दी है और ये आरोप लगाया कि मुस्लिम छात्रों के माता पिता ने उन्हें टिफिन में बीप दिया, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस FIR के बाद पुलिस ने टिफिन में बीफ लाने वाले सभी 5 मुस्लिम छात्रों, उनके माता पिता को थाने बुलाया। पूछताछ के बाद असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक मुस्लिम छात्र की मां को गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है। इस महिला का नाम नूर साहिदा बेगम है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे के टिफिन में बीफ रखा और ये भी तब हुआ जब असम में गोवंश और दूसरे पशुओं की हत्या और गोमांस खाना गैर कानूनी है, गंभीर अपराध है। सुनिए।
1: এইটো বস্তু অনা স্কুলত উচিত নহয় বুলি মই ভাবো, আৰু মানে যাই এই কাম কৰছে তাৰ শাস্তি পাব লাগে। বা মোৰ মতে মাক বাপেকৰ অত্যন্তই ভুল, কাৰণ মাকে টিফিন ভৰাই মাকে জানিব লাগিব এইটো স্কুলত দিয়া অনুচিত।
2: ল'ৰাই সেই কৈছে মা তাহাঁতে গৰুৰ মাংস আনিছিল আমাক খুৱাই দিব খুজিছিল বুলি কৈছে, এনেকে কৈছে খুৱাই দিব খুজিছিল জবৰদস্তি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে মই কৈছো কমপ্লেইন দিয়া নাই নেকি, কৈছে গৈছিলো ছাৰে নাছিল, পিছত বেলেগ ছাৰৰ আগত কৈছিলো তাহাঁতে কিবা কৈছে কি কয় হ'ব বেলেগ ল ঘৰত নক'বা।
3: বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোক একেদৰে বসবাস কৰোঁ, যাতে কাৰো চেণ্টিমেণ্ট কোনো হাক নহয়। আৰু এই ঘটনাটো কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত হৈছে তাৰো তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি দুয়ো আহিছোঁ ইয়ালে আৰু এই তদন্তৰ পিছত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সেইমতে।
0: अब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मां ने अपने बेटे के लिए स्कूल का टिफिन पैक किया हो और उसे इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जो 5 मुस्लिम छात्र अपने टिफिन में बीफ लाए थे उन्हें गोलपारा के सरकारी स्कूल से बाहर निकालने की भी चर्चा हो रही है। इसके लिए एक जांच समिति का गठन हुआ और ये जांच समिति बताएगी कि क्या स्कूल में बीफ लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल से नाम काटा जा सकता है या नहीं। हमारे देश में 14,71,000 स्कूल्स हैं, कुल 24,69,00,000 बच्चे पढ़ते हैं और जब इन बच्चों की माएं उनका स्कूल का टिफिन पैक करती होंगी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मामला भी आपराधिक धाराओं में आ सकता है। लेकिन असम में ऐसा हुआ, इसने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या स्कूल का टिफिन भी किसी माता पिता को गिरफ्तार करा सकता है। हमारे देश में बच्चों के टिफिन को लेकर कोई विशेष कानून, नियम, दिशा निर्देश तो है नहीं। उदाहरण के लिए असम के ही सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसमें अंडा भी मिलता है जो नॉनवेज की श्रेणी में है। असम में इस घटना से पहले ऐसे दिशा निर्देश नहीं थे कि बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते, स्कूल से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। लेकिन जब यह विवाद हुआ तो गोलपारा में ऐसे नियम जारी हो गए और ये निर्देश दिए गए कि अब से कोई बच्चा अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं लाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का विवाद पहले किसी और राज्य में नहीं हुआ। अमरोहा जिले में 3 कक्षा का एक छात्र अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर आया जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जब यह केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि टिफिन में नॉनवेज लाने के लिए किसी भी बच्चे उसकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद इस बच्चे को किसी और स्कूल में हाईकोर्ट के आदेश पर दाखिला दिया गया। लेकिन विवाद नहीं रुका यहां पर। अगस्त 2024 में नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल ने यह निर्देश जारी किया कि बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते, जिस पर कई अभिभावकों ने आपत्ति जताई। नोएडा ही नहीं, मई 2024 में जयपुर और दिसंबर 2018 में कोलकाता के एक स्कूल में भी टिफिन में नॉनवेज लाने पर विवाद हुआ। अब इस विवाद के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि किसी भी स्कूल में सभी धर्म, जाति, वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में टिफिन में नॉनवेज लाने से एक समानता का भाव खत्म होता है। लेकिन जो लोग इस फैसले का विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि देश में नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो स्कूल के टिफिन में नॉनवेज लाना गलत कैसे हो सकता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। एक कहावत है चौतरफा संकट। ये चौतरफा संकट होता क्या है इसे समझना हो तो आप TMC का आजकल का हाल देख लीजिए। ममता बनर्जी के लिए हर ओर से सियासी तूफान आ खड़ा हुआ है। पहले जनता ने हराया, फिर ज्यादातर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब बागी सांसदों का गुट ममता की TMC को तोड़ने का दांव चल रहा है। उधर ED, CBI ही नहीं, बंगाल की CID भी जाली दस्तखत के सुराग ढूंढते ढूंढते आज कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट के घर तक पहुंच गई जहां पर उनका दफ्तर है। ममता बनर्जी जब दिल्ली में है तभी टीएमसी के लोकसभा के बागी सांसदों ने अपने दांव चले हैं। बागी सांसदों का नंबर गेम और इस मामले में दल बदल कानून का समीकरण आपको समझाऊं उससे पहले आप ममता बनर्जी की राजनीति का ये चैप्टर देखिए। क्या ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर वहीं पहुंच सकती है जहां 28 साल पहले थी? आज ममता बनर्जी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिलने गई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन एक घंटे की मुलाकात हुई। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी गले मिली थी। टीएमसी ने अपने एक्स पोस्ट में इस तस्वीर को डाला, कहा मुस्कुराहटों ने वो कहा जिसे शब्द न कह सके, दशकों तक राष्ट्र की समर्पित सेवा से मजबूत हुआ बंधन। कितना दिलचस्प है, राहुल गांधी ने अभी इसी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बीजेपी के उभार के लिए कसूरवार ठहराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर टीएमसी और कांग्रेस की तनातनी तक हुई थी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में न सिर्फ लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि कांग्रेस की भी राजनीतिक जमीन इस तरह खिसका दी कि 2024 के चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए गुजरात से वो यूसुफ पठान को बंगाल ले आए। आज उन्हीं यूसुफ पठान पर टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो अमित शाह के इशारे पर ममता की बात नहीं मान रहे। दरअसल अटकलें हैं कि बहरामपुर संसदीय सीट को सेफ मानकर यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा था ताकि ममता लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। देखिए,
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
5: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
0: टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का नेतृत्व काकुली घोष दस्तेदार कर रही हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद एनडीए को समर्थन करने के लिए तैयार है, यानी पहले टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों के अलग ब्लॉक को बंगाल विधानसभा में मान्यता मिली तो ममता के खेमे में सिर्फ 20 विधायक बचे, और अगर बागियों का दावा सही है तो 28 में से सिर्फ 8 सांसद ममता बनर्जी के पास बचेंगे। हालांकि अभी तक उनके दस्तखत वाली चिट्ठी 20 सांसदों की आई नहीं है, इसलिए इंतजार करना होगा। टीएमसी के बागी सांसदों पर फैसला स्पीकर ओम बिरला को करना है। बागी सांसदों ने जब से चिट्ठी लिखी है तब से स्पीकर चंडीगढ़ में है, उनके दिल्ली लौटने के बाद ही कोई फैसला संभव है। अब मैं बागी सांसदों का 19 का मैजिक नंबर बता देती हूं। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए 2/3 सांसद किसी दूसरे दल में विलय करें तो ये अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अब टीएमसी के लोकसभा सांसदों के लिए यह मैजिक नंबर है 19। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, यानी मैजिक नंबर से एक ज्यादा। हालांकि टीएमसी का दावा है कि बागियों के खेमे में सिर्फ 12 लोकसभा सांसद हैं। और यहां सवाल यह भी है कि अगर बागियों के पास 19 या उससे अधिक की संख्या मौजूद है तो क्या उन्हें संसद में अलग ब्लॉक की मान्यता मिल सकती है? यहां मैं अप्रैल में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को मिली मान्यता का मामला भी बताती हूं। आपने अपने 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को के बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा में मिली मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि दल बदल कानून कहता है कि पहले 2 पार्टियों का विलय होना चाहिए तभी मान्यता मिलनी चाहिए। अभी यह केस सुप्रीम कोर्ट में है। टीएमसी भी रिद्वत बनर्जी के गुट को बंगाल विधानसभा में मिली मान्यता के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। रास्ता भी आसान नहीं, लेकिन ओम बिरला स्पीकर क्या करते हैं नजर टिकी रहेगी। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
9: ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
10: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
9: ज्यादा बड़ी ना है।
10: छोटे ऑन कर दे,
11: ऑन कर दे, ऑन कर दे।
9: पैक कर दे समर कूल।
10: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
14: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
15: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
16: कूल फैंस, जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
15: कूल फैंस, स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
8: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
17: In association with
18: Samakul Cooler, hawa aisi chhode puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
17: Hint, bade aaram se.
18: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
17: Vimal, bolo zuba kesri.
19: Punjab National Bank, bharose ka prateek.

ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। एक ट्रक तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। अचानक ट्रक अनियंत्रित होता है और ट्रक का पिछला हिस्सा करीब 10 फीट हवा में उड़ता है और अपने दाहिनी साइड घूम जाता है। ठीक तभी एक कार सामने से आती है। कार ट्रक के नीचे से गुजर जाती है। गनीमत रही कि ट्रक का हिस्सा कार के ऊपर नहीं गिरा और पुल से टकरा गया। ये भयानक तस्वीरें यूपी में चित्रकूट के झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे 35 के लालापुर वाल्मीकि नदी पुल की हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र में बारामती की तस्वीरें हैं। नशे में धुत ट्रक ड्राइवर स्टंट कर रहा है। अचानक ट्रक अनियंत्रित हुआ और सड़क पर गेंद की तरह लुढ़कता चला गया। वो तो शुक्र था कि आसपास चलने वाले लोग सावधान थे, इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलबत्ता ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दोनों हादसों में लोगों की जान बाल बाल बची। बारामती से वसंत मोरे के साथ अखिलेश कुमार, चित्रकूट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
5: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
4: ज्यादा बड़ी ना है।
5: छोटे ऑन कर दे, ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, पैक कर दे समर कूल।
5: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये तस्वीर गठबंधन की एकता की सुनहरी मिसाल पेश करती दिखी। ममता को भले ही सोनिया की सहानुभूति का आलिंगन मिला हो, लेकिन इस बैठक में राहुल के साथ की कुर्सी पर लगे अखिलेश के आसन ने यूपी चुनाव की अहमियत साबित कर दी। और जब मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश को बोलने का मौका दिया गया तो अखिलेश ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने नाराजगी का पिटारा खोल दिया। अखिलेश ने पूछा, आज डीएमके कहाँ है? आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बिठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों का सहयोग करना चाहिए। और आखिरकार अखिलेश यूपी के मसले पर आए और कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत को समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अभी तक यही तस्वीर दिख रही है कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैंतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में लड़कर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीट ऐसी है जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद को दावेदार समझने लगी है। 2027 की लड़ाई अखिलेश यादव पूरी ताकत से लड़ने की योजना बना चुके हैं, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश बेहद संजीदा है। और खबर है कि अखिलेश ने संभावित उम्मीदवारों के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया है और स्थानीय पार्टी नेताओं के फीडबैक के आधार पर सूची बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन इस सर्वे टीम की अगुवाई कर रहे हैं। इस टीम में लखनऊ यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर भी शामिल है और इसी टीम ने कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने की रिपोर्ट दी है। इन 75 सीटों में से 71 सीटें वैसी हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। यानी अखिलेश अपनी छांटी हुई सीटें कांग्रेस को ऑफर करने का मन बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को ऐसी मुश्किल सीटें मंजूर होंगी। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: इतना ही, अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और क्या गजब दुनिया है, ये जिंदा लोगों की तो चुगली करती है और जो लोग गुजर गए उनकी तारीफ। नमस्कार।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर हंगामा। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हत्या। एसी ने कल मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोरी घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार। अमित शाह संभाल रहे हैं कमान। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय। अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण बैठक। नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। बोले दोषियों को मिले सख्त सजा। री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात, यानी पीओके जिसे पाकिस्तान अपनी जमीन बता रहा है। आज आसिम मुनीर ने उसी जमीन को बेगुनाहों के लहू से रंग दिया। अपना अधिकार मांगने सड़कों पर उतरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों पर जनरल डायर की तरह आसिम मुनीर ने सीधे गोलियां चलवा दी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, 200 से अधिक घायल हो गए। पीओके में मचे इस कत्लेआम पर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है और अब लोग अपनी मांगों के लिए शहादत देने के लिए तैयार है। आइए आपको दिखाएं कैसे मचा पीओके में कत्लेआम।
3: पीओके में कत्लेआम। 27 लोगों को गोलियों से भून दिया। आसिम मुनीर बने जनरल डायर। जनाजे की नमाज में चलवाई गोलियां। मुनीर के खिलाफ पीओके में एटम बम की तरह फटा लोगों का गुस्सा। अपना हक मांगने सड़कों पर उतरे लोग तो बदले में मिली मौत। आसिम मुनीर ने पीओके की जमीन को बेगुनाहों के लहू से रंग दिया।
4: देख सकते हैं आप, सीधी स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है।
3: वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। पाकिस्तान ने पीओके को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। कब्जे वाले कश्मीर को अपना बताने वाले मुनीर आज उन्हीं अपने लोगों पर मौत बरसा रहे हैं।
4: वो तो कुछ लेकिन बंदे गोली लगी है।
3: जी हाँ, एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर भीमर, कोटली और रावलकोट में लोग जमकर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं।
5: हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से लेंगे आजादी। पाकिस्तान से लेंगे आजादी।
3: पाकिस्तान से लेंगे आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब लोग अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे तो आसिम मुनीर जनरल डायर बन गए और सीधे गोलियां चलवा दी।
4: स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है जी आवाम पे।
6: रावला कोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है, 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और इस ये वाकया उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये है कि लोगों को जो लोग जख्मी हैं, जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही है।
3: पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग 6 बांग उठा रहे हैं और इसके लिए 9 जून को पीओके की जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी की ओर से एक लॉन्ग मार्च निकाला जाता है। जैसे ही लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरते हैं, आसिफ मुनीर की फौज उन्हें गोलियों से भून देती है।
7: क्योंकि यहाँ पे मकबल ब्लैक डाउन करके हमें कत्ल किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि आप जिस तरह दुश्मन है आप हमारे और हमें उस तरह मार रहे हैं।
3: अब आपको पीओके वालों की 6 मांगे भी बताते हैं। बिजली और महंगाई, इलाके में बिजली की भारी किल्लत है और लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। बेरोजगारी का दंश, युवाओं के पास काम नहीं है और स्थानीय संसाधनों का जमकर शोषण किया जा रहा है। रिफ्यूजी कोटा, 27 जुलाई को होने वाले चुनावों में 45 में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जिसका लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक उपेक्षा, जनता खुद को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर महसूस कर रही है। इंटरनेट पर पाबंदी, लोगों की आवाज दबाने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। जेएएसी पर बैन, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद की तरफ से एक तो उनकी सुनी नहीं जा रही है और जब वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे तो आसिफ मुनीर ने जनरल डायर की तरह गोलियां चलवा दी। और अब ये वीडियो देखिए, पीओके में किस तरह से नारे लग रहे हैं। और ISI दहशतगर्द और आसिफ मुनीर दहशतगर्द के नारे लगाए जा रहे हैं।
8: बच्चे थे हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ्फुज़ के लिए है, नहीं काम आया। तो मार दो आजाद कश्मीर पे, खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा भयानक। यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो, तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक के आजादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
3: ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC इलाके का एक प्रमुख संगठन है। प्रशासन ने इस संगठन को पिछले हफ्ते ही गैर कानूनी घोषित कर दिया था। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं JAAC का कहना है कि वो शांति से अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी उन्हें आतंकवादी बताकर उनका गला घोटना चाहते हैं। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक जनाजे में इकट्ठा हुए लोगों पर भी फायरिंग कर दी। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के अनुसार शाहजेब हबीब नाम के प्रदर्शनकारी को पाकिस्तानी रेंजर्स ने मार दिया था। एक्शन कमेटी के नेताओं का कहना है कि रावलकोट के कम्बाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब के जनाजे की नमाज के लिए लोग जुटे थे। इसमें आवामी एक्शन कमेटी के नेता भी शामिल थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी शुरू कर दी।
9: जब आप बात करते हो तो आप कहते हैं ये मुल्क जमहूरियत में, तो जमहूरियत का नाम लेता है, तो मुझे बताया जाए ये कौन सा जमहूरी, कौन सी जमहूरियत है। आए दिन जब हम अपने 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। हमारी इंटरनेट आजाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बंद कर दी गई है 11:30 बजे से। वहां पर मेरे लोगों को शहीद किया जा रहा है, वहां पर हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां पर लोगों को जख्मी किया जा रहा है। हमारी आवाज बने और इस दुख दर्द बड़ी कड़ी में हम शाहजेब भाई के घर वालों के साथ खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह शाहजेब भाई का खून हम रायगा नहीं जाने देंगे। शाहजेब भाई ने कौम के हकूक के लिए अपनी जान कुर्बान की है और हम इनके खून का बदला जरूर लेंगे। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा। जिस दज से कोई मक्तल को गया وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کیا کوئی بات نہیں, اس جان کی کوئی بات نہیں.
4: دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھی اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے.
3: اس پوری ہنسا اور بربرتا کو دیکھ کر پاکستان مانوادھیکار آیوگ بھی گہری چنتا میں ہے. آیوگ نے کھلے عام شہباز سرکار اور منیر کی حیوانیت کی نندا کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آتنکواد ورودھی قانون کے تحت جے اے اے سی کو بین کرنا اور انٹرنیٹ بند کرنا پوری طرح سے غلط ہے. لوگوں کو شانتی پورن پردرشن کرنے کا حق ہونا چاہیے. حالات اتنے تناؤ پورن ہیں کہ مانوادھیکار آیوگ نے وہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آصف منیر جنرل ڈائر بن کر ان لوگوں کا غصہ شانت کر پائیں گے, یا پی او کے کا یہ بارود آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے وسفوٹ میں بدل جائے گا. اب لوگوں کے اندر کا غصہ اور ابال مار رہا ہے. آج تک بیورو.
0: آئیے ہم آپ کو سیدھے ہمارے سنواددتا اشرف وانی جو کہ شری نگر میں ہیں ان کے پاس لیے چلتے ہیں. اشرف, پاکستانی قبضے والے کشمیر میں جس طرح سے آصف منیر نے گولیاں چلوائیں اور جس طرح سے پی او کے میں کوہرام ہے, قتل عام مچا, کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے اشرف؟
10: بالکل, اگر پاکستان میں بات کی جائے تو جو پچھلے سال یہ پاکستانی ادھیکرت کشمیر والی جے کے اے سی بنی تھی, یعنی پاکستانی قبضے والے کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی, اس نے پچھلے سال بھی کافی پردرشن کیے تھے جو ہنسک ہوئے تھے. کئی سارے لوگ ان پردرشنوں میں بھی مارے گئے تھے. اور اب کی بار چونکہ اب اس کی نوعیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پوری طرح سے غصہ جو ہے وہ پاکستانی سینا اور خاص طور سے سینا پرمکھ آصف منیر کے خلاف ابھر پڑا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آصف منیر ہی پوری طرح سے پاکستان کی سرکار کے ساتھ ساتھ پاکستانی سینا کو چلاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس انداز سے گولیاں چلی ہیں ایک شو کے سپرد خاک کرتے ہوئے, اس پر لوگوں میں کافی غصہ ہے. یہاں تک کہ اب خبریں آ رہی ہیں کئی علاقوں میں پاکستانی قبضے والے کشمیر میں جو انٹرنیٹ سیوائیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں تاکہ ان پردرشنوں کو اور پھیلنے سے روکا جائے. آج دن بھر بھی جو ہے پاکستانی قبضے والے کشمیر مظفر آباد کے ساتھ ساتھ کئی سارے جو ناردرن ایریاز پاکستان کے ہیں, گلگت بلتستان کا علاقہ, وہاں پر بھی پردرشن ہوئے. اور کہیں نہ کہیں راجنیتی سے ہٹ کر ان پردرشن کاریوں کی مانگ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جس انداز سے جموں کشمیر یعنی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کا جو سادھن ہے, جو جس طرح سے ان کا لابھ پاکستان کا پنجاب پرانت اور باقی حصے اٹھا رہے ہیں, لیکن اس سے کہیں نہ کہیں اس علاقے کو جس کا نام تو پاکستان نے آزاد کشمیر رکھا ہے لیکن کوئی آزادی وہاں پر لوگوں کو نہیں ہے. بجلی پاکستان کے باقی شہروں کے مقابلے میں پی او کے یعنی مظفر آباد میں کم ملتی ہے, بہت زیادہ کٹوتی ہے, وہ بھی گرمی کے مہینوں کے دوران. اور ساتھ ہی ساتھ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, وسطو ہیں, ان کے دام آسمان پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ جو اسٹیٹ آف ہارمز بند ہو گئی ہے اس سے بہت زیادہ اثر پاکستان میں پڑا ہے. پیٹرول ڈیزل کے دام کے ساتھ ساتھ گیس جو ہے اس کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں. اسی کو لے کر جو ہے اس عوامی ایکشن کمیٹی نے وہاں پردرشن شروع کیے تھے. ایک ویکتی مارا گیا تھا, جب اس ویکتی کو سپرد خاک کیا گیا تب گولی باری ہوئی اور اب 27 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں. فی الحال جو ہے نہ صرف یہ پردرشن جو ہیں پاک ادھیکرت کشمیر میں ہو رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کے نواسی دیش دنیا کے الگ الگ حصوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور سے انگلینڈ میں, برہنگم میں, وہاں پر بھی انہوں نے پاکستانی سینا کے خلاف اور خاص طور سے پاکستانی سینا جنرل آصف منیر کے خلاف پردرشن کیے ہیں. اور آنے والے دنوں میں بھی بہت کم لگتا ہے کہ ان پردرشنوں پر قابو پانا پاکستانی سینا اور سرکار کے لیے چنوتی بھرا کام ہوگا کیونکہ جتنے لوگ مارے جاتے ہیں اتنا ہی روش عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار جنوں اور رشتے داروں میں بڑھ جاتا ہے.
0: بہت دھنیواد اشرف. اشرف وانی ہمارے سنواددتا, انہوں نے ان کو آپ نے سنا اور آپ نے پی او کے سے آئی ہماری رپورٹ بھی دیکھی, پاکستانی سینا کی بربرتا بھی دیکھی, اور اب ہم آپ کو پاکستانی سینا کی حیوانیت پر انتراشٹریہ گھیرا بندی کی رپورٹ دکھاتے ہیں. آج دنیا کے وبھن دیشوں میں پاکستان اچھایوگ کے باہر زبردست دھرنا اور پردرشن ہوا. آخر پی او کے میں قتل عام سے کیسے پاکستانی سینا کا گھنونا چہرہ بے نقاب ہوا ہے, آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
3: پی او کے پر چوطرفہ گھر گیا پاکستان,
11: ब्रिटेन के सांसदों ने उठाया पीओके का मुद्दा। पाक के मानवाधिकार आयोग के सवाल। पीओके में कत्लेआम, पाकिस्तान पर बवाल। पीओके में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं।
12: दुनिया भर में ओवरसीज कश्मीरी जो हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, और मुजाहरे कहां कर रहे हैं? पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने, पाकिस्तानी सिफारतखानों के सामने ओवरसीज पाकिस्तानी मुजाहरे कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी मुख्तलिफ मुल्कों में जो ओवरसीज कश्मीरी जो हैं वो निकले हैं और उन्होंने मुजाहरे किए, एहतजाज किया। और ख़ास तौर पे जो रावला कोट में गुज़श्ता रात जो है वो ऑपरेशन किया गया, और उस ऑपरेशन में जो शहादतें हुई, हलाकतें हुई, जख्मी हुए, और जो बर्बरियत का मुजाहरा किया उसके खिलाफ ये सब कुछ किया गया।
11: बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को 30 सांसदों ने पीओके के नागरिकों के नरसंहार का विरोध करते हुए खत लिखा है। ब्रैडफोर्ड ईस्ट के सांसद इमरान हुसैन ने अपनी सरकार से पीओके में पाक सेना की तरफ से मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ दखल देने की मांग की है। पाकिस्तानी पत्रकार मानते हैं कि जनरल मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी सेना ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया है।
12: कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वहाँ पे सेंसरशिप आयत है, वहाँ पे किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। और रावला कोट ऑपरेशन हुआ और बदतरीन किस्म का ऑपरेशन हुआ, वहां पे जनाजे उठाए जा रहे हैं, जनाजों की आज तदफीन हुई है, और तदफीन भी खुलेआम की गई, जलसे जुलूस की सूरत में की गई, और वहां पे किसी किस्म का अब खौफ व हरास नहीं बल्कि नफरत है।
11: दरअसल पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 200 लोग जख्मी हैं। पाकिस्तानी सेना पर निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का सनसनीखेज आरोप है। लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना दमनकारी कदम उठा रही है। पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा है कि संवाद जरूरी है लेकिन जब तक इस क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा जाएगा तब तक ये संवाद सार्थक नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए और शिकायतों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने भी पीओके में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के विरोध में आवाज बुलंद की है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के खिलाफ पीओके में जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने आज लॉन्ग मार्च बुलाया था। दरअसल JAAC पीओके का सबसे बड़ा नागरिक अधिकार संगठन है। ये संगठन मौजूदा सरकार की दमनकारी नीतियों, महंगाई और बुनियादी अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने JAAC को आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए उस पर बैन लगा दिया है। दावा यही है कि मामला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
13: ये अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुके हैं। बलूचिस्तान अब बना है मगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो इंडिया के साथ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस प्लेबिसिट ये सारे इनका स्टेटस क्या है क्या नहीं है ये सारी पुरानी चीज़ें।
14: अच्छा।
13: और ये इसके अंदर सारे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व्ड हैं।
11: पीओके में बिजली, महंगाई और बुनियादी हक को लेकर जारी प्रदर्शनों के दौरान रावलकोट और दूसरे इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कहर टूटा। इससे पहले बीते साल अक्टूबर महीने में आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई और 120 से ज्यादा घायल हो गए। पाकिस्तानी पत्रकार भी मानते हैं कि पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार पूरी तरह फेल है।
13: तो आई फील के तरीके से हैंडल नहीं किया गया। नून लीग भी नहीं हैंडल कर सकी, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकी और पीटीआई भी नहीं कर सके। आई थिंक निगोसिएशन होने चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। हम सारी बातें मानने के लिए तैयार है, मगर ये जो 12 सीटों वाली बात है असेंबली फैसला करे। तो अगर सियासी जमातें जिम्मेदारी लेती हैं टू कीप कश्मीर अफेयर्स इनसाइड कश्मीर तो व्हाट्स द प्रॉब्लम।
11: पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के सवाल पर जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है।
14: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है, कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा।
11: विद्रोह की चिंगारी से उबर रहे पीओके को लेकर भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को बेनकाब किया है। पाकिस्तान की ये वही सच्चाई है जो पीओके से लेकर दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शनों में दुनिया देख रही है। आज तक ब्यूरो।
0: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे ईरानी मिसाइलें तनी, ट्रंप और नेतन्याहू में ठने। आप देखते रहिए दस्तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर। इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: EU सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद
17: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
12: छात्रों के भविष्य पर उठे सवाल।
19: बच्चों के भविष्य से जब जब खिलवाड़ होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या छात्रों की चिंताएं दूर होंगी।
12: तो हमने पूछे जिम्मेदारों से सवाल।
19: CBSE के कोई चेयरमैन होंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोचिंग माफिया के खिलाफ मैं बोलती रहूंगी।
12: छात्रों को दिया मंच।
19: उज्मा हमारे साथ कोटा से, और अदिति मुंगेर से हैं, और तानिया कोटा से हैं, और अर्गम जैन भी जुड़ गए हैं। तो एक बार आप दिखाएं और बताएं अपनी समस्या।
20: मैम ये देखिए, इसमें सेकंड की मार्किंग है, ये तीनों ही अनचेक हैं।
21: IIT मद्रास के एक्सपर्ट लगा रहा है, क्या वो भी इतने सक्षम नहीं है कि उनसे एक सरकारी वेबसाइट नहीं चलाई जा रही?
12: छात्रों के मुद्दे, छात्रों की आवाज और खबर का असर।
19: आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब सरकार की तरफ से CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव दोनों का तबादला किया गया है।
12: छात्रों के हित में हल्ला बोल सिर्फ आज तक पर।
22: जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा, मुझे तो कुछ नहीं। मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया,
23: अल्हम्दुलिल्लाह।
24: उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया, ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके? आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है, आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है। शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है न तीन बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है। आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है। यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद। शामली में धर्म परिवर्तन की यह कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है। आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की, जिसमें यह बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया, जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है। शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो SIT बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है, ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
0: एक घर के भीतर कुछ लोग हैं, दीवार पर जीसस का क्रॉस है, यहाँ भीड़ जमा है। आरोप है कि यहाँ कुछ सनातन धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन की यह खबर हिंदू दल के नेताओं को लगी तो मामला सुलग उठा। हिंदू शेर सेना के पदाधिकारी तुरंत यहाँ पुलिस के साथ पहुँचे। सुनिए यहाँ क्या बात हो रही है।

0: क्या नेतन्याहू की वजह से फिर होगा युद्ध? क्या ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं नेतन्याहू? ईरान पर हमला, ट्रंप से नेतन्याहू का बदला। पीस डील पर ट्रंप और नेतन्याहू में दरार। क्या ट्रंप का पूरा खेल बिगाड़ देंगे नेतन्याहू? ईरान की मिसाइलें तनी, ट्रंप नेतन्याहू में ठनी। अमेरिकी राष्ट्रपति दावा करते नहीं थक रहे हैं कि ईरान के साथ पीस डील बस होने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 37 बार ट्रंप ईरान के साथ जल्द ही समझौता होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, यानी ईरान के साथ ट्रंप डील के लिए बेचैन हैं। लेकिन इसराइल ने ईरान पर हमला करके ट्रंप का सुखचैन छीन लिया है। भले ही ट्रंप के दखल के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन लेबनन पर इसराइल के हमले जारी हैं, और जब तक लेबनन पर हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना कम है। लेबनन पर इजरायली हमलों को लेकर ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो एक बार फिर इजरायल पर हमला करेगा। यानी अमेरिका और ईरान की पीस डील में इजरायल सबसे बड़ा रोड़ा है। भले ही ईरान पर इजरायल ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन लेबनन पर नेतन्याहू अब ट्रंप की सुनने को भी तैयार नहीं है।
1: ईरान व हिजबाला खलशीम ए पाम वानाहु खजकीम ए पाम אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי.
0: नेतन्याहू के तेवर अब अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव की वजह बन सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हैं।
2: नेतन्याहू, दिस इज आउटरेजियस, यू मस्ट स्टॉप इमीडिएटली। ट्रंप, यू डोंट अंडरस्टैंड द थ्रेट्स वी फेस।
0: नेतन्याहू को ट्रंप ईरान के साथ पीस डील में ब्रेकर के तौर पर देख रहे हैं, लिहाजा इसराइल को लेकर ट्रंप के तेवर अब बदल चुके हैं। मामला इस कदर बिगड़ चुका है कि ट्रंप किसी भी वक्त इसराइल का साथ छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को सीधी चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि इसराइल ने दोबारा ईरान पर हमला किया तो ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा। बीबी, आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द आप खुद को अकेला पाएंगे। दरअसल ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के स्टैंड में बड़ा फर्क है। भले ही ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, लेकिन युद्ध विराम के बाद ईरान के साथ बातचीत में ट्रंप ने इसराइल को शामिल नहीं किया। यही नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी नेतन्याहू की बेइज्जती ट्रंप कर चुके हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले लेबनन पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस हुई, जिसमें ट्रंप ने लेबनन पर इजरायली हमलों का विरोध किया था। दावा किया गया है कि ट्रंप इस बात से बेहद नाराज थे कि हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायली हमलों से ईरान के साथ चल रही पीस डील की चर्चा पटरी से उतर सकती है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को अपने तमाम एहसान याद दिलाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम कर क्या रहे हो? मेरा एहसान मानो, अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन अब हर कोई तुमसे नाराज है, हर कोई इसराइल से नाराज है। इसी बातचीत के बाद कुछ घंटों के लिए नेतन्याहू ने लेबनन पर हमले रोक दिए थे। तब ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए माना था कि बहस के दौरान उन्होंने नेतन्याहू से अमर्यादित भाषा में बात की थी। ट्रंप मानते हैं कि इसराइल के हमले रुकेंगे तभी पीस डील संभव है। मुझे विश्वास है कि अमेरिका और ईरान अगले एक हफ्ते के अंदर युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हमारे बीच एक समझौता हो जाएगा।

0: दरअसल पीस डील को लेकर ट्रंप के सुर अब बदले बदले हैं। वजह है लेबनन को लेकर ईरान की अमेरिका को दी गई धमकी। बातचीत के दौरान ईरान ने अपना स्टैंड एकदम स्पष्ट कर दिया है, जब तक लेबनन पर हमले जारी रहेंगे तब तक अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही नहीं, लेबनन पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने रविवार की रात इसराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि ये हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनन के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। आगे किसी भी नए कदम का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। ट्रंप के दखल के बाद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन ईरान ने महायुद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। आईआरजीसी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसकी सेना हाई अलर्ट पर है, किसी भी संभावित खतरे का डटकर सामना करने और उसका कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब यही है कि ईरान को अंदेशा है कि एक बार फिर इसराइल हमला कर सकता है। बड़ी बात यह है कि बीते दिन इसराइल के हमले में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हुई है। न ईरान झुकने को तैयार है और न ही इसराइल रुकने को तैयार है। सवाल यही है कि तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील कैसे मंजिल तक पहुंचेगी?
1: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back forth and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: पीस डील को लेकर अब ट्रंप के पास एक विकल्प बचा है। विकल्प यही है कि लेबनन पर इजरायली हमलों को किसी तरह रोके। अगर हमले रुके तभी ईरान पीस डील के लिए तैयार होगा। सवाल यही है कि क्या ट्रंप की बात नेतन्याहू मानेंगे? इजरायल के पत्रकार गिदोन लेवी मानते हैं कि ट्रंप के आगे नेतन्याहू को झुकना ही पड़ेगा। इजरायल ट्रंप को ना नहीं कह सकता। नेतन्याहू आज ऐसी स्थिति में नहीं है। ट्रंप जो कहेंगे नेतन्याहू को वही करना पड़ेगा। वहीं अब इसराइल के लोग लगातार चल रहे युद्ध से थकने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि गाजा, लेबनन और ईरान में लड़ाई से कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। अब ट्रंप का पूरा जोर इसराइल पर दबाव बढ़ाने का है, लिहाजा ट्रंप आने वाले दिनों में इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं ताकि ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील पर मोहर लग सके।
1: That hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
0: भले ही ट्रंप पीस डील को लेकर बहुत उम्मीद से हैं, लेकिन ट्रंप कई बार ऐसा दावा कर चुके हैं। हर बार ट्रंप की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में पीस डील होगी या फिर महायुद्ध। आज तक ब्यूरो।
2: एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है, ईरान, इसराइल और अमेरिका युद्ध भड़क सकता है। ट्रंप ने बहुत बड़ी धमकी ईरान को दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास और हम ईरान को करारा जवाब देंगे। कल ये खबर आई थी, एक हेलीकॉप्टर वहां पर गिर गया था, अमेरिका का हेलीकॉप्टर था, दोनों पायलट सुरक्षित थे। लेकिन अब ट्रंप ने खुद ये कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि ईरान ने हमारे इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और अब हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि हमारे दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन हम ईरान को करारा जवाब देंगे। और अमेरिका का ईरान को जवाब देने का मतलब आप समझते हैं कि भीषण हमला होगा ईरान पर, बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ट्रंप।

0: ईरान और इसराइल में छिड़ी जंग, अब कैसे डील करेंगे ट्रंप? क्या पीस डील के लिए नेतन्याहू से भी भिड़ जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? ईरान संग डील से पहले अमेरिका ने 100 न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की बनाई टीम। क्या है डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान? क्या इस बार डील हो जाएगी सील? क्या ईरान की शर्तें मान लेंगे ट्रंप? अमेरिका से क्या मिल रहा है हिंट? चंद घंटे पहले जिस तरह से ईरान और इसराइल के बीच फिर से युद्ध छिड़ा और जिस तरह से मिसाइलें और ड्रोन से हमले हुए, दुनिया में सबको लगने लगा कि ये जंग रुकना आसान नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ इसराइल को शांत कराया बल्कि एक बार फिर से पीस डील की बात कहकर दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ, जब नेतन्याहू ऐलानिया कह रहे हैं कि इसराइल किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका जवाब देगा, ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 2 या 3 दिन में ईरान के साथ एक बहुत अच्छी डील हो सकती है। ट्रंप ने ये बयान कल रात दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी क्या बात हुई। ट्रंप ने कहा कि इसराइल पर हमला हुआ था और इसलिए उसने जवाबी हमला किया। ट्रंप ने कहा कि वो नेतन्याहू को इसके लिए गलत नहीं कह सकते।
1: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back forth and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर पर्दे के पीछे हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुश्नर इसे लेकर एक्टिव हो चुके हैं। इन दोनों ने टेनेसी के ओक रिज नेशनल लैब के टॉप न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक की है। न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका किसी न्यूक्लियर डील की तैयारी पहले से ही शुरू कर चुका है। इसके लिए करीब 100 एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार रखी गई है जो डील होने की स्थिति में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी और जांच का काम संभाल सकती है। इन एक्सपर्ट्स का मुख्य काम ये देखना होगा कि ईरान डील की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं। साथ ही वो ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने और उसके मौजूदा न्यूक्लियर सामान को सुरक्षित निपटाने की योजना भी बना सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस टीम में शामिल कई विशेषज्ञ पहले भी परमाणु अभियानों में काम कर चुके हैं। इनमें वो विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में वेनेजुएला से समृद्ध यूरेनियम को हटाने के मिशन में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट के अनुसार कुछ जानकार इससे पहले ओमान भी गए थे जहां अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत की तैयारी की जा रही थी। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत अब काफी गंभीर दौर में पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि इस बैठक का मतलब ये नहीं है कि डील तय हो गई है, लेकिन ये जरूर दिखता है कि अमेरिका को लगता है कि बातचीत सफल होने की संभावना है, इसलिए वो पहले से तैयारी कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि हम डील का इंतजार नहीं करना चाहते, अगर कोई डील होती है तो उसे लागू करने के लिए हमें तुरंत तैयार रहना होगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप डील को लेकर नई नई तारीखें दे चुके हैं, उससे सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ये डील हो पाएगी। सीज फायर से पहले तक की बात करें तो ट्रंप 37 बार ये कह चुके हैं कि ईरान से डील बस होने ही वाली है और सीज फायर के बाद भी ट्रंप कम से कम 8 से 10 बार कह चुके हैं कि अमेरिका ईरान के साथ डील के बहुत करीब है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खुद ट्रंप ने ही ईरान के साथ कई साल पहले हुई डील को तोड़ा था। 2015 में ओबामा के समय में ईरान के साथ JCPOA 2015 नाम की डील हुई थी। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसमें ईरान के साथ P5+1 यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी शामिल थे। इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने पर पाबंदी लगाई, बदले में उसे कुछ पाबंदियों से छूट मिली, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इसे सबसे बुरी डील बताते हुए रद्द कर दिया, जिससे ईरान को परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का मौका मिल गया। यानी ट्रंप ने ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने का मौका दिया, जिससे ये नौबत आई और फिर उस पर बमबारी की और अब उससे डील के लिए नई नई तारीख दे रहे हैं, जो हर बार छूटी निकलती है। जब ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील की चर्चा तेज है, उस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उसमें सवार दोनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। ट्रंप का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दुर्घटना का शिकार हुए पायलट ठीक हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका मंगलवार को इस घटना पर एक रिपोर्ट जारी करेगा। 8 जून को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी सेना का AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना क्यों हुई ये साफ नहीं है। क्या ईरान की फायरिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या उसमें तकनीकी खराबी आई या कोई और वजह थी? आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभरात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Some mysteries lie beneath the ocean. Others, beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
6: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
5: जब पार्टी में अपने साथ छोड़ रहे हैं तब कुछ यूं ममता बैनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से करीबी दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में दिखी। लेकिन बागी सांसदों से आर पार की नौबत ऐसी है कि टीएमसी ने उन्हें चुनौती दी है कि वे अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। टीएमसी ने सांसद यूसुफ पठान का नाम लेकर पार्टी के संकट के पीछे अमित शाह पर आरोप लगा दिया है। साथ ही ये दावा भी किया कि यही लोग ममता बनर्जी की तारीफें किया करते थे। इस बीच 20 सांसदों के साथ का दावा कर चुका बागी गुट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वहीं बागी गुट की अहम चेहरा काकोली घोष का दावा है कि उनका ये रुख सत्ता के लिए नहीं सिद्धांतों के लिए है। फिरहाद हाकिम जैसे ममता बैनर्जी के बेहद करीबी रहे नेता भी ममता के साथ नहीं दिख रहे। सोमवार को फिरहाद की रितव्रत बैनर्जी के साथ मुलाकात हुई। ममता बैनर्जी की दिक्कतें नेता विपक्ष तय करने में विधायकों के फर्जी दस्तखत के आरोपों से भी बढ़ सकती है। मंगलवार को कोलकाता में ममता बैनर्जी के कालीघाट के घर पर सीआईडी की टीम पहुंची। ममता बैनर्जी का घर टीएमसी का सेंट्रल दफ्तर है, इसलिए उनकी भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। आज तक ब्यूरो।
6: देयरफॉर दोज हु आर मेकिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट द पार्टी and want to see differently, they must follow the pathway of Sukhendu Sekhar Rai. They must show their political morality by resigning as member of parliament. I do not know how many persons are there at all, signed this. But fact is this, such an important document has not come in public domain, creates a suspicion about the letter, author, and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document? I could have understood they are discussing in a separate place, not with any BJP people. I could have appreciated their intention, but they have changed their leader. They have changed their leader from Mamata Banerjee to Narendra Modi. I will invite each and every MP, go to the constituency, sit with the Trinamool Congress workers, face them.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: There's a wild world waiting on Earth Day 365. Hunt with predators. Dive with sharks. Explore the unexplored. From nature, science, and space. To premiere original series and exclusive IMAX theatre documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel.
1: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
2: Therefore, those who are making the allegations against the party and want to see differently, they must follow the pathway of Sukendu Sekhar Rai. They must show their political morality by resigning as member of parliament. I do not know how many persons are there at all, signed this. But fact is this, such an important document has not come in public domain. Creates a suspicion about the letter, author, and the signature of the persons. If you are so honest, why did you not publish the document?
3: Maa Mati Manush ki Party, Trinamool ke madhyam se, Didi ke aashirvaad se, aur Abhishek ke samarthan se aur unke guidance se, hamare 29 MPs jeet karke aaye. सब तृणमूल माँ माटी मानुष के नाम पर, उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए. इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था. और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया. उसका आरोप लगा सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया. तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए.
4: उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में सीएम योगी का निशाना क्लियर है. जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा वाले चुनावी नारे को बीजेपी ने काफी पहले चुनावी रणनीति में तब्दील कर लिया था. लेकिन हिंदुत्व ब्रांड सियासत पर कब्जा करने वाली बीजेपी को अब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से घेरने की कोशिश कर रहे हैं. राम मंदिर के निर्माण से लेकर महाकुंभ के कोहराम तक, मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक न्याय से लेकर शंकराचार्य और गौ माता के बचाव तक, समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी के हिंदुत्व को घेरने की कोशिश की है. लेकिन पिछले दो हफ्तों से आए सीएम योगी के बयानों पर गौर करें तो गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड से लेकर गौ माता के दर्जे तक और धर्मांतरण से लेकर माफिया राज के खात्मे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण तक सीएम योगी के बयान हार्ड हिंदुत्व की धारा में रंगे दिख रहे हैं, जिसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अख्तियार करती दिख रही. समाजवादी पार्टी आए दिन हर मौके पर ये याद दिलाती है कि उनकी ओर से केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है. कभी रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब वकीलों में रामचरितमानस की प्रतियां बंटवाती है और तो और ब्राह्मणों के वोट को रिझाने के लिए भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाने से लेकर सरकारी छुट्टी तक की मांग करती है. दरअसल 2024 में संविधान के नाम पर चोट खा चुकी बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व ही वो कार्ड है जो संविधान बदलने वाली अफवाह से बिखरे दलित पिछड़े वोट को एकजुट कर सकती है.
5: अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर आगे आए हैं. अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर एक और इटावा में बनवाते हैं तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रामचरितमानस वकीलों में बंटवाते हैं और जो नेता धार्मिक लाइन को क्रॉस करते दिखते हैं उन्हें अखिलेश यादव की फटकार का भी सामना करना पड़ता है. अखिलेश यादव की कोशिश है कि वो पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का जवाब देते दिखाई पड़े. समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने कल मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन देने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे हैं कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 24 साल की MBA स्टूडेंट बबीता पांडे की तलाश को लेकर हाल के वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन उत्तराखंड में उत्तरकाशी के पहाड़ों और जंगलों में चलाया जा रहा है। बबीता 29 मई को ट्रैकिंग के दौरान अपने टेंट से गायब हो गई थी। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न बबीता का कोई सुराग मिला है न ही सबूत। हालांकि पुलिस बबीता की गुमशुदगी को लेकर एक साथ कई थ्योरी पर काम भी कर रही है और जांच भी।
1: ले जाते सर,
2: जानवर ले जाते हैं।
1: पाप जो बिल्कुल खुदा हुआ होते हैं, जगह खूब होते पेड़ों के अंदर ना।
2: हाँ।
1: तू अगर कुछ ऐसा छोटा अंग भी ले जा सकता फाड़ फूड के।
3: चारों तरफ पहाड़, जंगल, जंगली जानवर, खासकर भालू। मीलों में फैला है ये पूरा इलाका। इस पहाड़ और जंगल से मीलों दूर हैं बस्तियां, थाना और पुलिस। अब मीलों में फैले इसी जंगल और पहाड़ को चीरकर एक लड़की को ढूंढना है। 24 साल की एक MBA स्टूडेंट।

0: एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एसओजी की टीम, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की टीम, आईटीबीपी, वन विभाग, लोकल पुलिस, गोताखोर, सिविल डिफेंस, स्थानीय लोग, डॉग स्क्वाड, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, ये हाल के वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। किसी इंसान को ढूंढने के लिए जितने तरीके, जितनी टुकड़ियां, जितनी टीमें लगाई जा सकती हैं, 24 साल की उसी एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे को ढूंढने के लिए इस वक्त इन सारी टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। पर 11 दिन हो चुके हैं, न बबीता जंगल में मिली, न झील की गहराई में, न किसी पहाड़ी दामन में, न उसके जिंदा होने के सबूत मिले हैं, न उसके मुर्दा होने के। बबीता का सुराग देने वाले हर सुराग खामोश हैं। ऊपर से जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, उम्मीदें कम होती जा रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक मीलों आसपास के इलाके को खंगाल डाला गया, लेकिन फिर भी बबीता की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और बस यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बबीता कहां गई, उसके साथ क्या हुआ, आखिरी बार उसे कब किस हालत में देखा गया, गायब होने से पहले उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए शुरू से इस कहानी को शुरू करते हैं, ताकि सवालों की कड़ियों को जोड़कर उनके जवाब तक पहुंचने की कोशिश की जाए। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद दयारा बुग्याल का बेस कैंप गोई है। ये पूरा इलाका ट्रैकिंग के लिए बेहद मशहूर है, यहाँ दूर दूर से लोग ट्रैकिंग करने आते हैं। बबीता और उसके दो दोस्त 29 मई को यहीं से अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। शाम होने से पहले तीनों इस जगह पर एक टेंट में रुक जाते हैं। रात बीतती है, सुबह होती है। सुबह जैसे ही बबीता के दोनों दोस्तों की आंख खुलती है तो उन्हें टेंट में बबीता दिखाई नहीं देती। दोनों उसे टेंट के आसपास ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलती। अलबत्ता बबीता के बैग, जूते सब टेंट में ही पड़े थे। पूरे दिन दोनों दोस्त बबीता को ढूंढते हैं और फिर शाम को हार कर करीबी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस वन विभाग के साथ मिलकर अगले दिन यानी 31 मई को आसपास बबीता को ढूंढती है। बबीता का मोबाइल फोन भी बंद था। अब तक बबीता के दोस्तों ने रामनगर बबीता के माँ बाप को भी उसके गुम होने की खबर दे दी थी। खबर सुनकर पहली बार माँ बाप को झटका लगा जब उन्हें पता चला कि बबीता अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई है। असल में बबीता ने अपनी मां को यह बताया था कि वो अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है।
1: कब चली है वहां से?
2: 25 तारीख के शाम।
1: अच्छा, कुछ कहा आपसे?
2: मुझसे कहा घूमने जा रही हूँ, मना कर रहा, करी गढ़वाल साइड जा रही हूँ, आ जाऊंगी परसों।
1: और कौन था बबीता के साथ, और लोग कौन गए, कुछ जानकारी आपको?
2: मेरी सहेलियां हैं, कहा इसने बताया, और बार भी जाती थी ना, एक बार पहले भी आई थी, दोबारा आई।
0: यानी बबीता घर वालों से झूठ बोलकर घर से निकली थी। घर वालों को तो उसके दोनों दोस्तों के बारे में पता तक नहीं था। जिन दो दोस्तों के साथ बबीता ट्रैकिंग पर गई थी उनमें से एक का नाम हरमनपाल सिंह जबकि दूसरे का नाम हरमनप्रीत सिंह है। इनमें हरमनपाल सिंह उधम सिंह नगर का रहने वाला है जबकि हरमनप्रीत सिंह शाहजहांपुर का। पुलिस ने बबीता के इन दोनों दोस्तों से भी लंबी पूछताछ की लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला, लिहाजा दोनों को छोड़ दिया। इन दोनों ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक 29 मई की रात टेंट में आने के बाद दोनों दोस्तों ने शराब पी थी। इससे बबीता नाराज हो गई और वो चप्पल में ही अपना मोबाइल लेकर टेंट से बाहर चली गई। बाद में दोनों दोस्त सो गए। सुबह आंख खुली तो बबीता गायब मिली। इत्तेफाक से 29 मई की रात बबीता और उसके दोस्तों के टेंट से कुछ ही दूरी पर ट्रैकिंग के लिए आए कुछ स्कूली बच्चों के भी टेंट लगे थे। बबीता उस रात इन्हीं बच्चों के टेंट के बाहर बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। बच्चों के साथ आए कुछ टीचर ने बबीता को समझाया कि रात बहुत हो गई है, इतनी आवाज में गाने मत सुनो और अपने टेंट में लौट जाओ। उन्हीं स्कूली बच्चों और टीचर ने बबीता को आखिरी बार देखा था। बबीता के टेंट से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक झील है। पुलिस को लगा कि शायद रात के अंधेरे में बबीता कहीं उस झील में न गिर गई हो, लिहाजा तैराकों को बुलाया गया और 9 फीट गहरी झील में बबीता को ढूंढा गया, लेकिन झील के अंदर से बबीता के कोई सबूत नहीं मिले।
3: रैथल से 4.25 किलोमीटर की दूरी पर गोई नामक बेस कैंप पे 29 तारीख की रात को बबीता का लापता होना बताया जा रहा है। हालांकि फॉरेंसिक टीम और साथ में जो डीप ड्राइव जो टीम है उसके द्वारा गोई झील में भी कई बार सर्च किया गया, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाया।
0: अब तक आसपास के गांव वाले और वन विभाग से भी पुलिस संपर्क कर चुकी थी। गांव वालों से पता चला कि आसपास के जंगल में बड़ी तादाद में भालू हैं। कई बार वो भालू मैदानी इलाके में आकर गाय भैंस तक को उठा ले जाते हैं। अब वन विभाग के साथ मिलकर पुलिस ने बबीता को ढूंढने के लिए जंगलों की खाक छानी, पर जंगल से भी ऐसे कोई सुराग नहीं मिले जिससे ये पता चले कि बबीता को कोई जंगली जानवर ले गया। ऐसा होता तो चप्पल, कपड़े, मोबाइल कुछ तो कहीं पड़े मिलते।
4: देखिए, अभी हमारे लिए बहुत एक प्रायोरिटी प्राथमिकता है कि बबीता पांडे की खोज करना, और उसमें हमारी यहाँ पे पूरी टीम्स लगी हुई हैं। बल्कि एक सीईओ के नेतृत्व में हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, और एक सीईओ के नेतृत्व में हम लोग पूछताछ और जो भी हमारे और एंगल्स हो सकते हैं, चाहे वो सर्वेलांस से हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, तो उसमें भी पूरी हम सीसीटीवी से रिलेटेड हो, तो वो हम पूरी इसमें जानकारी कर रहे हैं। और इसमें सभी टीम्स, यहाँ तक कि प्रशासन की भी टीम्स और पुलिस, SDRF, और हमने अब इसमें नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी रेस्क्यू टीम को भी हमने इसमें किया है, तो वो लोग भी लगे हुए हैं। और आज तो मतलब हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग कराई गई है, तो इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये हम लोग पूरी तरह से इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें हमें कुछ सुराग मिल सके और हम इसकी बरामदगी कर सकें, सकुशल बरामदगी कर सकें।
0: इस बीच जैसे जैसे दिन बीतते गए, अलग अलग टीमें बबीता की तलाश में जुटती गई। इस सर्च ऑपरेशन के लिए NDRF, SDRF, ITBP, वन विभाग जमीन के साथ साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से भी बबीता को ढूंढते रहे, लेकिन 11 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। 29 मई को जब बबीता इस जगह से गायब हुई थी तब उसका मोबाइल ऑन था। बबीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन यही दिखा रही थी। इसके बाद अगले दिन यानी 30 मई से ही बबीता का मोबाइल स्विच ऑफ है। अब सवाल यह है कि बबीता कहां गई, उसके साथ क्या हुआ। तो अब तक की तफ्तीश के बाद इसे लेकर पुलिस की कई थ्योरीज हैं, पर सिर्फ थ्योरी ही है, सबूत या सुराग एक भी नहीं। एक थ्योरी तो यह है कि चूंकि बबीता अपने घर वालों से झूठ बोलकर ट्रैकिंग पर आई थी कि वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, पर उसके घर वालों को सच पता चल गया, लिहाजा वो खुद ही गायब हो गई। पर इस थ्योरी पर एक सवाल है। बबीता के घर वालों को उसकी गुमशुदगी की खबर 30 मई की शाम को मिली, यानी 30 मई को ही पहली बार बबीता के घर वालों को पता चला कि वो सहेलियों के साथ नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ ट्रैकिंग पर गई है, जबकि बबीता तो 29 मई की रात को ही गायब हो गई थी। दूसरी थ्योरी ये कि बबीता के दोस्तों ने बबीता को गायब कर दिया, हो सकता है मार दिया हो। पर इस थ्योरी में भी सवाल है। इन 2 लड़कों में से एक बबीता का करीबी दोस्त था, फिर भी अगर दोनों बबीता को गायब करने या मारने के जिम्मेदार हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज होती जो इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस या किसी टीम के हाथ लगती, जिससे बबीता के मुर्दा होने के सबूत मिलते। दूसरा ये कि बबीता जब इन दोनों दोस्तों को छोड़कर टेंट से बाहर निकली तब वो जिंदा थी। इसका सबूत वो स्कूली बच्चे और टीचर हैं जिन्होंने आखिरी बार उसे अपनी टेंट के बाहर बैठे देखा था। तीसरी थ्योरी ये है कि बबीता को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया। वन विभाग और गांव वालों के हिसाब से इस पूरे इलाके में भालू का आतंक है। भालू कई बार जानवरों और इंसानों को उठाकर ले जा चुके हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि अगर कोई जानवर बबीता को उठाकर ले भी गया तो भी कम से कम उसके चप्पल, मोबाइल या कपड़े का कोई एक टुकड़ा तो जरूर मिलता, जिससे ये साबित होता कि बबीता को कोई जानवर ले गया है। पर चप्पा चप्पा छानने के बावजूद कुछ नहीं मिला। एक थ्योरी ये भी है कि रात के अंधेरे में बबीता शायद रास्ता भटक गई, लेकिन 11 दिन हो चुके हैं। इन पहाड़ और जंगलों के इर्द गिर्द छोटी छोटी कई बस्तियां भी आती हैं, पर कहीं भी किसी ने भी अनजान लड़की को नहीं देखा। तो फिर लौट कर वही सवाल आता है, कि आखिर बबीता कहां गई। असल में उधम सिंह नगर से निकलकर बबीता अपने इन्हीं दोस्तों के साथ गांव रेथल पहुंची थी और यहां से तीनों ने ट्रैकिंग की शुरुआत करते हुए गोई तक अपना सफर पूरा किया। गोई के बाद ही असली ट्रैकिंग शुरू होती है। जानकारी के मुताबिक बबीता और उसके दोस्तों ने गोई के पास ही एक टेंट लगाया था और रात को वहीं रुके थे। ये पूरा इलाका जंगलों से घिरा है, लेकिन सुबह होने पर जब बबीता के दोस्तों की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता गायब है। वो टेंट में नहीं थी, हालांकि बबीता का बैग टेंट में ही रखा था। बबीता को गायब देखकर पहले तो उसके दोस्त घबरा गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दी। बबीता को आखिरी बार देखने वाले उसके दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि उस रात वो दोनों टेंट लगाने के बाद शराब पीने लगे थे, जिसके बाद बबीता कुछ देर के लिए टेंट से बाहर निकल गई थी। चूंकि वो शराब के नशे में थे इसलिए उनकी आंख लग गई और उन्हें बबीता का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो बबीता गायब मिली। बबीता सिर्फ एक चप्पल पहने हुए अपने मोबाइल फोन के साथ टेंट से बाहर निकली थी और गुम हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली है। 5 दिनों की तलाशी के बाद भी जब बबीता का कुछ पता नहीं चला तो 6th दिन जिला प्रशासन ने गोई के पास मौजूद एक झील की गहराई को नापने का फैसला किया और इसके लिए खास तौर पर गोताखोरों की टीम बुलाई गई। वैसे भी अगर खुदा न खास्ते बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार बनी होती तो फिर उसके कुछ न कुछ निशान अब तक की तलाशी में जरूर नजर आते। ऐसे में अब ये शक होने लगा है कि कहीं बबीता गलती से पानी में तो नहीं गिर गई। इसी के बाद लगभग 9 फीट गहरे इस झील को भी खंगाला गया, लेकिन बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। अब जब बबीता की तलाश शुरू हुई तो पहले ही कदम पर शासन प्रशासन और खासकर उत्तरकाशी के पर्यटन विभाग की घोर लापरवाही और पर्यटन के नाम पर चल रही धंधेबाजी का खुलासा हो गया। असल में ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हर पर्यटक के बारे में एक्सप्लोर उत्तरकाशी नाम की एक वेबसाइट में पहले से ही जानकारी दर्ज करवानी होती है ताकि पर्यटन विभाग के पास हर सैलानी की खबर मौजूद रहे। लेकिन जब बबीता की गुमशुदगी के बाद पर्यटन विभाग ने अपने तौर पर उसका ब्यौरा खंगालना शुरू किया तो देखा कि बबीता और उसके नाम से तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई एंट्री ही नहीं है और जो एंट्री हुई भी है वो फर्जी है। फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस पर्यटन विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फर्जीवाड़े के बाद एक लड़की गायब है और उसका कोई पता ठिकाना किसी के पास नहीं है। अब तक की तफ्तीश में सामने आई जानकारी के मुताबिक 29 मई की रात बबीता के मोबाइल फोन की लोकेशन रात करीब 12 बजे तक गोई में ही थी। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, जबकि बबीता के साथियों ने अगले दिन यानी 30 मई की रात करीब 7:30-8 बजे पुलिस को बबीता की गुमशुदगी की जानकारी दी। सवाल है कि पुलिस को इत्तला देने में इतनी देर क्यों हुई? गोई में जहां बबीता और उसके दोस्त टेंट में ठहरे हुए थे, क्या वहां बबीता और उसके दोस्तों के अलावा और भी ट्रैकर टेंट में रुके हुए थे? अगर हाँ तो वो कौन थे? क्या उनसे इस बारे में पूछताछ हुई? जिस तरह से पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन के मामले में घपले की बात सामने आई है उसे देखते हुए लगता है कि पुलिस सारे पर्यटकों को शायद ही ट्रेस कर पाए। ऐसे में बबीता की गुमशुदगी का रहस्य और उलझता दिख रहा है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ ओंकार बहुगुणा उत्तरकाशी आज तक।
5: और अब बात एक लाइव कत्ल की। ये एक ऐसा कत्ल था जिसे पहली नजर में लोग देख कर भी समझ नहीं पाए। एक बाइक और स्कूटी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, तभी अचानक स्कूटी सड़क पर पलट जाती है। स्कूटी सवार लहूलुहान अब सड़क पर गिरा था। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था, लेकिन इसके बाद जब मौत का असली सच सामने आया तो हर कोई हैरान था।
0: सबसे पहले CCTV कैमरे की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें एक भीड़ भरी सड़क की हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार पर है, लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं, लेकिन तभी बीच सड़क पर कुछ ऐसा होता है जिसके कुछ ही देर बाद पूरा शहर दहल जाता है। लेकिन क्या आपको इन तस्वीरों में कुछ भी अलग या खास नजर आया? अगर नहीं तो चलिए अब यही तस्वीरें आप हमारी नजर से देखिए। तस्वीरें 11 नवंबर 2025 की हैं। वक्त है सुबह के करीब 11:30 बजे। सड़क पर लोगों की आवाजाही के बीच एक शख्स दूर से स्कूटी पर सवार होकर चला रहा है, और जैसे ही वो कैमरे की फ्रेम में आता है, पीछे से बाइक पर आ रहा एक शख्स बहुत पास से उस स्कूटी सवार को कुछ कहता या करता हुआ दिखता है, और फिर लहरिया कट लगाते हुए वो बाइक सवार स्कूटी वाले से आगे निकल जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद बाइक से आगे निकलने वाले आदमी ने स्कूटी वाले को इशारे से कुछ बताने की कोशिश की। बाइक के आगे निकलते ही स्कूटी सवार थोड़ी देर के लिए बीच सड़क पर रुकता है और फिर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। वो चंद कदम आगे बढ़ते ही अपनी स्कूटी समेत लड़खड़ाते हुए मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ता है। आसपास के लोग मदद के लिए आते हैं। पहले तो लोगों को माजरा समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर जिस्म से रिश्ते खून और सड़क पर गिरे शख्स की हालत को देखकर ये साफ हो जाता है कि वो किसी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से यहाँ नहीं गिरा, बल्कि उसे गोली मारी गई। जी हाँ, गोली। यकीनन मामला अजीब है। बीच सड़क पर चलती बाइक से कोई चलती स्कूटी सवार को अपनी गोलियों का निशाना बना ले, ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो देखने को नहीं मिलता, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 11 नवंबर 2025 को कुछ वैसा ही हुआ। आनंद फानंद में सड़क पर गिरे शख्स को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर के अमीर कारोबारी और बीजेपी लीडर रमेश इनानी थे। जी हाँ, वो रमेश इनानी जिन्हें पूरा शहर उनके नाम से जानता था। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रमेश इनानी की हत्या क्यों हुई? क्यों किसी ने बीच सड़क पर पीछा करते हुए घात लगाकर उन पर गोलियां चलाई? आखिर उन्हें शूट करने वाला कातिल कौन था? चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही कातिल की तलाश शुरू कर दी। इत्तेफाक से पुलिस को इस संदिग्ध कातिल के कुछ और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे, जिसमें वो शूटआउट से पहले एक शराब के ठेके के पास बाइक लगाकर शराब खरीदता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस के हाथ उसे लेकर कुछ क्लू लग चुके थे। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और 7 से 8 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस ने रमेश इनानी को बीच सड़क पर गोली मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस शूटर का नाम था मनीष दुबे। मनीष चित्तौड़गढ़ से दूर बनारस का रहने वाला था। अब सवाल यह था कि आखिर मनीष की यूपी से दूर राजस्थान के कारोबारी से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जब पुलिस ने इसे लेकर सवाल जवाब किए तो उसने पुलिस को एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। मनीष ने कहा कि किसी मोड़ पर रमेश इनानी ने उसका अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने रमेश इनानी का कत्ल कर दिया। हालांकि पुलिस को उसकी इस कहानी पर यकीन नहीं था। उधर पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन मरने वाले कारोबारी के घर वाले लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि इस कत्ल में गिरफ्तार शूटर तो सिर्फ एक मोहरा भर है। उनका कहना था कि चूंकि रमेश इनानी का करीब 20 सालों से जमीन के एक बड़े हिस्से को लेकर रमताराम नाम के एक तथा कथित संत से विवाद चल रहा था, तो उन्हें इस बात का शक है कि इस वारदात में रमताराम का हाथ हो सकता है। रमताराम जो उन दिनों चित्तौड़गढ़ में रामद्वारा का प्रमुख था और रामस्नेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, मगर दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास रमताराम के खिलाफ तब कोई सबूत नहीं थे। हालांकि जब इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पुलिस को इस सिलसिले में कई डिजिटल सबूत मिले और कई नए चेहरों का पता चला। इन्हीं में एक चेहरा था भजनाराम का, जो उन दिनों रामद्वारा से जुड़ा हुआ था। असल में पुलिस को पता चला कि कत्ल से पहले इस भजनाराम से शूटर मनीष की बातचीत हो रही थी, लेकिन इस कहानी में अभी असली खुलासा होना बाकी था। पुलिस ने जब भजनाराम और शूटर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो जो पता चला वो शॉकिंग था। अब ये क्लियर हो गया कि कत्ल की ये सारी साजिश तथा कथित संत रमताराम ने ही रची थी। रमताराम यानी एक ऐसा शख्स जो दुनिया भर में घूम घूम कर भजन प्रवचन किया करता था, दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान की घुट्टी पिलाता था और जिसके चाहने वाले लाखों में थे। अब कहानी तो तकरीबन साफ हो चुकी थी, लेकिन जिस तथाकथित संत पर इस साजिश में शामिल होने का इल्जाम था, अब पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन पुलिस को तब जोर का झटका लगा जब पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर रमताराम थाने में हाजिर होने की जगह ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। एक वो दिन था और एक आज का दिन। रमताराम के बारे में पुलिस को करीब 6 महीने तक कुछ भी पता नहीं चला। कत्ल के आरोपी फर्जी संत को ढूंढते ढूंढते अब पुलिस हलकान हो चुकी थी। पहले उसके नाम पर 10,000 का इनाम रखा गया, फिर 25,000 का और फिर 50,000 का, लेकिन रमताराम का कोई पता नहीं चला। 6 महीने बाद कहानी ने करवट बदली और रमताराम के चित्तौड़गढ़ के ही एक मंदिर में छुपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद आखिरकार पुलिस उसे दबोचने में कामयाब हो गई। अब जानिए कि धर्म की व्यासपीठ पर बैठकर लोगों को सदाचार की सीख देने वाले इस फर्जी संत ने आखिर ये साजिश रची कैसे। असल में रामद्वारा नाम की संस्था और इनाणी परिवार के बीच करोड़ों की जमीन को लेकर चित्तौड़गढ़ में एक पुराना विवाद चला रहा था। इसी विवाद के सिलसिले में रमेश इनाणी पर पहले भी एक बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन तब रमेश इनाणी बच गए थे। लेकिन चूंकि तमाम कानूनी लड़ाई के बावजूद उस जमीन पर रमताराम कब्जा नहीं कर पा रहा था, तो आखिरकार रमताराम ने रमेश इनाणी के नाम की सुपारी ही दे डाली। फिलहाल पुलिस को इस केस में उन लोगों की तलाश है जिन्होंने 6 महीने तक छुपने में एक फर्जी संत की मदद की। पुलिस का मानना है कि कत्ल की साजिश में कुछ और भी बड़े और हाई प्रोफाइल लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें जल्द कानून की जद में लाया जाएगा। फिलहाल 6 महीने बाद ही सही एक अमीर कारोबारी के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मास्टरमाइंड संत गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन एक संत के कातिल बनने की इस कहानी ने लोगों को एक बार फिर से हैरान जरूर किया। ओम प्रकाश, चित्तौड़गढ़, आज तक।
5: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने कल मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन देने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे हैं कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। प्रेजेंटेड बाय

0: महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब बीजेपी को ये मांग नागवार गुजर रही है, तो शिंदे ने कहा है कि मैं और फडणवीस एक टीम की ही तरह काम कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं की भावना अपनी जगह है, लेकिन महायुति सरकार कुर्सी के लिए नहीं विकास के एजेंडे को लेकर राजनीति करती रहेगी।
1: क्या एक बार फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सूबे के सीएम बनेंगे? क्या फडणवीस एक बार फिर एकनाथ शिंदे के डिप्टी बनने को तैयार होंगे? क्या ढाई ढाई साल वाला सीएम फॉर्मूला बीजेपी मान लेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल शिवसेना नेता और एमएलसी बच्चू कडू ने खुलकर इच्छा जताई है कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने।
2: सर्वोच्च पदावर गेले पाहिजे, महाराष्ट्राचा आवाज देशभरात बुलंद झाला पाहिजे, त्यांच्याकडे त्या अपेक्षा सगळेजण करून आहे।
3: पंतप्रधानपदी जावंस तुम्हाला वाटते?
2: मला वाटतं मी नरेंद्रजी देवेंद्रजीचं भांडण लावू इच्छित नाही, परंतु त्यांनी सर्वोच्च पदावर जाणं गरजेचं आहे। शिवसैनिकांमध्ये ह्या भावना असल्याच पाहिजे आणि त्याच्यासाठी कामाला पण लागलो पाहिजे। शिवसैनिकांच्या मनात भावना काय, राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री व्हावा किंवा काँग्रेसचा व्हावा असं थोडं असणार आहे। शिवसेनेच्या प्रत्येक शिवसैनिकांना शिंदे साहेबच मुख्यमंत्री व्हावं असं वाटणार आणि ते साहजिक आहे। त्याच्यात काही मला नाही वाटत काही कोणाला अडचण निर्माण होईल।
1: बच्चू कडू की मांग को शिवसेना की ओर से एक रणनीतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। कडू के बाद शिवसेना के फायर ब्रांड विधायक अब्दुल सत्तार ने भी उनकी मांग का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि शिवसेना के सभी विधायक चाहते हैं कि शिंदे फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले सत्तार बीजेपी पर आरोप लगा चुके हैं कि वो शिवसेना की राजनीतिक हत्या करना चाहती है।
4: एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में एक विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद थंपिंग मेजोरिटी चुन के आई, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, इसके बाद हमारे मुख्यमंत्री बनना ये हमारे आमदारों की सबकी इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन हमारी इच्छाओं से वो पूरा नहीं होता। उसके लिए वरिष्ठ नेताओं से बातचीत, वरिष्ठ नेताओं के अंदर जो भी दोनों में गुप्तगु हुए होंगे, एकनाथ शिंदे साहब में और अमित शाह साहब में या देवेंद्र जी में, वो दोनों उनको ही मालूम है। मुझे तो लगता नहीं कि वो उस चर्चा में हम थे या हमको वो चर्चा भी मालूम नहीं है।
1: इन बयानों के बाद एकनाथ शिंदे खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने बहुत नाप तोल कर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिंदे बोले, भले ही शिवसेना कार्यकर्ताओं और विधायकों की अपनी भावनाएं हों, लेकिन महायुति सरकार अभी मजबूत टीम भावना के साथ काम कर रही है।
5: आता ही वेळ आहे का? आता काही जागा रिक्त आहे का? जागा खाली आहे का? है का? अरे मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस देवेंद्रजी आणि आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो। आता देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहेत, आम्ही टीम म्हणून काम करतोय। आज सगळ्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही जातोय, आमचं चांगलं बॉन्डिंग आहे आणि हे बॉन्डिंग कायम आहे, कायम राहणार आहे। कार्यकर्त्यांची भावना असते, बोलून जातात, परंतु तुम्हाला एवढा दुसरा काही विषय राहिलाच नाही का पत्रकारांना? बाकी पण विषय आहेत ना, आणि त्यामुळे मी खुर्चीसाठी, आमची लढाई खुर्चीची नाही, आमचा अजेंडा खुर्चीचा नाही, आमचा अजेंडा महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा आहे, महाराष्ट्राच्या जनतेचं कल्याण करण्याचा आमचा अजेंडा आहे। त्यामुळे आमच्यामध्ये चांगली बॉन्डिंग आहे आणि जिथं कुठं आमच्या महायुतीतल्या लोकांना, आमदारांना काही अडचणी असतील, काही त्रास असेल, तर मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून त्यांचा त्रास दूर करू, त्यांच्या अडचणी आम्ही सोडू।
1: इस बीच खबर है कि बीजेपी शिवसेना नेता बच्चू कडू की टिप्पणियों से नाराज है। हालांकि बीजेपी नेता अभी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
6: मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र हर क्षेत्र में देश में नंबर वन है। जिस तरीके से महायुति की सरकार के सामने विरोधी है ही नहीं तो उनकी खबरें ही नहीं है। सरकार में शामिल दलों की ही खबरें चल रही है, चलाई जा रही है। खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कई बार अपने साथियों से कहा है कि इस तरीके की खबरें जो है वो नहीं चलनी चाहिए, पर शिवसेना शिंदे गुट के नए नए एमएलए बने बच्चू कडू और जिनको मिनिस्टर बनना है ऐसे अब्दुल सत्तार की तरफ से इस तरीके के बयान आना

0: ये अपने नेताओं की तारीफों में कसीदे पढ़ने का ही एक तरीके का काम है। अगर ये करके उनको कुछ मिलता है तो वो करते रहे।
1: लेकिन शिंदे ने बहुत खूबसूरती से शिवसेना नेताओं की सीएम पद की मांग का खंडन भी नहीं किया और न ही ये कहा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। इससे पहले जब शिवसेना में बगावत करने के बाद शिंदे ने अलग गुट बनाया था तो वो बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने थे और सीएम रह चुके फडणवीस ने आलाकमान के समझाने पर डिप्टी सीएम का पद लेकर सियासी परिपक्वता का परिचय दिया था।
2: मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा।
1: लेकिन जब 2024 में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी फडणवीस की अगुवाई में लार्जेस्ट पार्टी बनी और एक बार फिर फडणवीस के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजा और जो शिंदे मुख्यमंत्री रह चुके थे उसके बाद उन्हें फिर फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना पड़ा था। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा।
3: अब देखना यह होगा कि क्या ये बयान नेताओं के सिर्फ निजी भावनाएं हैं या तो फिर 2029 के पहले पर्दे के पीछे की कोई बड़ी रणनीति। हालांकि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे टीम भावना कहकर इन विवादों को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन विधायकों के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब सहयोगी दल बीजेपी की अंदरूनी जो नाराजगी उभर कर सामने आ रही है, क्या महायुति इस खींचतान से निपट पाएगी, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
4: भीषण गर्मी में मुंबईकर को दोहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुंबई टैंकर एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार के सेंट्रल ग्राउंड वाटर ऑफिसर के तहत गाइडलाइंस लागू करने और नए लाइसेंस लेने के निर्देश देने के फैसले के बाद अपने पानी के टैंकर्स को ऑफ रोड कर दिया है, जिससे कई सोसाइटीज में पानी के संकट से लोग परेशान हैं।
1: पानी की किल्लत से जूझते ये लोग मुंबई के आरे कॉलोनी के अंदर रॉयल पाल्म्स इलाके की सोसाइटी पिकाडिली वन के रहने वाले हैं। इस बिल्डिंग में पानी के 10 टैंकर की जरूरत रोज पड़ती थी, लेकिन मुंबई वाटर टैंकर एसोसिएशन के बागी तेवरों के बाद यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं।
5: सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस को बीएमसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, जो कि ग्राउंड वाटर को जिस तरह से निकाला जाता है उसको लेकर, और इसके विरोध में जो टैंकर एसोसिएशन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 2 दिन से स्ट्राइक पे है, आज दूसरा दिन है। लेकिन मुंबई में बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो ऑल ईयर राउंड इन टैंकर्स पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बीएमसी इनको पानी का सप्लाई नहीं करती। इस वक्त हम हैं रॉयल पाम्स इलाके में, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर पानी का सप्लाई होता है, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर कहीं पे भी बीएमसी का पानी का सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं एक एक बूंद के लिए अभी फिलहाल मोहताज चल रहे हैं। आइए लोगों से ही बात करते हैं। मैम, बिल्डिंग्स तो काफी सारी पुरानी हैं, दशकों पुरानी है जहाँ तक मुझे याद है, अभी तक बीएमसी का पानी यहाँ नहीं आया।
6: नहीं, ये हमारी बिल्डिंग ही 2006 में है। मेरी बिल्डिंग में ओसी दिया है बीएमसी ने, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बीएमसी के डॉक्यूमेंट्स है। जब ओसी कब मिलता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, जब बिल्डिंग में पानी होता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बीएमसी ने हमें दिए, इसीलिए हमने ये
5: अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस वो सब सब
6: पूरा पूरा सारे डॉक्यूमेंट्स है। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे बिल्डिंग का 0 है, ओसी है, सीसी है,
5: लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं है। तो अभी अभी कैसे आप लोग इतने दिनों तक मैनेज करें?
6: कुछ नहीं, हमारे पास पानी है ही नहीं, मैनेज क्या करें। अभी जो
5: टैंकर आता था, कितने आते थे टैंकर?
6: हमें दिन के 10 टैंकर लगते हैं।
5: दिन के 10 टैंकर पूरी बिल्डिंग में?
6: पूरे बिल्डिंग में, और एक टैंकर का रेट है 1400। ओके, और मेरा मंथली बिल है 3.5 लाख, ईयरली बिल है 22 लाख। तो आप सोचे हमें मेंटेनेंस कितना देना पड़ता है, जबकि हम लोग ने ये फ्लैट परचेज किए हैं और बीएमसी ने हमारे साथ चीटिंग किया है।
1: लोग कह रहे हैं कि पानी की किल्लत के चलते ना वो नहा पा रहे हैं और ना ही घर में खाना बन पा रहा है, और तो और पानी की कैन भी मार्केट में मुश्किल से मिल रही है।
7: 2 दिन से, सच कहूं, आप मेरे शक्ल देख सकते हो, मैंने नया नहीं हूं। पीने के लिए पानी नहीं है, खाना पकाने के लिए पानी नहीं है। मैं जाके बाहर से बिस्लेरी लेके आ रहा था, उनका स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा। हम लोग ये पिछले 3 दिन से तो मैनेज कर रहे हैं, पर आप सोचो 20 साल से हम लोग ये मैनेज कर रहे हैं, कितनी बार कॉरपोरेटर, कितनी बार मंत्रियों को, कितनी बार बीएमसी के कमिश्नर को हम लोगों ने लेटर लिखे, उनसे करस्पोंडेंस किए, उसके बावजूद भी हमें सिर्फ सांत्वना दी जाती है कि पानी का आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। आज 20 साल हो गए, आज तक सॉल्व नहीं हुआ और मुझे लगता नहीं होगा, पर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, मैं उनसे आशा करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके ये लोग सॉल्व करें, जैसे हम लोग के प्रॉब्लम जितना जल्दी खत्म हो सके।
5: मैं कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं?
8: कुछ नहीं, हम लोग बाहर से पानी मंगा रहे हैं।
5: कैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितना पानी ला पा रहे हैं?
8: एक बिस्लेरी का 20 लीटर का जो बॉटल्स होता है वो लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी वो भी मिलना बंद हो गया है क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं, तो आपको कहाँ से दे।
1: लोग पूछ रहे हैं कि अगर सरकार उन्हें पानी भी मुहैया नहीं करा सकती तो अब किससे गुहार लगाएं?
5: आपके घर में प्रेग्नेंट महिला भी है, जैसा बताया था आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो कैसे मैनेज कर पा रही है स्थिति?
9: मैनेज करना बहुत टफ है अभी, जैसे बिस्लरी का बॉटल ले रहे थे बट अभी वो भी बंद हो गया क्योंकि प्रोवाइडर ने बोला अभी ये भी नहीं मिल रहा है, अब कब तक मिलेगा वो भी कुछ नहीं बता पा रहे। और पानी ऐसा चीज है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लग्जरी नहीं है, एसेंशियल है।
5: फिर भी कैसे, क्या क्या?
9: अभी जैसे मैंने बाहर से एक बॉटल 20 लीटर भर के लाया कहीं से, रेस्टोरेंट से, तो अभी देख रहे हैं बस, अब नेक्स्ट क्या होगा पता नहीं है क्योंकि उन लोग भी ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे।
1: पानी की कमी से सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है।
10: और टैंकर का भी ऐसा है कि इतना भाव उन्होंने बढ़ा दिया है बोल के कि हमको इनको कमीशन देना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, डीजल बढ़ गया, तो हमने मैनेज किया है। ठीक है, हमारे एक एक सोसाइटी से करीब करीब मेरे को लगता है 3-4.5 लाख रुपए पर मंथ के जाते हैं। जिस प्रकार संदीप ने बताया 50-60 लाख रुपया हर पर मंथ का जाता है प्राइवेट लोगों को।
1: दूसरी तरफ मुंबई वाटर टैंकर्स एसोसिएशन खुद को ही पीड़ित बता रही है।
11: और ये जो कुएं हैं, वेल है, सरफेस वेल है, रिंग वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, बोरवेल्स है, ये हमारे नहीं है। वी आर ओनली द मोडम, वी आर ओनली द ट्रांसपोर्टर्स। ये किसी और की प्रॉपर्टी में है, किसी हाउसिंग सोसाइटीज में, किसी इंडस्ट्री में, वो हम रेंटल बेसिस पे रहते लेते हैं। उनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पीरियड पे हम लोग वहाँ से वाटर पुल करते हैं।
5: कुएं का जो कुएं का मालिक है उसको आप पैसे देते हैं एक रेंटल एग्रीमेंट के तहत, और उससे वहाँ उसके कुएं से पानी निकालते हैं। तो समस्या कहाँ?
11: मैम समस्या ये आ गई यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का ये जीआर है, दिल्ली जल शक्ति विभाग का, इसमें मेंशन किया गया है कि आपको सबसे पहले होना चाहिए प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड विद द साइज ऑफ 200 स्क्वायर मीटर और मोर देन विच एब्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड। पहली बात तो
5: आपके पास तो जमीन ही नहीं है।
11: मैं वही बोल रहा हूँ ना मैम कि हम तो ट्रांसपोर्टर है।
1: हैरानी की बात है कि 25 साल से यहाँ के निवासी पानी के टैंकरों पर निर्भर है। दावा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और एनओसी मिलने और सभी प्रॉपर्टी टैक्स भरने के बावजूद बीएमसी यहाँ पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन नहीं बिछा रही है।
5: ये सारे वाटर टैंकर्स जो इस वक्त खाली यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये कभी किसी समय में रोजमर्रा शहर के अलग अलग इलाकों में पानी सप्लाई किया करते थे, चाहे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो या फिर रेजिडेंशियल। इन सब जगहों पर बीएमसी जहां नहीं पहुंच पाती, एडिक्वेट पानी नहीं सप्लाई कर पाती, वहां पर ये सारे वाटर टैंकर्स आते थे और वहां पर पानी का सप्लाई करते थे। लेकिन जब से ये स्ट्राइक शुरू हुई है, ये सारे के सारे वाटर टैंकर्स इसी तरीके से खड़े हैं, ना ये बिजनेस कर पा रहे हैं, ना लोगों को पानी पहुंचा पा रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
4: मुंबई के वर्ली बीडीडी चौल में नए बने 40 मंजिला टावर्स में शिफ्ट हुए 556 परिवार भी पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। पानी टैंकर एसोसिएशन की बेरुखी से कई लोगों को दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर नहाने के लिए जाना पड़ रहा है।
12: इस वक्त हम मुंबई के वर्ली बीडीडी चौल्स में हैं। इस चौल का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं डेवलप किया गया था म्हाड़े की तरफ से, टाटा हाउसिंग की तरफ से, और ये आप कह सकते हैं कि बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो बनाई गई थी, लेकिन इन बिल्डिंग्स में पानी का प्रश्न जो है वो अब सामने आ रहा है। कई महीनों से पानी की सप्लाई ठीक तरह से नहीं है। मुंबई में चल रहे वाटर टैंकर्स की जो आप कह सकते हैं स्ट्राइक है, उस वजह से यहाँ पर रहने वाले 550 घरों में जो रेसिडेंट्स हैं उनको और भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कई समस्याएं हैं जिसमें यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जो पाइपलाइन पानी के लिए डाली गई है वो पाइपलाइन ठीक तरह से नहीं डाली गई, इस वजह से प्रॉब्लम है। 20 वाटर टैंकर्स यहाँ पर रोज लगते हैं जो अभी बंद है, उनका भी प्रेशर जो 30 माले से ऊपर की इमारत है उधर पे नहीं पहुंच पाता है। मैडम आप लोग पहले चौल में रहा करते थे कई सालों तक, 3 माले की वो चौल थी, तब पानी का कई आपको प्रॉब्लम हुआ, अब यहाँ पर आए हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है?
13: जॉइंट फैमिली है, छोटा बेबी है मेरा 4 मंथ्स का जिसको मैं अभी सुला के आई हूँ, तो उसका अभी हम लोग पूरे वक्त डायपर लगा के नहीं रख सकते हैं, इतनी गर्मी में रैश आ जाता है, तो हम लोग को सोल्यूशन तो मिलना चाहिए ना कि हम लोग करें क्या।
12: घर के बजट पे प्रेशर पड़ता होगा पानी ना।
14: हम लोग सब बीडीडी चौल वाले लोग है, इतना हम लोग डेली बिस्लरी नहीं खरीद सकते, तो भी हम लोग यहाँ आने के बाद ये जो टैंकर का पानी वो पी रहे, सबके गले में प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी हम लोग एडजस्ट करके चल रहे हैं कि चलो ठीक है 40 माले का टावर है, कहीं ना कहीं ये टैंकर का पानी हमको यूज करना ही है। मगर एकदम अचानक बीएमसी ने बोला 10% कटौती हुए, यहाँ तो पूरा 80-90 कटौती हुई है, लोगों के घर में पानी नहीं है, तो ना माड़ा उतर के आ रहा है ना टाटा उतर के आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ सामना तो करो, या तो हमको सिंटेक्स लगा के देते जो हम लोग।
4: वहीं मुंबई के मृडाल ताई गोरे फ्लाईओवर को लेकर विपक्ष बीएमसी पर निशाना साध रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता और बीएमसी के पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने 248 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर निर्माण में भ्रष्टाचार और खराब क्वालिटी के काम के आरोप लगाए हैं।
12: आपने सर्वेक्षण किया, सोशल मीडिया पर जब से ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है कहा जा रहा है कि क्वालिटी खराब है, आपके क्या ध्यान में आया?
15: देखो हमारे स्टैंडिंग के सदस्य है जो हमारे सीनियर है यशोधर फंसे, उन्होंने 3 महीने के पहले इनको कहा था कि एक विजिट दे दो, उन्होंने किसी ने
16: विजिट के लिए
15: विजिट करने के बाद बेरिंग गया है, ब्रिज का जो बेरिंग रहता जो वेट का ये रहता, आपने देखा एक खाली भरा हुआ ट्रक नहीं था तो भी इतना जम्बलिंग हुआ, मीन्स एक भरा हुआ ट्रक आता है तो नीचे जाने की ज्यादा शक्यता है।
12: आने वाले समय में बारिश होने वाली है तो आप लगता है सेफ है ये रोड मुंबई करो के लिए?
15: नहीं अभी देखो मुंबई का लोगों ने बच के काम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिज से कोई जाते है तो बहुत पानी का फ्लो ज्यादा रहेगा और मुंबई के लोगों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन हम पहले पहले पहले बारिश में हम देखेंगे उसके बाद वापस आएंगे।
12: ये पूरे आप कह सकते हैं मुंबई महानगर पालिका जिस तरह से काम हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा करके ये ब्रिज बनाए जाते हैं,
15: 170 करोड़ ये 2018 में था, 45 करोड़ 2018 से इतना बढ़ गया और क्यों बढ़ा? ठीक है बढ़ा है ना, मुंबई के लोगों को बता दो किस तरह ये बढ़ा है, खाली बात करने का हम ये करने नहीं देंगे।
4: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स की संख्या को कम कर दिया है और इस फैसले पर लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे पुणे के संवाददाता ओंकार बावले की एक खास रिपोर्ट देखिए।
17: उज्ज्वला योजना के तहत जो पहले साल के जितने सिलेंडर मिल रहे थे वो संख्या अब घट चुकी है, उसमें सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे, यानी कि इससे पहले कि सब्सिडी की मांग हो या फिर सस्ते में सिलेंडर मिलना हो वो अब केंद्र सरकार की तरफ से कम होता हुआ नजर आएगा। आप बताइए कितने घर में सिलेंडर
18: है ना?
17: तो पहले कितने मिलते थे?
18: पहले साल में जो रहता है वो उज्ज्वला का तो एक भी नहीं मिलता हमको, पहले से ही नहीं मिलता, वो सब्सिडी का जो पहले खाते में पैसे जाते थे क्या 200 रुपए 150 रुपए, अभी वो भी 2-4 साल हो गए बंद हो गए,
17: सब्सिडी नहीं मिलती,
18: सब्सिडी भी नहीं मिल रही, खाली जो पावती है वो आता है, वो पावती का तो 944 रुपए 50 पैसा है, वो ऐसा जो है उतना देने का बस, वो
17: 950 में आपको अभी सिलेंडर मिला?
18: हाँ 950 में।
17: मुझे ये बताइए कि सरकार की तरफ से 7 से 9 सिलेंडर ऐसे थे जिन पे आपको सब्सिडाइज मिल रहे थे ऐसा था, तो उसमें से अब संख्या घटा के 4 कर दी गई है?
18: हाँ वो 4 कर दी, लेकिन हमको वो 4 भी नहीं मिलेंगी, नहीं अभी तक मिला ही नहीं, इसके बाद भी मिलेगा नहीं, जो है वो देना ही पड़ेगा ना, आपको प्रूफ चाहिए तो आप भी, मैंने बिल पेड किया है उसका, वो व्हाट्सएप पे जितना पैसा पाया वो दिखाऊ क्या आपको?
17: तो कभी आज लिया सिलेंडर दिखा दो आप मुझे, आप सिलेंडर दिखा दो, ये आज ये देखो यही इनकी सिलेंडर है, 14.5 किलो का जो सिलेंडर है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ये कहा गया था, ये सिलेंडर अभी नया वाला लेके आए हैं। ओके हाँ तो आपने 950 रुपए दिए इसके लिए, 950 में इन्हें सिलेंडर मिला है 14 किलो का। अहम बात यह है कि पहले सब्सिडी मिलती थी, फिर वो फिर क्या केवाईसी के इशू हो गए?
18: नहीं केवाईसी का इशू था, वो केवाईसी भी किया, ये देखो
16: अभी ये मिला, मिलने के बाद ऐसा मैसेज आता है।
17: और सब्सिडी?
19: सब्सिडी नहीं है, कैंसिल हुई है ना, सब्सिडी नहीं देते
17: अभी। नहीं
19: नहीं, नहीं।
17: लेकिन सस्ता मिल रहा है कि सिलेंडर मतलब?
19: नहीं नहीं, 950 मुझे क्या सब सस्ता है क्या? 1000 रुपए हो ही गए ना, 50 रुपए डालेंगे तो।
17: सब्सिडी पहले मिलती थी, बाद में मिलना बंद हो चुका। लेकिन ये बात सही है कि सरकार ने फिर बोल दिया कि सब्सिडाइज सिलेंडर की जो संख्या है वो 2023 के बाद बढ़ा दी गई थी, 2024 में भी उसे अपग्रेड किया गया था। लेकिन अब जब इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, सरकार का ये सीधे तौर पर रुख दिख रहा है कि वो संख्या घटा के 4 तक लेके आएंगे। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले आज तक पुणे।
4: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: लालबाग का राजा मुंबई का सबसे ज्यादा लोकप्रिय गणेश मंडल है। आज से लालबाग के राजा की मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया है। आज सुबह उनके चरण बनाकर पूजा अर्चना शुरू की गई है।
3: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 14 सितंबर के दिन गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, लालबाग का राजा का ये वही दरबार है जहां पर बप्पा विराजमान होते हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये न केवल एक पत्थर है बल्कि हर किसी की ये उम्मीद है, आस्था है, श्रद्धा है। लोग यहाँ पर आते हैं, हार चढ़ाते हैं। वैसे तो लालबाग के राजा का दर्शन करने गणेश उत्सव के समय तमाम लोग आते ही हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, मुंबई और महाराष्ट्र से भी लोग जुटते हैं, लाखों की संख्या में रोजाना दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लालबाग के राजा का कहते हैं कि मिन्नतों के राजा हैं। लेकिन गणेश उत्सव जब नहीं भी होता है तो भी बप्पा का दर्शन करने के लिए इस जगह पर लोग पहुंच जाते हैं। अचानक से आज गणेश उत्सव और लालबाग के राजा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह ही लालबाग के राजा का चरण बनाया गया है और उनके चरण की पूजा की गई है। ये वो मंदिर है जिसके भीतर लालबाग के राजा का चरण रखा गया है, यानी कि अब मूर्ति बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 2.5 महीने बचे हुए हैं और इतना समय लगता ही है लालबाग के राजा की मूर्ति को बनाने के लिए। गौरतलब है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं ये, कहते हैं कि जो भी कुछ इनसे मांगा जाए वो पूरी तरह से उन्हें मिल जाता है। देखिए, ये वो जगह है जो मार्केट है भी, ये बाजार है, लेकिन जब लालबाग के राजा यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, विराजमान किए जाएंगे, तो इस पूरी जगह को बंद कर दिया जाएगा, पूरी तरह से पैक कर दिया जाएगा और ये ही वो मुख्य द्वार है जहाँ से लोग सीधे लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, अलग अलग कतारें करते हैं और ये जो इलाका है ये पूरी तरह से भक्तिमय हो जाता है। न केवल एक लालबाग के राजा बल्कि आसपास बहुत सारे पंडाल हैं जिसमें गणेश गली है, चिंचपोकली के राजा है, तमाम वो गणेश उत्सव पूरी तरह से ये धर्म उत्सव में बदल जाता है, धर्म स्थल में बदल जाता है। कहानी साफ तौर से आज की बस इतनी सी है कि लालबाग के राजा के जो पैर हैं, चरण हैं, उनकी पूजा हो गई, यानी अब मूर्ति बनने का काम शुरू हो चुका है।
2: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी का कोहली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ।

शो को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह, 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, बीजेपी ने की है शिकायत। बीजेपी ने शिकायत में आरोप लगाया था नामांकन पत्र में नटराजन ने छुपाई थी तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित केस की जानकारी। बीजेपी की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर ने लिया फैसला, अब एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे चुनाव आयोग, सिर्फ 2 नेताओं को मिलने की परमिशन पर हंगामा हुआ, चुनाव आयोग ने बुधवार को फिर बुलाया। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर, मनाया गया जोरदार जश्न। रांची में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के नामांकन पर भी गहराया है संकट, कांग्रेस ने लगाए हैं गंभीर आरोप। कांग्रेस एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी के नाम पर जताई गई आपत्ति का नामांकन पत्र में अलग अलग लिखा है नाम। कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल के नामांकन पत्र के कुछ कॉलमों पर जताई गई आपत्ति, कहा अपराध वाला कॉलम खाली छोड़ा गया। परिमल नथवानी के नामांकन पत्र को फिलहाल किया गया है होल्ड, अंतिम फैसला करेगा चुनाव आयोग। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी के घर जांच के लिए पहुंची सीआईडी के बाहर जोरदार हंगामा। सीआईडी ने पूछताछ के लिए अभिषेक को दिया था नोटिस, अभिषेक ने सीआईडी से मांगा था वक्त। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सीआईडी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, बोले अभिषेक की गैर मौजूदगी में जांच गैर बाजिफ। बीजेपी विधायक सजल घोष का बयान, चोरों के घर गई सीआईडी, टीएमसी और दीदी अब फिनिश। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़े कल्याण बनर्जी। टीएमसी नेता जहांगीर को 5 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की हिरासत। जहांगीर खान को रविवार को नेपाल बॉर्डर से किया गया था गिरफ्तार, हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, अवैध वसूली समेत कई गंभीर मामले हैं आरोपी। कोर्ट जाते समय टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर फेंके गए थे अंडे और टमाटर, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता के घर के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, 10 जनपद पर करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ ने फिर से उठाया लव जिहाद का मुद्दा, बोले डेमोग्राफी बदलने की बड़ी साजिश। योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद रोकने के लिए रामायण का भी जिक्र किया, कहा भगवान राम से प्रेरणा लेने की जरूरत है। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बोले योगी प्यार नहीं नफरत फैला रहे। लखनऊ की पीजीआई में आया लव जिहाद का मामला, पीड़िता के लापता होने के बाद मामला दर्ज। पीड़िता के परिवार ने पीजीआई के डॉक्टर्स पर लगाया धर्मांतरण की साजिश का आरोप, बोले सीरिया भेजने की मिल रही थी धमकी। नीट को लेकर सरकार की बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा हुए शामिल। नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर एनटीए के साथ समीक्षा बैठक, छात्रों को शिक्षा मंत्री ने दिया है गड़बड़ी न होने पर भरोसा। फायरिंग मामले में खान सर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोचिंग को लेकर बिहार सरकार की सख्ती, प्रशासन को देनी होगी छात्रों की पूरी जानकारी। सीएम ने शिक्षा विभाग को दिया निर्देश, स्कूल कॉलेज के समय पर नहीं चलाई जाएंगी कोचिंग। मोदी के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली के विशेष कार्यक्रम, एनडीए के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। मिशन पंजाब के लिए बीजेपी ने कसी कमर, राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला। पंजाब में अमित शाह ने संभाली है तैयारियों की कमान, अकाली दल के साथ बीजेपी नहीं करेगी गठबंधन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत, जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए। जेपी नड्डा ने जारी की विशेष डाक टिकट योजना की गिनाई उपलब्धियां। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम हेमंत सोरेन को झटका, पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की है याचिका। राजूपाल हत्याकांड के दोषी आबिद को राहत, हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, 29 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, 30,000 सीसीटीवी से कड़ी निगरानी में परीक्षा। नकलविहीन परीक्षा पर यूपी पुलिस भर्ती में बायोमेट्रिक सत्यापन का कंट्रोल रूम में रियल टाइम मॉनिटरिंग जारी। समाजवादी पार्टी ने रिलीज किया है सॉन्ग, गर्मी की छुट्टी के लिए बीजेपी राज्य में बिजली कटौती को लेकर साधा गया निशाना। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी का दबदबा, कांग्रेस को यूपी में सीमित सीटें देने की रणनीति पर मंथन। अखिलेश यादव ने दिखाई सकती, यूपी चुनाव में कांग्रेस को 80 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है समाजवादी पार्टी। यूपी चुनाव में 2027 को लेकर आरएलडी की रणनीति तेज हुई, गठबंधन में बड़े बदलाव के साथ नई सीटों पर नजर, बीजेपी गठबंधन में मजबूत हिस्सेदारी के लिए पार्टी ने शुरू किया मंथन। मुरादाबाद रैली के बाद एक्शन मोड में आरएलडी, जयंत चौधरी ने मांगी बूथ स्तर की ग्राउंड रिपोर्ट, यूपी चुनाव में 25-30 सीटों की दावेदारी की तैयारी। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर आरएलडी का बड़ा बयान, अनुपम मिश्रा बोले नई सीटों पर भी दाव लगाएगी पार्टी। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का
ब्रेक थ्रू, सुरंग तैयार होने के बाद घंटों की जगह मिनट्स में तय हो सकेगी कश्मीर और लद्दाख की दूरी। जोजिला पास में टनल प्रोजेक्ट का बड़ा मील का पत्थर, नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया निरीक्षण, ब्रेक थ्रू समारोह। समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनी है जोजिला सुरंग। 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के ब्रेक थ्रू का काम पूरा हुआ। कश्मीर और लद्दाख के बीच होगी बेहतर कनेक्टिविटी, 3 घंटे का सफर घटकर हो जाएगा 20 मिनट का। बर्फबारी की वजह से होने वाली आवाजाही की दिक्कत हो जाएगी खत्म। सुरंग बनने से पर्यटकों के साथ साथ व्यापारियों को भी राहत। केजीएमयू हार्ट स्टेंट घोटाले के मामले में जांच तेज हुई, डॉक्टर्स और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हुई। 1 साल के हार्ट इलाज रिकॉर्ड तलब, मरीजों के फीडबैक को बनाया जाएगा सबूत। केजीएमयू हार्ट स्टैंड घोटाले के मामले में अनियमितताएं और सख्ती, थर्ड पार्टी कर्मचारियों पर कार्रवाई, संबंधित कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग की तैयारी। आयुष्मान मित्र हटाए गए, हार्ट स्टैंड के मामले की निगरानी अब केजीएमयू के नियमित कर्मचारी करेंगे। स्टैंड घोटाले के बाद दवा खरीद पर भी नजर है, कई विभागों के खर्च 45 लाख से घटकर 10 लाख रुपए तक पहुंचे। आज तक के असर से बदली तस्वीर, रिंद नदी पर 27 करोड़ का पक्का पुल निर्माण शुरू हुआ, 70,000 ग्रामीणों में खुशी। यूपी के बागपत में गोलीकांड, हाईवे पर अंधाधुंध चली थी गोलियां, व्यापारी बाप बेटे की मौके पर मौत, हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी भी घायल। मेरठ में गृहकलेश चलते मां ने 7 महीने के मासूम की गला दबाकर हत्या कर डाली, मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में मां के ब्रह्मभोज के पैसे को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी और हत्या कर डाली, आरोपी फरार। वृंदावन में मां के बिहारी मंदिर के गेट नंबर 5 के पास गली में गिर गया था मकान का छज्जा, 5 लोग इसमें घायल हुए। नोएडा में चलती हुई कार बनी आग का गोला, गनीमत एरिया के चालक समय रहते बाहर निकल आया जिससे उसकी जान बच गई। मेरठ में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बंगाल में नदिया में पहली क्लास की छात्रा की हत्या से सनसनीखेज खुलासा, क्लास 9वीं के 2 छात्राओं ने वारदात को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर में सीएम से सम्मानित किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, दुकान पर बैठे राजू चौधरी को सिर में मारी गई थी गोली, 3 बदमाशों की तलाश जारी। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को रौंदते हुए 2 कारों को भी जबरदस्त टक्कर मारी, कई लोग इसमें घायल हुए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर काल बनकर दौड़ा ट्रेलर, भागकर भी नहीं बचा सके जान, सीसीटीवी में कैद हुआ दिल को दहलाने वाला मंजर। सूरत के रानी तालाब इलाके में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी, बच्चों सहित 10 से ज्यादा लोगों की बची जान। पटना के बेहटा में पेड़ से बाइक टकराने के बाद एक शराब कारोबारी की मौत हुई, दूसरा घायल हुआ, पुलिस के पीछा करने के दौरान हादसा। बिजनौर में 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, अज्ञात वाहन की टक्कर में प्लाईबोर्ड कारोबारी की मौत हुई। कानपुर देहात में फर्जी डिग्री बनाने का अड्डा बेनकाब हुआ, होलोग्राम से लेकर प्रिंटिंग मशीन तक जब्त की गई, 13 साल से चल रहा था फर्जी डिग्री फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। टेरी गढ़वाल के देवल गांव में हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए समर कैंप का आयोजन किया, सेल्फ डिफेंस के साथ मुश्किल हालातों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन की पहल का असर, महिलाओं की सुरक्षा हुई चाक चौबंद, फोन कॉल के बुलावे पर मदद करने पहुंच जाती है पुलिस। बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम में उमड़ेगा आस्था का महासागर, 15 जून को स्थापना दिवस तक पहुंच सकते हैं 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। उत्तराखंड में पूरे उत्साह के साथ जारी है चारधाम की यात्रा, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़कर हुई है 32 लाख के पार। चमोली में सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में आज 4,020 यात्री पहुंचे, इस साल अब तक 69,860 श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारे में टिक चुके हैं मत्था। पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज हुई, 3 जुलाई से शुरू हो रही है पवित्र यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का किया दौरा, इंतजामों का जायजा लिया गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी कसी है कमर, अधिकारियों ने चंदरकोट स्थित यात्री निवास और लंगर स्थल का दौरा किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा को लेकर सुरक्षा पुख्ता की गई, प्रशासन ने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 28 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, बड़ी संख्या में यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं श्रद्धालु। गोव के बमोरिया में 42वें ईपीसी इंडिया वेस्टर्न रीजन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया, सीएम सावंत इसमें शामिल हुए। पटना में भारत की पुरुष 18 हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावन कुमार का भव्य स्वागत हुआ, मंत्री श्रेयसी ने दिया उन्हें पुरस्कार। देहरादून में जौनसार बाबर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं खेल प्रतियोगिता का आगाज, सीएम धामी ने शिरकत की। ओमान तट के पास टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद ओमान एयरफोर्स ने 24 भारतीय क्रू सदस्यों को रेस्क्यू किया, भारत ने धन्यवाद दिया। नासा के अंतरिक्ष यात्री
जेसिका मीर ने स्पेसएक्स ड्रैगन से सर्दन लाइट्स की शानदार तस्वीरों को साझा किया है। स्पेसएक्स क्रू 12 मिशन का हिस्सा है वो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको एक ऐसी हकीकत दिखाएंगे जो सरहद पार के हुक्मरानों को बेनकाब कर देगी। आज हमारा जम्मू कश्मीर विकास की नई कहानी लिख रहा है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। आज आपको जलते पीओके की वो खौफनाक तस्वीरें दिखाएंगे जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान की बर्बर सेना ने रावलकोट में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 27 निहत्ते लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पूरे पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान सरकार की वादा खिलाफी। आटे बिजली की जगह उन्हें बंदूक की गोलियां मिल रही हैं। आज हालात ये है कि भुखमरी से तड़पते पीओके के लोग रो रो कर कह रहे हैं कि सीधे परमाणु बम गिरा दो ताकि ये रोज का जुल्म खत्म हो जाए। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी है। सिप्री की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत ने इतिहास में पहली बार अपने 12 परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर तैनात कर दिया है, यानी अब हमारे परमाणु हथियार सीधे अटैक मोड में है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि स्कूल में क्या पहनने के बाद क्या खाएं ये भी सरकार तय करेगी। ये विवाद असम के एक स्कूल से शुरू हुआ जहां 5 मुस्लिम बच्चे खाने के टिफिन में बीफ लेकर आए। आरोप है कि उन्होंने ये बीफ 2 हिंदू बच्चों को खिलाने की कोशिश की, ऐसा आरोप है। जब इसकी जानकारी उन बच्चों के माता पिता को हुई तो बवाल मच गया और बहस छिड़ गई कि स्कूल में बच्चे टिफिन में क्या ला सकते हैं क्या नहीं। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में गैंग्स ऑफ धर्मांतरण की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण का उदाहरण देते हुए ऐसे गैंग्स को सख्त चेतावनी दे डाली है। लेकिन आज का कोई भी विश्लेषण तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारा देश इन माओ की पीड़ा महसूस नहीं करेगा। जब कोई वीर सैनिक इस देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उस सैनिक का परिवार भी इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देता है, ऐसी कुर्बानी जो अक्सर गुमनामी में ही रह जाती है। और इन शहीदों के परिवारों का दर्द कोई नहीं जान पाता। शादी की उम्र होती है और शादी की उम्र में शादी की मेहंदी लगने से पहले या शादी के कुछ दिन बाद और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने से पहले जब कोई वीर सैनिक इस देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो वो अपने पीछे कई अधूरी ख्वाहिशें, कई सपने और एक टूटा हुआ परिवार छोड़ जाता है। और किसी भी सैनिक के लिए ये उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। कल जब ऐसे ही वीर जाबाजों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब इनके परिवारों के आंसू खुद में भावनाओं का एक ज्वार समेटे हुए थे और शायद ये कह रहे थे कि बेटा हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को तुम पर गर्व है। 25 साल के प्रवीण प्रभाकर भी इन्हीं वीर जाबाजों में से एक हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने पीछे परिवार में एक ऐसा शून्य अब छोड़ दिया है से कभी भरा नहीं जा सकेगा। मरणोपरांत कीर्ति चक्र ग्रहण करते हुए जब उनकी मां का सब्र टूटा, फूट फूट कर रोने लगी तो पूरा हॉल गमगीन हो गया। और ये तस्वीरें बता रही थी कि शहीदों और उनके परिवार की कुर्बानी से ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं और इस देश में शान से तिरंगा लहराता है। इनको नमन। देखिए
1: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।

0: लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को उत्तर सिक्किम के दुर्गम पहाड़ी इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशनल गश्त का स्वेच्छा से नेतृत्व संभाला। गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
1: भारत की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो हमारे सैनिक हैं, जो देश से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें अपनी शहादत भी प्यारी लगने लगती है। और इसीलिए आज हम इन शहीदों को नमन करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे असली हीरो हैं, ये हमारे असली नायक हैं। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को शहीद जवानों के नाम तब याद आते हैं जब उन पर बॉलीवुड में कोई बड़ी फिल्म बनती है, जब बड़े पर्दे पर शहीदों का किरदार हमारे कलाकारों द्वारा निभाया जाता है, तब जाकर उनको शहीदों की याद आती है या फिर उन पर आंसू गिराते हैं। अफसोस की बात यह है कि लोगों को इन कलाकारों का अभिनय तो याद रह जाता है लेकिन वो असली नायकों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए करगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा पर जब साल 2021 में शेरशाह फिल्म बनी तब एक बड़े शहर में कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन करने के लिए इस फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले एक कलाकार की तस्वीरें लगा दी गई। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप सोचिए, कैप्टन बत्रा की जगह जिसने फिल्म में काम किया था उनकी फोटो। हमारे देश में शहीदों की कहानियां लोग तभी जानते हैं जब इन पर कोई फिल्म बनती है और ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसा कमाती हैं। लोग देखना चाहते हैं। हमारे देश में किसी भी आम फिल्म की औसत कमाई 10 से 30 करोड़ रुपए होती है लेकिन जो फिल्में शहीदों, जो फिल्में देशभक्ति पर बनती हैं उनकी कमाई अक्सर 50 करोड़ से ज्यादा होती है और कई बार 100 करोड़ के पार। हमें इन बॉलीवुड फिल्मों से कोई आपत्ति नहीं है और अच्छी बात है क्योंकि इन फिल्मों के जरिए हमारी शहीदों की कहानी कम से कम घर घर तो पहुंचती है, कम से कम लोग उनकी बात को याद तो रखते हैं। इन फिल्मों के जरिए उनकी कहानियां तो अमर अजर हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे शहीदों की कुर्बानी तभी याद रखी जाएगी जब इस पर फिल्म बनेगी? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये देश अपने वीर सैनिकों को अपने दिल में रखे शहादत फिल्मों में नहीं बल्कि हमारे जवानों की शहादत से अमर बने? खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको जलते हुए पीओके और बदलते जेएनके के बारे में बताते हैं। जलते पीओके का मतलब है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जहां इस वक्त सेना और लोगों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कई निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया है। जबकि यह बदलता जेएनके हमारा जम्मू कश्मीर है जो विकास की नई कहानी लिख रहा है और आज ही एशिया की सबसे लंबी टनल ने कश्मीर में अपना आखिरी ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। ये वो बदलाव है जो कुछ देश पाकिस्तान के झूठे दुष्प्रचार में देख नहीं पाते या भारत विरोध के कारण देखना नहीं चाहते लेकिन आज हम आपको इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग आजादी क्यों मांग रहे हैं और असिम मुनीर को दहशत गर्द बताते हुए नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले रावलकोट से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां एक शोक सभा, ये एक शोक सभा है और शोक सभा में शामिल हुए हजारों लोगों पर पाकिस्तान की सेना के जवानों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और ये वही पाकिस्तान है जो ईरान का युद्ध रुकवाना चाहता था। देखिए,
2: Yeah!
1: ये गोलियां सिर्फ रावलकोट में नहीं चली हैं, बल्कि पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्टिस्तान में इस वक्त खून खराबा हो रहा है। और ऐसे मुनीर की सेना ऐसी मारकाट मचा रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जब आप इस हिंसा के पीछे का कारण जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस किस्म का देश है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जब पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब पाकिस्तान की सरकार ने मुजफ्फराबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय हुआ था कि जिस पीओके से पूरे पाकिस्तान को 10-15% बिजली मिलती है, उस पीओके के साथ इंसाफ किया जाएगा। उसे ना सिर्फ बिजली की आपूर्ति होगी बल्कि बिजली सस्ती दरों पर भी इन इलाकों को दी जाएगी, सस्ती बिजली का वादा। यह भी तय हुआ था कि पीओके के लोगों को गेहूं अनाज पर सब्सिडी दी जाएगी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे ताकि पीओके के लोगों को उनका हक मिले। और इसी में यह भी लिखा था कि जैसे पंजाब और सिंध प्रांत में सड़कें बनती हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया होगा जिस पीओके की आज बात हो रही है ना, जहां विरोध हो रहा है, उस पीओके में विकास का वी भी नहीं पहुंचता। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर ना सड़कें हैं, ना लोगों के लिए अच्छे कोई भी इंतजाम किए जाते हैं। तो वादा यह किया गया था कि पीओके में अब बुनियादी ढांचा, सड़कें सब बनाई जाएंगी और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएंगी और अस्पतालों को बिना डॉक्टर्स के नहीं छोड़ा जाएगा। अब इन सारी मांगों पर पाकिस्तान की सरकार ने अक्टूबर 2025 में सहमति दी थी और इन्हें लागू करने का वादा भी किया था। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी जब इस समझौते की शर्तें लागू नहीं हुई, तब पीओके के लोगों ने असीम मुनीर के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। ये कहा कि मुनीर ही वो दहशतगर्द है जो पीओके के लोगों का दमन कर रहा है और इसीलिए इस बार उसके खिलाफ पूरे पीओके में विरोध प्रदर्शन होंगे। इसके लिए ज्वाइंट आवामी एक्शन कमिटी ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। इनमें शहजैब हबीब नाम के एक लड़के की हत्या की। इस हत्या से पीओके में तनाव फैल गया और ये योजना बनाई गई कि बड़ी संख्या में लोग रावलकोट में इकट्ठा होंगे और रावलकोट में इकट्ठा होकर इस प्रदर्शनकारी की शोक सभा में शामिल होंगे। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने लोग जो ये शोक सभा वहां पर आयोजित की गई थी, उसने शोक सभा में शामिल हुए हजारों लोगों की भीड़ पर गोलियां चलवा दी और मौके पर 27 लोगों को सीधा मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पीओके पूरी तरह शांत हो गया है और देखते ही देखते मुजफ्फराबाद, भिंबर, कोटली, रावलकोट, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम इलाकों में हिंसा की आग फैल गई है। ये इलाके सुलग रहे हैं। जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा हिंसक हुए, पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध लोगों को मारना शुरू कर दिया है। उसने कई इलाकों में सेना को सड़क पर उतार दिया है। असीम मुनीर ने खुद पीओके के लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, जिससे कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। ना सिर्फ लोगों की हत्याएं हुई बल्कि 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई जगह छापे मारे गए हैं, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के दफ्तरों को भी सील कर दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान का एक और गजब का कारनामा आपको जरा दिखाते हैं। जिस वक्त पीओके गृह युद्ध की आग में सुलग रहा है, तब उसी वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान और लेबनान में युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज रावलपिंडी के सेना मुख्यालय में असीम मुनीर की मुलाकात लेबनान के आर्मी चीफ जनरल रुडोल्फ हेकाल से हुई। और सिर्फ मुलाकात नहीं हुई है, असीम मुनीर की उनके साथ ये चर्चा हुई कि पाकिस्तान लेबनान में शांति की स्थापना के लिए क्या मदद कर सकता है। मतलब लेबनान की चिंता है और पीओके में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही है। सवाल यही है कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के क्षेत्र की बड़ी चिंता सता रही है। सोचिए, इन्हें लेबनान की चिंता है, लेकिन पीओके में मारे जाए लोगों का दर्द नहीं दिखता। और सोचिए कि जो पाकिस्तान खुद जल रहा है, जो खुद अशांत है, जो अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, वो दूसरे देशों के लिए शांति प्रयास कर रहा है। पीओके के लोग इस बार पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इसको भी गंभीरता से समझिए। वहां सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़, आसिम मुनीर दहशतगर्द है और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ ये नारे लगा रही है। सुनिए।
2: मुझे फख्र है आप पर, आप सब लोगों पर फख्र है। जो जो दोस्त जहां जहां से भी आया, आप सारे हमारे माथे का झूमर है।
1: जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य साकिब इलियासी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के लिए परमाणु हथियार बनाया था, लेकिन वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और इसीलिए अब पीओके के लोग ये चाहते हैं कि इस परमाणु बम को उन पर गिरा दिया जाए ताकि उन पर होने वाले जुल्म का पूरा किस्सा एक बार में ही खत्म हो जाए। देखिए,
2: और 9 तारीख को पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम कहते हैं, लाओ, अगर हमारा हक मलकियत नहीं दे सकते, हमारा हक हुक्मरानी नहीं दे सकते, तो हम बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ्फुज़ के लिए है। नहीं काम आया, नहीं काम आया। हक मलकियत हक हुक्मरानी नहीं दे सकते, तो मार दो आजाद कश्मीर पे, खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा बयान यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो, तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत हक की आजादी हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
1: सोचिए, पाकिस्तान ने पीओके के लोगों की ऐसी हालत कर दी है। आपने सुना उनको, वो कह रहे कि हमारे ऊपर परमाणु बम गिरा दो, और मानवाधिकारों का चैंपियन बनने वाले अमेरिका को भी इनकी पीड़ा इनका दर्द दिखाई नहीं देता, ना ही विश्व के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों को। पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो उससे हक मांग रहे हैं। चाहते हैं कि उन्हें सरकार से सस्ती दरों में बिजली मिले, ये उनका अधिकार है। पीओके में कई बड़ी नदियां हैं, दिखाते हैं हम आपको एक एक करके, जिन पर हाइड्रो पावर प्लांट लगाकर पाकिस्तान अपनी जरूरत की 10-15% बिजली का उत्पादन करता है। लेकिन यह बिजली पीओके के लोगों को ना मिलकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों को चली जाती है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। पंजाब और सिंध प्रांत के मुकाबले पीओके में आटा भी महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है, बेरोजगारी ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार इन लोगों

0: नसीब नहीं होता और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ये हालात और भी बदतर है। पीओके के ऊंची पहाड़ी इलाकों में 90% परिवारों के सामने भुखमरी का संकट है और इस भुखमरी के कारण पीओके के 39% बच्चे जो हैं उनकी हाइट सामान्य से कम है और 14% जो हैं वो अंडरवेट हैं और कई कुपोषण के शिकार हैं और हर 1000 बच्चों में 47 बच्चे अपने जन्म के पहले साल में ही मर जाते हैं। पीओके में ज्यादातर लोग खेती पशुपालन करते हैं लेकिन फिर भी बड़ी आबादी को पर्याप्त पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा। यह हाल भी तब है जब सिंचाई के लिए 70% पानी पीओके से ही बहकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में पहुंचता है और जब इन्हीं सारी बातों को पीओके के लोग सड़कों पर उतरकर उठाते हैं तो बेरहमी से सेना गोलियां चला देती है। आप खुद पीओके के इन लोगों को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि वो गेहूं मांगते हैं तो उन्हें गोलियां मिलती हैं और उनकी जिंदगी को असीम मुनीर ने अपनी सेना से जहन्नुम बना दिया है। देखिए,
1: आखिर कोई तो मजलूम कश्मीरियों की भी आवाज सुने। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं है? क्या जब हम ऐसे अपने बुनियादी हकूक लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे तो हमें शहीद कर दिया जाएगा? आए दिन जब हम अपने 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों से अपील करती हूँ कि खुदारा हमारे हकूक के लिए आवाज बुलंद करें, हमारे साथ खड़े हो।
2: रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई और इत्तला ये है कि लोगों को जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं।
3: ओवरसीज भाइयों के हवाले से बात करूंगा कि हमारे पास आखिरी सारा वही ओवरसीज भाई है क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल ब्लैक डाउन करके हमें कत्ल किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि आप जिस तरह दुश्मन है आप हमारे और हमें उस तरह मार रहे।
0: पीओके में जो हो रहा है वो स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है और मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला। रावलकोट की जिस शोक सभा में पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई उनमें दावा है कि 19 छोटे छोटे बच्चे 7 गर्भवती महिलाएं भी मारी गई हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है वो इसे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन मानता है जो असीम मुनीर की सेना ने किया है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं और इनकी जांच कराई जाती है तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के तहत असीम मुनीर को उनके पद से बर्खास्त करके जेल में डाला जा सकता है और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन सन्नाटा है, सिर्फ यही नहीं, पीओके में इस वक्त पूरी तरह ब्लैकआउट है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल नेटवर्क बंद है, पत्रकारों की पहुंच सीमित है, बाहरी दुनिया से संपर्क कटा हुआ है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पीओके के वीडियो बाहर ना जाए, मौतों का पता ना चले, अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू ना हो। ये सारी बातें पाकिस्तान के खराब रिकॉर्ड की गवाही दे रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मानवाधिकारों के इस उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया कोई कदम उठाएगी और क्या मुस्लिम देश पीओके के मुसलमानों के लिए आवाज आज उठाएंगे? अफसोस की बात यह है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को सेना की सुरक्षा मुहैया कराता है और जिस पाकिस्तान में अमेरिका और यूएन द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण मिली हुई है उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पीओके में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी अपना हक मांग रही है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कह रही है, वहां उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए और इससे बड़ा पाकिस्तान का पाखंड हो नहीं सकता। आपको यकीन नहीं होगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने 14,000 अतिरिक्त जवान पीओके में भेजे हुए हैं, 14,000। इनमें 6,000 जवान फ्रंटियर कंस्टेबुलरी के हैं, 5,000 जवान पाकिस्तान रेंजर्स के हैं, 2,000 इस्लामाबाद पुलिस के हैं और 1,000 सिंध पुलिस के हैं। यानी पीओके में आम लोगों के विरोध प्रदर्शनों को सैन्य स्तर की कार्रवाई से कुचला जा रहा है, बहुत देशों में इस पर चुप्पी है। हालांकि ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने इस पर चिंता जताई और इनमें भी इकबाल मोहम्मद ने यह कहा है कि उनके जानने वाले बहुत सारे लोग अभी पीओके में अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे और पीओके में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इस मुद्दे पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया और स्थिति के लिए असीम मुनीर को जिम्मेदार बताया है।
4: आजादी।

0: तो ये कह रहे हैं ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, यानी सीधा इशारा आसिम मुनीर पर है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान कोई सरकार, कोई नेता, कोई राजनेता नहीं चलाता, पाकिस्तान वहां की फौज चलाती है, पाकिस्तान को आसिम मुनीर चलाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उसके लिए दुनिया को उसे जरूर जवाबदेह ठहराना चाहिए। सुनिए
1: का दूसरा आपका सवाल था पाक अधिकृत कश्मीर को लेके, तो एक चीज मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जैसा कि मैंने कहा कि जो वहां बर्बरता हो रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है, और ये हमारी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अपने अत्याचारों के लिए उसको जवाबदेही ठहराएगा।
0: अब तक आपने उस पीओके को देखा जिस पर पाकिस्तान ने आजादी के बाद कब्जा कर लिया था, आज तक वहां लोगों का दमन हो रहा है, लेकिन इस जलते पीओके के बाद अब आप बदलते जम्मू कश्मीर को देखिए, और यह हमारा जम्मू कश्मीर है जो विकास की नई नई कहानियां लिख रहा है। आज कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट का मतलब यह है कि इस टनल में जो आखिरी चट्टान बची थी उसे भी हटा दिया गया, और अब यह टनल आने वाले दिनों में आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। जिस वक्त पीओके के लोग सस्ती बिजली, अनाज पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, तब कश्मीर में जोजिला टनल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल यानी दो तरफ के रास्ते वाली टनल बन गई है, जो समुद्र तट से 11,578 फीट की ऊंचाई पर होगी। इस टनल को जोजिला के एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी, और ये कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के मीना मार्ग से जोड़ेगी। अब तक बर्फबारी के दौरान साल में 5 महीने लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाता था। लोगों के पास सिर्फ हवाई यात्रा का एक विकल्प बचता था, लेकिन इस टनल के बनने के बाद ऐसा नहीं होगा। अभी कश्मीर के गांदेरबल से लद्दाख के करगिल जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन इस टनल के बाद और इस टनल के बनने के बाद सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा, और कश्मीर के बालटाल से लद्दाख के मीना मार्ग की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर अब 14 किलोमीटर की रह जाएगी। और यही नहीं, ये टनल सेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसके बनने से चाइना और पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों और सैन्य सामान को तेजी से पहुंचाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए,

0: और ये पहली ऐसी टनल होगी जिसका व्यास अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है, और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से स्केप गेट, वेंटिलेशन शाफ्ट, ये सब जमीन के 25 से 30 फीट ऊपर बनाई जा रही है ताकि अगर कोई हादसा हो, कोई ऐसी घटना हो जाए तो इवैक्यूएशन चलाया जा सके 13 किलोमीटर इस लंबी सुरंग में।
1: खैर, आगे बढ़ते और आज आपको सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर आई है। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने पहली बार अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग मिसाइलों पर माउंट कर दिया है। यानी पहले भारत अपने परमाणु हथियारों को अलग रखता था और जिन मिसाइलों से इन्हें लॉन्च किया जाना है उन्हें अलग रखा जाता था, लेकिन अब भारत ने अपनी इस नीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब हमने अपने कुछ परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर लगा दिया है और इन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि इस बदलाव के पीछे मकसद क्या है और भारत अपने परमाणु हथियारों को लेकर क्या नया सोच रहा है। अब सिप्री की इस नई रिपोर्ट में क्या है, ये रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2026 तक दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या 12,187 थी, जो पिछले साल से 54 कम है। इनमें भी दुनिया के 85.84% परमाणु हथियार अकेले रशिया और अमेरिका के पास है। रशिया के पास है 5,420 परमाणु हथियार और अमेरिका के पास 5,042 परमाणु हथियार। और सोचिए, यह वही अमेरिका है जो परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए खतरा बताता है। ईरान के खिलाफ युद्ध इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और अमेरिका के बाद चाइना के पास 620 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 370, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 190, पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास कुल 60 परमाणु हथियार हैं। भारत इस सूची में छठे स्थान पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं। फ्रांस ने पिछले एक साल में 80 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं, माफ कीजिएगा। चाइना ने 20, भारत ने 10 नए परमाणु हथियार अपने बेड़े में जोड़े हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 था, उतना ही है, और इस साल भी उतना ही है। यानी इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान से 20 परमाणु हथियार ज्यादा है, और यह बात सिर्फ संख्या की नहीं है। अब तक भारत ने अपने परमाणु हथियारों को कभी तैनात करके नहीं रखा था और हम न्यूक्लियर रेडीनेस के मामले में पहले स्तर पर हुआ करते थे। इस लो रेडीनेस से इसे कहा जाता है जिसमें परमाणु हथियार और मिसाइलों को अलग अलग करके रखा जाता है, लो रेडीनेस, तैयारी में कमी। लेकिन इस साल पहली बार भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को मीडियम रेडीनेस की श्रेणी में डाला है, जहां 12 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगा दिए गए हैं। ऐसा करने के पीछे भारत की बड़ी रणनीति यह है कि हम अब खुद को किसी भी संकट के लिए तैयार करके रखना चाहते हैं। यहां भारत का एक और उद्देश्य यह भी है कि वो पाकिस्तान के सारे साथ पूरे चाइना को भी अपनी मारक क्षमता में लाना चाहता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम पाकिस्तान के कारण शुरू नहीं किया था। इसकी शुरुआत हमने चाइना के कारण की थी 1962 के युद्ध के सिर्फ 2 साल बाद, जब चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तब भारत ने परमाणु कार्यक्रम पर जोर देना शुरू किया। और आज जब चाइना अपने परमाणु कार्यक्रम का तेजी से विस्तार कर रहा है, तब भारत भी उससे पीछे नहीं रहना चाहता। उदाहरण के लिए, पिछले साल चाइना ने अपने परमाणु 24 परमाणु हथियार मिसाइलों पर लगाकर तैनात कर दिए, जबकि हमने अपने एक भी परमाणु हथियार को तैनात नहीं किया था। इसे नहीं किया था क्योंकि हम ये मानते थे कि अगर परमाणु हथियारों को मिसाइलों पर माउंट करके रखा जाएगा तो इससे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है और किसी दुर्घटना में गलती से परमाणु हथियार लॉन्च भी हो सकता है। लेकिन अब हमने इस नीति को बदला है, जहां चाइना ने भी अभी 34 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, वहीं जवाब में हमने भी 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। हालांकि यहां इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हम अब भी आधिकारिक रूप से यही मानते हैं कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा और हम परमाणु हथियारों की चिंता को समझेंगे। सिप्री की रिपोर्ट में कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो शांति दूत अमेरिका का असली सच दिखाते हैं, और मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अमेरिका बात तो ये करता है कि वो बहुत बड़ा शांति दूत है, लेकिन शांति दूत के निशान और हरकतें क्या ऐसी हो सकती हैं? तो ये हमने आपके लिए तमाम जो 10 बड़ी कंपनीज हैं वो निकाल दी हैं। आखिर ये कंपनीज जो हथियार बनाने वाली टॉप 10 कंपनीज हैं, उनमें एक एक करके गिनते हैं अमेरिका के कितने हैं। इसको येलो कर लेती हूं मैं। ये देखिए, पहला लॉकहीड मार्टिन, कमाई इनकी $64,650 है, $64,650 मिलियन जो लिखा हुआ है। उसके बाद आइए दूसरी कंपनी, फिर आपको अमेरिका का झंडा दिख रहा है, $34,600 मिलियन आरटीएक्स। फिर तीसरी कंपनी भी नॉर्थरॉप ग्रूमन, किसकी कंपनी है? अमेरिका की, $37,850। उसके बाद आइए तो ब्रिटेन की एक कंपनी आती है, बीएई सिस्टम्स। फिर अगली कंपनी दो किसकी? अमेरिका, जनरल डायनेमिक्स और बोइंग, हथियार बनाने वाली ये कंपनीज आ गई। उसके बाद आइए रोस्टेक, रोस्टेक है रशिया की कंपनी जो सातवें नंबर पर है। और उसके बाद से एविक है, ये दो चाइनीज कंपनी है, चाइना की एविक और सीईआईसी। उसके बाद से जो दसवें नंबर पर कंपनी है वो फिर है 16,210 पर। अब आइए असल आंकड़े पर, कैसे खुलती है अमेरिका की पोल, किस देश में कितनी कंपनियां हैं। टॉप 10 कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंपनीज अमेरिका में ही हैं, 6 कंपनीज, उससे कहीं कम 2 कंपनीज चाइना में, ब्रिटेन में 1 कंपनी और रशिया में भी 1 कंपनी। तो इससे पूरी तस्वीर आपको समझ में आ गई कि आखिर ये हमने क्यों दिखाया है। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि भाई अमेरिका की 6 कंपनियां टॉप, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हथियार करती हैं उनमें टॉप 6 कंपनियां हैं टॉप 10 में। और बातें करता है, शांति दूत बनता है पूरे विश्व में, ईरान पर इसीलिए हमला किया है कि भाई उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब बड़े हथियार सप्लायर और खरीदार जो हैं उसमें भी आपको सबसे पहले कौन सी कंट्री दिख रही है बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर है अमेरिका। अमेरिका वही देश है जो हथियारों के मामले में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है, निर्यात में हिस्सेदारी, तो इससे आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है अमेरिका, ये है उसका नंबर। उसके बाद फ्रांस आई, ये कोई मुकाबला भी है? दूसरे नंबर पर फ्रांस है, लेकिन फ्रांस जो हथियार एक्सपोर्ट करता है कितना है? 9.8%, कहां 42% और कहां 9.8%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फासला है और अमेरिका कितना आगे है। उसके बाद आइए रशिया पर, रशिया 6.8, जर्मनी 5.7 और 5.6 चाइना। तो ये है पूरा खाका जो एक तरह से पोल खोलता है अमेरिका की। अब आ जाइए दूसरे हिस्से में, लिए चलते हैं आपको हथियार खरीदने वाले देश। तो हथियार खरीदने वाले देश कौन कौन से देश है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, उसमें आपको सबसे पहले और युद्ध की वजह से भी दिख रहा है यूक्रेन 9.7% पर। उसके बाद है भारत 8.2% पर, इसको रेड कर लेते हैं और यहां पर ये देखिए 9.7% के साथ सबसे ऊपर है यूक्रेन, फिर है 8.2% वाला भारत और उसके बाद है 6.8% वाला सऊदी, फिर है कतर 6.4 और पाकिस्तान 4.6। तो इससे आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन? अमेरिका। और सबसे बड़ा बायर कौन? तो वो है यूक्रेन। तो ये है पूरी स्थिति जो एक तरह से अमेरिका की पोल खोलती है कि भाई वो बात तो करते हैं शांति की, कह रहे हैं कि हमने ईरान पर इससे अटैक किया है ताकि वो परमाणु ताकत ना बन जाए, लेकिन जब बात हथियारों की आती है तो सबसे ज्यादा टॉप 10 कंपनीज में उसी की कंपनियां हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको इस बहस के बारे में बताते हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप ले सकती है। एक बच्चे, क्योंकि देखिए हमारे सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, 5 जून को असम के एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के 5 छात्र अपने टिफिन में बीफ लेकर आए। बात असम की है। ये 5 छात्र मुस्लिम समुदाय से थे जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी क्लास में पढ़ने वाले 2 हिंदू बच्चों को जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोशिश की, ये आरोप लगाया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे आरोप है जो परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जो परिवार वाले जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उनका ये कहना है कि जबरन खिलाने की कोशिश हो रही थी। अभी इस पूरे मामले में बात अटकी हुई है, जांच चल ही रही है, लेकिन जब ये मामला स्कूल के प्रिंसिपल और इन हिंदू छात्रों के माता पिता तक पहुंचा, उन्होंने घटना का विरोध किया है। उन्होंने ये पूछा कि अगर स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं तो मुस्लिम छात्रों को अपने टिफिन में बीफ लाने की छूट कैसे मिल सकती है। दूसरा, वो किसी भी हिंदू छात्र को जबरदस्ती कैसे खिला सकते हैं। ये मामला असम के गोलपारा जिले के एक सरकारी स्कूल में सामने आया है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 57% है। ये आबादी के आंकड़े हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल जिला होने के कारण इस मामले में सांप्रदायिक रूप पूरा इस इंसिडेंट ने ले लिया है। बात अब इतनी बढ़ गई है कि हिंदू छात्रों के परिवारों ने पुलिस में FIR दर्ज करा दी है और ये आरोप लगाया कि मुस्लिम छात्रों के माता पिता ने उन्हें टिफिन में बीप दिया, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस FIR के बाद पुलिस ने टिफिन में बीफ लाने वाले सभी 5 मुस्लिम छात्रों, उनके माता पिता को थाने बुलाया। पूछताछ के बाद असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक मुस्लिम छात्र की मां को गिरफ्तार भी अब कर लिया गया है। इस महिला का नाम नूर साहिदा बेगम है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे के टिफिन में बीफ रखा और ये भी तब हुआ जब असम में गोवंश और दूसरे पशुओं की हत्या और गोमांस खाना गैर कानूनी है, गंभीर अपराध है। सुनिए।
2: এইটো বস্তু অনা স্কুলত উচিত নহয় বুলি মই ভাবো, আৰু মানে যাই এই কাম কৰছে তাৰ শাস্তি পাব লাগে। বা মোৰ মতে মাক বাপেকৰ অত্যন্তই ভুল, কাৰণ মাকে টিফিন ভৰাই মাকে জানিব লাগিব এইটো স্কুলত দিয়া অনুচিত।
3: ল'ৰাই আহি কৈছে মা তাহাঁতে গৰুৰ মাংস আনিছিল, আমাক খুৱাই দিব খুজিছিল বুলি কৈছে, এনেকে কৈছে, খুৱাই দিব খুজিছিল জবৰদস্তি কৈছে। তাৰপিছত কৈছে মই কৈছো কমপ্লেইন দিয়া নাই নেকি, কৈছে গৈছিলো ছাৰে নাছিল, পিছত বেলেগ ছাৰৰ আগত কৈছিলো, তাহাঁতে কিবা কৈছে কি কয় হ'ব বেলেগ ল ঘৰত নক'বা।
4: বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী লোক একেদৰে বসবাস কৰোঁ, যাতে কাৰো চেণ্টিমেণ্ট কোনো হাক নহয়। আৰু এই ঘটনাটো কি চাৰকামষ্টেঞ্চত হৈছে তাৰো তদন্ত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি দুয়ো আহিছোঁ ইয়ালে, আৰু এই তদন্তৰ পিছত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সেইমতে।
1: अब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी मां ने अपने बेटे के लिए स्कूल का टिफिन पैक किया हो और उसे इसके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में जो 5 मुस्लिम छात्र अपने टिफिन में बीफ लाए थे, उन्हें गोलपारा के सरकारी स्कूल से बाहर निकालने की भी चर्चा हो रही है। इसके लिए एक जांच समिति का गठन हुआ और ये जांच समिति बताएगी कि क्या स्कूल में बीफ लाने के लिए इन बच्चों को स्कूल से नाम काटा जा सकता है या नहीं। हमारे देश में 14,71,000 स्कूल्स हैं, कुल 24,69,00,000 बच्चे पढ़ते हैं और जब इन बच्चों की माएं उनका स्कूल का टिफिन पैक करती होंगी तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मामला भी आपराधिक धाराओं में आ सकता है। लेकिन असम में ऐसा हुआ, इसने एक नई बहस छेड़ दी कि क्या स्कूल का टिफिन भी किसी माता पिता को गिरफ्तार करा सकता है। हमारे देश में बच्चों के टिफिन को लेकर कोई विशेष कानून, नियम, दिशा निर्देश तो है नहीं। उदाहरण के लिए असम के ही सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसमें अंडा भी मिलता है जो नॉनवेज की श्रेणी में है। असम में इस घटना से पहले ऐसे दिशा निर्देश नहीं थे कि बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते, स्कूल से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। लेकिन जब यह विवाद हुआ तो गोलपारा में ऐसे नियम जारी हो गए और ये निर्देश दिए गए कि अब से कोई बच्चा अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं लाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का विवाद पहले किसी और राज्य में नहीं हुआ। अमरोहा जिले में 3 कक्षा का एक छात्र अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर आया जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जब यह केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि टिफिन में नॉनवेज लाने के लिए किसी भी बच्चे उसकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद इस बच्चे को किसी और स्कूल में हाईकोर्ट के आदेश पर दाखिला दिया गया। लेकिन विवाद नहीं रुका यहां पर। अगस्त 2024 में नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल ने यह निर्देश जारी किया कि बच्चे अपने टिफिन में नॉनवेज नहीं ला सकते, जिस पर कई अभिभावकों ने आपत्ति जताई। नोएडा ही नहीं, मई 2024 में जयपुर और दिसंबर 2018 में कोलकाता के एक स्कूल में भी टिफिन में नॉनवेज लाने पर विवाद हुआ। अब इस विवाद के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि किसी भी स्कूल में सभी धर्म, जाति, वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में टिफिन में नॉनवेज लाने से एक समानता का भाव खत्म होता है। लेकिन जो लोग इस फैसले का विरोध करते हैं वो ये कहते हैं कि देश में नॉनवेज खाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो स्कूल के टिफिन में नॉनवेज लाना गलत कैसे हो सकता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। एक कहावत है चौतरफा संकट। ये चौतरफा संकट होता क्या है इसे समझना हो तो आप TMC का आजकल का हाल देख लीजिए। ममता बनर्जी के लिए हर ओर से सियासी तूफान आ खड़ा हुआ है। पहले जनता ने हराया, फिर ज्यादातर विधायकों ने साथ छोड़ा, अब बागी सांसदों का गुट ममता की TMC को तोड़ने का दांव चल रहा है। उधर ED, CBI ही नहीं, बंगाल की CID भी जाली दस्तखत के सुराग ढूंढते ढूंढते आज कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट के घर तक पहुंच गई, जहां पर उनका दफ्तर है। ममता बनर्जी जब दिल्ली में है तभी टीएमसी के लोकसभा के बागी सांसदों ने अपने दांव चले हैं। बागी सांसदों का नंबर गेम और इस मामले में दल बदल कानून का समीकरण आपको समझाऊं उससे पहले आप ममता बनर्जी की राजनीति का ये चैप्टर देखिए। क्या ममता बनर्जी की राजनीति घूमकर वहीं पहुंच सकती है जहां 28 साल पहले थी? आज ममता बनर्जी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिलने गई। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन एक घंटे की मुलाकात हुई। कल इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी गले मिली थी। टीएमसी ने अपने एक्स पोस्ट में इस तस्वीर को डाला, कहा मुस्कुराहटों ने वो कहा जिसे शब्द न कह सके, दशकों तक राष्ट्र की समर्पित सेवा से मजबूत हुआ बंधन। कितना दिलचस्प है, राहुल गांधी ने अभी इसी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को बीजेपी के उभार के लिए कसूरवार ठहराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर टीएमसी और कांग्रेस की तनातनी तक हुई थी। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में न सिर्फ लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि कांग्रेस की भी राजनीतिक जमीन इस तरह खिसका दी कि 2024 के चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए गुजरात से वो यूसुफ पठान को बंगाल ले आए। आज उन्हीं यूसुफ पठान पर टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि वो अमित शाह के इशारे पर ममता की बात नहीं मान रहे। दरअसल अटकलें हैं कि बहरामपुर संसदीय सीट को सेफ मानकर यूसुफ पठान को टीएमसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा था ताकि ममता लोकसभा चुनाव लड़ सके, लेकिन यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। देखिए,
5: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
6: वही कर रहा है
5: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का नेतृत्व काकुली घोष दस्तेदार कर रही हैं। बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कहा कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद एनडीए को समर्थन करने के लिए तैयार है, यानी पहले टीएमसी के 80 में से 60 विधायकों के अलग ब्लॉक को बंगाल विधानसभा में मान्यता मिली तो ममता के खेमे में सिर्फ 20 विधायक बचे, और अगर बागियों का दावा सही है तो 28 में से सिर्फ 8 सांसद ममता बनर्जी के पास बचेंगे। हालांकि अभी तक उनके दस्तखत वाली चिट्ठी 20 सांसदों की आई नहीं है, इसलिए इंतजार करना होगा। टीएमसी के बागी सांसदों पर फैसला स्पीकर ओम बिरला को करना है। बागी सांसदों ने जब से चिट्ठी लिखी है तब से स्पीकर चंडीगढ़ में है, उनके दिल्ली लौटने के बाद ही कोई फैसला संभव है। अब मैं बागी सांसदों का 19 का मैजिक नंबर बता देती हूं। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए 2/3 सांसद किसी दूसरे दल में विलय करें तो ये अयोग्य घोषित नहीं होंगे। अब टीएमसी के लोकसभा सांसदों के लिए ये मैजिक नंबर है 19। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, यानी मैजिक नंबर से एक ज्यादा। हालांकि टीएमसी का दावा है कि बागियों के खेमे में सिर्फ 12 लोकसभा सांसद हैं। और यहां सवाल यह भी है कि अगर बागियों के पास 19 या उससे अधिक की संख्या मौजूद है तो क्या उन्हें संसद में अलग ब्लॉक की मान्यता मिल सकती है? यहां मैं अप्रैल में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को मिली मान्यता का मामला भी बताती हूं। आपने अपने 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को के बीजेपी में शामिल होने को राज्यसभा में मिली मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि दल बदल कानून कहता है कि पहले 2 पार्टियों का विलय होना चाहिए तभी मान्यता मिलनी चाहिए। अभी यह केस सुप्रीम कोर्ट में है। टीएमसी भी रिद्वत बनर्जी के गुट को बंगाल विधानसभा में मिली मान्यता के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। रास्ता भी आसान नहीं, लेकिन ओम बिरला स्पीकर क्या करते हैं नजर टिकी रहेगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और क्या गजब दुनिया है, ये जिंदा लोगों की तो चुगली करती है और जो लोग गुजर गए उनकी तारीफ। नमस्कार।

0: ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी है। तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती हैं, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है।
2: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो हो गई उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
6: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी। खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
0: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
1: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लोग उन्हें पकड़ कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
0: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे, वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे। सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
7: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
7: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
7: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरदूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
7: आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
8: बहुत अच्छा, बहुत
7: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
9: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी, तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
10: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए। बात सीट की नहीं, जीत की है। जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी। ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा। हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है, जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
11: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
12: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
13: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
14: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
15: मुझे कहते थे आप उसे?
16: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे दोनों। और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
15: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
16: 11 साल से।
15: 11 साल। अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है
16: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं मिला इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
15: क्या नाम है उसका?
16: वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि तो नहीं करती, उसने अपने अपने बजट में अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
14: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
16: मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी उसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहे। मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
14: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
17: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
14: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
18: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
14: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
19: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
20: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है, और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है, उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया, और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
19: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जिसे एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
2: हमें कुछ दिन पहले एसओजी की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है एसओजी उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
19: एसओजी अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
21: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
0: यूट्यूबर और पटना में कोचिंग चलाने वाले खानसर को पटना की जिला अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में खानसर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, जिस पर अब पटना जिला अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल खानसर की ओर से कल ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है। और इसी बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खानसर को फर्जी आदमी बताया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
22: खान का जो काम चल रहा है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है और ये फैजल खान अपना नाम भी छुपाते रहता है और खानसर खानसर बना रहता है। ये फर्जी आदमी ही, इसमें कहीं दो राय नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये पढ़ाने से ज़्यादा डायलॉग छोड़ते रहता है, डायलॉगबाजी करता है। और ये रोशन आनंद जो है ये जेनमिन है और इसके काफ़ी स्टूडेंट है और ये कोसी के इलाके का है। हम समझते हैं कि काफ़ी इसको सपोर्ट भी है और इसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये सबको पता है कि खान का बॉडीगार्ड गोली चलाया है और हमको लगता है कि पुलिस इसमें देरी कर दी, कोर्ट से स्टे मिल गया है लेकिन ये फाइनल स्टे नहीं है, इंतजार करना चाहिए लोगों को और मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का

0: ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है।
1: 30 बी हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट में अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
0: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
2: हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
3: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो अमित शाह एट दी बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
2: वही कर रहा है
3: और अमित शाह इज दी पर्सन।
0: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
4: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
5: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
6: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
0: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं।
7: Then the fireworks come. I'm going to come. हम पर

0: कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे। इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी, तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
1: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे। सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
0: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
2: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
0: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
2: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
0: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
2: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
0: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
2: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
0: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरभूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
2: आखिर खरभूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देगा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत की प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
3: बहुत अच्छा, बहुत
2: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
1: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
0: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
4: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
5: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा, आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
0: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो तीन कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर दो नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
6: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
7: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ तीन लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
8: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
1: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
9: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
10: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो के हम लोग रिलेशनशिप मांगे थे दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
11: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
10: 11 साल से।
11: 11 साल, अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है
10: उन्हें? उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली और मुझे पता नहीं इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
11: क्या नाम है उसका?
10: वशील, वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं, वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, इसलिए उसने अपने बजट में अपने बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
9: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिद ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
10: मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, इसके साथ में वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी, तो मैं प्रेग्नेंट रह गई। तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहे। मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
9: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
12: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में, और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
9: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
13: पिछले एक वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
9: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
14: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को पाँच पाँच स्टेंट डाल दिए गए।
15: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पाँच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें बेहद जाँच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
1: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
16: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
17: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
16: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जिसे एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
18: हमें कुछ दिन पहले एसओजी की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है एसओजी उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई बंद जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
16: एसओजी अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
19: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
1: यूट्यूबर और पटना में कोचिंग चलाने वाले खानसर को पटना की जिला अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में खानसर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, जिस पर अब पटना जिला अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल खानसर की ओर से कल ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है। और इसी बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खानसर को फर्जी आदमी बताया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
20: खान का जो काम चल रहा है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है और ये फैजल खान अपना नाम भी छुपाते रहता है और खानसर खानसर बना रहता है, ये फर्जी आदमी है। इसमें कहीं दो राय नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये पढ़ाने से ज़्यादा डायलॉग छोड़ते रहता है, डायलॉगबाजी करता है। और ये रोशन आनंद जो है ये जेनमिन है और इसके काफ़ी स्टूडेंट है और ये कोसी के इलाके का है। हम समझते हैं कि काफ़ी इसको सपोर्ट भी है और इसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये सबको पता है कि खान का बॉडीगार्ड गोली चलाया है और हमको लगता है कि पुलिस इसमें देरी कर दी, कोर्ट से स्टे मिल गया है लेकिन ये फाइनल नहीं है। इंतजार करना चाहिए लोगों को और मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती।
2: 30B हरिश्चारी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है। और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की, इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो गई उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
6: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
0: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर, दूषण, मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे, सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
7: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर, दूषण, मारीच, ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
7: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
7: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है, याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरदूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
7: आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
8: बहुत अच्छा, बहुत,
7: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
9: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
10: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
11: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
12: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
1: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं।
13: पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
14: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
15: मुझे कहते थे आप
16: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे दोनों। और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
15: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
16: 11 साल से।
15: 11 साल। अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है
16: उन्हें? उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली और मुझे पता नहीं मिला इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
15: क्या नाम है उसका?
16: वशील, वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपने बजट में अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
14: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
16: वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी, तो मैं प्रेग्नेंट रह गई। तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहते मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
14: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
15: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुझे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
14: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
17: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
14: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
18: एक तरफ तो केजीएमयू में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
19: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें बेहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
0: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
1: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
20: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
1: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला ये गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
21: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में को पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई जना था, उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
1: एसओजी अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी की रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
2: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जाँच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
0: यूट्यूबर और पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर को पटना की जिला अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, जिस पर अब पटना जिला अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल खान सर की ओर से कल ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है। और इसी बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर को फर्जी आदमी बताया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
3: खान का जो काम चल रहा है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, और ये फैजल खान अपना नाम भी छुपाते रहता है और खान सर बना रहता है, ये फर्जी आदमी ही, इसमें कहीं दो राय नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये पढ़ाने से ज़्यादा डायलॉग छोड़ते रहता है, डायलॉगबाजी करता है। और ये रोशन आनंद जो है ये जेनमिन है और इसके काफ़ी स्टूडेंट है और ये कोसी के इलाके का है, हम समझते हैं कि काफ़ी इसको सपोर्ट भी है और इसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये सबको पता है कि खान का बॉडीगार्ड गोली चलाया है और हमको लगता है कि पुलिस इसमें देरी कर दी, कोर्ट से स्टे मिल गया है लेकिन ये फाइनल नहीं है, इंतजार करना चाहिए लोगों को और मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और

0: की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है।
1: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक स्ट्रीट में अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
0: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
2: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
3: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
2: वही कर रहा है
3: और अमित शाह इज द पर्सन।
0: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
4: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
5: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
0: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
6: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
0: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं।
7: Then the fire will come. I'm here. You come in. Come.

0: कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे। इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे, टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
1: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे, सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
0: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
2: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
0: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं नेगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
2: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
0: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
2: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
0: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
2: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
0: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरभूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
2: आखिर खरभूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
3: बहुत अच्छा, बहुत
2: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
1: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
4: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
5: मुझे कहते थे आप उसे?
6: मैं मॉडलिंग करती थी, गर्ल्स को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे, तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
5: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
6: 11 साल से।
5: 11 साल, अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया, अब क्या करा है?
6: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं मिला इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
5: क्या नाम है उसका?
6: वशील। और उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपनी अपनी मजहब में अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
4: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
6: मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी इसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी, तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहते मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
4: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
7: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
4: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
8: पिछले एक वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
4: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
9: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया, जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को पाँच पाँच स्टेंट डाल दिए गए।
10: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पाँच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें बेहद जाँच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं, और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
1: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
11: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
12: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMG एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
11: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला ये गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
13: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई बंद जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
11: SOG अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
14: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और SOG का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
1: यूट्यूबर और पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर को पटना की जिला अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी जिस पर अब पटना जिला अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल खान सर की ओर से कल ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई थी जिस पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है। और इसी बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर को फर्जी आदमी बताया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
15: खान का जो काम चल रहा है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है और ये फैजल खान अपना नाम भी छुपाते रहता है और खान सर बना रहता है। ये फर्जी आदमी है, इसमें कहीं दोहरा नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये पढ़ाने से ज्यादा डायलॉग छोड़ते रहता है, डायलॉगबाजी करता है। और ये रोशन आनंद जो है ये जेनमिन है और इसके काफी स्टूडेंट है और ये कोसी के इलाके का है। हम समझते हैं कि काफी इसको सपोर्ट भी है और इसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये सबको पता है कि खान का बॉडीगार्ड गोली चलाया है और हमको लगता है कि पुलिस इसमें देरी कर दी, कोर्ट से स्टे मिल गया है लेकिन ये फाइनल नहीं है, इंतजार करना चाहिए लोगों को और मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती।
2: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया है, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 एमपी जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, हाँ, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती है। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
6: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है। पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोक झोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे, टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
0: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे, सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
7: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
7: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
7: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
7: आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और स्वभाव क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत की प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते।
8: बहुत अच्छा, बहुत।
7: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
9: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
10: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
11: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
12: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूँ, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
1: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
13: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
14: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे, तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे, और फिर
15: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
14: 11 साल से।
15: 11 साल, अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया, अब क्या करा है?
14: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं उसके बारे में, जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
15: क्या नाम है उसका?
14: वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपने मजहब में अपनी बरादरी में शादी कर ली मोहम्मद लड़की से।
13: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे, इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
14: मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी इसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी, तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है, तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहे, मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
13: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
16: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
13: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
17: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
13: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
18: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया, जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
6: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
0: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
1: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
19: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
1: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला ये गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
20: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई बंद जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
1: SOG अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
21: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए मरीज देख हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी का कहना है।
0: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीत की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती है, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है।
2: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था।

0: का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट दी बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
1: वही कर रहा है
0: और अमित शाह इज द पर्सन।
2: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
3: तब टूट हो गई उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
4: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं, ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
5: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास

0: गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
1: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे। सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
0: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
2: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
0: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
2: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
0: क्या योगी का निशाना विपक्ष है जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
2: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
0: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
2: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
0: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
2: आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे, जबरन कब्जा कर लेना। जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा, उसमें अपना तंबू गाड़ दिया। ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
3: बहुत अच्छा, बहुत।
2: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
1: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
4: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
5: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
6: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
4: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने ही अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो तीन कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर दो नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
7: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
8: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ तीन लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
9: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
1: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
10: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
11: मुझे कहते थे आप उसे?
12: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप मांगे थे दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
11: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
12: 11 साल से 11 साल।
11: अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है
12: उन्हें? उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
11: क्या नाम है उसका?
12: वशील, वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, इसलिए उसने अपने बजट में अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
10: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
12: मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी इसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहते मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
10: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
13: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
10: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
14: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
10: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी की जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
15: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेरा फेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया, जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो केजीएमयू में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
16: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है, क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
1: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
4: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
17: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
4: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
18: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई बंद जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
4: SOG अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
19: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती।
2: 30B हरिश्चारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के किमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
6: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे, ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
0: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे, सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बंटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
7: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
7: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
7: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है, याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरदूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
7: आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहाँ लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देगा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत की प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
8: बहुत अच्छा, बहुत।
7: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
9: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
10: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
11: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहाँ कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
12: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूँ, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
1: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो 1 सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं।
13: पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
14: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
15: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप मांगे थे दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
16: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
15: 11 साल से।
16: अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है
15: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
16: क्या नाम है उसका?
15: वशील। और उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपने बजट में अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
14: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिर ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिर बच्चा गिरवा देता।
15: मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी इसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी, तो मैं प्रेग्नेंट रह गई। तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहे। मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
14: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
17: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
14: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
18: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
14: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
19: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को पांच पांच स्टेंट डाल दिए गए।
20: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में पांच स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में पांच स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में तीन स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि पांच स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि पांच स्टेंट लगे कि नहीं, अगर पांच स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि पांच लगे ही नहीं होंगे, दो लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
0: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
21: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
22: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
21: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
23: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई बंद जना था, उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
21: एसओजी अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
2: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और एसओजी का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
0: यूट्यूबर और पटना में कोचिंग चलाने वाले खानसर को पटना की जिला अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हमले और फायरिंग के मामले में खानसर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, जिस पर अब पटना जिला अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल खानसर की ओर से कल ही कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी गई थी, जिस पर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है। और इसी बीच बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खानसर को फर्जी आदमी बताया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
3: खान का जो काम चल रहा है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, और ये फैजल खान अपना नाम भी छुपाते रहता है और खानसर खानसर बना रहता है। ये फर्जी आदमी ही, इसमें कहीं दो राय नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, ये पढ़ाने से ज़्यादा डायलॉग छोड़ते रहता है, डायलॉगबाजी करता है। और ये रोशन आनंद जो है ये जेनमिन है और इसके काफ़ी स्टूडेंट है और ये कोसी के इलाके का है। हम समझते हैं कि काफ़ी इसको सपोर्ट भी है और इसके साथ इनजस्टिस हुआ है और ये सबको पता है कि खान का बॉडीगार्ड गोली चलाया है। और हमको लगता है कि पुलिस इसमें देरी कर दी, कोर्ट से स्टे मिल गया है लेकिन ये फाइनल स्टे नहीं है, इंतजार करना चाहिए लोगों को और मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती है, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है।
2: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 MPs जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की, इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना जिस तरह

0: से पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास, ये बहुत पहले हम कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना, बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
2: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
1: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमारहाटी में यह हमला हुआ। हावड़ा के श्यामपुर में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
2: जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, जो, लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण

0: मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे। सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 के सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
2: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती राम कथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह सिर उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
2: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
2: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
2: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खरदूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
2: आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत की प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
3: बहुत अच्छा, बहुत
2: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद 2 साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहाँ है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
4: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी, तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
5: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
6: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
7: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
8: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
9: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
10: मुझे कहते थे आप उसे?
11: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था, तो हम दोनों मुंबई चले गए थे। तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
10: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
11: 11 साल से।
10: 11 साल, अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया, अब क्या करा है?
11: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता नहीं उसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
10: क्या नाम है उसका?
11: वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपनी अपनी मजहब में अपनी बरादरी में शादी कर ली मोहम्मद लड़की से।
9: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
11: मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी इसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम शादी तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहे। मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
9: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
12: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इन के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
9: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
13: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
9: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
14: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही शख्स को, एक ही मरीज को 5-5 स्टेंट डाल दिए गए।
15: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में 5 स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में 3 स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि 5 स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि 5 स्टेंट लगे कि नहीं, अगर 5 स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि 5 लगे ही नहीं होंगे, 2 लगे हैं और पांच को दिखा दिया गया है, पांच लगे हुए हैं और जो तीन स्टेंट एक्स्ट्रा एचआरएस से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
0: राजस्थान से मध्य प्रदेश तक ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, लेकिन 20 से 30 लाख रुपए देकर फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बन गए और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे।
16: 30 लाख दो डॉक्टर बनो, राजस्थान में फेल छात्रों को डॉक्टर बनाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ का रैकेट चलाने वालों आज खबरदार। दीपक यादव कजाकिस्तान से MBBS करने के बाद भारत लौटता है, लेकिन भारत में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास भी नहीं कर पाता। इसके बाद 24 लाख रुपए देकर डॉक्टरी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाता है और दौसा में इंटर्नशिप शुरू कर देता है। यही काम राजू गुर्जर और नरेश गुर्जर ने किया। राजू गुर्जर 27 लाख रुपए देकर डॉक्टरी करने का लाइसेंस पा गया। नरेश गुर्जर 23 लाख रुपए देकर डॉक्टर बनने का लाइसेंस पा जाता है। डॉक्टरों के इस फर्जी रैकेट का पूरा खुलासा आज तक ही देश के सामने ला चुका है। 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत आज तक ने की, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री हमने देश को दिखाई। आज तक की रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुई जांच में अब और फर्जी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं।
17: जो विदेश से MBBS करके आते हैं उनको FMGE एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है और वो काफी लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग पास नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने कोई गैंग है उनको वो पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस पे काम करते हुए SOG ने इस गैंग के मुख्य किंगपिन सरगना भानाराम को अरेस्ट किया और भानाराम के अरेस्ट करने पे पूरा केस का खुलासा हुआ।
16: फर्जी डॉक्टर तैयार करने वाला ये गिरोह कैसे काम करता है सुनिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप राजस्थान की जांच के मुताबिक कजाकिस्तान, रूस और दूसरे अन्य देशों से लौटे छात्रों को निशाना बनाया जाता है। गिरोह उनसे 20 से 30 लाख रुपए लेता है। फर्जी दस्तावेज के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिलाने का इंतजाम करता है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भानाराम माली है, जिसे SOG पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में आज तक की ही रिपोर्ट के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा समेत 28 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं।
18: हमें कुछ दिन पहले SOG की तरफ से कुछ लिस्ट मिली थी, हमने उनको लिस्ट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट उनको बता दिए और जो जो भी हमसे सहायता मांग रही है SOG उनको डॉक्यूमेंट के इनके एड्रेस वगैरह के बारे में उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। कोई बीच में कोई जना था उसने ये सारा का सारा नेटवर्क करके और ये पूरा का पूरा कार्य को अंजाम दिया।
16: SOG अब इस घोटाले की परत दर परत खोल रही है। जांच एजेंसी के रडार पर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शक है कि ये फर्जी तरीके से डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लेकर इलाज आम लोगों का कर रहे हैं, यानी उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं।
19: पकड़े गए तीनों डॉक्टर डॉक्टरी बनने की परीक्षा नहीं पास कर पाए तो घूस देकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल से मरीज देखने का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और फिर फर्जी डॉक्टर बन गए, मरीज देखने लगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जी डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री का खुलासा आज तक ने अक्टूबर 2024 में किया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अब भी जारी है। अब तक 18 फर्जी डॉक्टरों समेत 28 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और SOG का कहना है 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर अभी रडार पर हैं जो पकड़े जाने हैं।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी, तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती।
2: 30B हरीशचारीजी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव हारते ही ममता बनर्जी की पार्टी बिखर रही है। एक तरफ अभिषेक पर कानूनी शिकंजा, दूसरी तरफ ममता के ही 20 सांसदों की बगावत पार्टी को कोलकाता से दिल्ली तक मुश्किल के भंवर में डाल चुकी है।
3: हमारे 29 एमपी जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था, और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया।
4: यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं पार्टी को तोड़ने के लिए,
3: वही कर रहा है
4: और अमित शाह इज द पर्सन।
1: ममता जानती है केंद्रीय सत्ता के पूर्ण प्रभाव के सामने क्षत्रप के तौर पर अकेले टिक पाना नामुमकिन है। कांग्रेस के लिए भी ममता से दोस्ती पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से ज्यादा व्यावहारिक है। ये सियासी दोस्ती बंगाल की अल्पसंख्यक वोट को भी बिखरने से रोकती है, लेकिन एक सवाल ममता के अपने मूल में लौटने को लेकर भी है।
5: तब टूट हो गई तो हो गई, उसको मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई शक सुबह है ही नहीं। अब तो ये पार्टी गई, अब इनकी बचत ममता जी का हो सकता है, कांग्रेस को हाथ मजबूत करें उसमें बच सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बचना, जिस तरह से ये पार्टी टूट रही है उतना तेजी से तो शिवसेना नहीं टूटी थी। शिवसेना को टूटने में बहुत टाइम लगा था, देखिए टीएमसी को टूटने में तो महीने ही लगा।
6: ये हम लोग तो जब सत्ता पे रहे थे ये टीएमसी पार्टी, उस समय हम लोग बराबर ये कहते आ रहे हैं सालों से कि जिस दिन ये सत्ता से बाहर होगी उस दिन टूट जाएगी, खलबली मच जाएगी, तितर बितर हो जाएगी। आज से नहीं, सालों से कहते आ रहे हैं। ये हमारा पूर्वाभास ये बहुत पहले कर चुके हैं कि सत्ता है तो टीएमसी पार्टी है, सत्ता नहीं है तो टीएमसी पार्टी उब जाएगी, हवा में मिल जाएगी, वैसे हो रहे हैं।
1: पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता ने कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। राहुल ने भी बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को ही दोषी ठहराया, लेकिन बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरह ममता की चुनौतियां बढ़ी, ममता का इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और राहुल के साथ एक मेज पर आना, सोनिया गांधी से गले मिलना, उनसे मिलने 10 जनपद जाना बताता है कि 9 जून 2024 से 9 जून 2026 के बीच देश की सियासत का तापमान, गणित, भूगोल बहुत कुछ बदल चुका है।
0: टीएमसी का कांग्रेस में विलय होगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी और उसके नेता मुश्किलों में जरूर हैं। पूरे बंगाल में एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें जनता टीएमसी के नेताओं पर अंडे टमाटरों से हमला कर रही है।
1: पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी चुनाव हार गई हो, लेकिन उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूटना कम नहीं हो रहा है। ये तस्वीर पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई जा रही है। आम जनता और टीएमसी नेताओं का ये टकराव एयरपोर्ट तक पर दिखने लगा, जहां ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों से भिड़ जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर कल्याण बनर्जी मीडिया से बात कर रहे थे, इसी दौरान वो एक शख्स पर भड़कते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींचने लगते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी फिर मीडिया से बात करने लगे, इसी दौरान फिर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी जय बंगाल का नारा लगाते हैं। फिर कल्याण बनर्जी एयरपोर्ट पर खड़े नारा लगाने वालों की तरफ गए, उनसे बहस करने लगे। आखिर में कल्याण बनर्जी अपनी गाड़ी की तरफ गए और नारे के जरिए ये नोकझोंक होती रही। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और जनता के बीच टकराव का ये इकलौता मामला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने का नया ट्रेंड नई सरकार बनने के बाद से चल रहा है। ये देखिए टीएमसी नेता सव्यसाची दत्ता पर किस कदर अंडे बरसाए जा रहे हैं। रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार सव्यसाची दत्ता को उत्तर 24 परगना की अदालत में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वहां लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी के पूर्व विधायक सव्यसाची पर विरोध कर रहे लोगों ने अंडे, टमाटर और गोबर तक फेंकना शुरू कर दिया। कोर्ट परिसर में ही हंगामा बढ़ता गया, सव्यसाची के खिलाफ जमकर नारेबाजी होने लगी। दो दिन पहले टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता पर भी इसी तरह से अंडे बरसाए जा रहे थे। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी, 7 जून को जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर ले जा रही थी तब ये अटैक हुआ। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर भी 6 जून को लोगों ने अंडे बरसाए थे। मदन मित्रा पर तो उनके विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी में यह हमला हुआ। इलाकों में भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान के सिर पर अंडा फोड़ा गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लोग उन्हें पकड़कर कभी सजा खुद देने लग गए तो अदालत में पेशी के दौरान भी अंडे उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं। बंगाल में होती ये घटनाएं राज्य की राजनीति के चरित्र के साथ ही जुड़ी हुई दिखती हैं कि जिन हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप टीएमसी नेताओं पर जनता को डराने धमकाने के लिए लगते थे, अब वही उनका शिकार हो रहे हैं।
0: लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी विधायक की तरफ से कराई गई रामकथा में पहुंचे। वहां रामायण काल के राक्षसों की तुलना लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक से कर डाली। कहते हैं कि खर दूषण मरीच जैसे राक्षस लैंड जिहाद करते थे। सीता के हरण और फिर रावण वध को लव जिहाद के अंत का आदर्श मॉडल मुख्यमंत्री योगी ने बताया।
1: अखिलेश यादव राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का आरोप लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ राम कथा से 2027 की सियासी महाभारत का संदेश सुनाते हैं।
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: जिस अयोध्या का राम मंदिर बनवाकर भी 24 में जाति में वोट बटने से अयोध्या से जुड़ी लोकसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां राम के नाम पर अस्त्र शस्त्र सत्ता और विपक्ष में चलने लगा। पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, लिखा राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन आरोपों को खारिज किया। जब लखनऊ में बीजेपी विधायक की तरफ से कराई जाती रामकथा में मुख्यमंत्री पहुंचे तो नया सियासी संदेश सुनाई दिया। योगी आदित्यनाथ कहते हैं निगेटिव ताकतें रावण काल की तरह से उठाएंगी तो उजाड़ करेंगी।
7: याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे।
1: क्या योगी का निशाना विपक्ष है, जहां पर वो खर दूषण मारीच ताड़का तक की बात करके एक ऐसी राम कथा का जिक्र करते हैं जिसमें चाचा मामा का नाम आते ही तंजनुमा हंसी आती है।
7: जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं। उस सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया।
1: इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं, जब दावा हो रहा है कि हिंदू लड़कियों ही नहीं हिंदू लड़के तक को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद के खिलाफ श्री राम से सीख लेने को कहते हैं।
7: माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा प्रयत्न किया, उत्तर और भारत को, उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा, नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है।
1: लव जिहाद ही नहीं बल्कि त्रेता युग में खर दूषण मारीच के जरिए कलयुग में लैंड जिहाद तक का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं।
7: आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत की प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते,
8: बहुत अच्छा, बहुत।
7: उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है।
0: इंडिया गठबंधन में सोमवार को दिखाई गई एकता क्या कुछ दिनों में फिर से टूटेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दावा यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 80 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि वो 120 सीट यूपी में लड़ने के लिए अखिलेश यादव से चाहते हैं।
1: हिंदुस्तान में विपक्ष का पूर्वी किला ढहने के बाद दो साल में पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो सहयोगी दलों ने कांग्रेस के सामने शिकायतों की पोटली खोल दी। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के संबोधन के बाद सबसे पहले अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने नाराजगी की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने पूछा कि आज डीएमके कहा है, आप क्षेत्रीय दलों से तालमेल नहीं बैठा पाते, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मजबूत क्षेत्रीय दलों को सहयोग करना चाहिए।
9: कल इंडिया गठबंधन की बैठक में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस की कुछ कमियां गिनानी शुरू करी तभी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुनने का फैसला किया। दरअसल अखिलेश यादव ने तमिलनाडु में डीएमके का बाहर जाना और केरल में पिनरई विजयन सरकार के ऊपर कांग्रेस नेताओं के द्वारा किए गए निजी हमलों को लेकर जिक्र करते हुए कांग्रेस से सफाई मांगी। ना सिर्फ ये, अखिलेश यादव ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए जब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है।
10: देखिए, आपस में जिस ढंग से खींचतान है, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, जनता से नकारे गए लोगों का समूह है, इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ये एजेंडा विहीन लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाए तो जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं लोकतांत्रिक न होकर के राजतंत्र के आधार पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए कोई अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बताएं जरा। आप तृणमूल का हालत आप देख ही रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल है इनकी क्या स्थिति है आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी स्वयं बताए कि उनका नेता कौन है।
1: बीजेपी को हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि 8 जून की बैठक में सभी 25 दलों के सामने अखिलेश ने कांग्रेस को दो टूक कह दिया कि आपको सीट की जिद नहीं करनी चाहिए, बात सीट की नहीं जीत की है, जिस सीट पर जीत की गारंटी होगी वही मिलेगी, ज्यादा सीट की जिद न करते हुए जमीनी हकीकत समझना होगा, हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है, पूरी मदद मिलेगी। दरअसल अब तक यही तस्वीर दिखती आई कि यूपी में राहुल और अखिलेश एक बार फिर मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले सीट बंटवारे पर पैतरेबाजी शुरू हो चुकी है। खबर है कि कांग्रेस 120 सीटों पर शुरुआती दावा पेश कर सकती है जो 3 कैटेगरी में बटी है। इसमें पहली कैटेगरी करीब 40 ऐसी सीटें जहां 2017 में कांग्रेस एसपी गठबंधन में रहकर 2 नंबर पर रही थी। इसके अलावा करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां 2024 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी और 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अब खुद को दावेदार समझने लगी।
11: हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज हैं, तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जहां कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती।
12: हमारा गठबंधन, स्पष्ट कह रहा हूं, सिर्फ 3 लोग तय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी। किसी चौथे की कोई क्या नाम वो नहीं है कि कोई चौथा इस गठबंधन पर कोई बात करे या कोई सीट शेयरिंग की करे।
1: सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को प्रदेश में 80 सीटें देने के ही मूड में है। खबर है कि अखिलेश यादव ने अपने नेता कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिलों में वो एक सीट सुझाने के भी आदेश दे दिए हैं। पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सपा कैडर में नाराजगी ना हो कि कांग्रेस को कहीं ज्यादा या कहीं ऐसी जगह सीट दे दी गई जहां से सपा का कैंडिडेट जीत सकता था। इस बीच में अखिलेश यादव ने लगातार बैठकों का दौर जारी रखा है और जिलेवार बैठक लेकर अपने भी संभावित प्रत्याशियों को जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं।
0: मेरठ और बरेली से लव जिहाद के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।
13: मुंबई में मॉडलिंग करने वाली मेरठ की लड़की ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़के ने धर्म परिवर्तन का दबाव डाला।
14: मुझे कहते थे आप उनसे?
15: मैं मॉडलिंग करती थी, बॉयज को भी मॉडलिंग का शौक था, तो हम लोग दोनों को मुंबई जाना था तो हम दोनों मुंबई चले गए थे।
8: तो मुंबई में रहते रहते हम लोगों में एक दूसरे में बॉन्डिंग हो गया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए दोनों, और मैंने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, हम साथ में रहेंगे। और फिर
15: कितने दिन से रिलेशनशिप में थे?
8: 11 साल से 11 साल।
15: अब क्या बात हुई है जो रिलेशनशिप टूट गया? अब क्या करा है
8: उसने मुझसे बिना बताए शादी कर ली, और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। जैसे मुझे पता चला मैं उसके घर पे, तो मुझे वापस से बोला फिर ऐसी कोई बात नहीं है, शादी नहीं हुई है।
15: क्या नाम है उसका?
8: वशील। और उसने जो उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि मैं वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपने बजट में अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से।
13: पीड़िता के मुताबिक 2016 से दोनों मुंबई में साथ रह रहे थे। इस दौरान उसके मॉडलिंग के पैसों पर बॉयफ्रेंड वासिल ऐश करता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसों का बड़ा हिस्सा अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में खर्च कराता था। लड़की के मुताबिक करीब 50 से 60 लाख रुपए उससे ऐंठे जा चुके हैं। पीड़िता का कहना है कि वासिल ने एक्टर बनाने के सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार वासिल बच्चा गिरवा देता।
8: मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी इसके साथ में, वशील के साथ में रिलेशनशिप में थी। तो मैं प्रेग्नेंट रह गई, तो मैंने कहा मुझे अबॉर्शन नहीं करना, मुझे बच्चा रखना, मुझे शादी करनी है। तो उसने बोला अगर तुम बच्चा रखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं, तो उसने मुझे जबरदस्ती मेरे अबॉर्शन करवा दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, रहते रहे। मैं 3 बार ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ, 3 बार उसने मुझसे शादी नहीं की।
13: पीड़िता के मुताबिक 21 मई 2026 को वो आरोपी के घर पहुंची और करीब 15 दिन वहां रही। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों से उसे पता चला कि वासिल की शादी पहले ही महविश नाम की लड़की से हो चुकी है। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
16: उनकी मुलाकात मुंबई में हुई, यहाँ पे जो है शादी का झांसा देकर इनके साथ संबंध बनाए गए और इनसे जो है कुछ पैसे भी ले लिए गए। इसमें आज ये आवेदिका थाने पर आई है, वह इनके के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है थाना सरगना में, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
13: उधर बरेली में भी एक महिला ने एक मुस्लिम शख्स पर पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शख्स ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि हकीकत सामने आने के बाद उसे धमकाया गया, दरगाह पर ले जाकर उसको जबरदस्ती कलमा भी पढ़ाया गया, वहीं धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया, जिसकी शिकायत अब उसने पुलिस से की है।
17: पिछले 1 वर्ष से उस महिला के साथ किराए के मकान में रह रहा था तथा शादी का झांसा देकर लगातार उनका शारीरिक शोषण कर रहा था, और जब यह महिला को ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम अरबाज है, तो उसके द्वारा महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना पर BNS तथा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
13: यूपी में एक के बाद एक इस तरह के धर्मांतरण के मामलों को लेकर प्रशासन एक्शन में है, जहां जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में जांच की जा रही है कि क्या मरीजों को कम स्टेंट लगाए गए और फाइलों में ज्यादा दिखाकर पैसा खाया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हुए इन इलाजों में गड़बड़ी का किया जो आशंका है, उसके बाद जांच तेज की गई है। जांच में सामने यह आया कि कुछ मरीजों को बार बार भर्ती करके एक से ज्यादा बार स्टेंट्स लगाए गए हैं।
18: एक तरफ तो KGMU में जो कैंसर पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो एक इंजेक्शन उनको ना देकर कहीं ना कहीं उसका हेराफेरी की गई। साथ ही साथ कई मरीज ऐसे भी हैं जिनको इंजेक्शन लगाया नहीं गया, जबकि उनके नाम पर इंजेक्शन रिलीज कर लिया गया। ये हालात हैं कैंसर पेशेंट्स के जो KGMU में आते हैं, जिसकी एक वृद्ध जांच चल रही है। इससे परे दूसरी जगह जो हार्ट के पेशेंट हैं, उसमें स्टेंट डालने के लिए एक ही मरीज को 5-5 स्टेंट डाल दिए गए।
19: लोगों की जानकारी में आया है कि कुछ आयुष्मान के मरीजों में 5 स्टेंट का प्रश्न उठ रहा है। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 स्टेंट भी लगते हैं कुछ समय के भीतर, लेकिन उसकी जांच करना जरूरी है क्योंकि आयुष्मान में 3 स्टेंट से ज्यादा का पैकेज अलाउड नहीं है। तो अगर विशेष परिस्थितियों में कोई चीज करनी होती है तो उसकी एक प्रक्रिया है जो नहीं की गई है। तो ये तो क्लियर है कि 5 स्टेंट जो लगाए गए हैं उनमें वृहद जांच की जरूरत है। जैसे पहला बिंदु यह है कि 5 स्टेंट लगे कि नहीं, अगर 5 स्टेंट लगे हैं तो फिर उनके इंडिकेशंस पूछे जाएंगे, वो एक दूसरा विषय होगा। दूसरा जो जिसकी बात की शंका ज्यादा है कि 5 लगे ही नहीं होंगे, 2 लगे हैं और 5 को दिखा दिया गया है 5 लगे हुए हैं और जो 3 स्टेंट एक्स्ट्रा HRS से आए उसको लोगों ने गायब कर दिया। अगर ऐसा है जिसकी संभावना है तो ये देखना है कि केवल आयुष्मान के लोग मिले हुए थे या विभाग का जो है जो टेक्निकल और फार्मास्यूटिकल स्टाफ था वो मिला था।
0: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
20: A good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game, from all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
21: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कौन सा है वो रत्न जो आपकी त्वचा को बहुत अच्छा बना सकता है? कौन सा है वो रत्न जो आपके डिप्रेशन को दूर कर सकता है? और कौन सा है वो रत्न जो आपकी बुद्धि को तेज कर सकता है? कौन सा है वो चमत्कारी रत्न? किस ग्रह से है उसका संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
2: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर दिल्ली में चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर बवाल। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हत्या, ईसी ने आज मिलने के लिए बुलाया। 20 सांसदों की बगावत के बीच सोनिया से ममता ने की मुलाकात। बागी काकोली घोष ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, एनडीए को समर्थन करने का किया ऐलान। बीजेपी का मिशन पंजाब तैयार, अमित शाह संभाल रहे कमान। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला, अकाली के साथ गठबंधन नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री की अहम बैठक, नड्डा समेत कई मंत्रालयों के साथ मंथन। धर्मेंद्र प्रधान बोले दोषियों को मिले सख्त सजा, री एग्जाम को लेकर पुख्ता इंतजाम। और पीओके में मुनीर की बर्बरता पर भारत ने लगाई फटकार, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को ठहराए जवाबदेह। 7 गर्भवती महिलाओं समेत 27 की मौत। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन और कांग्रेस का रुख करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने 24 घंटे के भीतर जिस तरह से सोनिया गांधी से दूसरी बार मुलाकात की है, उसके बाद अटकलें तो और टीएमसी के कांग्रेस में विलय तक की लगाई जा रही हैं। अब
1: यूं तो राजनीति में हफ्ता भर भी लंबा वक्त होता है, इस लिहाज से 2 साल तो बहुत ज्यादा है। 24 महीनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को पलट दिया है। 2024 याद करिए, बीजेपी 240 सीटों पर अटकी, एनडीए की ताकत 293 पर ठहर गई। लेकिन अब 2 साल में टीएमसी के बागियों के समर्थन के बाद एनडीए एक बार फिर 300 के पार पहुंच जाता है। राज्यसभा में भी एनडीए की शक्ति सामान्य बहुमत से आगे निकलकर 137 के करीब पहुंच जाती है, जो 2/3 से सिर्फ 26 सांसद कम है। सवाल है कि बीजेपी की इसी राजनीतिक शक्ति ने क्या सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच की दूरियों को कम कर दिया, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाती हैं और फिर ममता 10 जनपद उनसे मिलने पहुंचती हैं, जहां 29 साल पहले कांग्रेस ने उन्हें निकाला था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर साल 1998 में टीएमसी बनाई और बंगाल से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। लेकिन 28 साल बाद ममता को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ रहा है। करीब 60 विधायकों की बगावत के बाद 20 लोकसभा सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। सवाल अब टीएमसी के राज्यसभा सांसदों की तरफ उठने लगा है। वहीं सीआईडी और सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पर अभिषेक और टीएमसी तो कट मनी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर टीएमसी नेताओं को जनता खबरदार कर रही है। ममता जिस वक्त सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचती है, उसी दौरान सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पहुंचती है।
2: 30B हरिश्चारी स्ट्रीट के साथ साथ कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में भी इस समय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से बंद रखा गया, बैरिकेड को रखा गया है और एक टीम सीआईडी की वो अंदर प्रवेश कर चुका है। और जो कहा जा रहा है कि पहले इस टीम को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बातचीत करने के बाद टीम आखिरकार अंदर जाकर पहुंची है। कुछ दस्तावेजों के तलाश में ये टीम यहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन की कॉपी थी जो स्पीकर के पास भेजा गया था, उस रेजोल्यूशन की कॉपी के तलाश में टीम दोनों जगह पे इस समय रेड कर रही है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी दोनों ही इस समय शहर में नहीं है।
1: चुनाव